ओम शांति। जिम्मेदारियों में हल्के रहना, जिम्मेदारियों को एंजॉय करना, जिम्मेदारियों में सबको अपना साथी बना लेना और यहाँ तक कि भगवान को भी अपना साथी बना लेना, यही एक ज्ञान युक्त और शक्तिशाली आत्मा की पहचान है। हम सभी को बाबा ने श्रेष्ठ ज्ञान दिया है। हमारे अंदर किसी भी जिम्मेदारी को मिलने के बाद तुरंत भारी होने का संस्कार नहीं होना चाहिए। जिम्मेदारियों को पूर्ण करने की शक्ति हमारे पास ही है, तभी तो हमें जिम्मेदारियां मिली हैं। चाहे आपने उस तरह के कोर्स किए हैं या नहीं किए हैं, अनेक योग्यताएं मनुष्य के अंदर समाहित होती हैं। पहले कहां लोग डिग्री होल्डर हुआ करते थे, बड़े बड़े किले लोगों ने बनाए, कहां आर्किटेक्ट और इंजीनियर होते थे, ऐसे किले बनाए जिनको तोपे भी हिला नहीं पाती थी। तो बुद्धिमानी, टैलेंट्स, शक्तियां हमारे अंदर ही समाई रहती हैं। हम अगर भारी हो जाते हैं तो वो दब जाती हैं। हम अगर टेंशन में रहते हैं तो वो ठीक से काम नहीं कर पाती। हम उन्हें कार्य करने दें, उनके लिए खुला मार्ग छोड़ें, अपने को सरल चित्त रखें। बाबा की एक बहुत सुंदर बात, अगर बाबा हमें जिम्मेदारी देता है तो हम उस जिम्मेदारी को बाबा पर अर्पित करके निभाएं, तो बाबा उस जिम्मेदारी को निभाने में बहुत हमारी मदद करता है। सोच लें, जिनको भगवान ही साथ दे रहा हो, जिनके आह्वान पर वो दौड़ा चला आता हो, जिनके मन के बोझ सारे हरने के लिए, मन को हल्का करने के लिए वो तत्पर रहता हो, उन्हें भारी होने की कोई जरूरत नहीं। तो सभी अपनी जिम्मेदारियों को एंजॉय करें। चाहे आप गृहिणी माता हैं, आपको घर को संभालना है, आपको ज्यादा बच्चे हैं उन्हें संभालना है, कोई कैसा है कोई कैसा है, चाहे आपके पास कोई डिपार्टमेंट है उसे आपको संभालना है, चाहे आपके पास कोई बड़ी जिम्मेदारी आ गई उसे आपको संभालना है। याद रखेंगे, मनोस्थिति अगर नहीं बिगड़ेगी तो जिम्मेदारी सहज ही पूर्ण होती जाएंगी। हर व्यक्ति आपका सहयोगी बनेगा और घरों में तो आपकी स्थिति जितनी श्रेष्ठ रहेगी उतना ही गुड प्रभाव, गुड इफेक्ट सभी बच्चों पर और मेंबर्स पर होगा। परिवारों में तो यही होता है कि किसी न किसी का स्वभाव संस्कार मनुष्य को भारी किए रखता है। जिम्मेदार लोगों पर वो बोझ बन जाता है। किसी भी कर्म भोग के कारण ऐसी स्थिति आपके परिवार में पैदा भी हुई हो तो आपको बहुत ज्ञान युक्त और बहुत हल्के रहना चाहिए। हर एक की चिंता कहाँ तक आप करेंगे? यदि आप हरेक की चिंता करने लगे तो आप अपनी चिंता करना भूल जाएंगे, और जिनकी चिंता आज आप कर रहे हैं वो आपको कभी साथ नहीं देंगे। आपको रोता हुआ छोड़ जाएंगे कि लो, तुम्हें भगवान भी मिला और तुमने कुछ नहीं पाया, तुम हमारी चिंताओं में ही लगे रहे। तो जिन्हें अपनी खुद की चिंता नहीं है, जिनके पास सद्विवेक नहीं है, उनकी हमें चिंता क्या करनी है? तो साक्षी भाव धारण करें, बाबा को अपना साथी बनाएं, बिल्कुल साथ लेकर चलें। तो आज सारा दिन ये बहुत सुंदर अभ्यास हम करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मेरे अंदर अनेक योग्यताएं हैं, मुझे शक्ति प्राप्त है अपनी जिम्मेदारियों को सहज रूप से चलाने की। अपनी शक्तियों को पहचानते हुए सारा दिन विजन बनाएंगे। सर्वशक्तिवान सिर के ऊपर छत्र छाया है। भगवान जिनके ऊपर छत्र छाया हो, न माया उनमें अपने बाण फेंक सकती, वो सब नष्ट होकर गिर जाएंगे। न और कोई बाधाएं और समस्याएं आपको आगे बढ़ने से रोक सकती हैं। तो सारा दिन सर्वशक्तिवान की छत्र छाया में रहते हुए
आज का दिन व्यतीत करेंगे, बहुत हल्के रहेंगे, भारी होने की आदत नहीं। भार स्वयं भारी होंगे तो जिम्मेदारी भी भारी हो जाएंगी, स्वयं हल्के रहेंगे तो जिम्मेदारियां भी हल्की हो जाएंगी, सहयोगी मिल जाएंगे, सब आपको कोऑपरेट करेंगे।

ओम शांति। आज 15 अगस्त 2026 और आज है स्वतंत्रता दिवस। सभी भारतवासी भाई बहनों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। किसी भी देश के लिए स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस, ये दो दिवस जैसे राष्ट्रीय त्योहार है, जहां हर देशवासी खुशी से झूमता है और अपनी खुशकिस्मती समझता है। भारत का स्वतंत्रता दिवस, यह भी हम भारतवासियों के लिए बहुत बहुत सुखद पर्व के रूप में हम सभी मनाते हैं। आज के दिन हम सभी आजाद हुए और ऐसे समय पर हम सभी उन मूल्यों को याद करें कि जिस मूल्य को लेकर के हमने इस आजादी को प्राप्त किया है, सत्य, अहिंसा, प्रेम आदि ऐसे अनेक मूल्य को हम अपने जीवन से जोड़ते जाते हैं और इसीलिए ये स्वतंत्रता दिवस हमारे लिए बहुत खास है कि जिन आत्माओं ने इस आजादी के लिए जो बलिदान दिया है, उस बलिदान को भी हम याद करते हैं। लेकिन मन में एक प्रश्न आता है, क्या सचमुच हम आजाद हुए? आज कई प्रकार की बेड़ियों में मनुष्य जकड़ा हुआ है। देश की आजादी तो हो गई, देश स्वतंत्र हो गया, लेकिन क्या हम स्वतंत्र हुए? देखा जाता है, महसूस किया जाता है कि आज मनुष्य भी अनेक प्रकार के बंधन में स्वयं को अनुभव कर रहा है। कहां देखो तो 5 विकारों का बंधन है, जिसकी गुलामी में आज मनुष्य अनेक ऐसे विकृत कर्म करने लग पड़ा है। कहीं काम का बंधन है तो कहीं क्रोध का बंधन है, कहीं अहंकार का बंधन है। ये बंधनों ने हमको बहुत दुख, कष्ट आदि दिया है। तो दूसरी ओर देखते हैं कि कई लोग अनेक प्रकार के व्यसनों के बंधन में बंध चुके हैं। आज आजाद देश भी व्यसनों के गुलामी में अपने बच्चों को जब देखता है तो शायद इस भारत माता को भी कष्ट होता होगा। कहां देखो तो कोई शराब के बंधन में है, छूटना चाहते हुए भी छूट नहीं पाते हैं। अनेक ऐसे ड्रग्स आ गए हैं जिस ड्रग्स में युवा पीढ़ी गरकती जा रही है, उससे छूटना भी चाहते हैं लेकिन कहीं ना कहीं हिम्मत नहीं। तो इसीलिए भारतवासी ऐसे कई प्रकार के व्यसनों के बंधन में अपने आप को जकड़ता हुआ महसूस कर रहा है। माता पिता, परिवार के लोग दुखी हो रहे हैं जब उन्हें पता चलता है कि उनके परिवार के सदस्य इस प्रकार के दुर्व्यसनों के प्रभाव में जकड़े हुए हैं। तो तीसरी ओर देखें तो दिन प्रतिदिन मनुष्य के कर्म ऐसे होते जा रहे हैं जो कर्म भी अनेक प्रकार के बंधन बांध रहा है, जिसको फिर कर्म भोग के रूप में चुकता करना पड़ता है। तो आज क्या सचमुच हम स्वतंत्र है? आवश्यकता है कि हम स्वयं को जाने, अनुभव करें कि हम ये देह नहीं, एक चैतन्य शक्ति आत्मा है।
और मैं आत्मा अपने असली स्वरूप में शुद्ध और पवित्र हूं। और इस जागृति से शायद हम अपनी वास्तविकता में आए और अनेक ऐसे बंधनों से स्वयं को मुक्त करें और सच्ची आजादी का जीवन के अंदर अनुभव करें। तब यथार्थ रूप में हम स्वतंत्रता दिवस को सही मायने में मना सकते हैं। तो इसीलिए इस बात पर अवश्य आप सभी विचार करेंगे और अपने आप को विकृतियों के बंधन से कर्म

0: रेडियो मधुबन 107.8 एफएम सुनते रहो, मुस्कुराते रहो दोस्तों। सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। अमृतधारा प्रोग्राम में आप सबका मैं भक्ति दिल से स्वागत करती हूँ। स्वागतम सुस्वागतम। आजकल की जिंदगी में हर कोई चाहता है कि मैं खुश रहूं, हर कोई चाहता है कि मैं एकदम लाइट रहूं, मन से हल्के रहूं। लेकिन दोस्तों, क्या सचमुच ये संभव है? आज का सुविचार इसी बात पर बहुत सुंदर प्रकाश डालता है। कहते हैं कि खुश रहना बहुत आसान है, लेकिन सरल रहना बहुत मुश्किल है। जिंदगी जब ठहरी हुई होती है तो भारी हो जाती है, लेकिन जब जिंदगी चलती है तो बहुत हल्की हो जाती है। और इसीलिए ही यादें भी जिंदगी में जरूर हो सकती है, लेकिन यादें ही जिंदगी अगर बन जाए तो फिर सचमुच कभी कभी स्ट्रेस आता है, टेंशन आता है। इसलिए दोस्तों, व्यर्थ जो है ना, वो जंक फूड जैसा है। जंक फूड हमारे पेट को खराब करता है, लेकिन व्यर्थ विचार जो है वो हमारे ब्रेन को खराब करते हैं, हमारी बुद्धि को खराब करते हैं, और धीरे धीरे हमारा आचरण भी उसी प्रकार का हो जाता है। दोस्तों, इसीलिए सुबह के सुंदर समय पर सदा मुस्कुराते रहो, खुश रहो, लाइट रहो, हल्के रहो, और दूसरों को भी वही वाइब्रेशंस देते रहो। दोस्तों, चलिए इसी के साथ हम अपने स्टूडियो में उपस्थित ज्ञानेश्वर जी का भी स्वागत करेंगे। ज्ञानेश्वर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद भक्ति जी, और आपको और हमारे रेडियो मधुबन के सभी श्रोतागण को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात और ढेर सारी शुभकामनाएं। भक्ति जी, बहुत ही सुंदर विचार था, और यह विचार सुनते समय मेरे मन में भी कुछ विचार आए। ऐसे कहते हैं कि कोई भी चीज का स्थान उचित समय और उचित जगह पे होना चाहिए। जैसे आपने बहुत सुंदर कहा कि नाव पानी में होती है तो तैरती है, लेकिन पानी नाव में आता है तो फिर डूब जाती है। वैसे जिंदगी जो है खुशी और

0: सरलता। मन को सरल बनाना मेहनत का काम है, लेकिन मन को सरल बनाएंगे तो खुशी अपने आप आ जाती है। ऐसे कहते हैं कि आप अगर खुश नहीं रह सकते तो खुश रहने की एक्टिंग करो, अपने आप खुश होते जाएंगे। तो ये एक्टिंग करना, इसका मतलब है आजकल की भाषा में उसे काउंसलिंग कहते हैं, कि हम एक्टिंग करते हैं, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, इसे जो अफर्मेशन होता है उससे बुद्धि को भी चालना मिलती है और जिंदगी चलती रहनी चाहिए। चलती का नाम जिंदगी है, रुक गई तो रुक गई। तो अच्छा विचार है, बहुत अच्छा लगा मुझे।
1: बिल्कुल दोस्तों, ऐसे ही अच्छे विचारों के साथ हम जब सदा जिंदगी बिताते हैं तो लेन देन भी वही करते हैं, जो भी कोई मिलता है उसको भी हम वही सुनाते हैं, और मैं समझती हूँ कि उसके कारण उनको भी हम खुश तो कर देते ही है, लेकिन उनके अच्छे वाइब्रेशंस, उनकी दुआएं भी हमें मिलती हैं। दोस्तों सचमुच किसी ने बहुत खूब कहा है कि अगर बाकी कुछ न मिले जिंदगी में लेकिन दुआएं भी मिले तो सचमुच जिंदगी तर जाती है। आज की कहानी बिल्कुल इसी बात पर है। एक बार क्या हुआ कि एक आदमी एक दुकानदार के पास जाता है जिसको थोड़े फ्रूट्स खरीदने होते हैं। वो दुकानदार के पास जाकर पूछता है, भाई केले कैसे दिए, सेब क्या क्या भाव लगाया है? तो दुकानदार उसको कहता है, साहब केले दे दिए हैं 20 रुपये डजन और सेब है 100 रुपया किलो। सोचता रहता है वो आदमी। दोस्तों उसी समय एक गरीब सी औरत दुकान में आती है और वो बोलती है, भैया मुझे 1 किलो सेब चाहिए और 1 दर्जन केले चाहिए, आप क्या भाव लगाएंगे? दुकानदार जो है वो कहता है, बहन जी केला जो है वो 5 रुपये दर्जन है और सेब जो है वो 25 रुपये किलो है। औरत कहती है, भैया जल्दी से दे दो। दुकान में पहले से मौजूद जो ग्राहक है वो तो दुकानदार को ऐसा घूर कर देखता है कि जैसे उसको निगल जाएगा। इसके पहले कि वो कुछ कहे, दुकानदार उसको इशारा करता है, थोड़ा सा इंतज़ार करो। और वो औरत खुशी खुशी सब खरीद कर प्यार से दुकानदार को बाय बाय करके चली जाती है। वो बड़बड़ाती है, हे भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, देखो ना मेरे बच्चे फलों को खाकर बहुत खुश होंगे। और जाने के बाद दुकानदार पहले से मौजूद जो ग्राहक है उसकी तरफ देखता है और क्या कहता है, दोस्तों इंतज़ार कीजिए, क्योंकि अलग अलग भाव अलग अलग ग्राहक को तो कोई देता नहीं, और अगर सचमुच ही कोई इस प्रकार से करेगा तो हम तो कभी उसी दुकानदार के पास कुछ खरीदेंगे ही नहीं। तो इसके पीछे का राज क्या है जानने के लिए करते हैं थोड़ा सा इंतजार। ब्रेक के बाद आगे का हिस्सा जरूर सुनेंगे। रेडियो मधुबन 107.8 FM सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: मैं जानकी हिमलानी, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। हम शपथ लें कि आज के बाद जब कभी भी हम गाड़ी चलाएंगे तो स्पीड का ख्याल रखेंगे, खुद का भी ख्याल रखेंगे और सामने वाले का भी ख्याल रखते हुए हेलमेट पहन करके ही अपनी गाड़ी को चलाएंगे।
1: रेडियो मधुबन,
2: रेडियो मधुबन 107.8 FM सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। दोस्तों आइए, आप सबने क्या गेस किया? आपने इसका आंसर ढूंढा? चलिए अब सुनते हैं कि दुकानदार उसको क्या बताता है। जब पहले से मौजूद जो ग्राहक है वो दुकानदार की ओर देखता है और कुछ पूछने भी जा रहा है, उसके पहले हाथ जोड़ के दुकानदार कहता है, भाई साहब मैंने आपको कोई धोखा नहीं दिया या आपको धोखा देने की कोशिश भी नहीं की, ईश्वर गवाह है ये महिला जो है ना, ये विधवा है जो चार अनाथ बच्चों की माँ है। किसी से भी कोई भी मदद लेने की उसकी इच्छा ही नहीं है, बहुत स्वाभिमानी है, कभी किसी से कुछ नहीं लेती। मैंने कई बार कोशिश की है लेकिन वो कोशिश भी नाकामयाब रही है। तब मुझे एक तरकीब सूझी, जब भी कभी ये आए ना तो मैं उसे बहुत कम दाम लगाकर जो भी मेरे पास चीज़ें है दे देता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि उसका भ्रम बना रहे और उसको लगे कि वह किसी भी बात की मोहताज नहीं है, कोई उसको दया भाव से मदद नहीं कर रहा है और इस तरह मैं भगवान के बंदे की पूजा कर खुद खुश हो जाता हूँ। थोड़ा रुक कर आगे वह दुकानदार ग्राहक से कहता है, ये औरत है ना भाई साहब, ये हफ्ते में एक ही बार आती है, भगवान गवाह है जिस दिन वो आती है प्यार से फ्रूट्स खरीदती है या कुछ भी चीज लेती है, क्या बताऊं पूरे दिन मेरी बिक्री इतनी बढ़ जाती है जैसे कि मुझ पर भगवान फिदा हो जाता है, मेहरबान हो जाता है। दोस्तों इतना सब सुनने के बाद ग्राहक भी गदगद हो जाता है, उसकी आंखें भर आती है, उसको लगता है सचमुच ये भी तो एक तरीका है दुआएं कमाने का, औरों की मदद करने का, लेकिन उनको वो एहसास नहीं करने देना। और इस प्रकार वो दुकानदार की तारीफ करता है, इतना ही नहीं आगे बढ़कर दुकानदार को वो गले भी लगाता है और बिना किसी शिकायत से, बिना किसी सौदा करते हुए वो जो भी भाव बताया है उसमें ही अपनी सारी चीज़ें खरीदता है और खुशी खुशी घर लौटता है। इसीलिए कहते हैं खुशी अगर बांटना चाहो तो उसका तरीका भी मालूम होना चाहिए, और वो तरीका अगर मालूम है तो सचमुच दुआओं के भंडार लगे हुए हैं। जैसे दोस्तों हमने सुविचार में भी सुना, खुशी जो है वो देने की चीज़ है और छोटी छोटी बातों में भी हम औरों को खुशी दे सकते हैं, बस दिल में चाहत चाहिए। ज्ञानेश्वर जी आपको क्या लगता है?
3: बिल्कुल, बहुत ही सुंदर कथा है भक्ति जी, और आपने बहुत सुंदर रीति से पेश की। हमारे श्रोतागण उत्सुक थे उसका जवाब ढूंढने के लिए, दुकानदार ग्राहक को क्या कहता है। और जो दुकानदार ने कहा दिल को छू लेने वाली बात है। देखिए इसे ही शायद कहते हैं गुप्त दान। दान का महत्व है, कोई अच्छा दानी है तो दानशूर कहते हैं, लेकिन फिर भी गुप्त दान का महत्व बहुत है। गुप्त दान का मतलब है इस हाथ से जो दिया वो दूसरे हाथ को भी पता नहीं चले, इतनी गुप्तता रखनी है। उससे क्या होता है, खुद का अहंकार जो है वो खत्म हो जाता है, और अगर किसी गरीब को हम मदद करते हैं तो उसका स्वाभिमान जागृत रहता है। दूसरों के स्वाभिमान को जागृत रखना, बरकरार रखना, ये बहुत बड़ी बात है। जैसे गरीब औरत जो आपने बताई कथा में, उसका स्वाभिमान था लेकिन दुकानदार की इच्छा थी उसे कुछ मदद करे, तो बहुत ही अच्छा तरीका ढूंढा उसने कि भले खुद का लॉस भी हो तो भी उसने दे दिया, क्योंकि उसका स्वाभिमान बरकरार रहा। वो खुश हो गई, उसको भी लगा कि मेरे बच्चों को मैंने कुछ अच्छी चीजें खिलाई। तो ये दान करने का बहुत अच्छा मार्ग है, ऐसा मुझे लगता है।
2: बिल्कुल, देखिए ना दोस्तों, और जिसके मन में हमारे प्रति बहुत शुभ भाव आता है, वो अपने आप जब दुआ देता है तो धंधे में बरकत आती है। और मैं समझती हूँ ज्ञानेश्वर जी, ये सब मानने की बात है, लेकिन ये जरूर है कि अगर हमने दिल से कोई बात की दिखावे के लिए नहीं, तो जरूर ही भगवान भी हम पर मेहरबान हो।
3: बिल्कुल बिल्कुल, एक्चुअली मुझे लगता है कि ये शॉर्टकट है भगवान को अपनाने का। ऐसे कोई सचमुच ही गरीब है, उसे मदद की जरूरत है, तो समय पर मदद मिलनी है, उसका बड़ा महत्व है। कोई अगर पढ़ाई करना चाहता है, उस समय भले 100 रुपए की उसको मदद की और उसकी पढ़ाई पूरी हो गई, बाद में वो लाखों रुपए कमाएगा, लेकिन फिर भी क्या है, वो जरूरत जब थी तब आपने पूरी की जरूरतें, तो उसका बड़ा भाग्य खुद का भी बनता है और उसका भी बनता है, ऐसा मुझे लगता है।
2: बिल्कुल, चलिए दोस्तों, श्रीमद् भागवत कथा का चिंतन हो रहा है, मंथन हो रहा है, और उसमें आप सब प्यार से शामिल होते हो, ये बहुत बहुत खुशी की और गर्व की बात है। चलिए ब्रेक के बाद हम करते हैं ज्ञान का मंथन, भागवत कथा का श्रवण। रेडियो मधुबन 107.8 FM सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: मैं हूं जयप्रदा और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। मधुबन सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: रेडियो मधुबन 107.8 FM सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। दोस्तों, बहुत ही सुंदर दशम स्कंध का हम चिंतन कर रहे हैं और जिसमें 24वें अध्याय में काफी बातें स्पष्ट की है भागवतकारों ने। उसमें भागवतकार कहते हैं कि यदि कर्मों को ही सब कुछ न मानकर उनमें भिन्न जीवों को कर्म का फल देने वाला ईश्वर भी माना जाए तो वह कर्म करने वालों को ही उनके कर्म के अनुसार फल देता है। यहाँ वो बताते हैं कि कर्म न करने वालों पर उसकी प्रभुता नहीं चल सकती। जब सभी प्राणी अपने अपने कर्मों का ही फल भोग रहे हैं तब हमें इंद्र की क्या आवश्यकता है। श्री कृष्ण जी स्वयं अपने पिताजी को पूछते हैं, क्योंकि यहाँ बताया गया है कि इंद्र देव जो है जो जल की वर्षा करते हैं, जिसके कारण ब्रजवासी जो है वो जीते रहते हैं, फल फूल आदि सब आता है और उनकी धरनी जो है वो बहुत ही हरी भरी रहती है। तो इंद्रदेव की पूजा जो है इसके लिए की जाती है, जो वर्षा ऋतु की देवता है। तब श्री कृष्ण जी कहते हैं कि पिताजी, जब वे पूर्व संस्कार के अनुसार प्राप्त होने वाले मनुष्यों के कर्म फल को बदल नहीं सकते तब उनसे क्या प्रयोजन। मनुष्य तो अपने पूर्व संस्कारों के अधीन है ना, वह तो उसी का ही अनुसरण करते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ तक कि देवता असुर मनुष्य आदि को लिए हुए यह सारा जगत स्वभाव में स्थित है। बहुत सुंदर शब्द ज्ञानेश्वर जी, मुझे लगा कि सारा जगत जो है वो स्वभाव में स्थित है। वैसे हम बहुत ही साधारण रीति से कहते हैं कि इनका स्वभाव अच्छा है, इनका स्वभाव थोड़ा सा ठीक नहीं है, इस प्रकार की बातें हम बहुत जल्दी करते हैं या कहो हम लेबल देते हैं। लेकिन यहाँ जिस रीति से भागवतकारों ने ये वर्णन किया है, मुझे लगता है इस पर चिंतन होना चाहिए कि मनुष्य अपने स्वभाव के अधीन है। यहाँ स्व का भाव अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे पूर्व संस्कार जो है या आत्मा के जो निजी संस्कार है उसका भाव यहाँ वो बताना चाहते हैं। और वो कहते हैं कि अपने संस्कारों के अनुसार ही हरेक का कर्म होता है।
2: बिल्कुल भक्ति जी, बहुत ही अच्छी बात कही आपने श्रीमद् भागवत के द्वारा। बहुत बार लोगों के मन में एक ख्याल आता है कि भागवत कथा में शायद अंधश्रद्धा रहती है या सिर्फ भक्ति ही दिखाते हैं। लेकिन भक्ति किसकी करनी है और क्यों करनी है, इसके ऊपर बहुत अच्छी तरह से प्रकाश इस विचारों में डाला। स्वभाव, स्व के प्रति का भाव, मैं कैसा हूं, ये भाव जब तक आपका अच्छा नहीं है तब तक आप अच्छा बन ही नहीं सकते। अगर मैं बुरा हूं, मैं गरीब हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, ऐसे कहते हैं तो फिर स्व के प्रति का भाव नकारात्मक हो जाता है। ऐसे कहते हैं कि वास्तु शांति जब करते हैं तब ग्रह देवता जो है, वास्तु देवता जो है वो हमेशा कहती है तथास्तु। और फिर क्या होता है, जब हम वास्तु में बैठे हैं और मैं कहूँ मैं दुर्भागी हूँ, मैं अभागी हूँ, तो वास्तु देवता कहेगी तथास्तु। वास्तु देवता सिर्फ तथास्तु कहती है, उसको क्या अच्छा है क्या बुरा है वो देखना नहीं है। जैसे ही भक्त ने कहा उसको तथास्तु कहते हैं। इस रीति से अगर मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं भाग्यवान हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं अमीर हूँ, मेरे पास पैसा बहुत है, धन बहुत है, मैं दान पुण्य करने वाला हूँ, ऐसे अगर मैं कहते रहता हूँ तो भी वास्तु देवता कहती है तथास्तु। तो कहना क्या है, बोलना क्या है, ये हमारे विचारों के ऊपर निर्भर है। और इसलिए स्वभाव जो है, स्वभाव बदल सकता है जब हमने स्व के प्रति का भाव बदल दिया। और इसलिए मुझे लगता है कि यहाँ ये कथा जो बताई दशम स्कंध में, तब श्री कृष्ण जी को समाज सुधारक के नाम पे उनकी महानता देख सकते हैं। क्योंकि समाज में आम तरीके से जो मान्यता है उसको छेद देने वाला ये वक्तव्य है। देवताओं की पूजा क्यों करनी है, इसके ऊपर भी उन्होंने बहुत अच्छा भाष्य किया था कि हम देवताओं से कुछ प्राप्त करने के लिए जब देवताओं की पूजा करते हैं उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि लौकिक चीजें हमारे भाग्य के ऊपर, हमारे संस्कारों के ऊपर हमने जो कर्म किया है उसके फलस्वरूप मिलती है, ऐसा मुझे लगता है।
1: बिल्कुल दोस्तों, कितनी सुंदर बात है, और मुझे लगता है कि इन सब बातों को हम बहुत ही लाइटली लेते हैं, या कहते हैं कि परंपरा है, लेकिन भागवतकारों ने यहाँ हर बात का बहुत ही सुंदर स्पष्टीकरण दिया है। और स्व का भाव क्या है, हमारे संस्कार किस प्रकार से बनते हैं, इन बातों को बहुत ही सुंदर खूबी से समझाया गया है। तो दोस्तों चलिए, इन्हीं बातों की चर्चा होती रहेगी, लेकिन अब समय हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से मिलते हैं। रेडियो मधुबन 107.8 FM सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: किसी की एक लाइन मेरी मन, फीलिंग्स, वर्ड्स, एक्शन, रिलेशनशिप एंड बॉडी, छह चीजों पे असर हुआ मेरे। एक घंटे तक ये पूरी साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी सब डिस्टर्ब्ड रही, रिश्ता डिस्टर्ब हुआ, रात को भी वो बात याद आई। एंड डेफिनेटली जब ये चीजें दिन में इतनी देर माइंड पे रही होंगी, ये नींद में जरूर चली होंगे, क्योंकि जो थॉट्स एक्टिव ड्यूरिंग द डे चलेगी ज्यादा, ये नींद में जरूर चले होंगे। नींद का नुकसान इसलिए क्योंकि आपने रात को सोने से पहले भी उस बात के साथ रिजोल्व नहीं किया अपने आप को, आप वो अनरिजोल्व्ड बात के साथ सो गए। तो मन क्या करता है, रात को सारा दिन की हुई बातें या जो कुछ हमारे माइंड पे है, देखो कोई प्रॉब्लम है, क्यों लोगों को नींद नहीं आती, वेन दे आर अंडर स्ट्रेस कोई प्रॉब्लम है, नींद नहीं आती, क्यों नहीं आती है? क्योंकि मन सोचना बंद नहीं करता है। सोने के लिए द माइंड नीड्स टू स्लो डाउन। इफ आई एम डिस्टर्ब्ड अबाउट समथिंग द माइंड जस्ट गोज ऑन एंड ऑन। आपके साथ एक बच्चा बैठा है, वो पूछता जाएगा जब तक आप उसको आंसर नहीं देंगे। आंसर दिए बिना ही सो गए तो वो तो रात को भी सोचता रहेगा। एंड इसीलिए मोस्ट ऑफ अस टुडे एक्सपीरियंस कि हम अपने 6 घंटे तो सो रहे हैं, 6 घंटे 8 घंटे जितना सोना है, लेकिन जब हम सुबह उठ रहे हैं द माइंड इज नॉट एज फ्रेश एज इट नीड्स टू बी।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: रेडियो मधुबन 107.8 FM सुनते रहो मुस्कुराते रहो। दोस्तों, यहाँ आगे भागवतकार कहते हैं, हर एक प्राणी अपने कर्मों के अनुसार उत्तम और अधम शरीरों को ग्रहण करता है और छोड़ता रहता है। अपने कर्मों के अनुसार ही यह शत्रु है, यह मित्र है, यह उदासीन है, ऐसा व्यवहार करता रहता है। कहाँ तक कहूँ, कर्म ही गुरु है और कर्म ही ईश्वर है। इसीलिए श्री कृष्ण जी कहते हैं, मनुष्य को चाहिए कि अपने पूर्व संस्कारों के अनुसार अपने वर्ण तथा आश्रम के अनुकूल धर्मों का पालन करता हुआ कर्म का आदर करे। यहाँ एक कर्मयोगी जीवन बताया है। वैसे देखा जाए तो कहाँ भी शास्त्रों में कर्म कांड नहीं बताया है या कर्म हीनता नहीं बताई है, लेकिन कर्म योगी बनना सिखाया है, अर्थात कर्म के साथ हमारी बहुत सकारात्मक अच्छी भावना चाहिए और परमात्मा की स्मृति चाहिए।
3: कर्म का मतलब है हमें हमेशा कुछ ना कुछ चीजें करती रहनी चाहिए। कर्म करना इसका मतलब सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ना नहीं है, हम भी इसमें कुछ शरीक हो, हमारा पुरुषार्थ रहे, हमारा प्रयास रहे। बहुत बार होता है कि भगवान देता है तो छप्पर फाड़ के देता है और भगवान लेता है तो सब कुछ ले लेता है, ऐसी एक कहावतें हैं। लेकिन भगवान देता है आपके विचारों के ऊपर। जब आप कर्म अच्छे करते हो तो रिटर्न होके वापस आपके ही कर्म आपके पास आते हैं। एक बार अच्छी कथा मैंने सुनी थी, कही कि मनुष्य जो है वो गंगा में नहाता है और वो कहता है, गंगा जी आपने मेरे पाप धो दिए, मैंने पाप किया और आपके पास दे दिया तो आपको तकलीफ तो नहीं होती? गंगा मैया हंसती है और बोलती है, भैया आपके पाप जो आपने धोए मेरे जल में, मैं थोड़ी मेरे पास रखूंगी, मैं पागल थोड़ी ही हूँ, मैं जाके उसको सागर में दे देती हूँ। तो मैं तो निश्चिंत हो गई। वो आदमी परेशान होता है, कहता है, अच्छा आप सागर के पास चला जाता है, सागर को कहता है कि गंगा जी ने मेरे पाप जो है वो आपके पास दे दिए तो फिर आपके पास रखोगे? सागर कहता है कि मैं थोड़े ही पागल हूँ आपके पाप रखने के लिए, मैं क्या करता हूँ, उसको बादल के रूप में हवा में छोड़ देता हूँ। तो फिर वो बादल के पास जाता है और बादल को पूछता है कि आपने मेरे पाप रख दिए ठीक तरह से? बादल कहता है, भैया मैं पागल थोड़ी ही हूँ, मैं वही पाप जो है वो बरसाता हूँ। तो बोलते, किसके ऊपर बरसाते हो? बोलते, आपके ही ऊपर बरसाता हूँ। तो जो हम कर्म करते हैं आज नहीं तो कल हमारे पास वापस आने ही वाले हैं। तो क्यों ना हम अच्छे कर्म करें? बुरे कर्म करेंगे तो बुरे कर्म वापस आएंगे, अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छे कर्म वापस आएंगे। तो ये कर्म सिद्धांत जो है भागवत कथा में बताया गया है, वो कर्म सिद्धांत बहुत अच्छा है, उसके ऊपर हमें गौर करना है। हम अच्छा सोचे, अच्छा विचार करें और अच्छे कर्म करें तो हमारी जिंदगी खुशनुमा रहेगी और हम दूसरों की जिंदगी भी बनाने के प्रयास में सफल रहे, ऐसा मुझे लगता है।
2: बिल्कुल, और इसीलिए दोस्तों यहाँ बहुत सुंदर बात कही है कि पूर्व संस्कारों के अनुसार ही हमारा जन्म होता है, हमारे कर्म होते हैं। इसीलिए संस्कारों का बहुत महत्व है, जिस पर हमने काफी चर्चा की है ज्ञानेश्वर जी। तो मुझे लगता है कि श्रीमद् भागवत कथा एक नई दिशा देती है आज के समय में, आज की जो युवा पीढ़ी है उनके लिए तो मैं समझती हूँ एक प्रकाश स्तंभ है। सिर्फ बात यह है कि उसको उस रीति से समझना चाहिए, जानना चाहिए और फिर उस चिंतन को अपने जीवन में उतारना चाहिए। तो अभी प्रश्न उठता है, इन सारी बातें जो श्री कृष्ण जी और उनके पिताजी के साथ भागवतकारों ने बताई है, इसका मकसद क्या है? तो ज्ञानेश्वर जी, यहाँ शुकदेव जी राजा परीक्षित को बताते हैं कि भगवान की इच्छा थी कि इंद्र का जो घमंड है वो चूर चूर हो जाए। इन सारी बातों के पीछे जो दरअसल मकसद था वो ये था कि नंद बाबा और बाकी सारे गोप जो है वो कभी कभी केवल भक्ति भाव से नहीं लेकिन डर के मारे घबरा कर भी पूजा करते थे और इसके कारण इंद्रदेव को बहुत घमंड आ गया था। तो भगवान का काम जो है, भगवान का कार्य जो है वो ये है कि किसी न किसी रूप में हम सबको भी एक बहुत सुंदर शिक्षा देना और उसके साथ साथ जो घमंडी है उसका घमंड तोड़ना।
3: बहुत ही अच्छी बात है। श्री कृष्ण जी, नंद बाबा और गोपाल, ये सब जनता है, प्रजा है। ऐसे ही कई महापुरुष होते हैं, समाज सुधारक होते हैं, भले उनके ऊपर टीका टिप्पणी होती है, उनको बड़ी तकलीफें झेलनी पड़ती है, लेकिन वो अपने विचारों पे अड़िग रहते हैं। दूसरों का कल्याण करना ये उनकी भावना रहती है, दूसरों का इंसल्ट करना, अपमान करना ये भावना नहीं रहती, लेकिन दूसरों का कल्याण करना ये भावना रहती है। और यहाँ तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी है, इंद्रदेव का अभिमान या घमंड जो है वो तोड़ना चाहते हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि इंद्र जो है वो सभी देवताओं का राजा है। अभी देवताओं का राजा ही घमंडी हो तो फिर प्रजा कैसी है? इसके ऊपर भी कभी हम गौर करेंगे, उसके ऊपर चिंतन करेंगे। लेकिन ये संदेश जो भागवत कथा में दिया है इस कथा के द्वारा, इसका मतलब यह है कि घमंडी नहीं होना चाहिए। आपका घमंड कभी कभी चूर हो जाता है, वो पता ही नहीं चलेगा आपको, ऐसा मुझे लगता है।
2: बिल्कुल दोस्तों, विनम्रता एक बहुत सुंदर गुण है और घमंड एक विकार है, और इसीलिए बहुत ही सुंदर रीति से एक कथा के माध्यम से भागवतकारों ने यहाँ हमें बहुत सुंदर शिक्षा दी है। चलिए दोस्तों, इन्हीं बातों के साथ समय को देखते हुए मैं भक्ति अपने वाणी को विराम देती हूँ। अमृत धारा में फिर से जरूर मिलेंगे। रेडियो मधुबन 107.8 FM सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

मैं हूं अवधेश पंडित, जीएम फाइनेंस भेसिल, और आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो।

0: विद्वान कई हुए वीर कई,
1: ये भूमि है महान,
0: फिर भी प्रणाम करती संस्कृति यहाँ की,
1: ये है कितनी निर्माण,
0: भारत का गौरव गान
1: गाता है इतिहास स्वर्णिम,
0: अनेकता में एकता यहाँ
1: रहता मिला जुला हर रंग।
0: रेडियो मधुबन की ओर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।

राम राम, सुप्रभात, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग आबू। 7:02 रेडियो मधुबन की घड़ी पर और आज है 15 अगस्त 2026। आज़ादी के इस पावन पर्व पर रेडियो मधुबन के ओर से आप सभी को 80वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद। ये दिन हमें उन वीरों के त्याग, साहस और बलिदान की याद दिलाता है जिनकी वजह से हम आज़ाद भारत की खुली हवा में सांस ले रहे हैं। आज़ादी केवल एक अधिकार नहीं, लेकिन ये एक जिम्मेदारी भी है, अपने देश को स्वच्छ रखने की, प्रकृति की रक्षा करने की, एक दूसरे का सम्मान करने की और अपने कर्मों से भारत को और बेहतर बनाने की। इन्हीं भावनाओं को समर्पित है हमारी आज की ये विशेष प्रस्तुति और कुछ ही क्षणों में हम आपको ले चलेंगे लाइव प्रसारण सुनने के लिए रेड फोर्ट की ओर। जय हिंद, वंदे मातरम।

0: father of the nation, Mahatma Gandhi.
1: बापू ने संपूर्ण मानव जाति को अहिंसा का वो अनोखा और अविस्मरणीय संदेश दिया जिसने दुनिया के तमाम नागरिकों और देशों को स्वाधीनता के प्रति आंदोलन के लिए प्रेरित किया। बापू का जीवन सादगी, उच्च विचार और आदर्श की चरम परिणति है जिससे हर क्षण कुछ न कुछ ग्रहण किया जा सकता है। राजघाट प्रतीक है संपूर्ण देशवासियों और समस्त राष्ट्र की भावनाओं का। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आगमन हो चुका है राजघाट पर, जहां वे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित करेंगे, श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे।
0: It is in the embers of sacrifice, the flame of freedom finds its light. We haven't forgotten what all our people had to go through to earn this freedom, and hence the flame, the fervor of nationalism burns in our hearts and souls as strong as ever. The paying of solemn homage to the Mahatma is not just a ceremony, it is tradition, culture, and values in their most sacred form. This act of showing earnest reverence is a culmination of age-old knowledge along with a deep understanding of gratitude in one's personal life. The Honorable Prime Minister, paying homage to the father of the nation, Mahatma Gandhi, symbolizes a transition of eras and yet the endurance of the ethos of being a humble soul, the prime representative of a billion plus souls, paying obeisance on behalf of all of us, showing what we all feel towards the Mahatma.

0: the Prime Minister, on behalf of the entire nation, took a pledge to walk the path Bapu showed us, to uphold the truth Bapu lived by, to carry forward the peace Bapu believed in, and to build the India he dreamt of. For the journey may be long, the road may be challenging, and the world may test our resolve, but Mahatma Gandhi's message continues to guide us. Walk with truth, walk with courage.
1: शांति के मसीहा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से पुष्पांजलि दी और श्रद्धा सुमन अर्पित किए। ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर के ठीक सामने नेशनल फ्लैग गार्ड के जवान अपनी जगह पर मौजूद हैं। नेशनल फ्लैग गार्ड की संयुक्त टुकड़ी है जिसमें थल सेना, नौसेना, वायुसेना और दिल्ली पुलिस के एक एक अधिकारी और 32 अन्य रैंक के कर्मी शामिल हैं। प्रधानमंत्री महोदय के राष्ट्रीय ध्वज फहराए जाने के बाद नेशनल फ्लैग गार्ड की संयुक्त टुकड़ी द्वारा तिरंगे को राष्ट्रीय सलामी दी जाएगी। मेजर लोकेंद्र सिंह शेखावत इस अंतर सेवा रक्षक और पुलिस रक्षक दल की कमान संभाल रहे हैं। हमारे स्पेशली माउंटेड कैमरा से ये विहंगम दृश्य लाल किला परिसर का आप तक पहुंच रहा है। ठीक सामने वंदे मातरम की प्रतिमूर्ति बनाते हुए भारत की युवा शक्ति, बाई ओर के एनक्लोजर्स में स्पेशली इनवाइटेड गेस्ट जिन्होंने भारत सरकार की अलग अलग योजनाओं का लाभ लिया है।
2: And the Indian Air Force, they're preparing for a stupendous flypast with Mi-17 helicopters commemorating the historic Independence Day and the 150 years of the national song Vande Mataram. Preparations all done, contingents ready of the Guard of Honor as well as the National Flag Guard.
0: Here at the Red Fort, you can really feel the excitement building. The venue is filling up, and what a wonderful sight it is to see people from so many different parts of the country coming together for this special morning. We can see the colors of India all around us. Bright uniforms, colorful turbans, traditional attire, uniforms, and of course, the tricolor waving proudly among the crowd. There are people who have traveled from the
3: और वंदे मातरम का ये गीत आप सुन रहे हैं। ये गीत ऐसा है जो हमारे दिलों में गूंजता है, जिसकी गति भी हो चाहे प्रगति भी हो, हर चीज की वो निशानी है। 150 साल इस गीत ने पूरे किए, 150 वर्ष एक ऐसे नारे की तरह जो जोश से उमंग से भर देता था, और अभी भी उसका इम्पैक्ट उतना ही है। दोस्तों, क्रांतिकारियों की कहानियां आपने सुनी होंगी और किस प्रकार वंदे मातरम कहकर शहादत पाई कितनों ने, वो वंदे मातरम की स्मृतियां आज तक जागृत हैं। रेडियो मधुबन 107.8 FM सुन रहे हैं आप, और हम मना रहे हैं आज 80वां स्वतंत्रता दिवस। और आप इस वक्त सीधा रेड फोर्ट पहुंच चुके हैं। वैसे तो आप सभी YouTube के माध्यम से भी इन नज़ारों का लुत्फ उठा सकते हैं, गर्व महसूस कर सकते हैं। साथ साथ आप रेडियो मधुबन से जुड़े हैं तो वहां भी आपको लाइव हम जोड़ते ही रहेंगे। बहुत सुंदर नज़ारा है, सभी गणमान्य अतिथि भी पधारे हैं, स्टूडेंट्स भी पधारे हैं, और स्टूडेंट्स कुछ इस प्रकार से बैठे हैं जैसे वंदे मातरम गीत के जो बोल हैं वो स्पष्ट दिखाई देते हैं, कुछ इस प्रकार से उनको बिठाया गया है। बाकी कुछ लोग सफ़ेद में हैं, वंदे मातरम लिखा हुआ रेड कलर का बहुत सुंदर दिखाई देता है ऊपर से जब शॉट लिया जाता है। और तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। बहुत सुंदर नज़ारा है इस वक्त रेड फोर्ट का। जोश से भरे हैं, खरोश से भरे हैं, गर्व से भरे हैं हर किसी के दिल। स्वतंत्रता पाने के लिए न जाने कितनों ने लहू बहाया है, स्वतंत्रता पाने के लिए अपना घर भी छोड़ा, खुद को भी गवाया है। भारत को आजाद कराने के लिए एक क्षण भी अपने बारे में जिन्होंने न सोचा, उनको हम आज नमन करते हैं। विकसित भारत का भी एक बहुत सुंदर सा बोर्ड यहाँ पे नजर आता हुआ, एक नया मंत्र, एक नया लक्ष्य कि 2047 में विकसित भारत होगा। आइए आपको फिर से एक बार लिए चलते हैं सीधे रेड फोर्ट की ओर।
1: लेकिन यहाँ वायुसेना के जांबाज Mi-17 हेलीकॉप्टर्स में वायु विचरण के लिए पूरी तरीके से तैनात हैं, और ये वो Mi-17 हेलीकॉप्टर्स हैं जो जब प्रधानमंत्री महोदय ध्वजारोहण करेंगे उसके ठीक बाद लाल किले की प्राचीर के सामने लाल किला परिसर को पुष्प वर्षा से आच्छादित करते हुए नजर आएंगे। मौसम चाहे कैसा भी हो, परिस्थितियां अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, लेकिन देश के स्वाधीनता दिवस समारोह में भाग लेने वाले प्रतिभागियों का उत्साह, उनका जज्बा देखते ही बनता है। हर खासो आम, हर आम और खास व्यक्ति आज के इस राष्ट्रीय उत्सव के समारोह में जुड़कर खुद को बेहद खुश, प्रसन्न और भाग्यशाली महसूस करता हुआ नजर आता है।
4: एंड दिस इज ट्रूली अ मोमेंट फॉर these children, these cadets who are here at the Independence Day celebrations. Imagine being from varied parts of the country and then coming together in unison, getting prepared, getting ready, reaching here early in the morning and then excitedly waiting for the Honorable Prime Minister and his inspiring words. And there's the cavalcade of the Honorable Prime Minister now swiftly moving towards the ramparts of the Red Fort.
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का काफिला लाल किले के प्राचीर पर पहुंच रहा है। सधी हुई रफ्तार से अग्रसर ये काफिला, बिगुलर्स का बिगुल घोष इस बात का परिचय देता हुआ कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय देश के सर्वोच्च नेतृत्व का आगमन हो रहा है, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रमुख का आगमन हो रहा है लाल किला परिसर में। लाल किला परिसर में पहुंचने पर माननीय प्रधानमंत्री महोदय का स्वागत विधिवत रूप से रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह और रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ द्वारा किया जाएगा। रक्षा सचिव श्री राजेश कुमार सिंह भी वहां पर उपस्थित हैं, जो प्रधानमंत्री महोदय का परिचय GOC दिल्ली एरिया लेफ्टिनेंट जनरल राजेश सेठी से कराएंगे।
4: After the inspection of the guard of honor, the prime minister shall move towards the inner areas of the ramparts. The guard of honor contingent for the prime minister consists of one officer and 24 personnel each from the army, navy, air force and Delhi police. The Indian army is the coordinating service for the Independence Day celebrations this year. The guard of honor will be commanded by Lieutenant Colonel Arjun Singh.
1: गार्ड कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल अर्जुन सिंह, माननीय प्रधानमंत्री महोदय का आगमन होता हुआ लाल किले के प्राचीर पर विधिवत स्वागत के लिए उपस्थित रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ, रक्षा सचिव श्री राजेश कुमार सिंह। गार्ड ऑफ ऑनर में थल सेना दस्ते की कमान संभाली है मेजर आदित्य शर्मा ने, नौ सेना दस्ते की कमान लेफ्टिनेंट कमांडर नीलम राणा और वायुसेना दस्ते की कमान स्क्वाड्रन लीडर विपिन कुमार संभाल रहे हैं। दिल्ली पुलिस दस्ते की कमान एडिशनल DCP श्री विनीत कुमार संभाल रहे हैं। प्रधानमंत्री महोदय का विधिवत स्वागत लाल किले की प्राचीर पर रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ, रक्षा सचिव श्री राजेश कुमार सिंह, जिन्होंने प्रधानमंत्री महोदय का परिचय कराया है दिल्ली जीओसी दिल्ली एरिया लेफ्टिनेंट जनरल राजेश सेठी से, और अब गार्ड ऑफ ऑनर माननीय प्रधानमंत्री महोदय को पेश किया जाएगा।
5: अंदर सेना पुलिस मार्ग का

0: Hüseyin Abdülis Zamanı'nda ilişkiler hazırım.
1: गार्ड कमांडर द्वारा माननीय प्रधानमंत्री महोदय से सलामी गारद के निरीक्षण का अनुरोध और उसे स्वीकार करके वे सलामी गारद की ओर बढ़ रहे हैं। बैंड सुमधुर धुन बजाएगा और माननीय प्रधानमंत्री महोदय सलामी गारद का निरीक्षण करेंगे।

0: The guard of honor complete, the prime minister walking swiftly towards the rampart of the Red Fort, where he will be greeted by Raksha Mantri Shri Rajnath Singh, Raksha Raj Mantri Shri Sanjay Seth, Chief of Defence Staff General N.S. Raja Subramani, Chief of the Air Staff Air Chief Marshal A.P. Singh, Chief of the Naval Staff Admiral Krishna Swaminathan, and Chief of the Army Staff General Dhiraj Seth. The General Officer Commanding Delhi Area will conduct the Prime Minister to the dais on the ramparts to hoist the national flag. The Prime Minister swiftly, smartly walking through the Lahori Gate, now moving towards the central courtyard right behind the ramparts of the Red Fort.
1: सम्मान गारद का निरीक्षण करने के उपरांत प्रधानमंत्री महोदय लाल किले की प्राचीर की अग्रसर विशाल और भव्य लाहौरी गेट प्रवेश के लिए जहां पर एक काठ का पुल है 41 फीट ऊंचा और 24 फीट चौड़ा ऊंचा मेहराबदार दरवाजा जिसके तीन मंजिलें हैं प्रधानमंत्री महोदय लाल किले की प्राचीर की ओर अग्रसर हो रहे हैं और कुछ ही समय के उपरांत वे यहां उपस्थित अपार जन समूह को संबोधित करेंगे ध्वजारोहण करेंगे
0: कैप्टन सोनिया सिंह चौहान विल असिस्ट द प्राइम मिनिस्टर इन होस्टिंग द नेशनल फ्लैग इट विल बी सिंक्रोनाइज्ड विद द 21 गन सल्यूट बाय द वैलियंट गनर्स ऑफ द 172-1 फील्ड बैटरी सेरेमोनियल The ceremonial battery, utilizing the indigenous 105mm light field guns, will be commanded by Major Pawan Singh Shekhawat. And the gun position officer will be Naib Subedar, Assistant Instructor in Gunnery, Anutosh Sarkar.
1: Mananiya Pradhan Mantri Mahodaya ka Lal Kile ki Prachir par Agaman ho

0: रहा है, जहां उनका स्वागत रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ, रक्षा सचिव श्री राजेश कुमार सिंह, सीडीएस जनरल एनएस राजा सुब्रमणि, थल सेना अध्यक्ष जनरल धीरज सेठ, नौसेना अध्यक्ष एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन और वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह द्वारा किया गया। प्राचीर के अग्रसर हैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय, अन्य विशिष्ट अतिथिगण अपने अपने निर्धारित स्थान की ओर अग्रसर होते हुए उपस्थित जनसमूह उत्सुक प्रतीक्षा करते हुए प्रधानमंत्री महोदय के उद्बोधन की।
1: The moment that everyone has been waiting for, and happily so. The moment the Prime Minister will reach the central dais of the ramparts, the prime representative of a billion plus souls, where he shall hoist the national flag.
0: लाल किले के सामने का इलाका सर्वधर्म संभाव का परिचायक है, जहां पर श्री दिगंबर जैन लाल जी मंदिर है, साथ में उसके दाहिनी ओर प्राचीन गौरी शंकर मंदिर है और लाल किले के बाईं ओर भोजला पहाड़ी पर लाल पत्थर से बनी ऐतिहासिक जामा मस्जिद अपने विशिष्ट स्थापत्य कला के लिए मशहूर, भारत की गंगा जमुनी संस्कृति की परिचायक। यहीं पर सीसगंज गुरुद्वारा भी है और बैप्टिस्ट चर्च भी है, जो सही अर्थों में भारत की सर्वधर्म संभाव की भावना का संप्रेषण करता हुआ नजर आता है।
2: एंड वी नाउ अप्रोच द हाई पॉइंट ऑफ द सेलिब्रेशन, द अनफर्लिंग ऑफ द नेशनल फ्लैग एंड द एड्रेस टू द नेशन, रिकॉग्नाइजिंग दैट सिटीजंस आर द ट्रू ड्राइविंग इंजन ऑफ आवर डेमोक्रेसी। This address will spotlight our national progress while charting a future defined by inclusion, equity and opportunity.
0: उपस्थित जनसमूह उत्कंठा से प्रतीक्षा माननीय प्रधानमंत्री महोदय के उद्बोधन की। लाल किले की प्राचीर के सामने जो नेशनल फ्लैग गार्ड मौजूद है, वहां पर संयुक्त टुकड़ी के साथ थल सेना का बैंड भी है, जिसमें एक जेसीओ और 25 अन्य रैंक वाले थल सेना बैंड की मौजूदगी है, जिसका संचालन सूबेदार ईश्वर सिंह कर रहे हैं। विशिष्ट अतिथिगणों का आगमन हो चुका है, सब अपनी जगह पर विराजमान हैं। राष्ट्रीय ध्वज फहराने और राष्ट्रीय सलामी लेने के दौरान थल सेना का बैंड राष्ट्रगीत की धुन बजाएगा और देश के स्वाधीनता दिवस के पावन अवसर पर पहली बार लाल किला परिसर पर उपस्थित हर व्यक्ति द्वारा राष्ट्रगीत का गायन किया जाएगा।
1: लेट फ्रीडम रेन, द सन नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट। एज द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी हिमसेल्फ सेड, द प्राइस ऑफ इंडिपेंडेंस वॉज हैवी, but the freedom it brings is absolutely priceless, and priceless are the moments that we see captured by Doordarshan cameras, looking at a magnificent view of the ramparts and the central dais, everyone in the audience enclosures waiting for the arrival of the Honorable Prime Minister at the central dais, from where he will hoist the national flag and address the nation. Excitement all around, smiles galore, the hope in the eyes, the brightness on the faces truly shows that each and every person here truly believes in the story of India, in the growth story of India, in the sustainable story of India.
0: हमारे 80वें स्वाधीनता दिवस समारोह की एक और खास बात, इस बार जो एनक्लोजर्स हैं, जो दीर्घाएं हैं, दर्शक दीर्घाएं और विशिष्ट दीर्घाएं, उनके नाम भारत की प्रमुख झीलों के नाम पर रखे गए हैं। इनमें भटकल, भीमताल, चंद्रताल, पुलिकट, पुष्कर, रविंद्र सरोवर जैसी झीलें शामिल हैं। यहां पर उपस्थित जनसमूह आप देख सकते हैं कितने उल्लसित हैं, उत्साहित हैं इस समारोह का हिस्सा बन करके। गणतंत्र दिवस समारोह में 2026 का जो संस्करण था उसमें एनक्लोजर्स के नाम नदियों के नाम पर रखे गए थे, और इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए इस वर्ष स्वाधीनता दिवस समारोह में जो एनक्लोजर्स हैं उनके नाम भारत की प्रमुख झीलों के नाम पर रखे गए हैं।
1: Especially for India's 80th Independence Day celebrations, a Surya Path Tiranga, a global digital and physical relay initiative, was launched under the Har Ghar Tiranga campaign, which is truly a campaign that has brought India together. It traces the Surya Path Tiranga, the hoisting of the Indian national flag from east to west across different time zones, following the path of the rising sun. Just like the rising India, the rising Bharat, that takes everyone together. It's not the one who forces anyone, but it shares a level of camaraderie, a sense of oneness. It truly believes in Vasudhaiva Kutumbakam, that the world is one family. A rising India, always better for a rising humanity. And now, the Prime Minister awaited at the central dais. Here he is walking up the stairs, and he has reached the central dais for the flag hoisting.

मेरे प्यारे देशवासियों, आज हम सब 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। आज हर दिलों की धड़कन वंदे मातरम के नाद से गूंज रही है। आज हर घर तिरंगा है, हर मन तिरंगा है और देश उत्साह और उमंग के साथ नए संकल्पों को लेकर के आज आगे बढ़ रहा है। आप सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देश आज उन महान सपूतों का पुण्य स्मरण करती है जिन्होंने देश की आजादी के लिए त्याग बलिदान की पराकाष्ठा की। अपने तप, त्याग और बलिदान से आजादी के एकमात्र लक्ष्य को लेकर के अपनी पूरी जिंदगी खपा दी। पूज्य बापू समेत सभी स्वातंत्र सेनानियों को बलिदान की महान परंपरा जगाने वाले महान क्रांतिकारियों को आज मैं श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। आज जो इस समारोह में उपस्थित है उन सब के लिए आज एक ऐतिहासिक पल भी है। आजादी के बाद 15 अगस्त को लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गूंज रहा है। आज जब हम देश के लोग वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं तो इससे बड़ा उत्तम अवसर क्या हो सकता है। मेरे प्यारे देशवासियों, पिछले दिनों देश के कुछ हिस्सों में बाढ़ का प्रकोप रहा, भूस्खलन का प्रकोप रहा, अनेक परिवार प्रभावित हुए। उनके दुख दर्द को हम भली भांति अनुभव करते हैं। पीड़ित परिवारों को मैं विश्वास दिलाता हूं कि हम और पूरा देश उनके साथ खड़े हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, कोई भी राष्ट्र तब महान बनता है, तब अपनी सिद्धियों को प्राप्त करता है जब अपने सपनों, अपने संकल्पों और अपने सामर्थ्य के दम पर आगे बढ़ता है। मेरे देशवासियों, अब छोटे सपनों से चलने वाला नहीं, हमें बड़े सपने, क्योंकि बड़े सपने हमारी सोच को भी विस्तार देते हैं, हमारी सोच की क्षितिज को विस्तृत करते हैं, हमारे संकल्प दृढ़ होने चाहिए,
जब संकल्प दृढ़ होता है तो कठिनाइयों से, आपदाओं के बीच से रास्ते निकालने का सामर्थ्य अपने आप उभर करके आता है। और मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे संकल्प भी ऊंचे होने चाहिए, क्योंकि जब सपने ऊंचे होते हैं, संकल्प ऊंचे होते हैं, तो हमारे सामर्थ्य की ऊंचाई भी बढ़ती है, हमारे प्रयासों की ऊंचाई भी बढ़ती है, और तब जाकर के हम सपनों को साकार कर सकते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, आज भारत ने भी एक बहुत बड़ा सपना देखा है, दृढ़ संकल्प के साथ देखा है, नई ऊंचाइयों को छूने के लिए देखा है। और वो सपना है, जब आजादी के 100 साल होंगे, 2047 में हम विकसित भारत बना के रहेंगे, 140 करोड़ देशवासियों के पुरुषार्थ से इस लक्ष्य को हमें हासिल करना है। और जब दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश विकसित होने का संकल्प लेता है, तो ये दुनिया की नजरों में भी हमारे साहस का परिचायक बन जाता है। दुनिया हमारी तरफ देखने का नजरिया बदलने के लिए मजबूर हो जाती है। प्यारे देशवासियों, और मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, पिछले 12 वर्ष में देश के कोटि कोटि नागरिकों ने, दलित हो, पीड़ित हो, वंचित हो, आदिवासी हो, गांव में रहने वाला हो, शहर में रहने वाला हो, गरीब हो, मध्यम वर्ग का हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, नारी हो, पुरुष हो, उत्तर हो, दक्षिण हो, पूर्व हो, पश्चिम हो, हर किसी ने पिछले 12 साल में एक संकल्प के साथ, समर्पण के साथ देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में हर प्रकार से प्रयास किया है। मैं उनके इस प्रयासों का आदरपूर्वक स्वीकार करता और उसी का परिणाम है कि इतने कम समय में 25 करोड़ देशवासी गरीबी को परास्त करके गरीबी से बाहर निकले हैं। इन्हीं देशवासियों का प्रयास का परिणाम है कि हम कभी फ्रेजाइल 5 में गिरे जाते थे, 12 साल के भीतर भीतर हम एक मेजर इकोनॉमी में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन गए हैं। साथियों, देश आजाद हुआ, बहुत सारे सपने लेकर के आजाद हुआ, लेकिन हम गति नहीं पकड़ पाए, रफ्तार नहीं पकड़ पाए। होती है, चलती है, अरे हो जाएगा, देखा जाएगा, उसी में खोए रहे। 2014 तक आते आते तो पूरे विश्व ने हमें फ्रेजाइल 5 के उस में डंप कर दिया था। ऐसे समय पिछले 12 साल में भारत ने एक नई रफ्तार पकड़ी, तेज गति से हम आगे बढ़ रहे हैं। और देशवासियों का संकल्प है कि अब 140 करोड़ देशवासियों के संकल्प को, सामर्थ्य को रोकना नामुमकिन है। प्यारे देशवासियों, पिछले 12 वर्षों में डिफेंस प्रोडक्शन करीब 4 गुना, खादी और ग्रामोद्योग का उत्पादन करीब 5 गुना हुआ, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग करीब 7 गुना बढ़ा, आधुनिक रेलवे कोच का निर्माण 21 गुना बढ़ा,
मोबाइल फोन उत्पादन 33 गुना बढ़ा। इतना ही नहीं, आधुनिक युग को देकर के भी डिजिटल और इनोवेशन की दुनिया में भी हमने अपना परचम लहराया। इंटरनेट कंज्यूमर करीब करीब 4 गुना बढ़े। पेटेंट ग्रांट होने की संख्या 4 गुना बढ़ी। डिजिटल ट्रांजेक्शन 100 गुना बढ़े। सामान्य मानवीय की सुविधाओं की तरफ भी हमने उतना ही गंभीरता से काम किया। हर साल औसतन 15 गुना ज्यादा तेजी से हमने नल से जल कनेक्शन दिए। हर साल औसतन 6 गुनी ज्यादा रफ्तार से लोगों को गैस कनेक्शन दिए। हर साल 4 गुनी रफ्तार से गरीबों के लिए टॉयलेट बनाने का काम किया। हर साल 3 गुना ज्यादा तेजी से गरीबों को घर देने का काम किया। देश ने गवर्नेंस में भी बहुत बदलाव लाया। हजारों की संख्या में कंप्लायंसेस खत्म किए, सैकड़ों की तादाद में पुराने कानून खत्म किए। पिछली शताब्दी के कानूनों से 21वीं शताब्दी की मार्च नहीं हो सकती। हमने आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मेट्रो का विस्तार किया। हमने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ताकत दी। जिस स्पीड से काम, जिस स्केल पर काम किया, ये सब, ये रफ्तार, ये विस्तार, ये अचीवमेंट आजादी के बाद पहली बार पिछले एक दशक ने देखा है। और जब इतनी सारी सिद्धियां हमारे सामने हो, इतनी तेज गति दिखाई देती हो, देशवासियों का सामर्थ्य पल पल प्रकट होता है, तब तो 2047 में विकसित भारत बनने का संकल्प कभी भी अधूरा नहीं रह सकता है। ये सारे आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं कि हम आगे बढ़ने वाले हैं, मेरे प्यारे देशवासियों। लेकिन उसके लिए आत्मविश्वास की जरूरत होती है, आत्मगौरव की जरूरत होती है, और साथ साथ आत्मनिर्भर भारत होना भी बहुत जरूरी होता है। और इसलिए बीते वर्षों में हमारा कन्विक्शन रहा है कि भारत को हमें अब दूसरे देशों पर निर्भर रह करके नहीं जीना चाहिए, हमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए। दुनिया में बहुत कुछ मिलता है, सस्ता मिलता है, जल्दी मिल सकता है, लेकिन उससे हमारा सामर्थ्य तैयार नहीं होता, न हमारे सामर्थ्य की कसौटी होती है। और इसलिए हमें भी अपनी क्षमताओं को बढ़ाना है, अपने हितों की सुरक्षा हमें खुद को करनी है। और इसलिए आत्मनिर्भर भारत का संकल्प बहुत दृढ़ता के साथ हम लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। मेक इन इंडिया, स्वदेशी, वोकल फॉर लोकल, इन सारे क्षेत्रों में आज हर भारतीय का मन जुड़ रहा है। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं सेमीकंडक्टर का। देश आजाद होने के बाद विश्व में तो सेमीकंडक्टर की चर्चा हो चुकी थी, हमारे यहां भी बातें होती थी, लेकिन सेमीकंडक्टर का कोई बड़ा प्लान हम आगे नहीं बढ़ा पाए। और आज स्थिति क्या है? आज की डिजिटल दुनिया में, आज की टेक्नोलॉजी में चीप का महात्म्य हम समझते हैं। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स होगा, हमारे मेडिकल इक्विपमेंट होंगे, हमारे ट्रांसपोर्ट के रास्ते होंगे, हर किसी में चीप अनिवार्य है। और इसे, इस चीप के बिना दुनिया थम जाए ऐसी स्थिति पैदा हो। और इसलिए भारत ने
आत्मनिर्भर होने की दिशा में अपना सेमीकंडक्टर प्लांट, बड़ा सेमीकंडक्टर प्लांट, 3 सेमीकंडक्टर प्लांट शुरू हो चुके और मुझे बताया गया है कि वहां जो प्रोडक्शन हो रहा है वह एक्सपोर्ट होना शुरू हो चुका है। और मैं देशवासियों को कहना चाहता हूं, आने वाले 7-8 वर्ष में और 5, 7 या 8 सेमीकंडक्टर प्लांट बहुत ही जल्द शुरू होने वाले। ये आत्मनिर्भर भारत हमें विकसित भारत की दिशा में जाने का महामार्ग देता है। मेरे प्यारे देशवासियों, वैसे ही एक चर्चा क्रिटिकल मिनरल की हो रही है। पूरी टेक्नोलॉजी क्रिटिकल मिनरल पर निर्भर है। भारत इसमें भी अपने आप को सुरक्षित करने में जुटा हुआ है। क्रिटिकल मिनरल का लक्ष्य साझा किया जाए, नेशनल क्रिटिकल मिनरल ये हमने लॉन्च किया। बजट में क्रिटिकल मिनरल कॉरिडोर की हमने घोषणा की है। कई देशों के साथ एग्रीमेंट हो रहे हैं। विश्व के कई देश अब इस क्रिटिकल मिनरल के विषय में भारत के पर भरोसा करने लगे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, जैसे सेमीकंडक्टर की बात हो, क्रिटिकल मिनरल की बात हो, वैसे ही जिस टेक्नोलॉजी की दिशा में हम जा रहे हैं, दुनिया जा रही है, उसमें एनर्जी का महत्व और बढ़ता चला जा रहा है। अब एनर्जी के बिना भी नई दुनिया को चलाना मुश्किल है और इसलिए हमें चीप हो, एआई हो, डेटा सेंटर हो, हमें बहुत बड़ी मात्रा में बिजली की जरूरत होगी। एनर्जी सिक्योरिटी ये हमारे समय की मांग है और इसलिए हमने पहले से ही उस दिशा में एक के बाद एक मजबूत कदम उठाए हैं। एनर्जी सिक्योरिटी का एक बड़ा माध्यम है परमाणु ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी। हमने पार्लियामेंट में शांति एक्ट पास कर करके एक नए लक्ष्य तरफ जाने का रास्ता तय कर लिया है। 2047 तक हम 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर का लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं। इसी एक दशक में हम 5 नए न्यूक्लियर रिएक्टर शुरू करने का लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं। इस वर्ष भारत ने फास्ट ब्रीडर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में महारत हासिल करके एक अहम पड़ाव पार किया है और उसके कारण परमाणु ईंधन में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में हमें एक बहुत बड़ा सफलता का कदम हमने रखा है। मेरे प्यारे देशवासियों, कई बार संसाधनों की कमी के कारण देश रुकता नहीं है, लेकिन रुकने का कारण सोच की सीमाएं होती है। जब सोच बंद जाती है, सीमाओं में सड़ने लग जाती है, तब हम अपने सामर्थ्य को भी पहचान नहीं पाते हैं। देश को आज कच्चे तेल पर निर्भर रहना पड़ रहा है और हमारी गलत सोच के कारण है। आप जान के हैरान हो जाएंगे, हमने समुद्री तट पे 99% हमारा समुद्री तट का पूरा हिस्सा ऐसी सोच के कारण नो गो एरिया घोषित करके रखा था। हमने ही समंदर के अंदर जाकर के एक्सप्लोरेशन न करने का निर्णय कर लिया था। ये सोच का दारिद्र था, हमने फैसला किया ये नहीं चल सकता। हमने उस 99% को जो कभी नो गो एरिया हुआ करते थे, हमने उसको गो अहेड एरिया के रूप में खुला कर दिया है।
और अब हम समुद्र के भीतर भी एक्सप्लोरेशन करने की और नए नए भंडार खोजने की दिशा में हम प्रवृत्त हैं, हम प्रयास कर रहे हैं। हमने पिछले वर्ष उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम रखते हुए समुद्र मंथन की घोषणा की थी और पिछले दिनों हमने 85,000 करोड़ रुपए इस काम के लिए आवंटित करके काम को गति देने का निर्णय कर लिया है। मेरे प्यारे देशवासियों, एनर्जी सिक्योरिटी, इसका मैंने कहा कि हमें अल्टरनेट स्रोतों की तरफ भी पूरी शक्ति लगाना बहुत जरूरी है और इसलिए ऊर्जा का सही इस्तेमाल बढ़ाते हुए भारत इसी दिशा में आज तेजी से काम कर रहा है। 2014 से पहले, मतलब आज से 12

लाख घरों में पाइप से गैस पहुंचता था, आज 2.25 करोड़ घरों में पाइप से गैस पहुंचाने का काम हो रहा है। 12 वर्ष पहले देश में सोलर एनर्जी की कैपेसिटी सिर्फ 2 गीगावाट थी, 2 गीगावाट, आज 160 गीगावाट हमने प्राप्त किया है लक्ष्य। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं एक और जानकारी देता हूं, हमने इसका लाभ देश के मध्यम वर्ग को, सामान्य परिवार को मिले इस तरफ भी उतना ही ध्यान केंद्रित किया। हमने पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना चालू की और आज मुझे संतोष है कि इतने कम समय में 50 लाख घरों का सोलर एनर्जी का काम हम आंकड़ा पार कर चुके हैं, तेजी से चल रहा है और उसके कारण हजारों घरों का बिजली बिल जीरो हो गया है, हजारों घर अपनी बिजली का उपयोग करने से अतिरिक्त बिजली आज बेच करके कमाई कर रहे हैं। हर परिवार को हम इस काम के लिए 80,000 रुपया सरकार की तरफ से एक एक परिवार को मदद दी जा रही है, तब जाकर के हम इस काम को पूरा कर रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, आपको जानकर के हैरानी होगी, ये जो हमारी रेलवे है उसका इलेक्ट्रिफिकेशन का काम हमारे देश में 1925 में शुरू हुआ था। 1925 में इलेक्ट्रिफिकेशन का काम शुरू हुआ, लेकिन 90 साल में, 1925 से लेकर के 90 साल में सिर्फ 30% रेल का इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ था, यानी 90 साल में 30%। हमारी रफ्तार देखिए, लक्ष्य को पाने के लिए हमारी दौड़ देख लीजिए, हमने इन एक दशक के अंदर 100% काम पूरा कर दिया। 90 साल में 30%, 10 साल में 70%, ये होता है काम। और इसके कारण डीजल जो हमें बाहर से लाना पड़ता है उसकी बचत हुई, बिजली से हमारी ट्रेनें चली, पर्यावरण को फायदा होने लगा। मेरे प्यारे देशवासियों, हम यहां से नहीं रुके हैं, हम दुनिया के अंदर पीछे रहना नहीं चाहते। पिछले दिनों आपने खबर सुनी होगी, भारत ने ईंधन का एक नया क्षेत्र को भी छू लिया है, देश ने पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन शुरू कर दी है और मुझे खुशी है ये सबसे लंबी ट्रेन है और सबसे ताकतवर ट्रेन है। और दुनिया में हाइड्रोजन ट्रेन के क्षेत्र में भी भारत ने अपना झंडा गाड़ दिया है। प्यारे देशवासियों, पिछले 10-12 साल हम लगातार 2047 के लक्ष्य को पाने के लिए दौड़ रहे हैं, एक के बाद एक सोपान सिद्ध कर रहे हैं। हमने सोचा भी नहीं था कि हमें इसमें भी कुछ मुसीबतों का झेलना पड़ेगा। पिछले 10-12 वर्ष में कितने संकटों का सामना करना पड़ा, कोरोना जैसी वैश्विक महामारी ने पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया, सारी व्यवस्थाएं चरमरा गई थी। कोरोना से बाहर निकले, युद्ध की विभीषा की खबरें आने लगी, कहीं यूक्रेन तो कहीं पश्चिम एशिया, हर जगह पर तनाव का माहौल। और पता नहीं भविष्यवेत्ताओं ने तो न जाने क्या क्या घोषणाएं कर दी थी, देश को डराना, देश को भयभीत रखना, देश को चिंतित रखना, इसी में कुछ लोगों को आनंद आता है। वैक्सीन नहीं मिलेगी, कोविड में लोग बचेंगे नहीं।

कुछ भी नहीं होने वाला। वेस्ट एशिया का क्राइसिस आया, पेट्रोल पंप पे पेट्रोल नहीं मिलेगा, गैस नहीं मिलेगा, डीजल नहीं मिलेगा, फर्टिलाइजर नहीं मिलेगा। सारी दुनिया भर की अफवाहें फैला करके भारत के लोगों को भयभीत करने का, डराने का, चिंता के अंदर डुबो देने का कुछ लोगों को आनंद आ रहा था। लेकिन देश ने देख लिया कि पिछले 10-12 साल की सुविचारित योजनाएं रंग ला रही है और हम इतने बड़े संकट के बावजूद भी नागरिक देवो भव के मंत्र को लेकर के जीते हुए भारत ने जो तैयारियां की थी, एक के बाद एक कदम उठाया था। सोचा नहीं था यह संकट आएगा, लेकिन उस संकट के समय में ये सारी चीजें काम आ गई और आज देश में गैस भी है, पेट्रोल भी है, यूरिया भी है। हम अपनी ताकत के ऊपर खड़े हो रहे, चल रहे। मेरे प्यारे देशवासियों, दुनिया के इन संकटों का प्रभाव हर किसी पर हुआ, हम भी अछूते नहीं। यूरिया के दाम दुनिया में 3000 रुपये पहुंच गए एक बोरी का। आज भी हम मेरे देश के किसानों को वो बोझ सहने के लिए मजबूर नहीं कर रहे, सरकार अपने कंधों पर वो बोझ उठा रहा है। और दुनिया से जो 3000 रुपया में यूरिया का बोरा हमें मिलता है, वो हमारे किसानों को हम सिर्फ 300 रुपये में दे पाते हैं। इतना ही नहीं, डीएपी आज दुनिया में बाजार 5000 पहुंच चुका है, लेकिन मेरे देश के किसानों को दिक्कत ना हो इसलिए 1350 रुपये में आज भी डीएपी देने का काम हम कर रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, एक समय था जब मैं आत्मनिर्भरता की बात कर रहा था तो कुछ लोग एयर कंडीशन चैम्बर में बैठ करके सोचने वाले लोग हमें बता रहे थे ग्लोबलाइजेशन का क्या होगा। लेकिन दुनिया देख रही है कि पिछले एक दशक में ऐसा लग रहा है कि दुनिया ने ग्लोबलाइजेशन बोलना ही बंद कर दिया है। जहां से ग्लोबलाइजेशन की आवाज आती थी वह बंद सुनाई नहीं देती है। दुनिया का हर देश अपनी अपनी संभालों के मिजाज की तरफ गया है। लेकिन दुर्भाग्य से इस संकट के कालखंड में कुछ लोगों ने अपना रुतबा दिखाने के लिए संसाधनों को वेपनाइज करने का खेल खेला है। दुनिया अपने पास जो कुछ भी है उसको वेपनाइज करने में लगी है, संसाधनों का वेपनाइज, रिसोर्स का वेपनाइज, पेट्रोल, डीजल, फर्टिलाइजर, दवाइयां, टेक्नोलॉजी की चिप्स। इतना ही नहीं, भूभाग को भी वेपनाइज किया जा रहा है। मुझे और ऐसे समय अगर हम आत्मनिर्भरते मंत्र को लेकर 10 साल सही दिशा में न चले होते तो हम कल्पना कर सकते हैं कि ऐसी चुनौतियों का मजबूती से मुकाबला कैसे करते। और हमारी तैयारियां निरंतर बढ़ती जा रही है। मेरे प्यारे देशवासियों, दूसरी तरफ आज भारत का प्रोफाइल पूरी तरफ बढ़ रहा है। आज भारत दुनिया के लिए एक स्वीकृत और सम्मानीय देश के रूप में बन रहा है। भारत के पास स्थिर पॉलिटिकल मैंडेट है, स्थिर सरकार है, भारत का वाइब्रेंट लोकतंत्र है, भारत का मजबूत न्यायतंत्र है और हम सबको दिशा देने वाला भारत का संविधान है। और अब दुनिया हमारे इन सामर्थ्य को पहचानने लगी है और इसलिए 2014 के बाद दुनिया करीब करीब 40 देशों के साथ हमारा एफटीए एग्रीमेंट हो रहा है। अब देखिए कितना बड़ा अवसर आया है। लेकिन वह ये जो ट्रेड एग्रीमेंट हुए हैं ये एक बहुत बड़ा अवसर है और इसलिए खास करके मैं मेरे एमएसएमईज को कहना चाहूंगा कि हमें इस मौके को छोड़ना नहीं है। दुनिया में हमें पहुंचना है, भारत के उत्पाद की हर चीज विश्व के बाजार में पहुंचे। और चाहे हमारा टेक्सटाइल हो, हमारी मशीनरी हो,
हमने दवाइयां हो, हमने मौका छोड़ना नहीं है, लेकिन वैश्विक जो पैरामीटर्स हैं उस पैरामीटर को हमें पार करना होगा। हमें दुनिया से जो मिलता है उसे अच्छा देना पड़ेगा, दुनिया में जो मिलता है उसे सस्ता देना पड़ेगा। और पंजाब के लुधियाना से लेकर के तमिलनाडु के तिरुपुर तक हमारा टेक्सटाइल सेक्टर दुनिया में पहुंच सकता है। इतना ही नहीं, केरलम से लेकर के गुजरात और तमिलनाडु से लेकर के बंगाल, ये हमारा समुद्र तट, हमारे मछुआरे भाई बहन आज इस एफपीए के कारण हमारे श्रीप यानी झींगा उसके एक्सपोर्ट की बहुत संभावना बनी है। हमारे सी फूड की दुनिया में पहुंच बनने की संभावना पड़ी हुई है। और इसे मैं चाहूंगा कम इस परिस्थिति का फायदा उठाते हुए हम आगे चलते हुए हम इन कामों को पार करने के लिए प्रयास करें। मेरे प्यारे देशवासियों, मैंने जो भूमिका आपके सामने रखी है उसके पीछे 2047 का लक्ष्य इन मजबूत नींव पर खड़ा है। 2047 विकसित भारत का लक्ष्य हमने पिछले 10-12 साल में देशवासियों ने जो सामर्थ्य दिखाया है उस सामर्थ्य का हिस्सा है। और इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, सदी का एक चौथाई हिस्सा बीत चुका है और अगला एक चौथाई हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब हम रुक नहीं सकते हैं, हमारी गति नहीं रुक सकती है, हमारी दिशा तय हो चुकी है, हमें प्राप्त करके रहना है। और इसके लिए हमें अपना वर्क कल्चर बदलना होगा, हमारे वर्क कल्चर को बदलते हुए हमें हमारी सोच को भी बदलना होगा, हमें हमारे काम की गति को भी बदलना होगा। जो काम पिछले 5-7 दशक में नहीं हुए हैं वो काम हमें आने वाले 5-7 साल में करने हैं। और मेरा भरोसा है मेरे देश की युवा शक्ति पर, मेरे देश के नौजवानों पर, मेरे देश की माताओं को बहनों पर, मेरे देश के किसानों पर, मेरे देश के मजदूरों पर कि हम इस सपने को साकार कर सकते हैं। और इसलिए हमें रिफॉर्म की गति को भी आगे बढ़ाना है। और जब मैं रिफॉर्म की बात कर रहा हूं, रिफॉर्म नहीं हमारे लिए कोई कंपल्शन है, नहीं रिफॉर्म ये हमारे लिए कोई बजबड़ है, हमारे लिए रिफॉर्म ये कन्विक्शन है। आउट ऑफ कन्विक्शन हम रिफॉर्म एक्सप्रेस पर चल पड़े हैं और हम आने वाले दिनों में भी नेक्स्ट लेवल रिफॉर्म की ओर बढ़ने वाले हैं। और इसलिए सरकार, समाज, उद्योग, उत्पादक, किसान, हर किसी ने अपनी ट्रेडिशनल व्यवस्थाओं में रिफॉर्म करना पड़ेगा, सोच में रिफॉर्म करना होगा, अपने लक्ष्यों को रिफॉर्म करना होगा। और इसलिए मेरे प्यारे देशवासियों, हमें एक निश्चित दिशा में को लेकर के चलना होगा। मैं आज उस युग को भी याद करना चाहूंगा जब देश भारत का सामर्थ्य सप्त सिंधु के रूप में हम जानते थे, हम समझते थे, हम सुनते थे। अब विकसित भारत बनाने के लिए हमें नई धारा चाहिए। आज लाल किले की प्राचीर से मैं देश के सामने शक्ति की सप्त धारा का आह्वान करता हूं। आने वाले 5-7 साल में जो पिछले 5-7 दशक में नहीं हुआ वो सप्त धारा के सामर्थ्य से, शक्ति से हम देश को नई ऊंचाई, नई गति देंगे और नए लक्ष्यों को पार करने वाला सामर्थ्य देंगे। और इसके साथ साथ देश की युवा शक्ति का सामर्थ्य का भरपूर राष्ट्र निर्माण में उपयोग होगा, उनकी शक्ति जोड़ी जाएगी। आने वाले दिनों में जब मैं सप्त धारा की बात करता हूं, सप्त धारा की पहली शक्ति है मैन्युफैक्चरिंग पावर। मेरे प्यारे देशवासियों, हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बहुत आगे बढ़ाना होगा और प्रोडक्शन बढ़ाने के साथ साथ हमें छोटे छोटे पुर्जे भी बनाने हैं,
और बड़े बड़े प्रोडक्ट भी बनाने हैं। पूरा वैल्यू चेन हमारा होना चाहिए और उसे लेकर के चाहे हमें कंपोनेंट भी चाहिए और हमें कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग भी चाहिए, कंप्लीट प्रोडक्ट भी चाहिए। डिजाइन से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक भारत को ग्लोबल सप्लाई चेन का भरोसामंद केंद्र बनना होगा। इसके लिए मैं तीन चीजों पर विशेष जोर देना चाहता हूं। मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में जो मेरे भाई बहन हैं, ये समय का ये अवसर है, इस अवसर को जाने मत दें और इसके लिए हमें कॉस्ट, क्वालिटी और स्केल इसके विषय में वैश्विक मानदंडों से खरा उतरना पड़ेगा। हमारी फैक्ट्रीज कॉम्पिटिटिव हो, हमारे प्रोडक्ट्स यूजर फ्रेंडली हो, हमारा पैकेजिंग दुनिया के लोगों को लुभावने वाला हो, आकर्षित करने वाला हो, हमारा जीरो डिफेक्ट प्रिसिशन मैन्युफैक्चरिंग ये हमारी पहचान बनना चाहिए। हर मैन्युफैक्चरर, हर एंटरप्रेन्योर, हर एमएसएमई से मैं कहना चाहता हूं, ग्लोबल मार्केट में हमारी पहचान विश्वसनीयता और गुणवत्ता के आधार पर होनी चाहिए, क्वालिटी के संबंध में नो कॉम्प्रोमाइज, और इसलिए हमारा मंत्र क्वालिटी क्वालिटी क्वालिटी होना चाहिए। यही हमारा ग्लोबल ब्रांड वैल्यू बनेगा। मेरे प्यारे देशवासियों, इस सप्तधारा की दूसरी शक्ति है कृषि और फूड प्रोडक्शन, खूब फूड प्रोसेसिंग। हमें इस दिशा में आगे बढ़ना होगा। हमारे किसानों ने अब दुनिया के बाजार खुल चुके हैं, एफपी के कारण हमें एक बहुत बड़ा मार्केट मिल रहा है, हमें वहां पहुंचना है, हमें उस जगह को हाथ लगाना है, हमें खेत से लेकर एक्सपोर्ट मार्केट की ओर जाना होगा। हमारे पारंपरिक खान पान हो, हमारे मिलेट्स हो, हमारे मसाला हो, हमारे फल हो, फूल हो, क्या कुछ नहीं है हमारे पास, वो ग्लोबल ब्रांड्स बनने चाहिए। हमारे किसान केमिकल फ्री खेती को बल देंगे, दुनिया में इनकी मांग और बढ़ने वाली है, और जो ग्लोबल पैरामीटर्स के अंदर हर प्रकार से सिद्ध होने वाले हमारे एग्रो प्रोडक्ट होंगे तो दुनिया में हम आसानी से पहुंच पाएंगे। मेरी सप्तधारा की तीसरी शक्ति है टेक्नोलॉजी और इनोवेशन। मेरे प्यारे देशवासियों, आज जमाना एआई का है, क्वांटम का है, स्पेस का है, रोबोटिक्स का है, डेटा सेंटर्स का है, पूरी तरह एक नया क्षेत्र खुल चुका है, और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी ये भी हर पल हमें चुनौती दे रही है, और इसलिए देश को दुनिया के लिए मार्केट नहीं बना देना, हमें इनोवेशन का हब बनना है। हमने यूपीआई और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में लोहा मनवा लिया है, हमारी ताकत का परिचय करवा दिया है। अब भारत को डिजिटल पब्लिक टेक्नोलॉजी उसको भी दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाना है। भारत को नेक्स्ट जनरेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में लीड करना है। मेड इन इंडिया 6G हर कोने में पहुंचे, यह हमारा लक्ष्य होना चाहिए और हमें उसमें तेजी करनी चाहिए, और इसके लिए हमारा प्रयास कम नहीं होना चाहिए। सप्तधारा की चौथी शक्ति है गति शक्ति। यह गति शक्ति देश के अंदर सीमलेस फास्ट कनेक्टिविटी पर हमें बल देना होगा। शहरों को हाई स्पीड रेल से हमें जोड़ना होगा। मॉडर्न हाईवे चाहिए, इनलैंड वाटर वेज चाहिए, एयरपोर्ट चाहिए, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक की व्यवस्था चाहिए। हमें पोर्ट को सिर्फ सामान उतारना चढ़ाने की जगह नहीं, दुनिया के शिप्स आकर के लंगर हो जाए इतना नहीं, हमें हमारे पोर्ट को पोर्ट लेड डेवलपमेंट ग्रोथ की दिशा में हमें आगे बढ़ना होगा। हमारी पांचवी शक्ति है सप्तधारा की, वो है रक्षा शक्ति। अरे रक्षा शक्ति का महत्व हर प्रकार से है। मेरे प्यारे देशवासियों, डिफेंस में आत्मनिर्भर होना अब भारत ने अनुभव कर लिया, दुनिया ने अनुभव कर लिया है, इसके बिना कोई चारा नहीं है। विश्व जब अपनी अपनी ही सोच रहा है तब भारत विश्व के लिए बाजार बनकर के नहीं रह सकता है।
हमें डिफेंस के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना हुआ, नेक्स्ट जनरेशन डिफेंस टेक्नोलॉजी डेवलप करके हमें ग्लोबल सप्लायर बनने की दिशा में हमें लक्ष्य लेकर के चलना है। हमें ड्रोन काउंटर ड्रोन सिस्टम को विकसित करना होगा और हाइपरसोनिक डिफेंस टेक्नोलॉजीज उस पर हमें लीडरशिप लेनी होगी। साथियों, साइबर सुरक्षा भी आज हर घर के लिए एक समस्या बन रही है, वो भी एक रक्षा का क्षेत्र है जिसमें हमारे युवाओं की जो सामर्थ्य है उस सामर्थ्य का उपयोग हम देश के और दुनिया के लिए कर सकते हैं। हमारी सप्तधारा की छठी शक्ति है ग्रीन इकोनॉमी, ब्लू इकोनॉमी, जो ग्रीन जॉब को भी जन्म देती है। हमें ग्रीन हाइड्रोजन, रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी स्टोरेज, ग्रीन मोबिलिटी, ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग, इन ग्लोबल स्केल हमें पाकर के रहना है। हमें दुनिया में, दुनिया जब ग्लोबल वार्मिंग की चर्चा करती रहती है, हम रास्ते खोजते रहते हैं, हम समस्याओं का समाधान दे रहे हैं और भारत एक ग्रीन मूवमेंट का बहुत बड़ा सामर्थ्य लेकर के चलिए। भारत के पास ब्लू इकोनॉमी के लिए भी बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा लंबा हमारा कोस्ट लाइन है, ब्लू इकोनॉमी के लिए बहुत बड़े अवसर है, फिशरीज है, कोस्टल टूरिज्म है, ओशन टेक्नोलॉजी है, ऐसे कितने ही क्षेत्र हैं जिसमें हम आगे बढ़ सकते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, भारत सप्तधारा की जब बात करके चला है तब हमारी सातवीं धारा है और दुनिया के लिए इसका अपना भी एक महत्व है और वो है भारत का सॉफ्ट पावर। भारत के सॉफ्ट पावर की ताकत है। आज योग ने पूरी दुनिया को भारत के साथ जोड़ के रखा हुआ है। योग दुनिया के लिए एक ऊर्जा बनता जा रहा है, भारत के लिए विश्वास का बड़ा कारण बनता जा रहा है। जिस भारत के पास आस्था के केंद्र हो, जिस भारत के पास आयुर्वेद हो, जिस प्रकार से भारत के पास होलिस्टिक हेल्थ केयर की व्यवस्था हो, हीलिंग इंडिया का मूवमेंट हो, हम दुनिया के अंदर हमारे सामर्थ्य को लेकर के जा सकते हैं। हैंडीक्राफ्ट हो, संस्कृति हो, हमारी फिल्में हो, हमारा क्रिएटिव वर्ल्ड हो, वीएफएक्स हो, हमारा एनिमेशन हो, हमारी गेमिंग हो, डिजिटल कंटेंट हो, क्रिएटिव वर्ल्ड के अंदर भारत अपना रुतबा दिखा सकता है। हमने उसको वैश्विक सामर्थ्य के रूप में विकसित करना होगा। आज भारत ने वेव समिट को एक बहुत बड़ी ताकत दी है। दुनिया धीरे धीरे भारत का ये जो वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट है उसकी राह देखता रहता है और वो भारत के सॉफ्ट पावर को, भारत के क्रिएटिव दुनिया को परिचित करेगा। मेरे प्यारे देशवासियों, भारत के पास विशाल वन्य संपदा है, हमारे पास 100 से ज्यादा नेशनल पार्क है। क्षमता बहुत है लेकिन विदेशी टूरिस्टों को आकर्षित करने में हम कम पड़े हैं। हमें मौका है हमारे सॉफ्ट पावर के माध्यम से दुनिया के टूरिस्टों को भारत के लिए आकर्षित करने का। हमारा सामर्थ्य हमें दुनिया को दिखाना है, हम ये काम आरा से करें और हम जल्द से जल्द हम इन लोगों आज दुनिया में स्पोर्ट्स की जो है वो भी एक बहुत बड़ा भारत के प्रति आकर्षण का केंद्र, दुनिया के स्पोर्ट्स इवेंट भारत में क्यों न हो। कॉन्सेंट इकोनॉमी बहुत बढ़ रही है, देश के नौजवानों का आकर्षण है, विश्व का हर कोई कलाकार चाहता है कभी न कभी भारत की धरती पर अपना कॉन्सेंट करे, ये बहुत बड़ा अवसर है। हमें इसको मोबिलाइज करने के लिए व्यवस्थाएं खड़ी करनी होगी। साथियों, सप्तधारा की सप्त शक्तियां उद्देश्य सिर्फ एक सेक्टर में प्रगति करने का नहीं है, एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ हमें राष्ट्र को जो लक्ष्य लेकर के हम चल रहे हैं, जो एम्बिशन लेकर के चल रहे हैं, उस स्केल को हमें पार करने की दिशा में काम करना है। मेरे प्यारे देशवासियों, कुछ चीजें मैंने बताई हैं लेकिन मैं इससे भी आगे सोचता हूं। मैं जरा देश को झकझोरना चाहता हूं, मैं देश की शक्ति को भी झकझोरना चाहता हूं। देश यानी सिर्फ सरकार नहीं होती है, देश यानी हर नागरिक जुड़ता है। क्या हम सोच नहीं सकते कि फॉर्च्यून 500 की चर्चा तो बहुत सुनते हैं, आने वाले एक दशक में इन फॉर्च्यून 500 में 50 कंपनियां भारत की क्यों न हो, ये लक्ष्य हमारा

0: कौन होना चाहिए। आज बैंकिंग सेक्टर फल फूल रहा है, दुनिया की टॉप बैंक के अंदर भारत की बैंक का झंडा भी क्यों न फहरता हो, भारत की बैंक भी टॉप बैंक 5 बैंक में भारत की भी एक बैंक होनी चाहिए। भारत की फार्मा की दिशा में हमने बहुत काम किया है, लेकिन समय की मांग है कि दुनिया की 5 बड़ी फार्मा कंपनियों में भारत की भी 1-2 फार्मा कंपनियों का नाम गूंजना चाहिए, भारत उसमें अपना स्थान बनाना चाहिए। लॉ फर्म्स होते हैं, रेटिंग एजेंसी होती है, क्या समय की मांग नहीं है कि ग्लोबल लीडरशिप अब हमारे हाथ में होनी चाहिए? टैलेंट है, सामर्थ्य है, हमारा लंबा इतिहास भी है, भाषाओं पर हमारा प्रभुत्व है, हमें विश्व में पहुंचना चाहिए। हमारी कोई कंसल्टिंग फर्म, अकाउंटिंग फर्म दुनिया के टॉप फर्म्स के अंदर क्यों नहीं होनी चाहिए? भारत की टेक्नोलॉजी कंपनियां दुनिया के अंदर सिंबल हो, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। हमारे ऐसे ब्रांड हो जिससे दुनिया आकर्षित होती हो, हमारे ब्रांड हमारे देश की पहचान हो और विश्व के लिए एक डेस्टिनेशन बन जाए, उस दिशा में हमें काम करना है। और इसके लिए मैं राज्य सरकारों को कहना चाहता हूं, मैं स्थानीय स्वराज की संस्थाओं को कहना चाहता हूं, भारत सरकार का भी यह दायित्व है कि हमें हमारे रिफॉर्म की गति बढ़ानी होगी, हमें 2047 के लक्ष्य के अनुरूप हमारी व्यवस्थाओं को विकसित करना होगा, हमें बीते हुए काल के नीति नियमों से नहीं चल सकते, हमें काय आने वाले सपनों के हिसाब से नीति नियमों को गढ़ना होगा। और इसको अगर हम पढ़ेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है और मैं देशवासियों को भरोसा देता हूं, इसी रास्ते मेहनत में कोई कमी न रखते हुए हम विकसित भारत का सपना पार करके रहेंगे। हमें सबको मिलकर के चलना है, केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, इंडस्ट्री हो, हम सब ने मिलकर के आगे बढ़ना है। हमें रिफॉर्म्स करते रहना है, रिफॉर्म्स को आगे बढ़ाते रहना है। और मैंने पहले भी कहा था, हम रिफॉर्म कंपल्शन से नहीं, कन्विक्शन से कर रहे हैं, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, जब मैं विकसित भारत की बात कर रहा हूं, देश को तेज गति से आगे बढ़ाने की बात कर रहा हूं, उसका सबसे बड़ा लाभार्थी कौन है? इन सारे प्रयासों का सबसे बड़ा साधक कौन है? अगर साधक है तो मेरे देश का युवा है, मेरे देश की युवा शक्ति है। विकसित भारत की यात्रा में युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका है। इतना ही नहीं, विकसित भारत का सबसे बड़ा लाभार्थी भी मेरे देश का युवा है। और इसलिए हमें विकसित भारत के लक्ष्य को युवाओं के साथ जोड़ करके आगे बढ़ाना है। युवाओं हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ हमें आगे बढ़ना है। साथियों, पिछले 10-12 साल में उस दिशा में बहुत कुछ हुआ है। स्टार्टअप इंडिया अभियान, आज पूरे देश में 2.5 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड स्टार्टअप बन गए। देश के नौजवान खुद तो काम कर रहे हैं, अनेकों को रोजगार दे रहे हैं। 1 लाख करोड़ रुपया इनोवेशन फंड भारत सरकार ने घोषित किया है। मैं देश को नौजवानों को कहना चाहता हूं, आप अपने सपनों को लेकर के आइए, संसाधनों की कमी नहीं रहने देंगे। 1 लाख करोड़ रुपया आपके दिल दिमाग को सामर्थ्य देने का एक व्यवस्था हमने कर दी है। रिसर्च के नए अवसर मिले, डिजिटल इंडिया के नए सस्ते डेटा युवाओं को सशक्त किया। दुनिया में सस्ता डेटा कहीं है तो भारत की धरती पर है, और देश के नौजवानों को उसे नवी ताकत दी है। स्किल इंडिया हमने नेशनल प्रोग्राम बनाया है, स्पेस सेक्टर को हमने ओपन कर दिया, नेशनल ड्रोन पॉलिसी हमने बनाई है, खेलो इंडिया पॉलिसी बनाई है, 35 वर्षों तक एजुकेशन पॉलिसी नहीं थी, नई एजुकेशन पॉलिसी लेकर के आए हैं, और इसका फायदा मिडिल क्लास के परिवारों को हुआ है। साथियों, 2004 से 14 आंकड़ा मुझे देना चाहिए आपको, 2004 से 14 हमारे देश में 350 से भी कम यूनिवर्सिटी थी, और आज 10-12 साल के भीतर करीब 650 नई यूनिवर्सिटी जुड़ चुकी है। करीब 1000 का आंकड़ा हम पहुंच रहे हैं। 2014 के पहले मेडिकल की सिर्फ 400 सीटें हुआ करती थी, आज करीब करीब 850 सीटें मेडिकल की हो रही है। इतना ही नहीं, अब विदेशी यूनिवर्सिटी भी भारत की धरती पर आ रही है। भारत के अंदर विदेशी यूनिवर्सिटी की डिग्री मेरे नौजवान को मिले, इसका प्रबंध भी हो चुका है। हमारे देश के युवा मन बचपन से ही टेक्नोलॉजी की तरफ आकर्षित हो, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं, और इसलिए हमने करीब 10,000 से अधिक अटल टिंकर की लैब छोटे छोटे बच्चों के हवाले कर दी है, ताकि उनका इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के अंदर उनका मन बने। 12 वर्ष युवा, हमने अनेक रास्ते खोले, हम स्टार्टअप ओपन कर दिया। आपने देखा होगा भारत के प्राइवेट स्टार्टअप 28 साल की एवरेज उम्र के बच्चों ने, नौजवानों ने दुनिया में पहले ही ट्रायल में अपना सैटेलाइट लॉन्च कर दिया और रॉकेट लॉन्च कर दिया।
1: मैं पुलिस थाना आबू रोड सदर में हेड कांस्टेबल के पद पर कार्यरत हूँ और मैं
0: हमने पिछले दिनों एआई इंपैक्ट समिट किया था। एआई का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं, हमने तय किया है कि आने वाले एक वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को एआई स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे, ताकि हमारा देश का नौजवान एआई की दुनिया में भी नेतृत्व करने का सामर्थ्य है। मेरे साथियों, बायो इकोनॉमी एक नया क्षेत्र है। एक समय था 2014 के पहले सिर्फ 60,000 करोड़ रुपए का बायो इकोनॉमी का काम होता था। मेरे देश के नौजवान, आपने क्या कमाल कर दिया है। देखिए, नीतियां जब सही होती है, लक्ष्य जब साफ होता है, तो मेरे देश के नौजवान कैसा करके थे। बायो इकोनॉमी में देश की युवा शक्ति ने सामर्थ्य दिखाया। 2014 के पहले जो 60,000 करोड़ का कारोबार था, आज वो कारोबार बायो इकोनॉमी का, बायो इकोनॉमी 20,00,000 करोड़ पहुंच चुकी है। दोस्तों, ₹2009-10 का कालखंड था, सिर्फ 25 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल हमारे देश में बिके थे। 1.5 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल बिके थे 2009-10 में, 1.5 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल। इस 25-26 में 25 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल बिके हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, एविएशन सेक्टर भी मेरे नौजवानों के लिए बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। नए एयरपोर्ट, नए रूट, नए नए रोजगार के अवसर बना रहे हैं। मेंटेनेंस, ओवरहॉलिंग, इसके भी कारण देश में बहुत बड़ी मात्रा में स्किल मैन पावर को काम मिल रहा है। मेड इन इंडिया हवाई जहाज बनाने की दिशा में हमने सफलता पाई है। मेड इन इंडिया डिफेंस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-295 ऑलरेडी अपनी उड़ान भर चुका है, सफल उड़ान भर चुका है। ये देश के नौजवानों के लिए। मेरे साथियों, ड्रोन ने भी बहुत बड़ा काम किया है। स्वामित्व योजना गांव में ड्रोन से स्वामित्व योजना सफल हो रही है। करीब 3.25 करोड़ परिवारों को स्वामित्व योजना का लाभ मिला है और इसके कारण 140 लाख करोड़ रुपए जैसी संपत्ति अनलॉक हुई है, जिसके कारण बैंक से लोन मिल सकता है, लोग अपना कारोबार कर सकते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे मध्यम वर्ग के परिवारों के सामने एक बहुत बड़ा बोझ बन चुका है कोचिंग क्लासेस की स्पर्धा। हर माँ बाप को लग रहा है कि कोचिंग क्लास में बच्चे को नहीं भेजा तो हम प्रतिष्ठित परिवार नहीं है। इन गरीब और मिडिल क्लास परिवारों की हम चिंता करते हुए, 1,000 करोड़ रुपए का उनका खर्च है वो भी बचे, बेटे भी अपने आसपास रह सके, उनकी देखभाल हो सके, परिवार पर आर्थिक बोझ ना आए, और इसलिए हमने युवाओं के लिए विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स हैं, उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं हमेशा कहता आया हूं, जो खेले वो खिले। जब मैं खेले वो खिले की बात कर रहा हूं, तब मेरे प्यारे देशवासियों, आज भारत खेल की दुनिया में अपनी जगह बना रहा है। अब खेल के पोडियम में भारत का राष्ट्रगीत सुनाई देता है, भारत का राष्ट्रगान सुनाई देता है, भारत का तिरंगा झंडा लहराता दिखाई नजर आ रहा है। तो तब ये है, खेलो इंडिया गेम्स, यूनिवर्सिटी गेम्स, विंटर गेम्स, बीच गेम्स, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पोर्ट्स के लिए कोचिंग, स्पोर्ट्स मेडिसिन, स्पोर्ट्स के लिए न्यूट्रिशन, इन सारे विषयों में भारत अब महारत करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। नौजवानों के लिए पूरा नया क्षेत्र, खिलाड़ी न बन सके तो उसकी सपोर्ट सिस्टम में भी बहुत बड़ा क्षेत्र खुल रहा है। स्पोर्ट्स की दुनिया में भारत का प्रदर्शन बेहतर होता रहा है और हम 2036 में ओलंपिक के मजबूत दावेदार बनकर के आगे बढ़ रहे हैं और 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स का को भारत होस्ट करने वाला है। और मेरे साथियों, दुनिया में जो ओलंपिक की खेल होते हैं, करीब 40 प्रकार के गेम होते हैं और करीब 350-350 स्पर्धाएं होती है ओलंपिक में। और आपको जानकर के दुख होगा मेरे देशवासियों, मेरे नौजवानों, मैं आपको चुनौती देता हूं, मैं आह्वान करता हूं, मैं आपकी मदद चाहता हूं। 350 जितने स्पर्धाओं में भारत 2/3 खेलों में कहीं होता ही नहीं, हमारी मौजूदगी नहीं होती, हम क्वालिफाई नहीं होते हैं। हमने तय किया है कि 2036 में जो ओलंपिक होगा, हम चाहते हैं कि वो भारत में हो, लेकिन 2036 में जिन विधाओं में आज भारत खेलता नहीं है, जिन विधाओं में भारत क्वालिफाई नहीं करता है, जिन स्पर्धाओं में भारत ने छोड़ के रखा है, 3/4 हिस्सा हमारे इंतजार कर रहा है, भारत उस पर बल देगा। और इसके लिए हम टैलेंट हंट का एक अभियान भी चलाना चाहते हैं। हमें अगर 2036 के लिए खिलाड़ी चाहिए तो आज जो 5 साल 10 साल 15 साल की उम्र के नौजवान है, बेटे हैं, उनके तरफ ध्यान देना होगा, उन बेटियों पर ध्यान देना होगा। और इसलिए 5 से 15 उम्र के बच्चों में खेल प्रतिभा ढूंढने के लिए गांव गांव, शहर शहर, स्कूल स्कूल, एक टैलेंट हंट का अभियान चलाया जाएगा। बच्चों की प्रतिभा को देखा जाएगा और फिर उनको स्पेशल ट्रेनिंग देकर के देश के लिए खेलने वाले अच्छे खिलाड़ी बनाए जाएंगे। मेरे प्यारे युवा, देश के सामने, देश के नौजवानों के सामने नशा एक बहुत बड़ा संकट बनता जा रहा है। नशा मुक्त भारत, ये हम सबका सामूहिक दायित्व होना चाहिए। हमारे उज्जवल भविष्य के लिए हमारी युवा पीढ़ी मजबूत हो, हमारा युवा सामर्थ्य हमारे देश के लिए काम आए, इसलिए नशा मुक्त भारत। पिछले दिनों माय भारत के वॉलेंटियर्स ने, देश के एनजीओज ने, देश के सामाजिक सांस्कृतिक संगठनों ने, देश के आध्यात्मिक पुरुषों ने मिलकर के नशा मुक्त भारत का 100 सप्ताह का एक कार्यक्रम तय किया है। 100 सप्ताह तक एक अभियान चलने वाला है। मैं हर परिवार को कहना चाहता हूं कि आप भी इस अभियान का हिस्सा बने, आप इसके साथ जुड़िए और देश के नशा मुक्त भारत के सपने को पूरा करने के लिए आप आगे आइए। मेरे प्यारे देशवासियों, 21वीं सदी में दशकों पुरानी जो चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों को खत्म करना बहुत अनिवार्य है। नक्सलवाद, माओवाद, लाखों युवाओं के भविष्य को तबाह कर दिया, अनेक माताओं के दुधमल नौजवानों को छीन लिया, बर्बाद कर दिया। हर माँ बाप के सपनों को चूर चूर कर दिया। इस नक्सलवाद ने चार चार दशक तक हिंदुस्तान के बहुत बड़े हिस्से को, बहुत बड़ी आबादी को दबोच करके रखा था, बंदूक के नोक पर दबोच करके रखा था, संविधान की धज्जियां उड़ा दी थी और देश के सामान्य नागरिकों की रक्षा में 3,500 से ज्यादा हमारी पुलिस के, सुरक्षा बल के जवान शहीद हो गए। युद्ध के अंदर जितने सैनिक मरते हैं उससे ज्यादा हमारे पुलिस जवानों को जान की बाजी लगानी पड़ी ताकि देश के सामान्य मानवी को सुरक्षा मिले। ये नक्सलवाद ने धरती को लहू लुहान कर दिया था। 2014 में आपने जब हमें मौका दिया, उसी दिन हमने संकल्प लिया था कि हम देश को नक्सलवाद से मुक्त करेंगे और आज मुझे खुशी है कि नक्सली माओवादी हिंसा आखिरी सांस भी शायद रहने की अब तो ताकत नहीं रही है। पूरी तरह उसे खत्म करने की दिशा में जहां पर कभी नक्सलवादियों की गोलियां चलती थी, जहां पर कभी धरती रक्त रंजित रहा करती थी, आज उसी नक्सल क्षेत्रों में, उसी इलाकों में नक्सल मुक्त होने के कारण विकास, विश्वास और प्रयास का तिरंगा लहरा रहा है, मेरे प्यारे देशवासियों। लेकिन इस चुनौती को हमने कम नहीं आंकना है, इस चुनौती से हमें और भी सावधान रहने की जरूरत है। वर्षों तक देश की सत्ता में माओवादी सोच के लोग गलियारों में अपनी जगह बना करके बैठे थे, सरकारी कमेटियों में सलाहकार के रूप में भी ये माओवादी सोच ने नीतियों को प्रभावित किया था। मेरे प्यारे देशवासियों, जंगलों में हमें हथियारी नक्सलों का खात्मा बुलाने में, उस संकट से देश को मुक्त कराने में सफलता मिली है, लेकिन हथियारी नक्सल तो गए लेकिन दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है, हिंसा अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा और राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने की मुख्य धारा की ओर देश की युवा पीढ़ी को जोड़ना होगा। मेरे प्यारे देशवासियों, सुरक्षित भारत बनाना हम सबका दायित्व है। चुनौती सीमा के भीतर हो या सरहद से बाहर, भारत हर परिस्थिति के लिए तैयार है। आज युद्ध का नेचर बदल रहा है, अब युद्ध सीमा पर ही होता है, गारंटी नहीं है। युद्ध सीमा के अंदर कहीं रिफाइनरी पे जाकर के, कहीं बैंकिंग सेक्टर को जाकर के, कहीं डेटा सेंटर को जाकर के, एक प्रकार से लड़ाई का नया रूप, इंफ्रास्ट्रक्चर तोड़े जा रहे हैं, फैक्ट्रियां तोड़ी जा रही है। हमने मिशन सुदर्शन चक्र की पिछले सालों घोषणा की थी, बहुत तेजी से उस पर काम चल रहा है। आज डिफेंस एक्सपोर्ट हमारा करीब 50 गुना बढ़ा है, करीब 100 देशों में हमारे अस्त्र शस्त्र पहुंच रहे हैं, वैश्विक पटल पर भारत की प्रतिष्ठा धीरे धीरे बढ़ रही है। बदलते हुए समय में अस्त्र शस्त्र की तरफ काम करना है, सैन्य बलों का सामर्थ्य बढ़ाना है, लेकिन साथ साथ नागरिकों को भी तैयार करना होगा। पिछली शताब्दी के युद्धों के अनुरूप जो सिविल डिफेंस की व्यवस्थाएं हमारे देश में विकसित हुई है वो कालबाह्य हो चुकी है, और इसलिए मैं आज लाल किले से घोषणा कर रहा हूं कि हम आने वाले दिनों में सिविल डिफेंस का एक वाइब्रेंट नेटवर्क खड़ा करेंगे, आधुनिक व्यवस्थाओं से उनको परिचित कराएंगे, आधुनिक संकटों से नागरिकों को रक्षा करने की क्या व्यवस्था हो सकती है, एक बहुत बड़ा वॉलेंटरी फोर्स सिविल डिफेंस का आधुनिक चुनौतियों को पार करने वाला हम बनाने वाले हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, राष्ट्र के निर्माण में आज हमारी बहनों बेटियों का योगदान हम सब के लिए बहुत बड़ा प्रेरणा का कारण बना हुआ है। फाइटर जेट हो या सिविल एविएशन, हमारी बेटियां सबसे आगे दिखाई दे रही है। खेलकूद का मैदान हो, हमारी बेटियां आगे दिखाई दे रही। स्टेम एजुकेशन में भर्ती होने की प्रक्रिया हो, सबसे ज्यादा हमारी बेटियां आगे दिख रही है। आज सेना में भी एनडीए से जो बेटियां निकली है वो बड़े रौब के साथ देश की सेना का नेतृत्व करने का सामर्थ्य दिखाने लगी है। सर, मेरी बेटियों की ताकत कैसी है। मैं पिछले दिनों साणंद में एक सेमीकंडक्टर प्लांट में गया, वहां आदिवासी बेटियां, देश के अलग अलग कोने से आई हुई बेटियां काम कर रही थी। वो उस गांव से आई थी जिन्होंने पासपोर्ट क्या होता है पता तक नहीं था। वो बेटियां विदेशों में गई ट्रेनिंग लेकर के आई और आज चिप निर्माण का काम कर रही है और बड़े कॉन्फिडेंस, मैं जो उनका कॉन्फिडेंस देखा मैं सचमुच में बहुत प्रभावित हुआ था। आज तीन करोड़ बहनों को हमने लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य तय किया था, उसको पार कर लिया। अब हम 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने के लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। 3 करोड़ नई लखपति दीदी बनना मतलब ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा बदलाव मातृशक्ति के द्वारा आने वाला है। मेरे प्यारे देशवासियों, आज पंचायतों में, नगरपालिका में, महानगरपालिका में बहुत बड़ी मात्रा में हमारी महिलाएं जनप्रतिनिधि बनकर के देश का मार्गदर्शन कर रही है, समस्याओं का समाधान कर रही है, बहुत ही सक्षम नेतृत्व दे रही है। और इसी को ध्यान में रखते हुए हमने पार्लियामेंट में नारी शक्ति बंधन अधिनियम पारित किया था, लेकिन किसी न किसी कारण से राजनीति के अखाड़े में पिछले 40 साल से ये सपना हमेशा राजनीतिक अखाड़े का शिकार हो गया है। मैं देश के सभी राजनीतिक दलों से आज लाल किले की प्राचीर से तिरंगे झंडे की छाया में खड़े होकर के प्रार्थना करता, आग्रह करता, आइए उन महिलाओं के सामर्थ्य के पुजारी बनिए, उन महिलाओं के सम्मान में आगे आइए और जल्द से जल्द हमारी माताओं बहनों को 33% विधानसभा और लोकसभा में उनको प्रतिनिधित्व मिले। ये भारत की नीति घड़तर के अंदर अपना योगदान दे, समय की मांग है। और मैं सभी राजनीतिक दलों से फिर से आग्रह करता हूं, आइए महिला आरक्षण लागू करके महिला सम्मान में आप भी जुड़िए, आप भी यश लीजिए, आप भी क्रेडिट लीजिए, लेकिन मेरी माताओं बहनों को हक दीजिए। मेरे प्यारे देशवासियों, विकसित भारत का संकल्प तभी पूरा होगा जब विकास अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेगा। 2014 से पहले सिर्फ 25 करोड़ लोगों के पास सोशल सिक्योरिटी का कवर था, सिर्फ 25 करोड़ के पास। साथियों, पिछले 5-7 दशक में सिर्फ 25 करोड़, हमने एक दशक के भीतर भीतर 100 करोड़ देशवासियों को सोशल सिक्योरिटी का कवच दिया है। आयुष्मान भारत योजना से 70 साल की उम्र के बुजुर्गों से भी आज 5 लाख रुपए तक मुफ्त दवाई की व्यवस्था हो रही है। करोड़ों करोड़ों परिवारों को इसके कारण बहुत बड़ी सुविधा मिली है और इस आयुष्मान कार्ड के कारण 2 लाख करोड़ रुपया जो दवाई और ऑपरेशन के पीछे खर्च होना था वो मेरे परिवारों के बच्चे हैं, वो गरीब परिवार है, वो मध्यम वर्ग के परिवार है, उनको इतनी बड़ी। मेरे प्यारे देशवासियों, आज मुझे एक काम के लिए आपकी मदद चाहिए। मैं आप सबसे एक मदद मांग रहा हूं। सभी नौजवानों से मैं चाहता हूं कि आप इसका नेतृत्व करिए। आपका 1 या 2 घंटे देश को बहुत बड़ी शक्ति देने वाले हैं। आपको लगेगा ये 1-2 घंटे में मैं देश की क्या शक्ति, मैं बताता हूं, आप बहुत बड़ी शक्ति बनने वाले हैं और इसलिए हर घर में वातावरण बने। इन दिनों देश में जनगणना का काम हो रहा है, सेंसस का काम हो रहा है, गिनती चल रही है और गिनती सिर्फ आंकड़ों से बात बनती नहीं है,
2: उसकी बारीकियों से नीतियां

योजनाएं बनती हैं, देश आगे बढ़ने की अपनी रूपरेखा तैयार करता है और इसलिए सटीक जानकारियां होना बहुत जरूरी है। कभी कभी जो सरकार की तरफ से प्रतिनिधि आते हैं वो इतनी जल्दी में होते हैं, कभी स्पेलिंग एक लिख देते हैं, कभी अलग लिख देते हैं और इसके कारण अल्टीमेट परिणाम हमें सही मिलने में दिक्कतें आती हैं। अब जब टेक्नोलॉजी अवेलेबल है और इस बार निर्णय किया है, आप स्वयं भी जनगणना में अपनी जानकारियां अपने मोबाइल फोन से भर करके दे सकते हैं। बाद में कोई बाबू आएंगे, कोई प्रतिनिधि आएंगे, आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन आप परिवार के सब बैठ करके अगर डिजिटली अपना रजिस्ट्री करवा दे, सारी बारीकियां, स्पेलिंग में भी गलती ना हो, कोई भी जानकारियों में गलती ना हो, आप जितनी परफेक्ट जानकारी देंगे देश को आगे बढ़ने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। और इसलिए मैं देश के नौजवानों कहता हूं कि आप अपने परिवार के लोगों को बिठा करके पूरे फॉर्म को समझिए, पहले कागज पे फॉर्म को भर दीजिए, कोई गलती है तो करेक्ट कर लीजिए और फिर टेक्नोलॉजिकली उसको डिजिटली इसको अपलोड कर दीजिए। आप देखिए इतना बड़ा काम देश कर लेगा और देश का समय और शक्ति सही काम के लिए उपयोग आएगा। और इसलिए मेरे देश के नौजवानों को जनगणना के इस काम में सक्रियता से जुड़ने के लिए मैं आग्रह करता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, मैंने लाल किले से पंच प्राण की बात कही थी। इस पंच प्राण ने देश को अपने आत्मगौरव की ओर लेकर के आगे बढ़ने का, लक्ष्यों को पार करने के सामर्थ्य के साथ आगे बढ़ने का एक बहुत बड़ा संबल दिया है। हमें गुलामी की मानसिकता हर पल मिटाते ही रहना है। जिस भारत का सपना नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने देखा था, बाबा साहब अम्बेडकर ने देखा था, पंडित नेहरू ने देखा था, सरदार पटेल, भगत सिंह, सुखदेव राजगुरु ने देखा था, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देखा था, भगवान बिरसा मुंडा ने देखा था, ज्योतिबा फुले ने देखा था, उन सब से प्रेरणा लेकर के हम आगे बढ़े। इस आइए इस संकल्प को हम दोहराए, स्वयं से ऊपर राष्ट्र का हित हो, स्वयं से ऊपर राष्ट्र का हित हो और कर्तव्य ही हमारी पहचान हो। मैं सभी देशवासियों से कहूंगा समय हमारा है, मैं सभी देशवासियों से कहूंगा समय हमारा है, अवसर हमारा है, संकल्प हमारा है। आइए सपनों को संकल्प बनाए, संकल्प को सामर्थ्य बनाए और सामर्थ्य को सफलता में बदल के रहे। आइए हर कदम को विकास का कदम बनाए, कदम से कदम मिलाए, मन से मन मिलाए, लक्ष्य से जुड़े रहे, एक दीप से जले दीप हजारों, आओ मिलकर विकसित भारत बनाए। इसी एक भावना के साथ इस मंगल पर्व पर आप सबको अनेक अनेक शुभकामनाएं। मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद।

0: रेडियो मधुबन 107.8 FM सुन रहे हैं आप, और आपको सीधा ले चले थे हम रेड फोर्ट की ओर, यानी लाल किले की ओर, जहां पे भारतवर्ष का 80वां इंडिपेंडेंस डे यानी 80th इंडिपेंडेंस डे मनाया जा रहा था। और बहुत सुंदर अपने संबोधन सुना माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा, और विकसित भारत की बात की, अनेक क्षेत्रों में आगे बढ़ने की बात की, स्पोर्ट्स की बात की, ऑनलाइन गेमिंग की बात की, बहुत सारे उदाहरण भी दिए, और इसमें हमारे कंट्रीब्यूशन का क्या महत्व है वो भी उन्होंने ज़रूर बताया, और हम क्या कर सकते हैं, कैसे सारे जो सिटीजन्स हैं वो अपना भाग इसमें ले सकते हैं। युवा शक्ति को खास याद किया गया क्योंकि अभी जनगणना का माहौल है और डिजिटल फॉर्म्स भी भरने हैं, तो बहुत सुंदर उन्होंने ये भी बताया कि किस रूप में आपको अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देना है। और एक दोस्त जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। हेलो नमस्ते
1: जी। नमस्कार
0: जी। नमस्कार, कैसे हैं सुरेश भाई?
1: मदन भाई बोल रहा हूँ।
0: अच्छा, माफ कीजिएगा, कैसे हैं मदन भाई?
1: मैं बहुत बढ़िया हूँ, आज के दिन और रोज हमेशा बढ़िया ही रहता हूँ।
0: हाँ, ये तो बात सही है। जी
1: जी जी जी। और आपको संदर्भ दिवस की, और हमारे पूरे मधुबन को और हमारे सभी दोस्तों को, और जो रेडियो मधुबन जो भी सुन रहे हैं, झंडा लहरा रहे घर घर
0: जी,
1: सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत थैंक्स है। और बड़ा अच्छा लग रहा है आज का दिन
0: जी।
1: आज का दिन उन शहीदों को याद करने का है,
0: बिल्कुल,
1: और उन समय को याद करने का है, अच्छे अच्छे कार्य करने वालों को। और आज हम रेडियो मधुबन को नमन करते हैं कि जो हमें यहाँ फोन करके ये सब बातें हमें कहने का मौका मिलता है। तो आपको नमस्कार है, बहुत बहुत थैंक्स है, ओम शांति। नमस्कार।
0: नमस्कार आपको भी स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।

0: आबू राज के निवासियों को शुभकामनाएं, 15 अगस्त की शुभकामनाएं देना चाहता हूं और सभी अपनी सुरक्षित रहें और कानून नियमों का, यातायात नियमों का पालन करें, इसी कामनाओं के साथ शुभ संदेश देना चाहता हूं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सर। और जैसे आप बचपन में मनाते थे स्वतंत्रता दिवस, आपके स्कूल के टाइम में उस यादों को थोड़ा याद करिए कि कैसा माहौल था और अब कैसा माहौल है।
0: हम जब 15 अगस्त को सुबह सुबह जल्दी उठते थे, बहुत खुशी रहती थी कि भी आज 15 अगस्त है, नई ड्रेसें पहन के और सारी बच्चों के साथ हंसी खुशी से मनाते थे गुरुजनों के साथ। और अभी अभी जो माहौल है थोड़ा यूँ अलग टाइप हो गया, अपन मैं बुजुर्ग भी हो गया हूँ और अभी भी अच्छा माहौल होना चाहिए देश में सुख शांति बनी रहे। और अपने देशवासियों के लिए मैं 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं प्रकट करता हूँ।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय हिंद।
0: जय हिंद मैम। जय हिंद।
2: तो आपने सुना किस प्रकार से अपना बचपन भी याद कर रहे हैं और अभी भी किस तरह का माहौल है वो भी बता रहे हैं। गोकुल राम सर जुड़े थे हमारे साथ और बहुत सुंदर उन्होंने विशेष भी दी, शुभकामनाएं भी दी। वैसे तो हर मन जो है, हर दिल है वो शुभकामनाएं दे रहा है क्योंकि आज 15 अगस्त है, आज इंडिपेंडेंस डे यानी स्वतंत्रता दिवस है। स्वतंत्रता कितनी ज़रूरी है अपने जीवन में ये तो हम सभी जानते हैं। अगर स्वतंत्र रूप से एक दिन बिताने को ना मिले, अगर हमें हर बार किसी के अनुसार ही चलना पड़े और वो भी वो हम पे दबाव बनाए या हमें छोटा या कम समझें, कम आके, तो कितना छोटा महसूस होता है, कितना दुर्बल महसूस होता है। सोचिए एक पूरा देश, एक पूरी की पूरी जनरेशन्स, हम कितनी जनरेशन्स जो हैं वो इसी गुलामी में रहीं जिन्हें अपने देश के अंदर अपने देश को अपना कहने का अवसर नहीं था, ये कितने दर्द का विषय था। और तब वो आज़ादी आई, वो दिन आया जिसने हम सबको ये महसूस कराया कि हम भारतीय हैं और हमारे अंदर वो ताकत है कि हम किसी भी ताकत को, किसी भी और सत्ता को स्वीकार नहीं करते, हम स्वतंत्र हैं। तो आइए दोस्तों आगे की ओर चलते हैं। और कहाँ पहुंच गए रेडियो मधुबन की टीम?
3: मैं पुलिस थाना अबू रोड सदर में हेड कॉन्स्टेबल के पद पर कार्यरत हूँ और मैं इस 80वें स्वतंत्रता दिवस पर सभी मधुबन रेडियो सुनने वाले श्रोता को शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और हमारी प्राथमिकता हमारे क्षेत्र में आवास करने वाली स्थानीय जनता की सुरक्षा व्यवस्था एवं उनकी जान माल की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करना ध्येय रहता है, यही हमारी शुभकामनाएं। इसी के साथ में सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं, धन्यवाद।
1: बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद सर।
3: जय हिंद।
4: मेरा नाम विनोद लांबा, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर पुलिस थाना आबू रोड सदर, जिला सिरोही है। आज स्वतंत्रता दिवस 80वें पे पूरे देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। और मैं एक देश का एक आभार मानूँ और एक देश की शक्ति के रूप में कहना चाहती हूँ कि आज देश की महिला शक्ति है वो देश की सबसे मजबूत शक्ति है। तो बहुत बहुत आभार और धन्यवाद
1: जी। मैम आपसे पूछना चाहेंगे कि जब आप 15 अगस्त मनाते थे बचपन में, तो क्या आपने सपना देखा था कि आप एक पुलिस ऑफिसर बनेंगे?
4: बहुत छोटे थे, बचपन में थे, जब सोचते थे कि एड में देखते थे कि पिकअप जब एक महिला अधिकारी पहनती थी तो ये एक सपना था कि मैं भी एक पिकअप पहन के, जब उस टाइम इतनी जानकारी नहीं थी कि देश में क्या होती है, बच्चे थे, जब से बड़े बड़े जब होने लगे तो समझदार हुए, जब ये समझ देश में क्या करना चाहिए और ये वर्दी क्यों पहनी जाती है, इसकी क्या ज़रूरत है, तब समझ में आया, तब से ये जुनून बना कि मैं भी एक दिन वर्दी पहनूंगी और इस देश की सेवा करूंगी। और ये वो सपना मेरा पूरा हुआ और आज मैं पूरे जज्बे के साथ मैं मेरे देश की सेवा करती हूँ, मेरे देश पर मेरे को गर्व है
1: जी। जो महिलाएं इस वक्त सुन रहे हैं, जो छोटी कन्याएं सुन रहे हैं, उन्हें क्या कहना चाहेंगे?
4: कन्याओं को मैं यही कहना चाहूँगी कि आज देश के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी इतने सशक्तिकरण महिलाओं के लिए प्रोग्राम चला रहे हैं, तो उसके लिए सभी महिलाएं जो शिक्षित हैं वो छोटे बच्चों को स्कूलों में से, मेरी टीचर्स बहनें हैं सब, मतलब बच्चों को ये समझाएं, ये बताएं कि महिला कहीं भी कमज़ोर नहीं है, महिला स्वयं अगर मजबूत है तो महिला के साथ किसी प्रकार का कुछ भी गलत नहीं हो सकता, लेकिन

0: की जानकारी का अभाव होता है, उनको जानकारी देके और आज देश में सबसे मजबूत महिलाओं को बनाया जाए।
1: बहुत बहुत धन्यवाद मैम, जय हिंद।
0: थैंक यू, जय हिंद।
2: मैं
3: और यहाँ पे शांतिवन की ओर भी चलिए अग्रसर होते हैं। हम लाइव प्रोग्राम चल रहा है, क्या हो रहा है आइए सुनते हैं।
4: वेल गुड मॉर्निंग, रेडियो मधुबन अभी पहुंची है सीधे ब्रह्मा कुमारी के डायमंड हॉल के, जहां पर आज का ये 80th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन चल रहा है। ब्रह्मा कुमारीज में मौजूद जो भी समर्पित भाई बहन हैं और जितने भी विजिटर्स हैं, हमारी सिक्योरिटी की टीम, हमारे जो काम करने वाले यहाँ पर टीम है, वो सभी कोई मौजूद हैं, सभी उमंग उत्साह से इस पूरे 80th इंडिपेंडेंस डे में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सभी के हाथ में छोटे छोटे झंडे भी हैं और माहौल काफ़ी मनोरम है और सबको खुशी है कि 80 वर्ष भारत की आज़ादी का ये पर्व मनाया जा रहा है। और आप गीत भी सुन रहे हैं, ये ब्रह्मा कुमारीज के द्वारा ही हमारे भाई बहन रचित है, उन्होंने बनाया है और उसे पेश कर रहे हैं। मंच पर आसीन है ब्रह्मा कुमारीज के बड़े वरिष्ठ भाई, सभी भाई बहन सभी, तो वो लोग इसके साथ झंडा थोड़ी देर में फहरा चुके हैं, झंडा भी फहरा चुके हैं और सभी को इसके साथ साथ जाते हुए भाई बहन जो इस मंच से अभी बाहर जा रहे हैं उन्हें प्रसाद भी मिल रहा है। कहते हैं ना कि कभी भी इंडिपेंडेंस डे होता है तो लड्डू वगैरह इत्यादि मिलकर, बूंदी आदि मिलकर सबको बहुत खुशी है। आपने भी जोर से सुना भी भारत माता की जय, तो खुशी है कि सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ऐसे पर्व हर साल ब्रह्मा कुमारी जरूर सेलिब्रेट कर रही है। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे 80th।
3: बहुत बहुत शुक्रिया आपका मोना जी। और हमारे साथ आरजे शुभा, आरजे मोना दोनों ही जुड़े हुए हैं, लगातार फील्ड में गए हैं और सेलिब्रेशन क्या हो रहा है वो ऐसे फील करा रहे हैं जैसे हम वहीं मौजूद हों। और चलिए अभी हम चलते हैं माउंट आबू की ओर, और माउंट आबू में ज्ञान सरोवर एक अकेडमी फॉर द बेटर वर्ल्ड जिसे कहा जाता है, बहुत सुंदर सा ये प्रांगण है, ये कैंपस है, वहाँ क्या प्रोग्राम चल रहा है आइए वहाँ भी सीधा आपको लिए चलते हैं।
5: नमस्कार, ओम शांति, सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज 80वें स्वतंत्रता दिवस पर हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं ज्ञान सरोवर में, और विशेष आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे जो खुशी का माहौल है, बहुत ही सुंदर सूर्यदेव के साक्षात्कार हो रहे हैं, निकले हुए हैं सुबह की वादी में, ये प्रकृति भी हमें सहयोग दे रही है, खुशी का वातावरण है, सब लोग तिरंगा झंडे को हाथ में लिए हुए अपनी खुशी में डांस कर रहे हैं। तो आज हमारे समक्ष हैं श्री अशोक कुमार चौधरी जी, स्पेक्टर सीआरपीएफ से हैं। सर, ये मधुबन रेडियो हमारा लाइव कम्युनिटी है, तो मैं बस आपसे एक चीज़ ये पूछना चाहूँगा कि सर, आज स्वतंत्रता दिवस पर आप हमारे भारत देश के निवासियों को क्या प्रेरणा देना चाहते हैं?
6: हमारी यही प्रेरणा है, पहले सर सब सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं 80 स्वतंत्रता दिवस के ऊपर, और ये है कि पूरा देश विकास करे, प्रगति करे और विकास तरफ मार्ग तरफ आगे प्रशस्त होए, हम यही चाहते हैं सर। थैंक यू,
5: बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर।
3: तो तिरंगे के साथ एक अलग उमंग से भरे हुए ज्ञान सरोवर में सेलिब्रेशन चल रहा है, बहुत सुंदर शांतिवन में भी और आबू में भी सेलिब्रेशन चल रहा है। आइए आगे की ओर बढ़ते हैं, और आरजे शुभा जी कहाँ पहुंच गई हैं सुनते हैं।
7: हम उच्च माध्यमिक विद्यालय अखरावट्टा में उपस्थित हैं स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर, और जैसे कि आप सुन पा रहे हैं और परेड कर रहे थे इस वक्त स्टूडेंट्स, आइए मैडम से बात करते हैं। मैम आपका शुभ नाम?
8: सुधा।
7: सुधा मैम, कितने टाइम से तैयारियां चल रही है यहाँ पर?
8: मतलब दो हफ्ते से तैयारी चल रही है स्वतंत्रता दिवस की, और अभी 80वां स्वतंत्रता दिवस आज हम मना रहे हैं और बच्चे बड़े उल्लास के साथ इस कार्यक्रम को मनाने के लिए बड़े उत्साहित हैं, क्योंकि ऐसे मौके बार बार आते नहीं है।
2: जी, आप जो बच्चे इस वक्त सुन रहे रेडियो के थ्रू, उन्हें क्या संदेश देना चाहते हैं?
8: कि अपने देश के प्रति हमेशा देशभक्ति रखें, अनुराग रखें, अपने देश के प्रति प्रेम रखें और हमेशा अपने देश का, अपने तिरंगे का सम्मान करें।
2: जी, आपको हमारे देश में सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है?
8: अब तो
2: घूमने की जगह, खाना पीना, क्या अच्छा लगता है आपको?
8: मुझे तो पूरा देश ही अच्छा लगता है, हर जगह घूमना फिरना, खाना पीना,
2: सब अच्छा लगता है। आप जब 15 अगस्त मना रहे थे स्कूल में, तब आपने सोचा था कि आप टीचर बनेंगे?
8: बिल्कुल सोचा था, क्योंकि पहले से ऐसा सोच रखा था कि टीचर बनना है, तो टीचर बने।
2: कितना प्राउड फील कर रहे हैं आप टीचर हैं?
8: बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रही हूँ कि मैं एक टीचर हूँ और इस कार्यक्रम में मैं सम्मिलित हूँ और आगे भी रहूँ।
2: बच्चों के भविष्य भी बनाते हैं?
8: बिल्कुल। अब बच्चे मेहनत करते हैं और अपने भविष्य तो बनाते हैं, लेकिन बच्चे भी अपनी मेहनत तो करते ही हैं।
2: बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। जय हिंद मैम।
8: जय हिंद।
3: शिक्षक आधार है उस भारत का जिसका हम सपना देखते हैं। अगर किसी भी क्षेत्र में जाएं, अगर अच्छा इंसान ना हो तो उस क्षेत्र में प्रगति नहीं होती। तो इसलिए जितनी स्किल जरूरी है उतनी मानवता भी। चलिए दोस्तों, एक बार फिर से देखते हैं कि शांतिवन में क्या सेलिब्रेशन हो रहा है और आरजे मोना जी हमें कहां लेकर जा रही है।
9: ब्रह्मा कुमारी के करुणा भाई जी अभी विशेष देश को संबोधित करते हुए ब्रह्मा कुमारी की तरफ से बात बता रहे हैं किस तरीके से 80 वर्ष भारत ने आज़ादी के बाद अपने आप को एक मजबूत राष्ट्र बनाया है। इसी के संपर्क पर वो देश को संबोधित भी कर रहे हैं, हमारे भाई बहनों को संबोधित कर रहे हैं और खुशी है कि इस प्रकार की चीज़ें हर ऑर्गेनाइजेशन में भारत में, किस प्रकार भारत के हर नागरिक ने उस दौरान आज़ादी की लड़ाई में अपना योगदान दिया था, उसी को याद करते हुए करुणा भाई जी इस बात को सभी के समक्ष रख रहे थे कि किस प्रकार पार्टीशन के बाद पाकिस्तान से हमारे बहुत सारे लोग जो भारतीय
3: ये आरजे मोना जी, धन्यवाद आपका, बहुत सुंदर आप जो लाइव कवरेज है वो कर रहे हैं, आप उनकी बातें भी पहुंचा रहे हैं जो स्पीकर्स, जो गणमान्य हमारे प्रमुख ब्रह्मा कुमारी इसके जनरल सेक्रेटरी आदरणीय करुणा भाई जी आपको कह रहे हैं और देश को संबोधित कर रहे हैं। चलिए एक बार फिर से चलते हैं आरजे शुभा जी की ओर और कहाँ वो पहुँच गए हैं फिर से जानते हैं।
2: वर्तमान समय जैसे कि हम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय आकराबट्टा में हैं, तो प्रिंसिपल मैम अलका सिसोदिया जी हमारे मध्य उपस्थित हैं। आइए उनसे बात करते हैं। मैम, देश के नाम संदेश रेडियो मधुबन के थ्रू क्या देना चाहते हैं आप?
10: मेरा देश आबाद रहे, खूब तरक्की करे, खूब उन्नति करे, यही दुआ है आज के दिन मेरी।
2: जी, आपके स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं कितने दिन से तैयारियाँ कर रहे हैं?
10: पिछले 10 दिन से।
2: जी मैम, जब आप बचपन में 15 अगस्त मनाते थे तब आपने सोचा था कि आप प्रिंसिपल बनेंगे?
10: ऐसा तो नहीं सोचा था, पर मुझे ये बन के बड़ी खुशी है।
2: जी, तो भारत देश की सबसे अच्छी चीज़ आपको क्या लगता है? क्या घूमना फिरना, खाना पीना, क्या पसंद है आपको?
10: यहाँ का सद्भावना, खाना, यहाँ का रहन सहन, संस्कृति मुझे बहुत प्यारी लगती है।
2: जी, और यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि गर्ल्स बहुत सारे हैं और आपको कितना प्राउड फील होता है इन लड़कियों को एजुकेट करने में?
10: बहुत प्राउड फील होता है कि हमारे समय लड़कियां उस शिक्षा में नहीं जा पाती, पर आज के ज़माने की लड़कियां उस शिक्षा या कह सकते ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है तकनीकी का अध्ययन का जहां बच्चियां नहीं पहुंची। हमारे विद्यालय की बच्चियां बहुत अच्छे अच्छे पदों पर भी हासिल हुई और इस बात की खुशी सबसे ज़्यादा मेरे को, मेरे स्टाफ को, गुरुजनों को जो पद पाती बच्चियाँ।
2: बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद मैम।
10: जय हिंद मैम। जय भारत।
3: जय हिंद जय भारत, जितना गर्व महसूस होता है इन शब्दों को कहते हुए उतना ही गर्व महसूस होता है जब हम ये देश की बातें सुनते हैं, देशवासियों की बातें सुनते हैं और वो अपने कंट्रीब्यूशन को प्रैक्टिकल में दिखा रहे होते हैं, दर्शा रहे होते हैं और किस प्रकार से बच्चों का भविष्य बनाने के लिए शिक्षक का महत्व है, ये तो हम सभी जानते हैं। आइए दोस्तों फिर से एक बार चलते हैं ज्ञान सरोवर की ओर, माउंट आबू की ओर, और क्या हो रहा है, सेलिब्रेशन कैसा चल रहा है वहाँ पर भी जानते हैं।
5: शांति, आज हमारे बीच में दीदी हैं जो अपने स्वतंत्रता दिवस के लिए कुछ उनके मन में उद्गार हैं हमारे समक्ष प्रस्तुत करेंगे।
11: ओम शांति। आज ज्ञान सरोवर के प्रांगण में सभी माननीय सम्माननीय हमारी आदरणीय दीदियों ने और सभी सम्माननीय संतों के बीच में आज आजादी के 80 वर्ष की खुशियों को व्यक्त करते हुए सभी बीके और नॉन बीके भाई बहनों के बीच में आज भारत माता की आजादी की खुशी का जश्न मनाया गया है। तो हम सभी आज भारत देश के 80 वर्ष स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की तरफ से बहुत बहुत बहुत बधाई हो, बहुत शुभकामना हो कि एक दिन आएगा कि यही भारत आध्यात्मिक गुरु बनेगा, विश्व गुरु बनेगा, यही हमारी मंगल कामना है, शुभकामना।
5: बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हमारे बीच में है छत्तीसगढ़ रायपुर से
12: सोनू चावला, मंजीत सिंह गुरुदत्ता महासमुंद।
5: अरे वाह, आप दोनों संत सम्मेलन में आए हैं।
12: हाँ जी।
5: और ये हमारा सौभाग्य है कि आज हम 15 अगस्त पर माउंट आबू में हैं, तो हम इनसे भी सुनना चाहेंगे इनके दिल के उद्गार।
12: भाई आज हमने देखा, आज 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे, ब्रह्म कुमारी जी के आश्रम में हम पहुंचे थे और यहाँ बहुत अच्छा माहौल, बहुत अच्छा वातावरण और बहुत अच्छी सेवाएं और बहुत ही अच्छा लगा हमें। मुरली जी भी सुन के वगैरह सब चीज़ बहुत अच्छी लगी। यहाँ की सेवा भावना भी मुझे देख के बहुत अच्छा लगा और शांति का महसूस बहुत अनुभव हुआ।
5: 15 अगस्त पे आप क्या बोलेंगे?
12: 15 अगस्त देश की आजादी में जिन शहीदों ने अपने कुर्बानों की कुर्बानी दी, आहुति दी, उन सबको मेरा नमन है, उनको नमस्कार है। उनकी बदौलत आज हम आजाद भारत में घूम रहे हैं। आज हम माउंट आबू में बड़ी श्रद्धापूर्ण भक्ति भावना से और बहन जी भाई जी की अपार सेवाओं से अनुभव कर रहे हैं। ये हिंदुस्तान का स्वर्ग है, यहाँ सबको आना चाहिए, इस स्वर्ग से कोई वंचित ना रहे। कोशिश करो जल्दी से जल्दी हर रोज हर साल यहाँ आने की कृपा करें।
5: बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी कुछ बोलना चाहेंगे? बहुत बड़ी खुशी हुई है यहाँ आने के बाद में, ऐसा माहौल हम लोग पहली बार देख रहे हैं।
13: बहुत बहुत धन्यवाद।
3: थैंक यू सो मच आपका बहुत बहुत। और ये शैलू भाई जी जुड़े हैं हमारे साथ ज्ञान सरोवर से और बहुत सुंदर लोगों से बातचीत कर रहे हैं और किस प्रकार से अनुभव हो रहा है माउंट आबू में आके, ब्रह्म कुमारीज के प्रांगण में आके, विशेष तौर से आज के खास दिन, वो दिन जो हम सब भारतीयों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, यानी स्वतंत्रता दिवस, यानी 15 अगस्त का दिन। तो आइए फिर से एक बार लिए चलते हैं आपको आबू रोड की ओर, जहां आरजे शुभा जी कवरेज कर रही हैं, लाइव पहुंची हुई हैं। आइए सुनते हैं क्या हो रहा है।
14: आपका शुभ नाम?
15: खुशबू।
14: खुशबू कहाँ पढ़ाई करते हो?
15: तरतोली स्कूल में।
14: जी, तो आप क्या परफॉर्म करने वाले हो आज?
15: डांस।
14: कौन से गीत पे?
15: रन छोड़ रंगीला।
14: ओके, कब से तैयारियाँ कर रहे हो?
15: 2-3 दिन हो गए।
14: ओके, आपके साथ कौन कौन है?
15: मेरे साथ मेरी बहन और एक और लड़की है।
14: ओके, कौन से कक्षा में पढ़ाई करते हो आप?
15: 9th।
14: तो आज स्वतंत्रता दिवस से कितना उमंग उत्साह है, कितना गर्व महसूस कर रहे हो भारत में पैदा हुए हो?
15: बहुत अच्छा लग रहा है भारत में पैदा हुए इसके लिए, क्योंकि हमारे जवानों ने बहुत, उन्होंने अपना खुद का बलिदान दे दिया हमको आजाद कराने के लिए, इसके लिए हमको बहुत अच्छा लग रहा है।
14: क्या बात है, बहुत बढ़िया। सब बोलेंगे जय
16: हिंद,
14: वंदे
16: मातरम।
14: थैंक यू सो मच।
3: ये नन्ही सी आवाजें कितना गर्व महसूस कराती हैं जब कहते हैं एक साथ जय हिंद, जब कहते हैं दिल से जय भारत। चलिए दोस्तों एक बार फिर से रुक करते हैं शांतिवन का, और शांतिवन के परिसर में क्या सेलिब्रेशन हो रहा है, आरजे मोना जी जुड़ गई हैं हमारे साथ सीधा।
4: चलिए दोस्तों, रेडियो मधुबन पुनः ब्रह्मा कुमारी के प्रांगण में है और प्रांगण से ही आप सभी को वंदन करता है हैप्पी इंडिपेंडेंस डे का। और मेरे सामने एक हिसार जो है भारत देश में ही मौजूद, एक हरियाणा राज्य का एक खूबसूरत शहर हिसार से मौजूद है ब्रह्मा कुमारी बहन। मैं उनका परिचय वो खुद ही अपना देंगे और साथ ही साथ इस आज़ादी के विषय पर सारी बातें भी बताएंगे।
13: मैं हिसार से अंतिमा बहन आप सभी को भारत के आज़ाद होने के 80 वर्षों की बहुत दिल से मुबारक देती हूँ। हमारे देशभक्तों ने भारत को आज़ाद कराने में पूरा सहयोग दिया और उसी आज़ादी का आज हम आनंद ले रहे हैं, आज़ाद देश में जी रहे हैं। तो इसके साथ साथ परम पिता परमात्मा ने भी हमें व्यसनों से व बुराइयों से आज़ाद होने का संदेश दिया कि कैसे आपको व्यसनों से व अपने विकारों से बुराइयों से आज़ाद होना है, और उस आज़ादी के लिए मन की आज़ादी ज़रूरी है। जब हम मन से उन व्यसनों को, बुराइयों को, विकारों को छोड़ेंगे तो हम सही मायने में आज़ाद हो पाएंगे और इस आज़ादी का हम भरपूर आनंद ले सकेंगे। ओम शांति।
4: साथ ही साथ मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगी, क्योंकि हमारे बहुत सारे जो उस दौरान युवा वर्ग था उन्होंने अपना बलिदान दिया और 150 वर्ष हो गए हैं वंदे मातरम को, तो कैसा महसूस कर रही हैं?
13: बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं कि वंदे मातरम बोलते ही एक दिन दिल को बहुत सुकून मिलता है, आनंद आता है कि हमारा देश जो है वो इतना महान देश है और यहाँ पर जो यहाँ के सैनिक हैं, इतने वीर जवान हैं, उनको देखते ही सिर जो है श्रद्धा से झुक जाता है।
4: धन्यवाद दीदी आपका बहुत बहुत। रेडियो मधुबन आप सुन रहे हैं, सुनते रहिए मुस्कुराते। ब्रह्मा कुमारीज में मौजूद हमारे सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के हेड सती भाई लीड कर रहे हैं और हमारे सारे सिक्योरिटी के जो जवान भाई हैं जो इस प्रांगण को सुरक्षित रखने में मददगार होते हैं वो भी अपना पूरा जो परेड है वो कंप्लीट कर रहे हैं और ये परेड के साथ ही राष्ट्रगान भी यहाँ पर होगा। तो इसीलिए सबका सहयोग सबका विकास हमारे प्रधानमंत्री का भी नारा है, साथ ही साथ ब्रह्मा कुमारीज का भी यही नारा है, सबका विकास हो, सब सुरक्षित रहें, सब अपने व्यसनों से मुक्त रहें, बुराइयों से मुक्त रहें और इस देश को सदा एकजुट बनाकर चलते रहें।
3: बहुत बहुत शुक्रिया आरजे मोना जी। और किस प्रकार सभी साथ होते हैं तभी विकास की बात होती है, ये तो आपने बिल्कुल सत्य कहा। और चलिए आइए आपको लिए चलते हैं एक बार फिर से आबू रोड की ओर और वहां पर क्या हो रहा है आइए जानते हैं।
14: हमारे साथ मेघा है। मेघा कौन से स्कूल में पढ़ाई करते हैं आप?
17: राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय करतौली में।
14: कौन सी क्लास में?
17: कक्षा 12।
14: आज स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर आप लोग क्या करने वाले हो?
17: आज हम लोग यहाँ पर स्वतंत्रता दिवस को एक बड़े ही अच्छे ढंग से मनाना चाहते हैं और अपनी खुशियाँ जाहिर करना चाहते हैं, अपनी देशभक्ति दिखाना चाहते हैं। ये दिखाना चाहते हैं कि देशभक्ति बल्कि फोन में सीमित नहीं बल्कि देशभक्ति हमारे दिल में भी सीमित है और हम उन महान लोगों का धन्यवाद करना चाहते हैं और उन शहीदों को सत सत नमन करना चाहते हैं कि इन्होंने हमारे देश को आज़ादी दी है। धन्यवाद।
3: बहुत बहुत शुक्रिया। आवाज नन्ही है मगर सटीक है, सत्य है। किस प्रकार से देशभक्ति सिर्फ फोन में नहीं, सिर्फ एक स्टेटस में नहीं है, सिर्फ तस्वीरों में नहीं है बल्कि दिलों में है, और सच्ची देशभक्ति वही देशभक्ति है। आइए एक बार फिर से चलते हैं ज्ञान सरोवर की ओर, रुक करते हैं माउंट आबू का और क्या हो रहा है इंडिपेंडेंस डे का सेलिब्रेशन, कैसा हो रहा है वहाँ पे, चलिए जानते हैं।
18: मेरा नाम अनिकेत वर्मा है, मैं लखनऊ से आया हूँ, मैं क्लास 6 में पढ़ता हूँ और मैं यहाँ ज्ञान सरोवर में स्वतंत्रता दिवस मनाने आया हूँ। यहाँ की फ्लैग होस्टिंग मुझे बहुत अच्छी लगी है, ये सब देखते मेरे मन में देशभक्ति आती है।
19: थैंक यू अनिकेत, थैंक यू। आज विशेष महाराष्ट्र से भी हमारे समक्ष कुछ हमारे माननीय आगंतुक पहुंचे हैं, तो हम चाहते हैं उनकी भी प्रेरणाएं और उनके दिल के जो भाव हैं हम उनसे सुने।
20: मैं डॉक्टर बालचंद्र निवृत्ति वाक्चौरे, वी केम फ्रॉम महाराष्ट्र, वी रिप्रेजेंट Varkari Sampraday of Maharashtra. We are the devotees of Vithala, and we are participating in the Sant Sammelan, which is arranged by the Prajapita Brahma Kumaris. We are participating in this with our Vela, and we are very happy to participate in all the activities, and especially the celebration of Indian Independence Day.
1: Sir, what do you want to give the inspiration, especially to the youths

0: of today's India.
1: Whenever the youths of India are there, they should leave all bad habits, whatever the addiction is there, and they should fully cooperate for the betterment of themselves and the nation as a whole.
2: That's really good message, very good message. Sir ने बताया कि जो भी हमारी बुरी आदतें हैं, चाहे वो नशा हो या addiction हो, उन सबको अगर हम छोड़ते हैं तो ये जैसे हमारे भारत देश के लिए एक बहुत बड़ा सहयोग होगा. बहुत बहुत धन्यवाद.
3: Thank you very much.
4: बहुत बहुत धन्यवाद शैलू भाई आपका. आपने सीधा हमें ज्ञान सरोवर से जो संत सम्मेलन चल रहा है, देश के अलग अलग प्रांतों से, अलग अलग शहरों से पधारे महात्माएं और जो कि बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं आज के सेलिब्रेशन में खास शामिल होकर, आपने उनका संदेश हम तक पहुंचाया. आइए एक बार फिर से चलते हैं आबू रोड की ओर और आरजे शुभा सीधा पहुँच गई है, कहाँ सुनते हैं.
5: राजकीय माध्यमिक विद्यालय मोरथला में पहुंचे हैं. यहाँ के एक स्टूडेंट जो यहाँ पे पढ़ चुकी है और पढ़ने के बाद वो यहाँ पर उपस्थित है आज के स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर. आपका शुभ नाम क्या है?
6: सोनू कुमारी.
5: सोनू, ये बताइए कि कैसा लग रहा है आपको पढ़ाई के बाद फिर से स्कूल में आना और ये सेलिब्रेशन देखना?
6: बहुत अच्छा लग रहा है. स्कूल आना मतलब हर स्वतंत्रता के दिवस में आती है.
5: अच्छा, तो मतलब कहीं पे भी हो तो स्वतंत्रता दिवस के लिए यहाँ सेलिब्रेट करना
6: आती हूँ.
5: क्या प्रेरणा मिलती है जब आप यहाँ आते हैं?
6: यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है. मतलब स्कूल की याद बहुत आती है. आते हैं
5: यादों को तरोताजा रखने के लिए आप यहाँ आते हैं, देशभक्ति की प्रेरणा. हाँ जी, तो यहाँ के जो टीचर्स आपको जिन्होंने पढ़ाया है उनके बारे में क्या कहना चाहोगे?
6: ऐसे टीचर बहुत अच्छे और ध्यान भी बहुत देते हैं और बहुत मतलब बहुत अच्छे बच्चे.
5: जी बहुत बहुत धन्यवाद आपके आगे के लाइफ के लिए. बहुत बहुत शुभकामनाएं. जय हिंद.
4: और बिल्कुल अपने स्कूल वापस जाके किसे खुशी नहीं होती. और साथ साथ जब हम बड़े हो जाते हैं, कई बार स्कूल से पढ़ाई आगे हो जाती है लेकिन फिर भी याद आता है वो 15 अगस्त का सेलिब्रेशन, वो 26 जनवरी का सेलिब्रेशन और वो भारतीयता का सेलिब्रेशन. वापस दिल होता है कि उन्हीं में शामिल हो जाएं, उन्हीं गीतों में खो जाएं, क्योंकि वो हमें कुछ ऐसा महसूस कराते हैं जो कहीं और से संभव ही नहीं. चलिए एक बार फिर से दोस्तों शांतिवन की ओर रुक करते हैं और किस प्रकार आरजे मोना जी हमें लाइव प्रसारण दे रहे हैं सुनते हैं.
7: वेल, पुनः आप सभी का आज के इस ब्रह्मा कुमारी इसके प्रांगण से ही स्वागत करती हूं. मैं मोना और मेरे साथ हैं कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड, ग्लोबल हॉस्पिटल के ट्रॉमा सेंटर, वहां से मौजूद हैं डॉक्टर सतीश गुप्ता जी. सर बहुत बहुत स्वागत है. हैप्पी इंडिपेंडेंस डे.
8: ओम शांति. सभी देशवासियों को आज के दिन 80वें स्वतंत्रता दिवस, स्वाधीन दिवस की बहुत बहुत मुबारक हो. सारे हमारे देश के जो प्रहरी हैं, चाहे थल सेना है, नभ सेना है, जल सेना है, वो हमारे देश की सुरक्षा को अक्षुण बनाए रखे हैं और उसके लिए हम सबको उस पर बहुत बहुत गर्व है. इसीलिए हम आज 80वां स्वाधीनता दिवस मना रहे हैं. पर सब जो सचमुच जो स्वाधीनता जो हमें चाहिए, सच्ची स्वाधीनता, स्व मीन्स आत्मा के राज्य चले, मन बुद्धि संस्कार पर, पांचों कर्मेंद्रियों पर, अर्थात हम कर्मेंद्रिय जीत बने, तभी सच्ची से स्वाधीनता हर व्यक्ति को, हर मनुष्य को मिलेगी. क्योंकि आज आदमी जकड़ा हुआ है इन पांच विकारों के बंधन में, मन भी जकड़ा हुआ है, बुद्धि भी परेशान है और संस्कार भी, गलत संस्कार, गलत आते समाज को परेशान कर रहे हैं, जिसके कारण आज देश में व्याप्त भ्रष्टाचार, पापाचार चलता है. इसलिए हम सब जागे इस दिन. सच्चा राम राज्य स्थापन करना है, सच्ची स्वाधीनता अगर हमको लानी है तो राजयोग के अभ्यास से हम सभी भारतवासी इस देश को सच्चा स्वर्ग बनाएं, सच्चा राम राज्य बनाएं. यही मेरी आज के दिन आप सबसे शुभ आशा है. ओम शांति.
7: वेल, पुनः आप सभी का आज के इस ब्रह्मा कुमारी इसके प्रांगण से ही स्वागत करती हूं.
4: बहुत बहुत शुक्रिया आपका मोना जी. आप पहुंचे हैं शांतिवन के परिसर में. कैसा सेलिब्रेशन हो रहा है वो हमें बता रहे हैं, आगे भी क्या हो रहा है वो जरूर बताते रहे.
7: रितांजलि बहन, जी हाँ, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस स्वतंत्रता दिवस. 80 वर्ष गुजर गए हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं और आपको किस प्रकार, जो आप जहाँ पर रहती हैं वहाँ पर किस प्रकार का सेलिब्रेशन हमेशा आप देखते हुए आई हैं और यहाँ पर क्या अंतर मिला देखने को, ये भी बताइएगा.
0: स्वतंत्रता दिवस की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं. अभी हमारा भारत देश 80 वर्ष स्वतंत्र हुए हो गया है, तो जिसमें हम देखते हैं कि सभी भारतीयों के मन में बहुत ही उमंग उत्साह से इस दिन को मनाते हैं और यहाँ भी बहुत अच्छी तरीके से सभी इस चीज़ का बहुत ही मना अच्छे से स्वागत कर रहे हैं और सभी बहुत धूमधाम से इस चीज़ का मना रहे हैं. और ये केवल यहाँ की ही बात नहीं है, हमारा भारत देश तो आज़ाद हो गया लेकिन हमें अपने मन के भीतर के भी जो हम गुलाम, जो हमारे बुराइयाँ ने हमें गुलाम कर रखा है, उन्हें भी हमें अपने मन से तन से आज़ाद करना है.
7: धन्यवाद आपका, बहुत बहुत रिवांजलि बहन.
4: बहुत बहुत धन्यवाद आपका आरजी मोना जी. और किस प्रकार से हम सेलिब्रेट कर रहे हैं आज के दिन को, वो महत्वपूर्ण इस हिसाब से भी हो जाता है कि क्या परिवर्तन लाने वाले हम, क्या करने वाले हम, क्या सिर्फ हम कुछ गीत गाएंगे और फिर मीठा खाएंगे और सेलिब्रेट करेंगे, एक दूसरे को विश करेंगे और ये दिन यहीं समाप्त हो जाएगा, या इस दिन के अंदर एक और प्रण लेंगे, एक और प्रतिज्ञा करेंगे, खुद से एक सवाल करेंगे कि हम देश के लिए क्या कर रहे हैं. और मैं फिर से यही कहूँगी दोस्तों कि देश के लिए कुछ करने के लिए आप जो काम जहाँ भी हैं, अगर वो पूर्ण निर्भयता से, सत्यता से करते हैं, बिना किसी करप्शन के, बिना किसी किसी को गलत तरीके से फंसाए हुए या किसी के साथ अपने आगे बढ़ने के लिए किसी और को पीछे किए हुए अगर आप आगे बढ़ते हैं और हमेशा देश को लेकर चलते हैं, तो वो भी एक बड़ा सहयोग है. चलिए दोस्तों फिर से बढ़ते हैं आबू रोड की ओर और राजे शुभा जी की ओर.
5: राजकीय माध्यमिक विद्यालय मोरथला में पहुंचे हैं. यहाँ पर यहाँ के एक स्टूडेंट जो यहाँ में पढ़ चुकी है, और क्या करने वाले हैं सभी आपके दोस्त यहाँ पर? हमारे कुछ सहपाठी यहाँ पे कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम करने वाले, कुछ अपने संगीत का प्रस्तुत करने वाले, कुछ भाषण देंगे, कुछ अलग करेंगे, सब अपनी देशभक्ति बड़े अच्छे ढंग से दिखाने वाले हैं आज.
3: बड़े होकर क्या बनना चाहते हो आप?
5: मैं बड़े होकर मजिस्ट्रेट बनना चाहती हूँ.
3: क्या बात है, बेस्ट विशेस. और पूरे आबू रोड आपके लिए गर्व महसूस अभी भी कर रही है और आगे भी हम लोग आपके लिए गर्व महसूस करेंगे.
5: आपकी बेस्ट विशेस के लिए बहुत बहुत थैंक यू.
3: धन्यवाद. हमारे साथ एक और स्टूडेंट है, आपका शुभ नाम क्या है?
9: लक्ष्मी.
3: कौन से कक्षा में पढ़ाई करते हैं?
9: 12वीं.
3: ओके, बड़े होकर क्या बनना चाहते हो?
9: पुलिस
3: बनना चाहते हो. अच्छा ये बताओ, हमारे राजस्थान और आबू रोड में सबसे मतलब क्या अच्छा लगता है आपको यहाँ पर? संस्कृति, खाना पीना, रहन सहन, यहाँ के ड्रेसेस, क्या अच्छा लगता है आपको?
9: मुझे यहाँ की संस्कृति बहुत अच्छी लगती है और यहाँ की ड्रेसेस बहुत अच्छी लगती है.
4: बहुत बहुत धन्यवाद आपका बच्चों और आरजे शुभा जी की भारतीय संस्कृति की बात की, राजस्थान की बात की. और पहनावा भारत का विशेष है और हम जानते हैं जितने रंग यहाँ समाये हुए हैं, जितने विभिन्न कलाएं यहाँ समाई हुई हैं, शायद ही विश्व में कहीं होंगी. इसीलिए भारत की ओर सभी देखते हैं आज, जब कला की बात भी आती है, जब ट्रेडिशंस की बात भी आती है. चलिए दोस्तों एक बार फिर से आपको ज्ञान सरोवर माउंट आबू की ओर लिए चलते हैं और वहाँ पर कुछ अतिथि पधारे हैं संत सम्मेलन में और आज सेलिब्रेशन हो रहा है विश्व में भारत की एकता का, भारत की स्वतंत्रता का. क्या कहना चाहते हैं आइए सुनते हैं.
10: आज विशेष महाराष्ट्र से भी हमारे माननीय,
11: आज हमारे बीच में एक बहुत ही सुंदर ग्रुप आया है सोलापुर से, राइट? तो हम महाराष्ट्र सोलापुर से, और हम उनके भी उद्गार सुनना चाहेंगे.
12: मैं श्री स्वामी समर्थ भजनी मंडल से, महिला भजनी मंडल की मंडल सोलापुर से आई हूँ। सभी हमारा ग्रुप आया है, आज 80th इंडिपेंडेंस डे है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ पे ज्ञान सरोवर में यहाँ पे झंडा वंदन का प्रोग्राम हो गया, आज इतना खुशी, सभी हम खुशी मना रहे हैं। हमारा इतना बड़ा नसीब है कि हमको यहाँ इंडिपेंडेंस डे करने को मिला है। आज के दिन बहुत अच्छा माहौल है यहाँ पे, बहुत सुंदर तरीके से इन्होंने प्रजापति ब्रह्म कुमारी आश्रम के दीदी लोगों ने बहुत अच्छी तरह से इंडिपेंडेंस डे का सेलिब्रेशन किया है। भांगड़ा करने के लिए, चंडीगढ़ से भांगड़ा नृत्य करने के लिए लोग भी आए हैं, बहुत एंजॉय कर रहे हैं हम लोग। बहुत
11: आप क्या प्रेरणा देना चाहेंगे आज सबको, क्या आपके अंदर में क्या है? ये जो स्वतंत्रता दिवस है, 80 साल हुए हैं और हमारे भारत की जो सोसाइटी है, आप क्या कहना चाहेंगे?
12: हमारा भारत स्वतंत्र हो के 80 साल हो गया है, तो मैं बोलती हूँ सभी भारतवासियों को बोलती हूँ कि हम भी जैसे हमारे पूर्वज लोग सभी क्या बोलते हैं उसमें हर प्रकार स्वतंत्रता से सेना, स्वतंत्र सेना में उन्होंने जीत के आए, वैसे ही अभी भारतवासी हमारे सब खुशहाली से सब अच्छी तरह से रहना है। और साक्षरता और लेडीज लोग स्वावलंबी होना चाहिए, महिला स्वावलंबी होना चाहिए। जैसे कि मोदी जी ने बताया कि सभी हम एक स्वावलंबी होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, तो हमारे भारत देश के लिए हम प्राउड फील करते हैं कि आज 80 साल कंप्लीट हो गया, भारत स्वतंत्र हो के 80 साल हो गया है, तो बहुत प्राउड फील करते हैं हम भारतवासी सभी। जय हिंद, जय भारत,
13: जय भारत,
14: जय भारत,
13: जय हिंद, जय भारत। स्वामी समर्थ महिला भजन मंडल सोलापुर,
11: बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे बीच में एक महान विभूति हैं मनीष सर, हम उनसे भी दिल के उद्गार सुनना चाहेंगे। स्वतंत्रता दिवस पर आप क्या महसूस करते हैं?
15: स्वतंत्रता दिवस पर जब महसूसता होती है आज़ादी की, जब हम एक संकल्प लेकर संगठित होकर के कोई कार्य करते हैं और उसका जो हमको एक अच्छा परिणाम मिलता है, जिसकी अनुभूति करते हैं कि हाँ सच में हमारी आज़ादी है और सबको उसकी सुख और शांति की अनुभूति होती है। ओम शांति।
11: बहुत सुंदर मैसेज दिया, जहाँ एकजुटता है सच में स्वतंत्रता वहाँ पे महसूस होती है, जहाँ पे एक संकल्प हो, एक विचार हो, और ये एक समाज जो श्रेष्ठ समाज है उसकी भी नींव है। बहुत बहुत धन्यवाद।
4: बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और ज्ञान सरोवर से ये सीधा प्रसारण आप सुन रहे थे, किस प्रकार से सेलिब्रेशन चल रहा है, विभिन्न प्रांतों से पधारे हैं संत महात्माएं और वो भी एकजुट होकर ये सेलिब्रेशन मना रहे हैं ब्रह्म कुमारी इसका, जो ज्ञान सरोवर कैंपस है एकेडमी फॉर द बेटर वर्ल्ड, और वहाँ बहुत सुंदर गीतों के साथ, बहुत सुंदर नृत्य संगीत के साथ ये सेलिब्रेशन हो रहा है, बेहद गर्व के साथ ये सेलिब्रेशन हो रहा है। और आइए हम एक बार फिर से रुक करते हैं आरजे शुभा जी का, जो कि आबू रोड में सीधा प्रसारण लेके आई हैं आज के दिवस का।
16: मेरे साथ अभी है गोपाल, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मोरथला से। कौन से क्लास में पढ़ते हैं आप?
17: मैम मैं क्लास 10th में पढ़ता हूँ।
16: हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।
17: थैंक यू मैम, आपको भी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।
16: बहुत बहुत धन्यवाद। गोपाल आज क्या खास है आपके स्कूल में?
17: मैम हमारे स्कूल में डांस हो रहे हैं और अतिथि गण है, और सभी जो भी अतिथि आए हैं उन्होंने कुछ ना कुछ बच्चों को उत्साहित करने के लिए उपहार दिए, और हमारी प्रिंसिपल मैम जो हर बच्चे को कुछ ना कुछ सहयोग करने के लिए कुछ ना कुछ करती रहती है। मैम हर कोई बच्चा स्पीच देगा आज और सब अपने भाव व्यक्त करेगा।
16: आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं?
17: मैम मैं एनडीए क्रैक करना चाहता हूँ, लेफ्टिनेंट कर्नल ऑफ पैरा एसएफ।
16: क्या बात है, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको।
17: थैंक यू मैम।
16: और पूरा आबू रोड आपके लिए प्राउड फील कर रहा है इस वक्त जो सुन रहे हैं, और आगे भी करते रहेंगे। और ये क्या लिखा है आपका यहाँ पर, स्वागत व्यवस्था की ये बैच?
17: यस मैम।
16: तो आपका क्या योगदान है इसमें?
17: मैम मैं अभी तो अब मेरी स्पीच है, इसके बाद मेरे को बाहर जाकर स्वागत करना सभी का, सभी को नमस्कार प्रणाम करना।
16: ओके। और जो बच्चे यहाँ पर आप
3: आपके जूनियर्स हैं है ना, तो उनको कैसे प्रेरणा देते हो आप देशभक्ति के लिए, जो छोटे बच्चे हैं आज़ादी को कैसे समझाते हो आप उनको?
17: मैं उनको ये बोलता हूँ कि हमारे जो भी हम भारतीय सेना की वजह से है, हमारी भारतीय सेना हमारे लिए बहुत सारी योगदान है, इसलिए हमारी भारतीय सेना की हमको इज्जत करनी चाहिए। हमारे जो फ्रीडम फाइटर जैसे भगत सिंह जी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी है, इनकी हमारे बहुत इज्जत करनी चाहिए। और अगर आप ज़रूरी नहीं है कि हमको देश के जाके लड़ाई करनी है, हमें अगर देश को सोच रखेंगे वो भी हमारे लिए एक योगदान है बहुत बड़ा।
3: क्या बात है, जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।
17: थैंक यू मैम, आपको भी जय हिंद जय भारत।
4: ये है भारत माँ की संतानें, ये वो सच्ची आवाज़ें जिनका हर भारतीय को इंतज़ार रहता है। बहुत सुंदर इस बच्चे ने बात की और बहुत शुक्रिया आरजे शुभा जी आपका ये आवाज़ हम तक पहुंचाने के लिए। ये भारत का भविष्य साफ नज़र आता है अगर ऐसे युवाओं के हाथों में है तो, जो देश की आर्मी के बारे में बात करते हैं, जो भविष्य में देश की सुरक्षा के लिए अपने जीवन को समर्पित करना चाहते हैं और साथ साथ उन कुर्बानियों को भी लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं, उनके बारे में बताना चाहते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों एक बार फिर से आइए आरजे मोना जी की ओर रुक करते हैं, वो हमें क्या बता रही हैं, आइए सुनते हैं।
14: हम आचार्य महामंडलेश्वर दिव्य शक्ति अखाड़ा सहारनपुर से संत कमल किशोर जी, आज 15 अगस्त का दिन है यानी स्वतंत्रता दिवस। स्वतंत्र यानी जब हमारा स्वयं का शासन आ गया, स्वयं की व्यवस्था बनी, भारतवर्ष के लोगों की अंग्रेजों से मुक्ति पाकर। लेकिन क्या हम वास्तव में मुक्ति पा चुके हैं, स्वतंत्र हो चुके हैं? क्योंकि सन 1947 से लेकर आज तक भ्रष्टाचार बढ़ गया है, अनाचार बढ़ गया है, दुराचार बढ़ गया है, कुकृत्य बढ़ गए हैं, लोगों के मानसिक विकार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, उनमें हम जकड़े हुए हैं, उस जंजीरों में जकड़े हुए हैं। और भारतवर्ष इस समय हमारी दृष्टि में बिल्कुल भी आजाद नहीं है। हमें आजादी चाहिए, इन विकारों से मुक्ति चाहिए। तो उसके लिए प्रजापिता ईश्वरीय विश्वविद्यालय के भाई बहन जो 70,000 के करीब हैं और 9,500 से ऊपर सेंटर 140 देशों में हैं, वो ये कार्य कर रहे हैं मानसिक विकारों से मुक्ति दिलाने का। नैतिक मूल्यों के प्रहरी बनकर एक ज्योति जलाई है उन्होंने इस अंधकार को नष्ट करने की। जब ये सारा अंधकार नष्ट हो जाएगा तभी हम वास्तव में स्वतंत्रता के अधिकारी होंगे। हमें इन विकारों से भी मुक्ति पानी है, मानसिक प्रदूषण से भी मुक्ति पानी है। आइए मिलकर प्रजापिता ईश्वरीय ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के भाई बहनों के साथ मिलकर नशा मुक्ति अभियान और इस तरह के मानसिक प्रदूषण के अभियानों में हम शामिल हों और इनको दूर करें, ताकि भारतवर्ष एक बार फिर से सोने की चिड़िया बन सके या विश्वगुरु बन सके। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय।
18: बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। पर मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा, आज का जो हमारा युवा है, युवा के लिए आप क्या एक मैसेज देना चाहेंगे, प्रेरणा देना चाहेंगे? क्योंकि युवा भारत का आज जैसे हम देख रहे हैं उनकी दूसरी तरह की सोच होती जा रही है, लेकिन सच में अगर हमें भारत को उत्थान करना है, भारत को उठाना है, तो युवाओं का सहयोग बहुत जरूरी है। उनको आप क्या प्रेरणा दे रहे हैं?
14: युवा मेरी दृष्टि में वो है जो 80 साल की आयु में भी कुछ कर गुजरने की ताकत रखता है, और जो 18 वर्ष की आयु में भी विध्वंसात्मक कार्य कर रहा है, निराश हो गया है, डिप्रेशन का शिकार हो गया या एग्रेशन का शिकार हो गया है, वो मेरी दृष्टि में बूढ़ा हो चुका है। नैतिक मूल्यों का पतन हो चुका है। युवाओं को चाहिए कि नैतिक मूल्यों की स्थापना सबसे पहले करनी चाहिए, और आजकल विश्वविद्यालयों में, स्कूलों में, सब जगह से नैतिक मूल्य का पाठ ही हटा दिया गया है जो पहले कभी हुआ करता था। और नैतिक मूल्यों के प्रहरी हैं प्रजापिता ईश्वरीय विश्वविद्यालय, जो पूरे विश्व में एक ही ऐसा विश्वविद्यालय है जो नैतिक मूल्यों का प्रहरी और नैतिक मूल्य सिखाता है। आज युवा विध्वंस कर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, विनाश कर रहे हैं, आपस में झगड़ा कर रहे हैं, सरकारी संपत्ति को तोड़ रहे हैं। तो ये विनाश नहीं होना चाहिए, हमें सृजन करना है, और सृजन करने के लिए नैतिकता की आवश्यकता है। नैतिकता सिखाई जाती है। हम तो सभी युवाओं से एक अनुरोध करेंगे कि वो अपने आसपास के किसी भी सेंटर में जाएं, वहां पर 7 दिन का कोर्स करें, देखिए उनकी मानसिकता कैसे बदलती है, और फिर वो सृजनात्मक कार्यक्रम करेंगे, विध्वंसात्मक कार्य नहीं करेंगे।
18: बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थे महामंडलेश्वर गिरी जी, और बहुत ही सुंदर हमें मैसेज दिया, उनको बहुत बहुत धन्यवाद।
4: जी हाँ दोस्तों, ये आप सीधा प्रसारण सुन रहे हैं ज्ञान सरोवर माउंट आबू से।
19: मैं मानतमी पिंड बुटर खूआ जिला मुक्तसर साहब तो आया, तो संत देशपाल मेरी सब प्रार्थना।
18: थैंक यू

0: बहुत बहुत शुक्रिया आपका. और ज्ञान सरोवर से सीधा प्रसारण आप सुन रहे थे दोस्तों. और अभी चलिए, मोना जी पहुंची हैं कहाँ, बिल्कुल शांतिवन का भी उन्होंने सीधा प्रसारण करवाया और किस प्रकार से सेलिब्रेशन चल रहा है वो बताया. और आइए उनके साथ साथ हम भी चलते हैं और आबू रोड में देखते हैं किस प्रकार से आज का स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है.
1: पुनः आप सभी का स्वागत है रेडियो मधुबन में. और हमारे बीच आदरणीय मोहन सिंगल भाई जी मौजूद हैं.
2: ओम शांति. आज के शुभ दिवस पर जो हमारा 80वां स्वतंत्रता दिवस है, उस पर मैं आप सब लोगों को, संपूर्ण भारतवासियों को ही नहीं बल्कि विश्व में जहाँ यहाँ पर भी हमारे भारतवासी हैं, उन सबको बहुत बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहता हूँ. यह केवल 80वां स्वतंत्रता दिवस नहीं है, बल्कि हम उस दिवस की ओर बढ़ रहे हैं जब हम विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में होंगे और संपूर्ण विश्व भर के अंदर भारत, भारत और भारत का ही नाम होगा, क्योंकि भारत जो एक पूरा संपूर्ण विश्व का एक गुरु बनने वाला है, ये परमपिता परमात्मा जो त्रिकालदर्शी हैं उन्होंने बताया है. इसीलिए इसमें हम अपना संपूर्ण तन मन धन समय संबंध सब कुछ इसमें लगा करके भारत को विश्व गुरु बनने के लिए आगे की ओर बढ़ाएं, अग्रसर करें. इसी के लिए मेरी बहुत बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और मैं आशा करता हूं आप सब की ओर से भी कि आप सब भी बहुत बहुत अपने हृदय की शुभकामनाएं इस अवसर पर मेरे साथ साथ प्रेषित कर रहे हैं. बहुत बहुत धन्यवाद. ओम शांति, ओम शांति.
0: बहुत बहुत शुक्रिया आपका आरजे मोना जी. और किस प्रकार से आरजे शुभा जी कहाँ पहुंच गई हैं, आइए उनसे भी बात करते हैं.
3: मेरे साथ अभी है गोपाल, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मोरथला से. कौन से क्लास में पढ़ते हैं आप?
4: मैम मैं क्लास 10th में पढ़ता हूँ.
3: हैप्पी इंडिपेंडेंस डे.
4: थैंक यू मैम, आपको भी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे.
3: बहुत बहुत धन्यवाद. गोपाल आज क्या खास है आपके स्कूल में?
4: मैम हमारे स्कूल में डांस हो रहा है और अतिथि गण है और सभी जो भी अतिथि आए उन्होंने कुछ ना कुछ बच्चों को उत्साहित करने के लिए उपहार दिए. और हमारी प्रिंसिपल मैम जो हर बच्चे को कुछ ना कुछ सहयोग करने के लिए कुछ ना कुछ करती रहती है. मैम और मैम हर कोई बच्चा स्पीच देगा आज और सब अपने भाव व्यक्त करेगा.
3: आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं?
4: मैम मैं एनडीए क्रैक करना चाहता हूँ, लेफ्टिनेंट कर्नल ऑफ एयर आर्मी.
3: क्या बात है.
0: बहुत बहुत शुक्रिया आपका आरजे शुभा जी. और आइए एक बार फिर से रुक करते हैं, आरजे मोना जी जुड़ गए हैं सीधा हमारे साथ.
1: दलिक बेहतरीन और प्रदर्शन के लिए

0: और उसे देखने के लिए मैं पहुंच चुकी हूँ खास स्वामीनारायण उच्च माध्यमिक विद्यालय में, जहाँ पर हमारे बहुत सारे बच्चे अभी एक पिरामिड शेप का निर्माण करते हुए प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। स्कूल के ये नन्हे नन्हे बच्चे बेहतर हैं और उनकी उमंग को देखते हुए आगे आगे बढ़ रहे हैं। हमारी रूहानी जो रेडियो मधुबन की एक आरजे है, बाल कलाकार है, वो भी इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करने वाली है। स्कूल के सभी बच्चे स्कूल में मौजूद हैं, उमंग है और इस पूरे कार्यक्रम को वो लाइव देख रहे हैं। और हमें भी मौका मिला हुआ है इस 80th कार्यक्रम को देखने के लिए, इंडिपेंडेंस डे का। भारत आजाद हुए 80 वर्ष हो गए हैं, आपने कुछ गीत के बोल सुन रहे हैं। सब बच्चों के इस पार्टिसिपेशन को देखकर खुशी होती है कि आने वाला ये जो पूरा हमारा जो देश के नौजवान है किस प्रकार पार्टिसिपेट कर रहे हैं। स्वामीनारायण उच्च माध्यमिक विद्यालय में भी हर बच्चा उमंग और उत्साह में है। स्कूल में आज काफी बड़ी भीड़ मौजूद है, सिर्फ टीचर्स ही नहीं, स्टूडेंट्स भी हैं और पार्टिसिपेंट्स भी हैं, और साथ में पेरेंट्स भी यहाँ पर डायरेक्ट पहुंच चुके हैं। हमें खुशी है रेडियो मधुबन इस जगह पर पहुंचकर पूरा लाइव दिखा रहा है आसपास के ग्रामीण क्षेत्र, साथ ही साथ स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं उनके पेरेंट्स मौजूद हैं और देख रहे हैं प्रोग्राम। इतनी दूर दिल्ली से दूर मौजूद होते हुए भी हमें सब कुछ दिखाई दे रहा है। डेकोरेशन में तिरंगे का बलून्स है और भारत का तिरंगा बिल्कुल खुशी से लहरा रहा है, क्योंकि 80 साल इस देश को आजाद हुए हो गया है। बच्चों के हाथों में हमारे तिरंगा को देखकर हमें खुशी होती है कि एक दफे भी गिरने का मौका नहीं दे रहे हैं छोटे छोटे बच्चे। शायद इनकी हाइट भी इतनी बड़ी नहीं, लेकिन हौसला बहुत बड़ा है और इसीलिए आज के इस कार्यक्रम में ये सभी बच्चे एक साथ जुड़कर पार्टिसिपेट कर चुके हैं। हमें खुशी है कि इस प्रकार के नव युवाओं को देखते हुए कि ये भविष्य में आगे बढ़ते जाएंगे और इस देश को बेहतर बनाने में सदा उनका सहयोग रहेगा।
1: बहुत बहुत शुक्रिया आरजी मोना जी। और बच्चे जुड़े, जैसा आपने कहा, नन्हे नन्हे बच्चे हैं, तिरंगे के साथ उसका महत्व को जानते हैं, किस प्रकार झंडा हमेशा ऊंचा रखना है, और वो ऊंचा रखते हुए वो नृत्य को भी प्रस्तुत कर रहे हैं। तो ये सच में हर भारतीय के अंदर ये होता है, तिरंगे को देख के जो महसूस होता है, जो भावनाएं आती हैं, वो दिल ही समझ सकता है, शायद उसे शब्दों में अंकित करना बहुत मुश्किल होगा। आइए आरजे मोना जी फिर से हमारे साथ स्टूडेंट से बातचीत कर रही हैं या टीचर से बातचीत कर रही हैं, क्या हो रहा है वो भी जानते हैं, सुनते हैं आरजे मोना जी को।
0: स्कूल में हर प्रकार के बच्चे मौजूद हैं, उनकी साइजें देखकर बहुत आनंद आता है। तभी तो हम कहते हैं कि ये बच्चे देश के भविष्य हैं। ये छोटे बच्चे नर्सरी और केजी के बच्चे हैं, जिन्होंने भी उमंग और उत्साह के साथ बिल्कुल तैयार होकर आज के इस कार्यक्रम में भाग लिया है। बच्चे के हाथ में ट्राइकलर्स हैं, जी हाँ, ये तिरंगे का रंग मौजूद है। और हमारे एक खास टीचर स्कूल के जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि किस प्रकार हर बच्चा, हर नागरिक हर बच्चा यहाँ पर आगे बढ़े। चलिए दोस्तों, एक इसी स्कूल में मौजूद हूं मैं, आपका ये स्कूल का नाम बताते हुए आगे बढ़िएगा।
2: श्री स्वामीनारायण उच्च माध्यमिक विद्यालय, मेरा नाम प्रिया है। आदरणीय मुख्य अतिथि जी, प्रधानाचार्य जी, सभी शिक्षक गण, अभिभावक गण और मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं अभिनंदन। आज का दिन केवल कैलेंडर की एक तारीख नहीं है, आज का दिन उस संघर्ष को याद करने का दिन है जिसके कारण हम आजाद हैं। आज का दिन उन वीरों को नमन करने का दिन है जिन्होंने अपना वर्तमान हमारे भविष्य के लिए न्योछावर कर दिया। आज जब हम स्वतंत्र हैं तो हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि इस तिरंगे की हर लहर में हमारे वीर शहीदों के त्याग और बलिदान की कहानी छिपी है। साथियों, 15 अगस्त का दिन केवल इतिहास का वह स्वर्णिम दिन है जब हमारा देश लगभग 2 शताब्दी की ब्रिटिश शासन से स्वतंत्र हुआ। लेकिन यह स्वतंत्रता हमें उपहार में नहीं मिली थी। इसके लिए हमारे पूर्वजों ने संघर्ष किया, जेल गए, यातनाएं सही हो अपने प्राण तक न्योछावर कर दिए। अब मैं विशेष रूप से विद्यार्थी साथियों से कहना चाहूंगी, आज हम विद्यार्थी हैं, लेकिन कल हम ही भारत के डॉक्टर होंगे, इंजीनियर होंगे, शिक्षक होंगे और सैनिक होंगे और देश के नेतृत्व को संभालेंगे। इसलिए देश का भविष्य संसद या सरकार में नहीं बैठा है, इन विद्यालय की कक्षाओं में बैठा है। इसलिए हमारे देश के अच्छे भविष्य के लिए हमें पढ़ना ही होगा। अब मैं कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगी। आजादी की कभी शाम नहीं होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी बदनाम नहीं होने देंगे। आजादी की कभी शाम नहीं होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी बदनाम नहीं होने देंगे। बची हो जो एक भी बूंद लहू की, तब तक भारत का आंचल नीलाम नहीं होने देंगे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।
1: थैंक यू सो मच आरजे मोना जी, और इन नन्ही बालिका का भी बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने जो बातें कही, सच में वो वीर जवान, वो क्रांतिकारी, वो देशभक्त जिन्होंने अपने वर्तमान की चिंता नहीं की, अपनी जान की परवाह नहीं की, अपने परिवार को भी बलिदान कर दिया ताकि देश का भविष्य सुरक्षित हो सके, जिनके कारण आज हम आज़ाद हवा में सांस ले पाते हैं, उनको कितना न धन्यवाद करें, कितना न नमन करें, वो कम ही होगा। ऐसे में हम क्या कर सकते हैं दोस्तों? जिस भारत का, जिस स्वतंत्र भारत का उन्होंने सपना देखा था, जिस आज़ाद भारत का उन्होंने सपना देखा था, उसे साकार करने का हिस्सा तो ज़रूर बन सकते हैं हम। मैं आज अपने देश के लिए क्या कर रही हूँ, क्या कर सकती हूँ, या क्या कर रहा हूँ, क्या कर सकता हूँ, ये प्रश्न खुद से ज़रूर करें। कई बार हम सपना देखते हैं तो हम सोचते हैं कि हो सकता है अब मैं थोड़ा और बड़ा हो जाऊंगा तब करूंगा, या यहाँ से शहर चला जाऊं तब करूं, या फिर ऐसा हो जाए तब, या वैसा हो जाए तब। लेकिन शुरुआत कल नहीं, शुरुआत आज होती है। तो आज आप क्या कर सकते हैं, आज मैं क्या कर सकता हूँ, मैं किस प्रकार से अपने देश को आगे ले जाने के लिए अपनी भूमिका निभा सकता हूँ, एक प्रश्न का उत्तर खुद में ज़रूर ढूंढिएगा। और यही सच्चा नमन होगा, यही सच्ची उन सभी वीरों को श्रद्धांजलि होगी जिनके कारण देश आज़ाद है और आज़ाद बना हुआ है। जी हाँ, मैं उनकी भी बात कर रही हूँ जो आज भारत माँ के लिए अपनी जान को न्योछावर करने को तैयार सरहद पर तैनात हैं। मैं उनकी भी बात कर रही हूँ जो भारत के अंदर ही, चाहे खाकी वर्दी में हों, चाहे भारत के आसमान को छूती नीली वर्दी में हों, चाहे जल में भारत की सीमाओं की रक्षा करते सफ़ेद वर्दी में हूँ, मैं हर एक को नमन कर रही हूँ आज आप सभी की ओर से, जो भारत की सुरक्षा के कर्तव्य को निभा रहे हैं। लेकिन सच्चा नमन क्या होगा, मेरा कंट्रीब्यूशन क्या होगा, ये प्रश्न अपने अंदर ज़रूर लेकर आइएगा। चलिए दोस्तों, आपको बहुत सुंदर एक गीत की ओर लेकर चलते हैं और लौट कर आएंगे। जारी रहेगा लाइव कवरेज, चल रहा है इस वक्त, स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं हम बेहद गर्व बेहद सम्मान के साथ, देश को अपने दिल में बसाए शब्दों में नहीं बल्कि भविष्य की प्रेरणाओं के साथ। रेडियो मधुबन सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

अपार प्रेम था। जब ब्रिटिश सरकार ने उन्हें अंडमान की जेल में बंद कर दिया, तो भी वे मातृभूमि के ही गीत गाते रहते थे। भान सिंह का यह मातृभूमि गान जेल के एक निर्दयी अधिकारी को पसंद नहीं था। एक दिन जब भान सिंह देशभक्ति का गीत गा रहे थे, जेल का अधिकारी आया और खूब हंसने लगा। वह बोला, बंद कर, बहुत हो चुका तेरा यह गीत गाना, आज मैं तेरा गीत गाना बंद करके ही दिखाऊंगा। भला भान सिंह कब चुप बैठने वाले थे, वे दहाड़ कर बोले, नहीं, गीत गाना मैं कभी बंद नहीं करूंगा, चाहे मर ही क्यों न जाऊं, आखिरी दम तक मैं मातृभूमि का ही गीत गाऊंगा। यह सुनना था कि निर्दयी अधिकारी की आंखों में खून उतर आया और वह भान सिंह पर गिद्ध की भांति टूट पड़ा। भयंकर प्रहारों के बावजूद वह मातृभूमि का गीत गाते रहे और फिर मातृभूमि की गोद में आंखें मूंद कर सदा के लिए सो गए। भान सिंह मिट गए पर झुके नहीं, ऐसा था उनका देश प्रेम।

माना देश के जवानों की तरह हम सरहद पर जाकर लड़ नहीं सकते, पर आपस में यूं पैसे, धर्म और भाषाओं के नाम पर लड़ने की बजाय एक होकर देश का मान तो बढ़ा ही सकते हैं ना। क्यों

0: रेडियो मधुबन 90.4 एफएम का
1: इस लहराते तिरंगे को सलाम।
0: सन 1904 का वो दिन जब मैं पहली बार अस्तित्व में आया, या कह सकते हैं मेरे जन्म का दिन। 1857 की चिंगारी इस समय शोला बन चुकी थी, जिसकी लपटों ने अंग्रेजी हुकूमत को बुरी तरह झुलसा दिया था। जितना उनका जुल्म बढ़ता, उतना ही हमारा हौसला। इन्हीं हौसलों में नई जान भरने और सभी देशभक्तों को एकजुट करने स्वामी विवेकानंद जी की एक आयरिस शिष्या निवेदिता ने मुझे पहली पहचान दी। मुझे दो रंगों में बनाया गया, लाल और पीला। लाल रंग आजादी की लड़ाई को दर्शाता था, वहीं पीला विजय को। इंद्र के हथियार और शक्ति का प्रतीक वज्र एवं शुद्धता का प्रतीक कमल के फूल से इसे सजाया गया और बंगाली में वंदे मातरम लिखा गया। मैंने देशभक्तों के खून में नया उबाल पैदा किया और कई देशभक्त मेरे नीचे ही शहीद हुए। आगे की कहानी के लिए सुनते रहिए रेडियो मधुबन

0: उपस्थित हैं जिला उप अस्पताल में, और यहाँ पर हमारे बीच में परमानंद गुप्ता सर हैं, PMO। देखिए, आज 15 अगस्त से हम सभी तो छुट्टी मनाते हैं कुछ एक दो घंटा सेलिब्रेट करते हुए, लेकिन सर यहाँ पर निरंतर पेशेंट भी देख रहे हैं और छुट्टी भी नहीं है। सर, 15 अगस्त को कैसे मना रहे हैं आप?
1: मैं सभी को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पर बधाई देता हूँ और सभी से ये गुजारिश करता हूँ कि देश के उत्थान में सभी लोग जो है अपनी पूरी तन्मयता के साथ जुटें और अपना काम देश और जनता के लिए करते रहें। जैसे कि हम लोग आज 15 अगस्त के होने के उपरांत भी मरीजों को सेवाएं दे रहे हैं, इस तरह मैं सभी से यह आशा करता हूं कि आप सभी अपने अपने कार्य क्षेत्र में 15 अगस्त के दिन भी कार्य करें।
0: हम बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं कि आप जैसे डॉक्टर हमारे यहाँ आबूरोड में उपस्थित हैं। जो यूथ इस वक्त आपको सुन रहा है, जो इस लाइन में आना चाहता है, डॉक्टरी की पढ़ाई करना चाहता है, उसे क्या बताना चाहेंगे?
1: मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि जो भी बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं और MBBS करना चाहते हैं, वो सभी पूरी तन्मयता के साथ अपनी एकाग्रता के साथ पढ़ाई करें और इस फील्ड में आकर जनता की, वंचित लोगों की सेवा करें, जिससे कि मानवता की सेवा हो सके।
0: बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत सर।
1: जय हिंद, जय भारत।
2: सन 1857 के विद्रोहियों के अग्रणियों में बिहार के महाराज कुंवर सिंह का नाम सदैव बड़े सम्मान के साथ लिया जाएगा। वे जब तक जीवित रहे, अंग्रेज आततायियों के विरुद्ध विद्रोह का झंडा ऊंचा किए रहे। एक बार कुंवर सिंह शाहबाद जाने के लिए नाव द्वारा गंगा पार कर रहे थे कि अंग्रेज सेना को इसका पता चल गया और सेनापति लुंगड़ ने किनारे से गोली चलाई जो कुंवर सिंह के दाहिने हाथ की कलाई के निकट लगी। उन्होंने चट बाएं हाथ से तलवार लेकर एक झटके में दाहिने हाथ को काटकर गंगा माता को समर्पित करते हुए कहा, जो हाथ फिरंगी की गोली से अपवित्र हो गया वह अब किस काम का रहा, अतएव यह तुम्हारी भेंट है।

0: 90.4 FM का
1: इस लहराते तिरंगे को सलाम।
0: '1904 के बाद मैं फिर 1906 में एक नए रूप में आया, इस बार तीन रंगों में, लाल, नीला और पीला। मुझे सूरज और आठ तारों की छवि से सजाया गया। मुझ पर देवनागरी लिपि में वंदे मातरम लिखा गया, यानी मां तुम धन्य हो, और भारत मां की हवाओं में लहराते हुए मैं भी धन्य हो गया। वंदन उन माताओं का जिन्होंने भारत को विश्व वंदनीय बनाया एवं विश्व पूजनीय बनाया। इसके बाद 1907 में मैडम बीकाजी रुस्तम कामा, वीर सावरकर और श्याम जी कृष्ण वर्मा जी ने मुझे फिर से नया अवतार दिया, इस बार हरे सुनहरे केसरिया और लाल रंग में। इस साल 22 अगस्त को मैडम बीका जी ने मुझे जर्मनी यानी पहली बार विदेशी धरती पर लहराया, जिसे देख दुश्मन सरकार की रूह कांप उठी। आगे की कहानी के लिए सुनते रहिए रेडियो मधुबन

0: नमस्कार, मैं कस्तूरी दास ठाकुर। आज मैं आप सबके साथ एक खास स्मृति साझा करना चाहूंगी। वंदे मातरम वंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा विरचित हमारा राष्ट्रीय गीत आज अपने 150 वर्ष पूरे कर रहे हैं। वो समय था जब मैं अपनी मिट्टी से दूर रहती थी। लगभग 1.5 वर्ष के लंबे अंतराल के बाद जब मैं अपने देश लौट रही थी, देश लौटने का एक अलग ही जुनून था। घर वालों से मिलने का अनकही खुशी और एक मीठी सी प्रतीक्षा। हवाई जहाज में बैठते ही मैं समय गिनने लगी, लेकिन समय अपने ही ढंग से चल रहा था। घड़ी की सुइयां जैसे बहुत धीमे चलने लगी हो और मेरा मन लगातार अधीर हो जा रहा था। यात्रा के बीच ना जाने कब नींद आ गई। कुछ घंटों बाद जब नींद खुली, कप्तान की आवाज सुनाई दी, हम भारत के हवाई क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं, कुछ ही देर में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरेंगे और आज 26 जनवरी के पावन अवसर पर आप सभी को प्रजातंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हाँ, वह दिन 26 जनवरी था। मेरा घर दिल्ली में नहीं है, मेरा गांव कहीं और है, मेरी भाषा कुछ और है और उस समय मुझे लौटना था अपने गांव, अपने घर। लेकिन उसी दिन जब मैं अंतरराष्ट्रीय टर्मिनल से शटल बस में बैठकर घरेलू टर्मिनल की ओर जा रही थी, बाहर हमेशा की तरह गर्व, मर्यादा और पवित्रता से भरा ऊंचा उठा हुआ तिरंगा हवा में लहराता दिखाई दिया और कहीं दूर नहीं, मानो मेरे भीतर ही गूंज रहा था, वंदे मातरम सुजलांग सुफलांग मलयज शीतलाम शस्य श्यामलांग मातरम वंदे मातरम। उसी क्षण मुझे लगा, कौन सा घर, कौन सा गांव, यही तो मेरा देश। और इस देश का हर वह कोना जहां तिरंगा लहराता है, जहां देश माता की वंदना होती है, जहां वंदे मातरम गूंजता है, वही मेरा घर है। हाँ, यही मेरा घर है। मुझे स्वयं पता नहीं चला, मैं उस सुबह की ठाकुर के झोंपे आज मैं के आप सबके साथ एक मेरे वो गर्म बूंदे वंदे मातरम से वंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा विरचित हमारा राष्ट्रीय गीत आज अपने 150 वर्ष पूरे कर रहे हैं। वो समय था जब मैं अपनी मिट्टी से दूर रहती थी। लगभग 1.5 वर्ष के लंबे अंतराल के बाद जब मैं अपने देश लौट रही थी, देश लौटने का एक अलग ही जुनून था। घर वालों से मिलने का अनकही खुशी और एक मीठी सी प्रतीक्षा। हवाई जहाज में बैठते ही मैं समय गिनने लगी, लेकिन समय अपने ही ढंग से चल रहा था। घड़ी की सुइयां जैसे बहुत धीमे चलने लगी हो और मेरा मन लगातार अधीर हो जा रहा था। यात्रा के बीच ना जाने कब नींद आ गई। कुछ घंटों बाद जब नींद खुली, कप्तान की आवाज सुनाई दी, हम भारत के हवाई क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं, कुछ ही देर में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरेंगे और आज 26 जनवरी के पावन अवसर पर आप सभी को प्रजातंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हाँ, वह दिन 26 जनवरी था। मेरा घर दिल्ली में नहीं है, मेरा गांव कहीं और है, मेरी भाषा कुछ और है और उस समय मुझे लौटना था अपने गांव, अपने घर। लेकिन उसी दिन जब मैं अंतरराष्ट्रीय टर्मिनल से शटल बस में बैठकर घरेलू टर्मिनल की ओर जा रही थी, बाहर हमेशा की तरह गर्व, मर्यादा और पवित्रता से भरा ऊंचा उठा हुआ तिरंगा हवा में लहराता दिखाई दिया और कहीं दूर नहीं, मानो मेरे भीतर ही गूंज रहा था, वंदे मातरम सुजलांग सुफलांग मलयज शीतलाम शस्य श्यामलांग मातरम वंदे मातरम। उसी क्षण मुझे लगा, कौन सा घर, कौन सा गांव, यही तो मेरा देश। और इस देश का हर वह कोना जहां तिरंगा लहराता है, जहां देश माता की वंदना होती है, जहां वंदे मातरम गूंजता है, वही मेरा घर है। हाँ, यही मेरा घर है। मुझे स्वयं पता नहीं चला कि उस सुबह की ठंडी हवा के
1: एक ब्लॉगर हूँ,
0: झोंके के बीच
1: देश का
0: मेरे हृदय
1: सर्वोपरि
0: से जन्मी
1: कविताएं, गीत, गजल बनाए नहीं जाते, ये तो खुद ही उतर आते हैं आपकी भावनाओं में और फिर उतर आते हैं कागज पर, ऐसा मेरा मानना है। वंदे मातरम गीत मातृभूमि की महिमा और आदर का प्रतीक है। आधी शताब्दी तक वंदे मातरम नारे की तरह बच्चे बच्चे की जुबान पर और मन में देशभक्ति और स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए जोश, होश और प्रेरणा का जज्बा भरता रहा। ब्रिटिश राज से मुक्ति में प्रेरक रहा। आज भी जब इसे गाते हैं तो दिल मातृभूमि के प्रति आदर, कृतज्ञता और प्रेम से सराबोर हो उठता है। हम एकता, अखंडता, त्याग और उल्लास से भर उठते हैं। सिर श्रद्धा से नतमस्तक हो जाता है। देश की मिट्टी माँ और वंदे मातरम मातृभूमि के लिए अभिवादन, वंदे मातरम।
2: शहीद शिरोमणि मदन लाल ढींगरा भारत के उन अमर क्रांतिकारियों में से थे जिन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया था। लंदन की एक सभा में सन 1907 में उस वीर ने सर कर्जन वायली की साहसपूर्ण हत्या कर दी थी। उस वीर को बचाने के लिए भरसक प्रयत्न किया गया, परंतु उन्हें बचाने का प्रयत्न करने वाले डॉक्टर लाल काका नामक भारतीय को भी अंग्रेज सरकार ने फांसी दी। वीरवर मदन लाल ढींगरा ने अदालत में अपना अपराध स्वीकार करते हुए कहा, मैं यह स्वीकार करता हूं कि उस दिन मैंने अंग्रेज का रक्त बहाने की चेष्टा की थी, पर यह इसलिए कि अंग्रेज सरकार अमानुषिक रूप से जो हिंदुस्तानी देशभक्तों को फांसी देती है और काला पानी भेजती है, उसका मैं एक साधारण बदला ले सकूं। इस काम में मैंने किसी की भी सलाह नहीं ली है, बल्कि मैंने केवल अपनी अंतरात्मा से पूछा है और अपने कर्तव्य का पालन किया है। एक देशभक्त होने के नाते मेरा विश्वास है कि मेरे देश का अपमान करना साक्षात ईश्वर का अपमान करना है। मेरे देश की पूजा श्री रामचंद्र की पूजा है, देश की सेवा श्री कृष्ण की सेवा है। मेरे जैसा निर्धन और मतिमंद पुत्र माता की आराधना के लिए अपने रक्त के अतिरिक्त और क्या दे सकता है? आज मैं अपना वही रक्त माता

0: मधुबन 90.4 एफएम का
1: इस लहराते तिरंगे को सलाम।
2: सोलह में भारत देश एक अजीबोगरीब रूप इख्तियार कर चुका था। एक तरफ हम एकजुट होकर अंग्रेजी सरकार को देश से खदेड़ने के लिए अपने दिलों जान से लगे थे, वहीं जाति रंग भाषाएं हमें आपस में बांट रहे थे। इन मोतियों को एकता और देश प्रेम की डोर में पिरोए रखने के लिए पिंगली वेंकैया ने हाथ से बनी खादी से मुझे बनाया और लाल हरे रंग में मुझे रंग दिया। गांधी जी की सलाह पर मुझे चरखे से सजाया भी गया, पर गांधी जी को मेरा ये रूप नहीं भाया, क्योंकि उनके मुताबिक मैं भारत के हर जाति और वर्ग को अपने आप में समाने में असमर्थ था। मेरी कहानी यूं ही आगे बढ़ती रहेगी, कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ऐसी कहानी बार बार सुनने को नहीं मिलती। सुनते रहिए रेडियो मधुबन 90.4 एफएम।

अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 की लड़ाई में आपने मंगल पांडे का नाम सुना, रानी लक्ष्मीबाई का नाम सुना, पर इन नामों के अलावा कुछ और भी नाम थे जिन्होंने इस लड़ाई में मुख्य भूमिका निभाई थी। आजादी की इस लड़ाई में वल्लभगढ़ के राजा नाहर सिंह भी एक ऐसे ही क्रांतिकारी थे। अंग्रेजों ने उन्हें धोखे से कूटनीति द्वारा दिल्ली बुलाकर गिरफ्तार कर लिया और उन्हें फांसी दे दी गई। अंग्रेज कप्तान हडसन उनकी वीरता का कायल था। कप्तान हडसन ने राजा के सामने अंग्रेजों की मित्रता का प्रस्ताव रखा। स्वाभिमानी राजा नाहर सिंह ने साफ इनकार करते हुए कहा, शत्रुओं के आगे सिर झुकाना मैंने नहीं सीखा, अंग्रेज मेरे शत्रु हैं, उनसे क्षमा कदापि नहीं मांग सकता, लाख नाहर सिंह कल पैदा हो जाएंगे। चांदनी चौक में फव्वारे के निकट खुले में राजा नाहर सिंह को फांसी देने की व्यवस्था की गई थी। यहाँ पर नीम का एक पेड़ था, उस पर ही फंदा तैयार किया गया था। राजा मुस्कुराते हुए अविचल भाव से पेड़ के पास आकर खड़े हो गए। 9 जनवरी 1858 का दिन था। 35 वर्षीय युवा राजा नाहर सिंह निर्भयता पूर्वक फांसी के फंदे को चूमने को तैयार थे। जनता के अश्रु थम नहीं रहे थे, किंतु राजा के मुखमंडल पर दिव्य शांति युक्त तेज था। कैप्टन हडसन ने सिर झुकाकर राजा नाहर सिंह की अंतिम इच्छा पूछी। उस दृढ़ महावीर ने कहा, मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता, मेरा संदेश इन भयभीत दर्शकों को दे दो कि जो चिंगारी मैं छोड़े जा रहा हूं उसे बुझने न देना, देश की इज्जत अब तुम्हारे हाथ है। हडसन ने यह संदेश आम लोगों को देने में अपनी असमर्थता व्यक्त कर दी। अंग्रेज सरकार एक बलिदानी की अंतिम इच्छा भी पूर्ण न करके उसके सामने असमर्थ हो गई।

हिंदुस्तान हमारा स्वाधीनता संघर्ष की महाकथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथा के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अनुसूचित जाति और जनजाति सहित सभी अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाएं।

0: अमा गजबी काका, जरा सिरके वाले प्याज तो पकड़ाइए और दो रोटी भी लेते आइए।
1: आया महमूद भाई, आ रहा हूँ आ रहा हूँ।
2: ये लो, ये रही तुम्हारी दो रोटियाँ और ये सिरके वाले प्याज।
0: अमा इतने सारे?
2: ठीक है, खा लो। और कुछ लाऊं?
0: नहीं नहीं। हाँ, एक काम करिए, अपने टेप रिकॉर्डर पर कोई भड़कता भड़कता गीत लगाओ ना। अमा ये क्या देशभक्ति के गीत लगा रखे, बदल दो इसे।
2: माफ करना भाई, मैं तो सिर्फ यही गाने चलाता हूँ, और गीत मेरे पास हैं ही नहीं।
3: नाया।
2: मुझे और मेरे तोते को सिर्फ आजादी और देश प्रेम के गीत और कहानियाँ ही अच्छी लगती हैं। ये बात यहाँ आने वाले सभी जानते हैं। जब से मैंने इसे पिंजरे से आजाद किया है, इसे आजादी और प्रेम का सच्चा अर्थ पता चल गया है। इसीलिए मिट्टू, मिट्टू मियाँ, मेरी बात सुनो। आज मैं तुम्हें देश के दीवाने शाही शहदा नूरे इस्लामुद्दीन शेरे मैसूर टीपू सुल्तान की कहानी सुनाऊंगा। सुनोगे?
3: सुनूंगा, सुनूंगा, सुनूंगा।
2: तो मिट्टू, कहानी शुरू होती है। शाही शहदा नूरे इस्लामुद्दीन शेरे मैसूर।

0: टीपू सुल्तान की सरजमी से, मैसूर की पुरानी राजधानी श्रीरंगपट्टनम के बाहर लाल बाग में। यहां फतेह अली, टीपू सुल्तान, उनके वालिद सुल्तान हैदर अली और उनकी दादी जान फातिमा बेगम की रूहें कब्रों की सूरत में आज भी मौजूद हैं। वो टीपू सुल्तान जो अंग्रेजों का कट्टर दुश्मन था, और अंग्रेजों ने भी टीपू सुल्तान को टाइगर कहा था। गाजी टीपू सुल्तान की शख्सियत ऐसी थी कि कोई भी कौम उनसे सीधे टक्कर लेने से घबराती थी। टीपू को बहादुरी, हिम्मत और हौसलों की दौलत विरासत में अपने अब्बा सुल्तान हैदर अली से ही नसीब हुई थी। सुल्तान हैदर अली एक मामूली सैनिक का बेटा और मामूली सा ही सिपाही था जो मैसूर की सेना में नौकरी करता था, लेकिन अपनी सूझबूझ और शूरवीरता के कारण वो मैसूर का सुल्तान बन गया। उसे केवल मैसूर का सुल्तान नहीं, एक बहुत बड़ी सल्तनत का शासक बनना था। उसने मैसूर के आसपास के इलाकों पर विजय हासिल कर उन्हें अपने राज्य में मिला लिया। सुल्तान हैदर अली को केवल एक ही बात का गम था कि उसके कोई औलाद नहीं थी।
1: हैदर, हैदर अली।
2: अरे अम्मी जान, आप हमारी आरामगाह में? अम्मी हमें बुलवा लिया होता।
3: अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान।
1: खुश रहो बेगम, अल्लाह तुम्हारी झोली में चांद सा बेटा दे।
2: अम्मी क्यों आप हमारी दुखती रग पर हाथ रख रही हैं? इसी गम में तो हमारी बेगम दिन रात खुली जा रही है।
1: फिक्र मत करो बेटी, तुम लोग फकीर टीपू मस्ताना औलिया के पास माथा टेक आओ। सुना है उनकी दुआएं कभी खाली नहीं जाती। हैरान मत हो मेरे बच्चे, शायद अल्लाह यही चाहता है।
2: जी अम्मी जान, मैसूर का सुल्तान हर फकीर के आगे सर झुकाने को राजी है।
1: अल्लाह तुम्हें मुबारक दिन जल्दी ही नसीब करेगा बेटा।
2: अम्मी जान। आजाद हिंद।
4: स्वाधीनता संग्राम स्वराज पर एकाग्र रेडियो कार्यक्रम आजाद हिंद, ज्ञात अज्ञात स्वाधीनता संग्राम सेनानियों, रणबांकुरों, जननायकों की क्रांति कथाएं और आजादी के यादगार

0: तो गजबिये काका, क्या सुल्तान हैदर अली ने अपने बेटे का नाम फकीर टीपू मस्ताना ओलिया के नाम पर फतेह अली टीपू रखा था?
1: हाँ महमूद, उन्हीं दिनों अंग्रेज भारत पर धीरे धीरे अपना कब्जा जमाने की कोशिश कर रहे थे। बेटा पाकर हैदर अली दिल से और भी मजबूत बन गया था। हैदर अली एक नहीं बल्कि कई बार अंग्रेजों के दांत खट्टे कर चुका था। हैदर अली की बहादुरी और बढ़ती हुई विरासत मराठे, निजाम और अंग्रेज सभी की आंखों का कांटा बन रही थी। हैदर ने टीपू को समयानुसार युद्ध और बुद्धि दोनों में गजब का माहिर कर दिया था और टीपू बहादुरी में अपने वालिद सुल्तान हैदर अली से 21 ही था।
0: अच्छा?
1: हाँ, सिर्फ 18 साल की उम्र में उसने अंग्रेजों के खिलाफ पहली बार जंग जीती थी। हैदर अली ने अंग्रेजों को हराने के लिए टीपू के साथ मिलकर एक मंसूबा बनाया।
2: सुल्तान हैदर के बेटे टीपू की सेना इधर ही आ रही है।
3: इधर मद्रास में हकआउट, उसे कैसे पता चला कि हम इधर पार्टी कर रहे हैं?
2: I don't know.
3: Oh, Sheikh, सारा मजा खराब कर दिए। Hey, listen all of you. जल्दी इस शिप पर चढ़ जाओ। सुल्तान हैदर अली का बेटा टीपू सेना के साथ इधर आ रहे हैं। जल्दी
4: कहा गए नामकूल फिरंगी? खाने पीने का सामान बिखरा हुआ है, लगता है अभी अभी भागे हैं कायर।
5: छोटे सुल्तान वो देखिए, उधर देखिए, फिरंगी डर कर समुद्री जहाज में भाग रहे हैं।
4: इसका मतलब किसी ने उन्हें हमारे आने की खबर कर दी थी। कोई बात नहीं, थोड़ी ही दूरी पर एक पहाड़ी है जिस पर सेंट थॉमस ने अपना कब्जा किया हुआ है, वहां चलते हैं, वही अंग्रेजों की छटनी और कटनी करेंगे। चलो
5: चलो चलो
4: चलो, चलो!

रैली की ताकत अंग्रेजों के लिए जितनी चिंता का विषय थी उतनी ही निजामों और मराठों के लिए भी। इन तीनों ने हाथ मिला लिया, लेकिन इसका पता चलते ही हैदर अली ने मराठों को लालच देकर उन्हें अपनी ओर कर लिया। निजामों को भी लालच दिया गया, लेकिन वो नहीं माने और उन्होंने अंग्रेजों के साथ मिलकर मैसूर पर हमला कर दिया। लेकिन युद्ध के बीच ही अंग्रेजों का विरोध कर उनसे अलग होकर वो हैदर अली से मिल गए। लेकिन ढुल मुल निजाम हैदर अली को भी युद्ध में अकेला छोड़कर भाग गए। मजबूरन हैदर अली को अपनी फौज को बचाने के लिए पीछे हटना पड़ा। ये देख अंग्रेजों ने हैदर अली के हारने की अफवाह उड़ा दी। ये सुनकर उनकी वालिदा फातिमा, जो युद्ध के मैदान से 200 मील दूर हैदर नगर में थी, परेशान हो गईं। और फातिमा बेगम अपने बेटे हैदर अली की हौसला अफजाई के लिए बरसाती भयानक रात में ही 1000 घुड़सवार सेना और बुर्का पहने 200 औरत घुड़सवारों के साथ चल पड़ी। 200 किलोमीटर का लंबा सफर तय करके वो युद्ध के मैदान में जा पहुंची।

0: सुल्तान का मर्तबा बुलंद हो, वालिदा साहिबा तशरीफ लाई है।
1: अम्मी जान, इतनी सुबह यहाँ जंग के मैदान में?
2: हैदर, हैदर मेरे बच्चे।
1: अम्मी जान आप यहाँ?
2: हमने सुना कि आप जंग से।
1: अम्मी जान,
2: नहीं नहीं, ये कभी हो ही नहीं सकता था। हमारा हैदर सीने पर तलवार खा सकता है, पीठ पर नहीं। हमें यकीन था कि आप हमारे दूत को शर्मिंदा नहीं करेंगे।
1: हमारे पीठ दिखाने की खबर अंग्रेजों की एक चाल थी अम्मी जान।
2: इसीलिए हम चले आए। हम चाहते हैं कि आप फिरंगियों को इस वतन से भगा दें।
1: अम्मी जान,
2: हैदर अली के नाम का जलवा हर तरफ दिखाई दे। हम दुआ करते हैं कि जब तक आपकी सांस में सांस है, आप कभी हार का मुंह ना देखें। आपकी हमेशा फतेह हो।
3: आमीन।
4: उस युद्ध के बाद हैदर अली ने मंगलौर में टीपू को अंग्रेजों का सामना करने के लिए भेजा। बहुत ही भयानक युद्ध था। फिरंगियों के पांव बुरी तरह उखड़ गए। इस फतह के बाद टीपू के नाम से भी अंग्रेज खौफ खाने लगे। इस बात का जश्न मनाया गया और मद्रास के किले पर एक चित्र टांगा गया।
5: अरे वो देखो, किले की दीवार पर तस्वीर। तट पर हमारे सुल्तान हैदर अली बैठे हैं।
6: कितनी खूबसूरत तस्वीर। अरे इस तस्वीर में अंग्रेज लोग सिर झुकाए कागज दे रहे हैं हमारे सुल्तान को।
7: जैसे कोई संधि पत्र हो, हमसे समझौता कर लो वरना हम मर जाएंगे।
5: अरे, अरे ये सूंड वाला आदमी कौन है जो अंग्रेजों के साथ खड़ा है?
8: सूंड वाला?
5: हाँ।
9: अरे ये तो अंग्रेज का सेनापति स्मिथ लग रहा है।
5: स्मिथ? अरे उसकी सूंड तो देखो।
6: सूंड से पैसे भी गिरा रहा है हमारे सुल्तान।
4: वॉरेन हेस्टिंग्स इस लड़ाई में अंग्रेजों की दुर्दशा से बुरी तरह घबरा गया। उसने सर आयरकूट की कमान में सेना और पैसा भेजा, पर वो भी तीन बार टीपू से हार कर वापस लौट आया। इसी दौरान सुल्तान हैदर अली की पीठ में फोड़ा हो गया, जिसके कारण उसे अर्काट के किले में लौटना पड़ा। हैदर अली की तबीयत बिगड़ने लगी।
1: टीपू,
10: अब बजा,
1: अब नहीं जानते कि हम और कितने दिन के मेहमान हैं।
10: ऐसा ना कहें बजा।
1: लिहाजा हम चाहते हैं कि
10: अल्लाह ताला आपकी उम्र दराज करे, आप हजारों साल जिए।
1: टीपू, दो लम्हे आजादी के साथ जीना भी जिंदगी भर का जीना है बेटा।
10: अब्बाजान,
1: हम जानते हैं इस वक्त अंग्रेज हमारे सर पर तलवार के मानित लटके हुए हैं।
10: आपको अपने टीपू की बहादुरी पर यकीन नहीं है?
1: इसीलिए तो बेटा, इसीलिए हम अपने शेर टीपू पर फख्र करते हैं। अंग्रेज अब सुल्तान हैदर अली से ज्यादा सुल्तान फतेह अली टीपू से डरते हैं।
10: सुल्तान फतेह अली टीपू?
1: हाँ।
10: अब आप ये क्या कह रहे हैं?
1: टीपू बेटा, आपको दुख होगा कि सिंधिया, भोसले, गायकवाड़ और निजाम अंग्रेजों के आगे सर झुका चुके हैं।
10: जी,
1: नाना फड़नवीस के सामने भी सुलहनामा पेश हो चुका है। टीपू
10: जी,
1: ऐसे नासुक मोड़ पर हम अकेले आपके सहारे इतनी बड़ी सल्तनत का भार छोड़कर जा रहे हैं, मगर क्या करें? शायद अल्लाह ताला ने हमारा सुख यहीं तक लिखा था।
10: अब्बाजान,
1: हम जानते हैं कि आप हमसे भी ज्यादा बहादुर और नेक दिल हैं। हमें यकीन है टीपू कि आप हमसे बेहतर सुल्तान और जाबाज साबित होंगे। कल ही आपकी ताजपोशी की रस्म अदा की जाएगी। आप जाएं और तैयारी कर लें।
10: जी अब्बा जान,

0: फिर से हो रहा।
1: जननायक स्वाधीनता संघर्ष की महागाथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथाओं के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाओं का संग्रह, ऑडियो एल्बम जननायक, स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।
2: सात सितंबर सन 1782 को वीर सुल्तान हैदर अली संसार से विदा हो गया। अब मैसूर सल्तनत की बागडोर अकेले टीपू सुल्तान को ही संभालनी थी। टीपू बहादुर था पर चालबाज नहीं, इसीलिए अंग्रेज टीपू सुल्तान को हराने के लिए चालें खेलने लगे। करीब 2 साल बाद ही उन्होंने टीपू सुल्तान को संधि पत्र भेजा कि वे लोग टीपू को हैदर अली का वारिस मानते हैं और मैसूर उनकी सल्तनत है, इसलिए वे मैसूर पर आक्रमण नहीं करेंगे, ताकि टीपू भी अंग्रेजों पर आक्रमण न करे। लेकिन इंग्लैंड से वॉरेन हेस्टिंग्स के स्थान पर कॉर्न वॉलिस को गवर्नर जनरल बनाकर भेजा गया, जो चालें खेलने में माहिर था।
3: वेल निजाम साहब, आपकी कौम हमसे टीपू सुल्तान के खिलाफ कदम उठाने में मदद चाहती है, ये अच्छी बात है। लेकिन आप अभी अभी गवर्नर जनरल बनकर आए हैं, हमें थोड़ा सा वक्त चाहिए। वक्त आने पर हम खुद आपकी मदद करेंगे।
4: ओके सर, जैसा आप कहें, हम चलते हैं। खुदा हाफिज।
3: खुदा हाफिज। हम भी टीपू सुल्तान को हराना चाहते हैं, लेकिन किसी ऐरे गैरे के साथ मिलकर नहीं। हमें टॉप पर रहना है। जेरी,
5: यस सर।
3: हमने सुना है कि फ्रांसीसी टीपू सुल्तान के अच्छे दोस्त बन गए हैं। अभी अभी अमेरिका इंग्लैंड के हाथ से फिसल कर आजाद हुए हैं। कहीं फ्रांसीसी हमें कमजोर समझ कर भारत पर अपना कब्जा ना जमा लें। अगर टीपू सुल्तान उनके साथ मिल गया तो जेरी बहुत ही मुश्किल हो जाएंगे उसे हराने। फ्रांसीसी लोगों और टीपू सुल्तान पर नजर रखो।
5: ओके सर, ओके।
3: मुझे मराठों और निजाम को एक दूसरे के खिलाफ रखना होगा। दोनों को लालच दूंगा कि टीपू सुल्तान से जीती गई जमीन दोनों में बराबर बराबर बांट दी जाएगी। हम तीनों एक साथ ही लड़ाई करेंगे। Long live our queen.
6: Tipu Sultan, Zindabad.
7: Tipu Sultan, Zindabad.
8: Tipu Sultan, Zindabad.
9: Tipu Sultan, Zindabad.
10: Tipu Sultan, Zindabad.
11: Tipu Sultan, Zindabad.
2: मद्रास और बंगाल में लड़ा गया ये युद्ध कॉर्नवालिस की एक बहुत बुरी हार साबित हुआ। लेकिन कॉर्नवालिस ने अपना शैतानी दिमाग लड़ाया और टीपू सुल्तान के बड़े बड़े अमीरों और सरदारों को मोटी मोटी रकमें अदा कर अपनी ओर कर लिया। कुछ खुराफाती लोगों को फौज में भर्ती कर दिया। दूसरी तरफ मराठों और निजामों को भी एक साथ युद्ध के लिए फिर से तैयार किया। टीपू सुल्तान गैरों के हत्थे तो नहीं चढ़ा, लेकिन अपनों की बेवफाई और नमक हरामी से बुरी तरह घिर गया। सुमरपीठ के बुर्ज की यह हार इतिहास में उसकी बहुत बड़ी हार थी। उसे अपने लोगों की जान बचाने और अपने राज्य को बचाने के लिए अंग्रेजों से सुलह करनी पड़ी। उसका आधा राज्य तो मराठों और निजामों के बीच बांट दिया गया था। बाकी के राज्य के बदले उसे एक बहुत ही दर्दनाक फैसला करना पड़ा।
0: सुल्तान, क्या हुआ? क्या फैसला किया अंग्रेजों ने? वो हमारा आधा राज्य छोड़ रहे हैं ना
12: बेगम? आपको हम पर यकीन है?
0: जी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या बात है? हम आपकी शरीके हयात हैं, क्या हमसे अपना दुख नहीं बांटिएगा?
12: हमने जो फैसला अपनी आवाम और अपनी कौम को बचाने के लिए किया है, उसमें आप हमारा साथ देंगे ना?
0: जी,
12: हम जानते हैं कि दिल पर पत्थर रखकर हमें ये शर्तें माननी पड़ी, लेकिन खुदा गवाह है बेगम, हमारा दिल टुकड़े टुकड़े हो रहा है।
0: ऐसा क्या फैसला हुआ है? हमें बताइए ना, दर्द को अकेले जज्ब ना कीजिए, बताइए।
12: फिरंगी हमारी सल्तनत के हर जाने की शक्ल में 3 करोड़ रुपए की मांग कर रहे हैं। 1 करोड़ तो हम दे चुके हैं, बाकी के 2 करोड़ के लिए हमने उनसे 2 साल का वक्त मांगा है।
0: तो इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है?
12: लेकिन फिरंगी, वक्त के अवज में अपने पास कुछ जमानत रखना चाहते हैं।
0: तो
12: हमें उनकी शर्त माननी पड़ी बेगम, और उस शर्त के मुताबिक हमें अपने दोनों बेटों को उनके पास जमानत के तौर पर रखना होगा।
0: नहीं, नहीं, नहीं, वो तो नन्हे नन्हे 8-10 साल के बच्चे हैं।
12: आप हम पर भरोसा रखिए बेगम, हम वक्त से पहले ही अपने बच्चों को उन दरिंदों के कब्जे से छुड़ा लेंगे। हमारे बच्चों को वो हिफाजत से रखेंगे, उन्हें सिर्फ हमारी सल्तनत का लालच है, और वो हमारी कमजोरी को अपनी ताकत बनाना चाहते हैं। बस
13: अम्मी जान, अब्बास सुल्तान ने जो फैसला किया है उसमें हम उनका पूरा साथ देंगे। आप हमारी फिक्र ना करें।
14: बिल्कुल,
13: हम बहादुर शेरे मैसूर टीपू सुल्तान की औलाद हैं।
12: मेरे बच्चे,
0: मेरे बच्चे,
12: हाँ।

0: समय की ऐसी लाचारी टीपू सुल्तान की जिंदगी में पहली बार आई थी, लेकिन तब भी उसने हार नहीं मानी। इन 2 सालों में उसने अपनी बिखरी ताकत को जमा किया, नए सैनिक, नए हथियार जमा किए, अपने बचे हुए उजड़े राज्य को फिर से लहलहा दिया और समय से पहले ही अपने बच्चों को छुड़ा लाया। अंग्रेज हैरान थे, वो तो इस ताक में थे कि टीपू अपना वादा तोड़े तो उसकी बाकी की जमीन वो हड़प जाएं। लेकिन एक बार फिर वो मात खा गए। अंग्रेजों ने मराठों और निजामों को भी आपस में उलझाकर उनकी लड़ाई करवा दी और इधर टीपू सुल्तान पर इल्जाम लगाया कि वो फ्रांसीसियों से मिलकर उनके खिलाफ साजिश कर रहा है। और फिर फरवरी सन 1799 में अंग्रेजों के सैनिक टीपू के राज्य की ओर फिर से कूच कर गए। उन्होंने टीपू के बार बार सुलह के पैगाम को नजरअंदाज कर लड़ाई शुरू कर दी। इस बार टीपू सुल्तान मेहताब बाग, जो राजधानी और किले का मुख्य द्वार था, वहां अपने ही विश्वासपात्र मीर सादिक के विश्वासघात का शिकार हो गया।
1: उधर देखो, मीर सादिक रास्ता दिखा रहा है। चलो किले की उस टूटी दीवार के बीच से निकल जाओ। जल्दी जल्दी क्विक, जल्दी किले के अंदर सैनिकों पर टूट पड़ो। चलो
2: क्या फिरंगी सेना किले के अंदर? ये कैसे आई?
3: सुल्तान, मैंने मीर सादिक को किले की टूटी दीवार के पास चुपकी से जाते देखा था। उसी ने ताकाबाजी की है सुल्तान।
2: हैं?
1: मीर सादिक, मारो, मारो, मारो, मारो, हमला!
4: Tiger Tipu is dead.
0: और इस तरह शेरे मैसूर, नूरे इस्लामुद्दीन, टीपू सुल्तान हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो गया।
5: गजबिये काका, वो ऊंचे दर्जे का सेनापति, वीर योद्धा, बहादुर, नेक दिल, जनता का प्रिय सुल्तान था। जब तक वो जिया, उसने अंग्रेजों की नाक में दम किए रखा, है ना?
0: हाँ महमूद, और जब तक टीपू सुल्तान जिया, स्वतंत्र जिया, टीपू सुल्तान का नाम हिंदुस्तान के इतिहास के पन्नों पर सुनहरे अक्षरों में हमेशा हमेशा के लिए अंकित हो गया।
6: जय हिंद।
7: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हिंदोस्ता हमारा, निर्देशन पूरन चंद सरीन, परिकल्पना श्रीराम तिवारी, समन्वय संजय यादव, निर्माण और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, मध्य प्रदेश शासन, संस्कृति विभाग। क्रांतिकारी कथाओं को सुनकर आपको भेजना है एक प्रेरक स्लोगन, पिन 462002। अब हमें आज्ञा दीजिए, इसी समय फिर मिलेंगे एक और क्रांतिवीर की जीवन गाथा लेकर, कार्यक्रम हिंदुस्तान हमारा में।
8: महात्मा गांधी, वीर सावरकर, भगत सिंह सा बनना तो बहुत दूर की बात है। सड़कों को साफ रखकर हर देशवासी तिरंगे और भारत देश का सम्मान करके उनके खून से रंगी हुई इस आजादी का सम्मान तो कर ही सकते हैं ना।

वतन करा के श्रोताओं को हमारा नमस्कार। जिन राजाओं ने अपने पीछे राज्य का कोई उत्तराधिकारी नहीं छोड़ा था, उनका राज्य ईस्ट इंडिया कंपनी में मिलाने की नीति लॉर्ड डलहौजी ने बनाई थी। डलहौजी की इस अपहरण नीति के अंतर्गत गोद लेकर उत्तराधिकारी बनाने का अधिकार भी नहीं दिया गया था। यही बात झांसी के लिए थी। झांसी राज्य भी अंग्रेजों ने हथियाना चाहा। विधवा रानी लक्ष्मीबाई ने विरोध के स्वर में कड़क कर कहा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। अपनी बुलंद आवाज के साथ वीरांगना लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से लोहा लेने को तैयार हो गईं।

स्वराज्य का नगाड़ा गंभीर घोष कर रहा था। 11 महीने से गूंजने वाले इस स्वातंत्र घोष से संपूर्ण बुंदेलखंड भर गया। नगाड़े के इस नाद का साथ कालपी से तात्या टोपे की तोपें दे रही थीं। विंध्य से यमुना तक ब्रिटिश सत्ता का कोई चिन्ह दिखाई नहीं दे रहा था। ब्राह्मण हो या मौलवी, सरदार हो या जागीरदार, सैनिक हो या पुलिस, राजा हो या साहूकार, सभी की एक ही मांग थी, एक ही चाह थी, स्वाधीनता प्राप्ति। इन सबको एक सूत्र में पिरोने का कार्य किया था लक्ष्मीबाई ने।

यूरोस 5,000 सैनिकों को लेकर गदर को दबाने झांसी की ओर चल पड़ा। दोनों ओर से बराबर मुठभेड़ शुरू हुई। रानी के कठोर प्रतिकार से अंग्रेज पर्याप्त शक्ति होने पर भी किले में प्रवेश नहीं कर सके। झांसी की सहायता के लिए तात्या टोपे सेना लेकर आ गए। इतनी बड़ी सेना को देखकर अंग्रेज घबरा गए। एक ओर से तात्या टोपे वार कर रहे थे तो एक ओर से मर्दानी झांसी की रानी।

अंग्रेजों से रानी की लड़ाई कई रोज चलती रही। मृत्यु का दिन मार्ग में एक नाला बनकर आया। घोड़े की एक छलांग में रानी अंग्रेजों के चंगुल से मुक्त हो सकती थी, किंतु घोड़ा नया था, वहीं अड़ गया। क्षण भर में गोरे सैनिक रानी के करीब आ गए। घिरी हुई अवस्था में भी एक तलवार ने अनेक तलवारों का सामना किया। अंग्रेजों में से एक ने पीछे से रानी के सिर पर वार किया और उस वार के साथ सिर का दाहिना हिस्सा और दाई आंख निकलकर बाहर लटकने लगी। उसी समय उन पर दूसरा वार छाती पर हुआ। रानी ने अपने ऊपर वार करने वाले अंग्रेज के टुकड़े कर डाले और अंतिम सांस लेने लगी।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग। गायक कलाकार थे राम किशोर, रजनी और राम सेवक। संगीतकार थी तापसी नागराज। आलेख और उद्घोषणा सुधा अनुपम, परिकल्पना श्रीराम तिवारी, समन्वय संजय यादव और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय की। आज के इस कार्यक्रम में आपने जो गीत सुने उन्हें हमने लिया था स्वराज संस्थान संचालनालय द्वारा जन गर्जे श्रृंखला के अंतर्गत जारी ऑडियो एल्बम से। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा हमें इस पते पर लिखें। कार्यक्रम वतन का राग, स्वराज संस्थान संचालनालय, रविंद्र भवन परिसर, भोपाल 462002। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं swaraj@gmail.com पर। ज्यादा जानकारी के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.swarajsansthan.org।

0: 15 मई 1907 को लुधियाना जिले में हुआ था। कॉलेज की शिक्षा के दौरान सुखदेव का झुकाव क्रांति की ओर हो गया। क्रांति के मार्ग पर उनके साथी थे भगत सिंह, यशपाल और भगवती चरण। 20 अक्टूबर 1928 को साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाला लाजपत राय जख्मी हो गए और कुछ दिन के बाद उनकी मृत्यु हो गई। लाला जी की मौत का बदला सैंडर्स का वध करके लिया गया। सैंडर्स के वध की पूरी व्यवस्था सुखदेव की देखरेख में की गई। बम निर्माण की कला में पारंगत होने के बाद सुखदेव ने लाहौर में बम बनाने का कारखाना खोला। पुलिस को जब इस बात का सुराग लगा तो उसने सुखदेव को बम फैक्ट्री में ही गिरफ्तार कर लिया। सैंडर्स वध के आरोप में सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह पर लाहौर षड्यंत्र केस के नाम से मुकदमा दर्ज किया गया। 7 अक्टूबर 1930 को जब मुकदमे का फैसला सुनाया गया तो सबसे ज्यादा आरोप सुखदेव पर ही लगे। जज ने उन्हें षड्यंत्र का मस्तिष्क और भगत सिंह को दाहिना हाथ कहा। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह और राजगुरु के साथ सुखदेव को फांसी दे दी गई। फांसी से पूर्व सुखदेव ने इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाकर फंदे को चूमा और स्वयं गले में डालकर झूल गए।
1: आखिर हो ही गया तेरा सिलेक्शन।
2: हाँ यार, तेरी वजह से।
1: इसीलिए कहते हैं बेटा, हम जैसे दोस्त रखोगे तो फायदे में रहोगे।
2: अबे एक सलाह क्या दे दी, ऊपर से दो बातें भी सुना रहा है। चल अब चाय पिला दे।
1: ये भी खूब रही, सिलेक्शन तेरा हुआ और चाय मैं पिलाऊं।
2: चल ठीक है भैया, मुझसे ही पी ले।
1: नमस्कार काका।
3: नमस्कार बेटा, नमस्कार। अरे किस बात पर बहस हो रही है?
2: अरे कुछ नहीं काका, एक जगह ऑडिशन था और मैं जाना ही नहीं चाहता था, लेकिन भाई ने मुझसे बोला कि तू चले जा। मैं चला गया और मेरा सिलेक्शन हो गया, और इसी बात पे चाय पिलाने के लिए बोल रहा था ये।
3: अरे दोस्त तो होते ही है एक दूसरे को सलाह देने के लिए और एक दूसरे पर कुर्बान होने के लिए, और जब कुर्बानी होती है तो दोस्ती मिसाल हो जाती है। जैसे बिस्मिल अशफाक, सुखदेव, भगत सिंह। और तुम अपनी सुनाओ बेटा।
2: हम क्या सुनाए काका, हम तो आपसे सुनने आते हैं।
1: अच्छा काका, मैंने कहीं सुना है कि भगत सिंह को क्रांति पथ पर आगे बढ़ाने में सुखदेव की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी।
3: हाँ भाई, बिल्कुल ठीक सुना है। वो सब एक दूसरे की ताकत थे, उनमें कोई छोटा बड़ा नहीं था, और सुखदेव की तो बात ही अलग थी।
2: तो फिर आज हम सुखदेव के बारे में ही सुनेंगे।
1: हाँ काका।
3: हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। सुखदेव ने तो जैसे बचपन में ही भारत माता की सेवा का प्रण ले लिया था।
4: सुखदेव अब तो बड़ा हो गया है बेटा, मैं चाहती हूँ तो शादी करके बहू ले आ बस।
5: पर माँ, मैंने तो कुछ और ही सोच रखा है।
4: तुझे जो सोचना है सोच ले, पर मेरा एक ही सपना है कि तू शादी कर ले। और अब मुझसे नहीं करा जाता ये सब काम, मुझे तो बहू का मुखड़ा देखना है। कह देती हूँ हाँ।
5: पर माँ, मेरा एक ही ख्वाब है।
4: वो क्या?
5: अपने देश को आजाद कराना, अपने राष्ट्र को अंग्रेजों के चंगुल से मुक्त कराना, ताकि आने वाली कौम, देश का एक एक बच्चा आजादी के खुले आसमान में सांस ले सके। और
4: अपनी माँ के लिए? अपनी माँ के लिए कुछ नहीं करेगा तू? मैं तेरी कोई नहीं हूँ, बोल।
5: अपनी माँ के लिए ही तो कर रहा हूँ सब कुछ।
4: अच्छा, और कौन सी माँ है रे तेरी?
5: भारत माता। माँ, जितना मैं तुमसे प्यार करता हूँ उतना ही अपनी भारत माता को भी चाहता हूँ। उसे अंग्रेजों की जंजीरों से आजाद कराना मेरा फर्ज नहीं है क्या? क्या मैं उसे ऐसे ही तड़पता छोड़ दूँ? क्या ऐसे सहने दूँ उसे जुल्म जो अंग्रेज किए जा रहे हैं?
4: तेरी बड़ी बड़ी बातों से मुझे बड़ा डर लगता है।
6: क्या बात हो रही थी माँ बेटे के बीच?
4: अब क्या बताऊं, मेरी तो एक नहीं सुनता। आपका उस पर बहुत प्रभाव है, शायद आपकी बात मान ले।
6: उसे समझाने से कुछ नहीं होगा।
4: क्यों नहीं होगा, अगर आप कहेंगे तो?
6: आप समझती क्यों नहीं, हमारी किसी भी तरह की कोशिश उसका रास्ता नहीं रोक सकती। बल्कि हमें इस बात पर गर्व करना चाहिए कि हमारा सुखदेव देश प्रेम के रास्ते पर चल पड़ा है। बस वो जितने दिन हमारे साथ रहे हमें उसी में संतोष करना चाहिए। फिलहाल तो वो और पढ़ाई करना चाहता है, उसकी बात मानकर हमें अब उसे कॉलेज भेजना चाहिए।
4: ठीक है, जैसा आप ठीक समझे।
7: कॉलेज में ही सुखदेव का झुकाव क्रांति की तरफ हो गया था।
3: सुखदेव ने बोर्डिंग छोड़ दी।

0: और क्रांति मार्ग पर उसके साथी थे भगत सिंह, यशपाल, भगवती चरण। वो अपने भाई के साथ किराए के मकान में रहने लगा। देखते ही देखते वो मकान क्रांतिकारियों का अड्डा बन गया। एक दिन जब सुखदेव कहीं से लाहौर लौट रहा था तो स्टेशन पर,
1: साहब आप इस डिब्बे में मत बैठिएगा।
2: वो क्यों भाई?
1: वहां सब अंग्रेज अफसर बैठे हैं।
2: फिर तो मैं यहीं बैठूंगा, देखता हूँ कौन रोकता है मुझे।
3: ऐ छोकरे, तुम इधर नहीं चढ़ सकता है।
2: क्यों? क्या डब्बा तुमने रिजर्व करा रखा है?
3: अभी तुमको बताता है गार्ड। नेक्स्ट स्टेशन पे इसको बाहर फेंक दो।
2: आ जाओ बेटा, देखते हैं किसमें कितना दम है।
4: ब्लैक इंडियन,
2: मारो। अरे मार के तो नहीं, मारो।
3: मारो। आप तुम कभी ऐसा नहीं करेगा।
1: अरे रे, भले आदमी इतनी मार खा गया। क्या नाम है रे तेरा?
2: मार खाना। अरे मार ढाला सालिमों ने।
5: अरे तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? बताओ तो, हुआ क्या है तुम्हें? ये हुआ कैसे?
2: अरे बताता हूँ यार, जरा सांस तो लेने दो। मथुरा एक काम कर, जाओ और अंदर से तेल की शीशी ले आ।
6: हाँ अभी लाया।
2: अब हुआ ये कि मैं लाहौर लौट रहा था और अंग्रेजों से मुठभेड़ हो गई।
6: अच्छा, ये लो तेल की शीशी।
2: ले भगत, जरा मालिश तो कर दे यार, मार मार कर भुर्ता बना दिया है।
5: हाँ हाँ, पर आगे तो बता।
2: हुआ ये कि मैं ट्रेन में बैठा, वहाँ एक सिपाही ने मुझसे कहा कि यहाँ बैठ।
5: पर भाई तुमने ऐसा किया क्यों?
2: अरे मैं तो बस ये देखना चाहता था कि मैं कितनी मार खा सकता हूँ। कमबख्तों ने मौका तक नहीं दिया। वरना?
5: वरना क्या?
2: वरना मैंने एक किताब में पढ़ा था कि अपने से तगड़े आदमी के मुंह पर अगर जोरदार घूंसा जड़ दिया जाए तो थोड़ी ही देर में बेहोश हो जाता है।
6: अच्छा, तो क्या आज आजमाइश का इरादा है?
2: हाँ और क्या।
5: क्या?
2: अरे हाँ भाई, चलो अभी चलते हैं बाजार। बाजार में कोई ना कोई तो जोर आजमाइश के लिए मिल ही जाएगा।
5: अरे रे रे रे, पहले अपनी हालत तो सुधार लो।
2: मेरी चिंता मत करो दोस्तों, मैं ये गया और वो आया। कोई मुझसे भी तगड़ा आदमी मिल जाए तो उस नुस्खे की आजमाइश हो जाए। वाह, वो रहा पहलवान। चलो इसी को आजमा लिया जाए।
7: पहलवान जी नमस्कार।
8: कौन है बे?
7: अरे मैं सुखदेव।
8: अरे कौन सुखदेव?
7: पहचाना नहीं? अभी पहचान जाओगे। ये ले।
8: अरे ये मेरी आंखों के आगे अंधेरा कैसे छा गया। मार डाला रे।
2: अरे वाह, ये नुस्खा तो सच में सरदार है। पर ये आदमी कितनी देर तक बेहोश रह सकता है? यहीं रुक कर देखा जाए।
8: अरे
2: अरे अरे वाह, अरे अरे इसे होश आ रहा है।
8: कहाँ गया वो छोकरा?
6: हैं, तू तो यही बैठा है। ठहर, तुझे मजा चखाता हूँ, मुझे मारता है।
8: उसा मारेगा।
9: अरे जाने तो पहलवान जी, जाने तो बेचारे को।
8: अरे कैसे जाने दो, मुझे घुसा मारा है इसने।
9: क्यों रे छोकरे, तूने ऐसा क्यों किया? मार के भाग जाता, यहाँ खड़ा क्यों था?
2: ये देखने के लिए कि एक घूसे में कोई कितनी देर तक बेहोश रह सकता है। और क्या,
9: तू तो पागल है पूरा। सच में काका, बड़े मजाकिया थे सुखदेव।
0: मजाकिया नहीं बेटा, जिंदा दिल बोलो, जिंदा दिल। पर हाँ, इन सब हंसी मजाक के बीच भी वो अपना कर्तव्य नहीं भूले। तभी तो उन्हें क्रांतिकारियों की एक बैठक में पंजाब प्रांत का संगठनकर्ता चुना गया और तब से पंजाब की क्रांति से जुड़े सारे दायित्वों को सुखदेव ने बखूबी निभाया।
2: साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि साइमन कमीशन का साया अब लाहौर पर पड़ चुका है, पर हम उन्हें यहां जमने नहीं देंगे।
4: ठीक कहते हो सुखदेव, हमें उन्हें सबक सिखाना ही होगा।
2: हाँ, चाहे हमारी जान चली जाए साथियों, पर हम इन गोरों के मंसूबों को कामयाब नहीं होने देंगे।
10: साइमन कमीशन, साइमन कमीशन,
11: वापस जाओ। तो लोग पीछे हटते हैं कि नहीं? गो बैक, हटो पीछे।
4: हम नहीं हटेंगे।
11: लाठी चार्ज।
2: लालाजी को बहुत चोट आई है, इन्हें यहाँ से ले जाना ही बेहतर होगा। आराम से, अरे संभल कर।
12: सुखदेव, भगत, मेरा तो यह आखिरी वक्त है। मैं देश को आजाद न करा सका, अब इस सब का जिम्मा तुम पर है। तुम लोगों को कुछ करना होगा। तुम लोग, तुम

0: हमें लाला जी की मौत का बदला लेना है।
1: सुखदेव, हम उनकी मौत को यूं व्यर्थ नहीं जाने देंगे।
2: ठीक कहते हो भगत, अब हमें मिलजुल कर कुछ ऐसा करना होगा जिनसे गोरों की नींव तक हिल जाए।
1: तो ठीक है, हम राजगुरु और पंडित चंद्रशेखर आजाद को भी लाहौर से बुलवा लेते हैं, फिर बाकी सब मिलकर तय कर लेंगे।
3: साथियों, लाला जी की मौत का हमें भी बहुत दुख है, लेकिन उनकी मौत हमारे लिए एक प्रेरणा होगी और हमारा आंदोलन रुकेगा नहीं। बताइए, मुझे यहां क्यों बुलाया है?
2: जैसा कि हम सब जानते हैं कि आजादी की राह पर चलते हुए आदरणीय लाला जी शहीद हो गए, लेकिन हम उनकी शहादत को यूं जाया नहीं होने देंगे और लाला जी पर चली लाठियों का जवाब हम गोलियों से देंगे।
3: गोलियों से?
2: हां, गोलियों से, क्योंकि ये गोरे प्यार से समझने वाले नहीं है।
3: लेकिन हम ऐसा करेंगे क्या?
2: हम उस सैंडर्स को मारेंगे। कहिए, क्या कहते हैं आप लोग?
3: हाँ, बात तो ठीक कहते हो, पर क्या कोई योजना है?
1: जी पंडित जी, सुखदेव ने ना सिर्फ सैंडर्स को मारने की योजना बनाई है, बल्कि उसके बाद के सारे मूवमेंट्स के बारे में भी सोच रखा है।
3: तो फिर ठीक है, सुखदेव विस्तार से योजना बताओ।
4: पंडित जी, शाम को सैंडर्स वहां से होना है, सामने गली पर एक मोड़ है, बच्चों लोग वहीं से निकलेंगे।
5: तो काका, क्या सैंडर्स मारा गया?
6: हाँ, योजना सफल हो चुकी थी और सफल हो चुके थे क्रांतिकारियों के मंसूबे।
7: लेकिन क्या सैंडर्स के मरने के बाद गोरों की नजर इन पर नहीं पड़ी?
6: नहीं बेटा, इसके पहले कि अंग्रेज उन तक पहुंचते, ये लोग शहर से बाहर जा चुके थे। सुखदेव ने दुर्गा भाभी के साथ मिलकर सबको सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया।
5: तो फिर काका, ये लोग अलग अलग होकर कमजोर पड़ गए होंगे?
6: नहीं, अलग अलग रहने पर भी ये लोग अपना फर्ज नहीं भूले। सब अपने अपने तरीके से क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम देते रहे। इसी दौरान भगत सिंह की मुलाकात कलकत्ता में यतीन्द्रनाथ से हुई, जो बम बनाने में माहिर थे। भगत सिंह के अनुरोध पर यतीन्द्रनाथ सभी साथियों को बम बनाने का प्रशिक्षण देने के लिए सहमत हो गए और इसीलिए फिर एक बार सभी आगरा में मिले, जहां इन सबको बम बनाने का प्रशिक्षण दिया गया।
1: यार सुखदेव, अब तो हम बम बनाने में माहिर हो चुके हैं। हे, क्या हुआ, कहां खो गया?
2: कुछ नहीं यार, मैं कुछ दिन से सोच रहा था कि बचपन से मेरे हाथ पर मेरा नाम गुदा है, कहीं मेरी गिरफ्तारी का सबब ना बन जाए।
1: तो क्या
2: यार, मैं से किसी तरह मिटा दूं तो?
1: तू भी पागलों जैसी बात करता है, ये कोई स्लेट पर लिखी इबारत है जो यूं ही मिट जाए? चल, मैं जरा बाजार से होकर आता हूं।
2: नाइट्रिक एसिड मिल जाता तो मेरा काम हो जाता। वैसे होना तो यहीं कहीं चाहिए। अरे वाह, ये रहा। वाह, आज इस एसिड से मैं अपने हाथ पर गुदे नाम को मिटा ही लूंगा।
1: क्या बात है सुखदेव, मैंने सुना तेरी तबीयत ठीक नहीं।
2: लो, अब मेरी तबीयत को क्या हुआ? अब थोड़ा थक गया था तो लेट गया है बस।
1: अच्छा, जरा हाथ तो दिखा।
2: अरे अब हाथ देखकर क्या कर लोगे? कहा ना कुछ नहीं है।
1: तो हाथ क्यों नहीं दिखाता? चल हाथ दिखा। अरे, तेरा शरीर तो बुरी तरह तप रहा है, ये क्या हुआ? तूने अपना हाथ जला लिया। तू भी ना सुखदेव, तू नहीं सुधरेगा। चल, तुझे अस्पताल लेकर चलता हूं।
2: नहीं भगत, मैंने कसम खाई है कि जब तक मैं अपनी भारत माँ को आजाद न करा दूं, मैं अपने जख्मों को मरहम नहीं लगाऊंगा।
1: पर सुखदेव,
2: तू चिंता मत कर भगत, मुझे कुछ नहीं होगा यार, मैं बिल्कुल ठीक हूं। और हाँ, ट्रेनिंग खत्म होते ही दुर्गा भाभी से मिलने लाहौर चला जाऊंगा। दुर्गा भाभी।
8: कौन है?
2: मैं सुखदेव।
8: हाँ हाँ, मैं यहाँ हूँ ऊपर रसोई में, तू भीतर आ जा, बैठ, मैं अभी आती हूँ। हाँ,

0: भाभी तो ऊपर रसोई में है, मैं तब तक क्यों ना इस बची हुई निशानी को भी मिटा दूं। पर कमबख्त ये नाम एसिड से जलाने पर भी ना मिटा तो कैसे जाएगा। हाँ ये रही मोमबत्ती, ये ठीक रहेगा, इसकी लौ से चमड़ी भी जल जाएगी और रहा सहा नाम भी मिट जाएगा।
1: अरे ये जलने की बू कहाँ से आ रही है? सुखदेव, हे भगवान, तू क्या कर रहा है? सुखदेव पागल हो गया है क्या? हटा हटा ये सब।
0: बस भाभी हो गया।
1: पर ये सब ये क्या है सुखदेव?
0: कुछ नहीं भाभी, तुम नहा के परेशान होती हो।
1: पर देख सुखदेव, तू आगे से कभी कुछ ऐसा मत करना।
0: अच्छा ठीक है बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात कहनी है।
1: वो क्या है बोल।
0: भाभी अब मैं बम बनाना अच्छी तरह से सीख गया हूँ, लिहाजा मैं चाहता हूँ कि अपने कुछ साथियों के साथ लाहौर में बम बनाने का कारखाना खोल लिया जाए।
1: लेकिन बम बनाना कोई हंसी खेल नहीं है, क्या सचमुच तुम ये कर पाओगे?
0: हाँ हाँ भाभी बिल्कुल, मैंने सारा इंतजाम कर लिया है। देखो बम तो हम बना ही लेंगे, और रही उस पर खोल ढलवाने की बात, तो मैंने उसके लिए एक मिस्त्री से भी बात कर रखी है।
1: अच्छा तो ठीक है, जैसी तेरी इच्छा, पर देख जो भी करना संभल कर करना।
0: अच्छा भाभी तो मैं चलता हूँ, जय हिंद।
1: जय हिंद।
0: अरे संभल कर भाई, कहीं एक भी बम हाथ से छूट गया ना तो हमारा ही काम तमाम हो जाएगा।
2: क्या हाल है भाई सुखदेव, और कैसा चल रहा है तुम्हारा कारखाना?
0: अपनी आंखों से देख लो दोस्त, हमने अंग्रेजों की तबाही का सारा सामान इकट्ठा कर लिया है।
2: हाँ वो तो है।
0: खैर तुम बताओ कैसे आना हुआ?
2: सुखदेव सुना है कि केंद्रीय समिति जन सुरक्षा बिल और औद्योगिक विवाद बिल का विरोध कर रही है।
0: अच्छा उनका अगला कदम क्या है?
2: उनका निर्णय है कि कोई दो साथी असेंबली में बम विस्फोट करे।
0: तो फिर दोनों क्रांतिकारियों को चुनाव भी कर लिया होगा?
2: वो मुझे पता नहीं, पर इतना जरूर है कि उनमें भगत सिंह नहीं हो।
0: क्या कह रहे हो?
2: हाँ फैसला तो यही लिया गया है।
0: नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, बम फेंकने वालों में भगत सिंह का नाम होना जरूरी है। मैं भगत से मिलकर जल्दी बात करता हूँ।
3: अरे सुखदेव मेरे भाई आ गले लग जा।
0: नहीं भगत मैं तुमसे नाराज हूँ।
3: नाराजगी और मुझसे? अच्छा अच्छा अच्छा, इतने दिन मिला नहीं इसलिए?
0: नहीं वो बात नहीं।
3: तो क्या बात, मैं भी तो जानू मेरा यार किस बात पर खफा है।
0: मैंने सुना है कि असेंबली में ये जो बम विस्फोट हो रहा है उसमें तू नहीं है?
3: हाँ भाई ये केंद्रीय समिति का फैसला है।
0: देख भगत मैं जानता हूँ कि तू पकड़ा गया तो तुझे फांसी हो जाएगी, पर मैं ये नहीं चाहता कि लोग तुझे कायर कहें।
3: कायर?
0: हाँ कायर।
3: पर ये केंद्रीय समिति का?
0: केंद्रीय समिति को क्या तुम रोक नहीं सकते?
3: पर मैं?
0: तुम में अहंकार आ गया भगत।
3: सुखदेव ये सब क्या बोले जा रहे हैं?
0: सच है तुम मौत से डरने लगे हो।
3: सुखदेव तुम हद से आगे बढ़ रहे हो।
0: अरे जब तुम जानते हो कि तुम्हारे सिवा कोई भी अदालत में हमारे उद्देश्य को अच्छी तरह से नहीं रख सकेगा फिर भी तुम पीछे हट रहे हो, क्यों?
3: देखो सुखदेव ये मेरा फैसला नहीं है।
0: अच्छा तो तुम चाहते हो कि आने वाली नस्लें तुम्हें कायर कहकर पुकारे?
3: सुखदेव तुम मुझे अपमानित कर रहे हो।
0: नहीं मेरे ख्याल से मैं अपने मित्र के प्रति अपना कर्तव्य पूरा कर रहा हूं।
3: ठीक है अगर तुम यही चाहते हो तो यही होगा, मैं अभी समिति की मीटिंग बुलाता हूं।
4: ठीक है भगत, जब तुम खुद यही चाहते हो कि बम फेंकने वालों में तुम भी हो तो ठीक है।
3: जी शुक्रिया। अच्छा मेरा दूसरा साथी कौन होगा?
4: दूसरे साथी का नाम है बटुकेश्वर दत्त।
5: वाहे गुरु, ये मैंने क्या किया, अपने सबसे प्यारे दोस्त को सूली पर चढ़ा दिया।

0: इतना दुखी क्यों है? हाँ, इतने खुश रहने वाले इंसान की आंखों में आंसू।
1: मुझे माफ करना रब, मुझे माफ करना भगत, मेरा यार भगत।
0: क्या हुआ रे भगत को, बता।
1: भगत असेंबली में बम फेंक रहा है और फिर उसे।
0: नहीं नहीं नहीं, हाँ ऐसा नहीं हो सकता।
1: अगर उससे आखिरी बार मिलना है तो दिल्ली चली जाओ।
2: अच्छा काका, तो जब असेंबली में बम फेंका गया तो सुखदेव लाहौर में ही रहा?
3: हाँ, सुखदेव वहीं रहकर अपना काम करता रहा, लेकिन इसी बीच वो पुलिस की नजरों में आ गया।
4: वो कैसे?
3: असल में जहाँ वो बम के खोल ढलवाता था वहाँ एक पुलिस वाले ने उसे देख लिया।
2: तो सुखदेव पकड़ा गया?
3: पुलिस ने पीछा करके उसे कारखाने में पकड़ लिया।
4: तो फिर पुलिस वालों ने तो जमकर पूछताछ की होगी।
3: हाँ, और उस पूछताछ में सुखदेव ने कुछ क्रांतिकारी ठिकानों के नाम भी बता दिए।
2: ठिकानों के नाम? पर वो तो सच्चा क्रांतिकारी था ना?
3: हाँ भाई, सुखदेव ने उन्हीं ठिकानों के नाम बताए जो पहले से क्रांतिकारी खाली कर चुके थे।
2: ओह,
3: और इस तरह वो पुलिस की मार से बच गया।
2: और असेंबली में जो बम विस्फोट हुआ वो?
3: उसके कारण भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त पर मुकदमा चला। चूंकि भगत सिंह सैंडर्स मर्डर केस में शामिल था, उसे आजीवन कारावास हुई। तहकीकात में सुखदेव को नाम भी आ चुका था। लाहौर षड्यंत्र केस के चलते अब फिर एक बार दोनों दोस्त साथ में थे, लेकिन खुले आसमां तले नहीं, लाहौर जेल की सलाखों के पीछे।
5: ओए सुखदेव, आजा यार आजा।
1: देखा, तकदीर ने एक बार फिर से हमें मिला दिया। यार भगत, माना कि हम जेल में हैं, पर ये खाना, ये जली हुई रोटियां और ये गंदा पानी।
5: हाँ, और बाहर की दुनिया से तो जैसे हम कट ही गए, एक अखबार भी मयस्सर नहीं है हमें। यार कुछ करना होगा।
1: लेकिन ये गोरे हमारी मांगे ऐसे नहीं मानेंगे।
5: तो फिर हम क्या करें?
1: हम अनशन करेंगे, और जब तक हमारी मांगे मानी नहीं जाती, हम ना कुछ खाएंगे और ना कुछ पिएंगे। सुनो भाई, जरा इधर सुनो।
5: हाँ, क्या है?
1: जेलर को बता दो कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी, हम अनशन पर हैं।
4: सर, क्रांतिकारियों ने अनशन शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि उन्हें जेल में बेहतर सुविधाएं दी जाए, वरना वो ना कुछ खाएंगे ना पिएंगे।
6: व्हाट रबिश, देखते हैं कितने दिन तक चलता है उनका ये नाटक। पहले तो सख्ती करो, और अगर ठप ही नहीं माने तो जबरदस्ती मुंह में पाइप डालो और दूध पिलाओ।
4: मतलब जबरदस्ती?
6: यस, जबरदस्ती। डॉक्टर गो अहेड, थोड़ दो इनका अंशन।
5: अरे आने दो उसको, हम किसी डॉक्टर वॉक्टर से नहीं डरते।
4: सर रुकिए, वो सुखदेव की कोठरी है, उधर संभल कर जाइएगा। मुझे नहीं लगता हम उसे जबरदस्ती दूध पिला पाएंगे।
6: देखता हूँ कैसे नहीं पीता है। ताला खोलो इसकी कोठरी का, अनलॉक द सेल।
4: जी सर।
1: पकड़ो,
7: पकड़ो
1: इसको,
7: पकड़ो
1: इसको, जबरदस्ती पिला, पकड़ो।
2: बाप रे, अनशन की कमजोरी में भी वही जज्बा।
3: हाँ, सुखदेव और क्रांतिकारियों का ये जज्बा ऐसे ही कई दिनों तक जारी रहा। कुछ दिनों बाद जब मांगे मानने की घोषणा हुई, तब जाके अनशन खत्म हुआ। हालांकि ऐसा ही अनशन एक बार और हुआ था, तब तो अंग्रेज सुखदेव को जबरदस्ती पानी तक नहीं पिला पाए। कमजोरी के चलते वो बेहोश हो गया, और बेहोशी की हालत में ही पानी पिलाकर उसकी जान बचाई गई, वरना सुखदेव जेल में ही शहीद हो गया होता।
4: फिर क्या हुआ काका?
3: होना क्या था बेटा, सुखदेव तो जैसे फांसी के फंदे का इंतजार ही कर रहा था। वो अब किसी से ज्यादा बात न करता, और तो और अदालत में जब पेशी होती तब भी बस सर झुका कर खड़ा रहता था।
7: ऑर्डर ऑर्डर, लाहौर षड्यंत्र केस के सारे सबूतों और गवाहों के बिना पर आज 7 अक्टूबर 1930 को यह फैसला सुनाया जाता है कि सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु तीनों कड़ी सजा के हकदार हैं। इस पूरे मामले में नजर डालने पर पता चलता है कि सुखदेव इस षड्यंत्र का मास्टरमाइंड है और भगत सिंह उसका दाहिना हाथ, लिहाजा इन लोगों को फांसी की सजा सुनाई जाती है। टू बी हैंग टिल द डेथ।
8: सुखदेव, ये जानते हुए भी कि 23 मार्च को तुम्हें फांसी दे दी जाएगी, तुम कुछ करते क्यों नहीं? जानते हो बाहर हमारे क्रांतिकारी भाई इस फांसी को रुकवाने के लिए कितनी कोशिशें कर रहे हैं, तुम्हें भी उनका साथ देना चाहिए।
1: मेरा साथ बस यहीं तक का था।
8: मैं क्यों विरोध करूं उस फैसले का जिससे मैं खुश हूं? मैं तो अपने आप को खुशनसीब मानता हूं कि मुझे भारत माता के चरणों में कुर्बान होने का मौका मिल रहा है। ये देखो, मैंने गांधी जी को जो खत लिखा है उसका मजमून भी कुछ इसी तरह है।
9: लाहौर षड्यंत्र केस के सजा याफ्ता तीन कैदी जो सौभाग्य से मशहूर हो गए हैं और जिन्होंने जनता की बहुत अधिक सहानुभूति प्राप्त की है, वे क्रांतिकारी दल का बड़ा हिस्सा नहीं हैं। उनका भविष्य ही उस दल के सामने एकमात्र प्रश्न नहीं है। सच पूछा जाए तो उनकी सजा घटाने की अपेक्षा उनके फांसी पर चढ़ जाने से ही अधिक लाभ होने की आशा है।
1: साथियों, ये तो खुशी का मौका है, फिर ये आंसू क्यों? हमारे लिए फंदा फांसी का नहीं, फूलों का है। अच्छा, चलते हैं, अलविदा।
10: भारत माता की जय।

0: और इस तरह देखते देखते फांसी के फंदे पर झूल गए वो।
1: सच में काका, मरकर भी देशभक्ति की महान मिसाल दे गए ये लोग।
0: हाँ, देशभक्ति की एक ऐसी मिसाल और रोशन करके गए एक ऐसी मशाल जिसे आज भी दमक रहा है हिंदुस्तान हमारा।
2: निर्देशन मॉरिस लाजरस, परिकल्पना श्रीराम तिवारी, समन्वय संजय यादव, निर्माण और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग।
3: भगत सिंह की तरह हंसते हुए फांसी पर झूलकर भारत मां को सम्मान नहीं दे सकते, पर अपने देश के बारे में हमेशा अच्छा सोचकर, अच्छा बोलकर खुद के और औरों के सामने उसका मान तो बढ़ा ही सकते हैं ना।

वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। इस सुव्यवस्थित अनुशासनपूर्ण अराजकता को जाना ही होगा, और यदि इसके परिणाम स्वरूप पूर्ण अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न होती है तो मैं ये खतरा उठाने को भी तैयार हूं। ये गर्जना की थी महात्मा गांधी ने 16 मई सन 1942 को। प्रेस को दिए साक्षात्कार में उनकी संघर्षशील मनःस्थिति स्पष्ट हो चली थी। इसके पहले सन 1922 का असहयोग आंदोलन गांधी जी ने हिंसा फैलने के कारण वापस लिया था। इस 20 वर्ष के अंतराल में ब्रिटिश सत्ता के साथ समझौते के सभी प्रयोग हो चुके थे, किंतु आजादी का सपना अभी भी दूर की कौड़ी थी। ये समय बहुत उथल पुथल का था। सन 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया था। ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों से पूछे बिना ही भारत को युद्ध में झोंक दिया। भारत के वीर सैनिक जेबों में चना चबेना लेकर उत्तरी अफ्रीका और इटली के मैदानों में युद्ध कर रहे थे। युद्ध लड़ने के लिए पैसा भी अधिक टैक्स लगाकर भारत की जनता से ही वसूला जा रहा था। इसके विरोध में कांग्रेस ने प्रांतीय मंत्रिमंडलों से इस्तीफा दे दिया था। उन दिनों का प्रचलित नारा था, न एक पाई न एक भाई, यानी न तो युद्ध के लिए पैसा देंगे और न ही कोई लड़ने जाएगा। गांधी जी ने समय के नब्ज को पकड़ते हुए व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत की, जो अक्टूबर सन 1940 से जनवरी सन 1942 तक चला। पहले सत्याग्रही थे विनोबा भावे और दूसरे पंडित जवाहरलाल नेहरू। धीरे धीरे पूरे देश की जेलें सत्याग्रहियों से भरने लगीं। लगभग 15 माह चले इस आंदोलन में तमाम नेता जेलों में डाल दिए गए। 30,000 से अधिक लोग जेल भेजे गए। विश्व युद्ध के मोर्चे पर उलझी ब्रिटेन की सरकार परेशान थी। उन्हें लड़ाई के लिए पैसा भी चाहिए था और सैनिक भी। भारतीयों का समर्थन पाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 23 मार्च सन 1942 को सर स्टीफर्ड क्रिप्स को भारत भेजा। क्रिप्स मिशन कई वादे साथ लाया था: भारत में औपनिवेशक स्वराज की स्थापना, संविधान सभा बनाने, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा आदि की बातें इसमें शामिल थीं। लेकिन सभी प्रमुख राजनीतिक दलों ने इसे मानने से इनकार कर दिया। वे युद्ध में भारतीयों की प्रभावशाली भूमिका न होने तथा रियासतों को संविधान सभा में प्रतिनिधि भेजने या उन्हें अलग हो जाने का विकल्प देने से नाराज थे। युद्ध की इस नाजुक स्थिति में अंग्रेजों पर वार किया जाए या नहीं, इसे लेकर नेताओं में मतभेद थे, किंतु गांधी जी संकल्पित थे स्वराज के लिए।

14 जुलाई सन 1942 को वर्धा में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव पास किया गया। इस प्रस्ताव में ये बिंदु भी स्वीकार किया गया कि यदि मांगें स्वीकार नहीं की गईं, तो बड़ा जन आंदोलन किया जाएगा। बहुत से राजनीतिक दल इस आंदोलन के विरोध में थे। उनका मानना था कि इससे अराजकता फैल सकती है। गांधी जी इसे अहिंसक विरोध का स्वरूप देने के पक्ष में थे। 8 अगस्त सन 1942 को बंबई के ग्वालिया टैंक मैदान में गांधी जी ने अपना ऐतिहासिक भाषण दिया और करो या मरो के लिए लोगों का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि हम सत्ता के लिए संघर्ष नहीं कर रहे हैं, हमारी ये लड़ाई भारत की आज़ादी के लिए अहिंसक संघर्ष है, क्योंकि हिंसक संघर्ष में सैन्य क्रांति से तख्तापलट होता है और एक तानाशाह शासन पर स्थापित हो जाता है, जबकि स्वतंत्रता का अहिंसक सिपाही खुद के लिए कुछ नहीं करेगा, वो केवल देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ता है। मुझे पता है हमारी अहिंसा कितनी अपूर्ण है और हम अभी भी आदर्शों से कितना दूर हैं, लेकिन अहिंसा में कोई अंतिम असफलता या हार नहीं है। मुझे विश्वास है, मेरा मानना है कि दुनिया के इतिहास में हमारी आज़ादी के संघर्ष जैसा कोई लोकतांत्रिक संघर्ष नहीं हुआ है। अन्य क्रांतियां हथियार के बल पर लड़ी गई हैं। मैंने एक ऐसे लोकतंत्र की कल्पना की है जिसमें सभी के लिए समान स्वतंत्रता है, और आपको मैं इसमें भाग लेने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं। सब लोग भेदभाव भुलाकर इसमें शामिल हों। गांधी जी ने आगे कहा कि लोगों में ब्रिटिश लोगों के खिलाफ नफरत है। जनता कहती है कि वे उनके व्यवहार से त्रस्त हैं। वे अंग्रेज और अंग्रेजों के साम्राज्यवाद में कोई अंतर नहीं समझते। उन्हें समझना चाहिए कि हमारी लड़ाई ब्रिटिश साम्राज्यवाद से है, वहां की जनता से नहीं। फिर गांधी जी ने लोगों से कहा, यहां एक मंत्र है, एक छोटा सा, जो मैं तुम्हें देता हूं। इसे अपने दिल में रखें ताकि हर सांस में ये अभिव्यक्त हो। ये मंत्र है, करो या मरो। हम या तो भारत को आजाद करेंगे या कोशिश करके मर जाएंगे। हम अपनी दासता के अपराध को देखने के लिए जीवित नहीं रहेंगे।

8 अगस्त सन 1942 को आंदोलन की घोषणा के बाद ही रात को तमाम नेताओं की गिरफ्तारी शुरू हो गई। गांधी जी को रात में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। बहुत से लोग गिरफ्तारी से बचने बंबई से बाहर निकल गए। 9 अगस्त की सुबह जैसे ही लोगों ने नेताओं की गिरफ्तारी का समाचार सुना, सारे देश में हड़ताल हो गई, बाजार बंद हो गए, लोग तिरंगा लेकर सड़कों पर निकल आए। एक खुले विद्रोह का वातावरण बन गया। बंबई के गवालिया टैंक मैदान पर विरोध के बावजूद हजारों लोग एकत्र हो गए। मैदान पर पुलिस ने कब्जा कर रखा था। इतने में मोटर से भूला भाई देसाई के सुपुत्र उतरे। उन्होंने झंडा हाथ में ले रखा था। यूरोपियन सार्जेंट ने कहा कि मैदान पर पुलिस और मिलिट्री का कब्जा है, आप सब यहां से हट जाएं, वरना अश्रु गैस का प्रयोग किया जाएगा। समारोह की संचालिका श्रीमती अरुणा आसफ अली थीं। उन्होंने लड़कियों और बच्चों को पीछे हटाकर भाषण देना शुरू किया। तभी सिपाही अश्रु गैस लेकर वहां आए और सभा को विसर्जित करने की सलाह दी। नेताओं ने जनता से लेट जाने की अपील की। तभी अश्रु गैस का धुआं चारों ओर फैलने लगा। इस आपाधापी में अरुणा जी वहां तिरंगा फहरा चुकी थीं। अब पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू कर दिया। दमन का चक्र तेज चलता देख जनता भी विद्रोह पर उतर आई। लोगों ने बस और ट्रॉम जलाना शुरू कर दिया। खबर मिलते ही बंबई के सारे कल कारखाने बंद हो गए, कपड़ा मिलें भी बंद हो गईं। सभी लोग हड़ताल पर उतर आए। दोपहर होते होते आंदोलन उग्र हो चुका था। अब पुलिस गोलियों पर उतर आई। प्रार्थना समाज के पास एक नवयुवक ने पहला बलिदान दिया। निहत्थी जनता और पुलिस के बीच संघर्ष जारी था। 10 अगस्त को सारा देश इस आंदोलन में शामिल हो गया। गांव-गांव, नगर-नगर, जुलूस और नारों से आकाश गूंज उठा। शांति के प्रचारक नेता जेलों में बंद थे। अंग्रेज सरकार जनता की सोई हुई हिंसात्मक प्रवृत्तियों को उकसाती थी। फलतः सन 1942 का आंदोलन देशव्यापी खुली और सर्वतोमुखी राज्य क्रांति में परिणत हो गया। सारे देश में तोड़फोड़ और हिंसा की सैकड़ों घटनाएं घटीं। कई लोग हाथ में झंडा लिए देश के लिए शहीद हो गए। पर यह बलिदान व्यर्थ नहीं गया। सरकार जान चुकी थी कि अब और अधिक समय तक भारत पर शासन नहीं किया जा सकेगा। अगस्त क्रांति आंदोलन वस्तुतः भारत की आजादी की पूर्व पीठिका ही थी। इस आंदोलन के ज्ञात अज्ञात शहीदों को हमारा शत शत नमन।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, संस्कृति विभाग, मध्य प्रदेश शासन, भोपाल।

0: माना देश के जवानों की तरह हम सरहद पर जाकर लड़ नहीं सकते, पर आपस में यूं पैसे, धर्म और भाषाओं के नाम पर लड़ने की बजाय एक होकर देश का मान तो बढ़ा ही सकते हैं ना, क्यों है ना?
1: इतना तो हम कर सकते हैं देश तेरे।
2: स्वराज संस्थान संचालनालय, संस्कृति विभाग, मध्य प्रदेश शासन।
3: याद करो।

श्रोताओं, आज हम उन प्रख्यात अमर क्रांतिकारी के बारे में बात करने जा रहे हैं जिनका नाम पूरा देश गर्व के साथ लेता है। वो महान क्रांतिकारी थे शहीद सरदार भगत सिंह। 20वीं शताब्दी में भारत की आजादी के लिए दो विचार

आज हम बात कर रहे हैं प्रख्यात क्रांतिकारी अमर शहीद सरदार भगत सिंह की, जिन्होंने जिस निर्भीकता से अपना कार्य आरंभ किया वो अपने आप में एक मिसाल है। सरदार भगत सिंह का पूरा परिवार देश सेवा के काम में लगा था। जब भगत सिंह का जन्म हुआ तो उनके पिता सरदार किशन सिंह देश प्रेम के कारण सरकारी जेल में थे। चाचा सरदार अजीत सिंह को पहले से ही देश निकाला दे दिया गया था। भगत सिंह का जन्म सितंबर 1907 में लायलपुर जिले के बंगा ग्राम, जो अब पाकिस्तान में है, यहीं हुआ था। सरदार भगत सिंह के जन्म पर उनके पिता सरदार किशन सिंह को अपने बेटे का मुंह देखने के लिए जेल से कुछ दिन के लिए छुट्टी मिल गई थी। ऐसे हालात में भगत सिंह का जन्म हुआ। भगत सिंह की प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही हुई और बाद में उन्हें लाहौर पढ़ने के लिए भेज दिया गया। सन 1921 में जब असहयोग आंदोलन चला तो उन्हें नेशनल कॉलेज में भर्ती करवाया गया, जहां पंजाब केसरी, लाला लाजपत राय और भाई परमानंद आदि देशभक्त नेता पढ़ाया करते थे। क्योंकि गांधी जी के आह्वान पर अनेक छात्रों ने सरकारी कॉलेज छोड़ दिए थे। इनके साथ पढ़ने वालों में क्रांतिकारी सुखदेव भी थे, जिन्होंने सदा देश की आजादी के लिए क्रांति के कार्यों में भगत सिंह का साथ दिया था। ये कार्यक्रम यूं ही जारी रहेगा इस देशभक्ति गीत के बाद।

90.8 MHz पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद से। ये कार्यक्रम हमने केंद्रित किया है अमर क्रांतिकारी शहीद सरदार भगत सिंह पर। श्रोतो, भगत सिंह के एक बड़े भाई जगत सिंह थे। उनकी 11 वर्ष की आयु में मृत्यु हो जाने से माता पिता दुखी रहने लगे और भगत सिंह उदास रहने लगे। जब भगत सिंह कॉलेज में पढ़ रहे थे तो माता पिता ने उनका विवाह करने का निश्चय किया। तब भगत सिंह घर से भागकर दिल्ली आ गए और घर वालों के लिए एक चिट्ठी छोड़ आए कि मैं विवाह नहीं करना चाहता, इसीलिए जा रहा हूँ, चिंता ना करें। और दिल्ली आकर भगत सिंह दिल्ली के ही दैनिक अर्जुन में संवाददाता के रूप में काम करने लगे। कुछ दिन बाद वे कानपुर चले गए और गणेश शंकर विद्यार्थी के दैनिक प्रताप में काम करने लगे और यहीं उनकी भेंट क्रांतिकारी बटुकेश्वर दत्त से हुई। उन्हीं दिनों गंगा यमुना की भयंकर बाढ़ से कानपुर में जबरदस्त हानि हुई थी। उस समय इन दोनों युवकों ने दिन रात एक कर बाढ़ पीड़ितों की सेवा की और तब यही महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद से भी उनकी मुलाकात हुई। ये कार्यक्रम यूं ही जारी रहेगा इस देशभक्ति गीत के बाद।

हम बात कर रहे हैं अमर शहीद सरदार भगत सिंह की। देश की राजनीतिक स्थिति और ब्रिटिश सरकार के दमन से सरदार भगत सिंह का ये विश्वास दृढ़ होता जा रहा था कि देश को स्वतंत्र कराने के लिए शक्ति और क्रांति का सहारा लेना चाहिए, और यही कारण रहा कि उन्होंने 1924 में नौजवान भारत सभा की स्थापना की। भगत सिंह, सुखदेव और भगवती चरण वर्मा ने अपने रक्त से सभा के प्रतिज्ञा पत्रों पर हस्ताक्षर भी किए। अपने नौजवान सभा के सदस्यों की परीक्षा लेने के लिए जलती हुई मोमबत्तियों पर 20 मिनट तक हाथ रखा, और जब मांस जलकर नीचे गिरने लगा तो साथियों ने जबरदस्ती सरदार भगत सिंह का हाथ खींचा था। ऐसे बहादुर और अपनी बात के पक्के थे अमर शहीद सरदार भगत सिंह।

आज हम बात कर रहे हैं अमर शहीद सरदार भगत सिंह की। श्रोताओ, जब साइमन कमीशन भारत आया तो सभी जगह उसका विरोध किया गया, काले झंडे दिखाए गए। लाहौर में भी निहत्थी भीड़ द्वारा प्रदर्शन करने पर पुलिस ने बर्बरतापूर्ण दमन किया। लाला लाजपत राय लाठीचार्ज में घायल हुए और कुछ दिन अस्वस्थ रहकर वे हम सबको छोड़कर परलोक सिधार गए। तब भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने हत्यारे अंग्रेज अफसर सैंडर्स को गोली का निशाना बनाया और लापता हो गए।

आज हम बात कर रहे हैं अमर शहीद सरदार भगत सिंह की। क्रांतिकारी सरदार भगत सिंह और क्रांतिकारी बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली में असेंबली की दर्शक दीर्घा से बम फेंका। जब अंग्रेजों ने मजदूर आंदोलन को दबाने के लिए दमनकारी ट्रेड डिस्प्यूट बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल लादा तो देशवासियों ने उसे काला कानून कहा। भारतीयों द्वारा विरोध के बाद भी वायसराय विशेष अधिकार से इन्हें ऑर्डिनेंस के रूप में कानून का रूप देने वाले थे। तब चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में सरदार भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने जबरदस्ती लादे गए कानूनों को दिल्ली असेंबली में रखने वाले दिन यानी 8 अप्रैल 1929 को बम विस्फोट किया और साथ में बम फेंकने के कारण लिखे पर्चे भी फेंके। बम धमाके से हुए धुएं में इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद का नाश हो, दुनिया के मजदूर एक हो के नारे से असेंबली भवन गूंज उठा और धमाका करने के बाद भागने की जगह क्रांतिकारी सरदार भगत सिंह और क्रांतिकारी बटुकेश्वर दत्त ने गिरफ्तारी दी। हाईकोर्ट में बहस के समय भगत सिंह ने स्पष्ट किया कि हमारा उद्देश्य खून खराबा नहीं है, हम तो मनुष्य द्वारा मनुष्य के शोषण की प्रथा का विरोध करते हैं। हमने तो जनता का निर्णय न मानने पर साम्राज्यशाही ताकत को जनता का उत्तर दिया है, क्योंकि बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है, इसलिए असेंबली में बम फेंका गया है। जब सरदार भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली में असेंबली की दर्शक दीर्घा से बम फेंका था, उस समय पब्लिक सेफ्टी बिल पारित किया जा रहा था। इस बिल के कारण मजदूरों का हड़ताल करने का अधिकार समाप्त किया जा रहा था। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त दोनों ही इस असेंबली बम कांड में पकड़े गए और तब उन पर लाहौर बम कांड, सैंडर्स हत्या और असेंबली बम कांड में मुकदमा चलाया गया।

श्रोताओ, गीत सुनने से पहले हमने आपको बताया था कि असेंबली बम कांड में क्रांतिकारी सरदार भगत सिंह और क्रांतिकारी बटुकेश्वर दत्त गिरफ्तार हो गए थे। असेंबली बम कांड की सुनवाई के समय अदालत में क्रांतिकारी आंदोलन के उद्देश्य और कार्य स्पष्ट हो चुके थे। जनता क्रांतिकारियों के विचार जान चुकी थी, जिससे युवाओं में चेतना जागी और अंग्रेजों का आतंक टूटने लगा। ऐसे समय में चंद्रशेखर आजाद भी चाहते थे कि क्रांति की सोच के साथ क्रांति के हथियार भी जनता को मिल जाएं, ताकि देशभक्त आगे आकर स्वाधीनता आंदोलन में शामिल हो सकें। लेकिन हर एक के पास हथियार पहुंचाना संभव नहीं था, इसलिए सामान बनाने की विधि को पहुंचाने का विचार मन में आया। और जब लाहौर षड्यंत्र मुकदमे के समय मुखबिर फणीन्द्र घोष बयान देने आया, तो क्रांतिकारी शिव वर्मा ने अदालत में बम बनाने को लेकर बहस छेड़ दी। बातों बातों में फणीन्द्र घोष तैश में आ गया और साथियों के नाम के साथ भरी अदालत में बम बनाने की विधि बता दी। इस तरह बम बनाने की विधि समाचार पत्र के माध्यम से आम जनता तक पहुंच गई और इस मुकदमे में उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। जेल में भगत सिंह ने 115 दिन की भूख हड़ताल की, परंतु उनके साथी क्रांतिकारी यतीन्द्र नाथ दास 65 दिन की भूख हड़ताल के बाद चल बसे।

श्रोताओ, अमर क्रांतिकारी सरदार भगत सिंह और उनके साथियों द्वारा देश को आजाद किए जाने के लिए चलाए गए अभियान से अंग्रेज बुरी तरह आहत हो चले थे और अंत में अंग्रेज सरकार ने 1931 में 23 मार्च को अमर क्रांतिकारी शहीद सुखदेव, अमर क्रांतिकारी शहीद राजगुरु के साथ अमर क्रांतिकारी सरदार भगत सिंह को भी फांसी पर चढ़ा दिया।

0: ये कार्यक्रम हमने केंद्रित किया था अमर शहीद क्रांतिकारी सरदार भगत सिंह पर। अब ये कार्यक्रम समाप्त होता है।
1: स्वराज संस्थान संचालनालय, संस्कृति विभाग, मध्य प्रदेश शासन, भोपाल।

हर मौसम में कैसे भी हालातों में हमारे देश की पुलिस हमारी रक्षा करती है उन जैसा बलिदान हम कभी दे नहीं सकते पर हमारे संविधान लॉ एंड ऑर्डर और हमारी पुलिस का सम्मान करके उनकी मदद तो कर ही सकते हैं ना

0: आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति विश्लेषण।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के कार्यक्रम विश्लेषण में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका अरोड़ा। श्रोताओं, किसी भी देश के विकास की मजबूत नींव उसके इंफ्रास्ट्रक्चर से

0: रोजमर्रा की जरूरतों से जोड़ा जा रहा है। श्रोताओं, सबसे पहले बात करते हैं रेलवे की। भारतीय रेलवे तेज, सुरक्षित और आधुनिक यात्रा व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। रेलवे का बजट वित्त वर्ष 2014-15 के 32,000 करोड़ रुपए से बढ़कर वित्त वर्ष 2026-27 में 2,78,000 करोड़ रुपए हो गया है। रेलवे विद्युतीकरण में भी बड़ा बदलाव आया है। 2014 से पहले लगभग 20% रेल नेटवर्क का विद्युतीकरण हुआ था, जो जुलाई 2026 तक बढ़कर 99.6% हो गया। देश में 162 वंदे भारत, 2 वंदे भारत स्लीपर और 72 अमृत भारत सेवाएं चल रही हैं। वहीं जुलाई 2026 तक 2633 किलोमीटर पर कवच वर्जन 4.0 लागू किया जा चुका है। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर 508 किलोमीटर के रूट पर विकसित किया जा रहा है। इसकी डिजाइन स्पीड 350 किलोमीटर प्रति घंटा है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत चुने गए 1340 स्टेशनों में से 18 जुलाई 2026 तक 261 स्टेशनों का पुनः विकास पूरा हो चुका है। जुलाई 2026 में देश में बनी पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेन भी लॉन्च की गई। श्रोताओं, अब रुख करते हैं उन सड़कों की ओर जो देश के विभिन्न हिस्सों को आपस में जोड़ते हुए विकास और संपर्क को नई गति दे रही हैं। पुल और सुरंगें भी इस बदलाव की अहम कड़ी हैं। आइए इस रिपोर्ट के जरिए समझते हैं।
1: भारत का कुल सड़क नेटवर्क 63.73 लाख किलोमीटर लंबा है और ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है। राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई में लगभग 61% की बढ़ोतरी हुई है। वित्त वर्ष 2014 में ये लंबाई 91,287 किलोमीटर थी, जो मार्च 2026 तक बढ़कर 1,46,572 किलोमीटर हो गई। 4 लेन और उससे ज्यादा लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई भी 2014 के 18,371 किलोमीटर से बढ़कर 45,516 किलोमीटर हो गई। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 2000 से 2014 के दौरान 3.86 लाख किलोमीटर सड़कें बनी, जबकि 2014 से 2026 के दौरान ये लंबाई बढ़कर 4.11 लाख किलोमीटर हो गई। सितंबर 2024 से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का चौथा चरण शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य 2029 तक 25,000 ऐसी बस्तियों को सड़क संपर्क देना है जहां अभी सड़क नहीं पहुंची है। भारतमाला योजना के तहत 31 मार्च 2026 तक 22,590 किलोमीटर सड़कों का निर्माण पूरा हो चुका है। 2025 में बना चिनाब ब्रिज दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज है। ये चिनाब नदी से 359 मीटर ऊपर बना है और इसकी लंबाई 1,315 मीटर है। इसी तरह अंजी खड ब्रिज जम्मू कश्मीर में भारत का पहला केबल स्टेड रेलवे ब्रिज है। पंबन ब्रिज भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज है। ये रामेश्वरम को मुख्य भूमि से जोड़ता है। इसकी लंबाई 2.07 किलोमीटर है और इसमें 72.5 मीटर का वर्टिकल लिफ्ट स्पैन है। जम्मू कश्मीर में 12 किलोमीटर लंबी सोनमर्ग सुरंग हर मौसम में आवाजाही की सुविधा देती है। 2024 में 2.32 किलोमीटर लंबे सुदर्शन सेतु ने गुजरात में ओखा को बेट द्वारका से जोड़ा। 2020 में बनी 9.09 किलोमीटर लंबी अटल टनल 10,000 फुट से ज्यादा ऊंचाई पर बनी दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है। ये मनाली और लाहौल स्पीति को जोड़ती है। वहीं 2017 में बनी 9 किलोमीटर लंबी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल जम्मू और श्रीनगर के बीच हर मौसम में खुली रहती है और यात्रा का समय लगभग 2 घंटे कम करती है।
0: श्रोताओं, अब बात करते हैं हवाई संपर्क की। 15 जुलाई 2026 तक उड़ान योजना ने 679 रूटों के जरिए 95 हवाई अड्डों, हेलीपोर्ट और वाटर एयरड्रोम को जोड़ा है। इससे 1,68,00,000 से ज्यादा यात्रियों को फायदा हुआ है। 2014 में देश में 74 चालू हवाई अड्डे थे, जिनकी संख्या जुलाई 2026 में बढ़कर 165 हो गई। 2014 के बाद 25 ग्रीन फील्ड हवाई अड्डों को मंजूरी दी गई है। क्षेत्रीय हवाई संपर्क को और मजबूत करने के लिए मार्च 2026 में संशोधित उड़ान को मंजूरी दी गई। इसके तहत 100 नए हवाई अड्डे और 200 आधुनिक हेलीपैड बनाने की योजना

0: करता है। श्रोताओं, अब शहरों में परिवहन की बात करें तो मेट्रो नेटवर्क का भी तेजी से विस्तार हुआ है। देश का मेट्रो नेटवर्क 2014 के 248 किलोमीटर से बढ़कर 2026 में 1155 किलोमीटर से ज्यादा हो गया है। मेट्रो कनेक्टिविटी वाले शहरों की संख्या 5 से बढ़कर 26 हो गई है और रोजाना यात्रियों की संख्या 1,15,00,000 से ज्यादा है। 2024 में कोलकाता ने भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो टनल शुरू की। वहीं कोच्चि ने भारत का पहला वाटर मेट्रो सिस्टम शुरू किया। अब बात समुद्री इंफ्रास्ट्रक्चर की। बड़े बंदरगाहों की कार्गो संभालने की क्षमता 2014 के 873 MMTPA से लगभग दोगुनी होकर 2026 में 1728 MMTPA हो गई है। बंदरगाहों पर जहाजों के टर्न अराउंड समय में भी सुधार हुआ है। ये 94 घंटों से घटकर 2025-26 में 48.8 घंटे रह गया। राष्ट्रीय जलमार्गों की संख्या 2014 के 5 से बढ़कर 2026 में 111 हो गई। भारत 2025 में दुनिया का नंबर 1 जहाज रिसाइकलिंग देश भी बन गया। श्रोताओं, अब इस रिपोर्ट के जरिए समझते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के उस महत्वपूर्ण पहलू को जो सड़कों, रेलवे और बंदरगाहों को उद्योग तथा व्यापार से जोड़ते हुए देश की लॉजिस्टिक्स व्यवस्था और औद्योगिक क्षमता को मजबूत करता है।
1: पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान में 3,291 से ज्यादा डेटा लेयर्स का इस्तेमाल करके 58 मंत्रालयों और विभागों में एकीकृत इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग की है। 11 अगस्त 2026 तक नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप के जरिए लगभग 18,66,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली 396 इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं का मूल्यांकन किया गया। इनमें से 256 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई और 198 परियोजनाओं पर काम चल रहा है। 7 औद्योगिक कॉरिडोर में 20 औद्योगिक स्मार्ट सिटीज को भी मंजूरी दी गई है। मार्च 2026 में 100 नए प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क विकसित करने के लिए भव्य योजना को भी स्वीकृति प्रदान की गई। 24 जुलाई 2026 को 3030 करोड़ रुपए के बजट के साथ भव्य रसायन योजना को मंजूरी दी गई। विनिर्माण इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए 7 प्रधानमंत्री मित्र पार्क्स का भी प्रस्ताव रखा गया है। श्रोताओं, जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण इलाकों में नल से जल पाने वाले घरों की संख्या 2019 में 3,23,00,000 थी, जो 10 अगस्त 2026 तक बढ़कर लगभग 15,91,00,000 हो गई। मार्च 2026 में जल जीवन मिशन 2.0 को मंजूरी दी गई। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत 12 अगस्त 2026 तक 99,25,000 घर बनकर तैयार हो चुके हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत लगभग 96% घर महिलाओं को आवंटित किए गए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत मंजूर किए गए 3,91,00,000 घरों में से 12 अगस्त 2026 तक 3,13,00,000 घर बनकर तैयार हो चुके हैं। 2019 में शुरू किए गए स्वामी फंड के जरिए जून 2026 तक 63,000 से ज्यादा घर उपलब्ध कराए गए, जिससे लगभग 2,52,000 लोगों को फायदा हुआ। स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत मार्च 2026 तक 7,790 परियोजनाएं पूरी की जा चुकी हैं।
0: श्रोताओं, अगर पूरे परिदृश्य को एक साथ देखें तो यही बदलते भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर की नई तस्वीर है। सड़कों से आगे बढ़ता हुआ बेहतर कनेक्टिविटी, मजबूत क्षमता और एकीकृत विकास की ओर बढ़ता भारत। इस कार्यक्रम को तैयार किया है हमारे सहयोगी उत्पल कुमार ने। प्रस्तुति सहायक अरुण दीप। नमस्कार।

महात्मा गांधी, वीर सावरकर, भगत सिंह सा बनना तो बहुत दूर की बात है। सड़कों को साफ रखकर हर देशवासी तिरंगे और भारत देश का सम्मान करके उनके खून से रंगी हुई इस आजादी का सम्मान तो कर ही सकते हैं ना।

0: आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति विश्लेषण।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के कार्यक्रम विश्लेषण में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ फरहत नाज। श्रोताओं, जब हम समुद्र और जहाजों की बात करते हैं तो आमतौर पर हमारे सामने जहाज निर्माण, बंदरगाह और समुद्री व्यापार की तस्वीर आती है, लेकिन किसी जहाज की यात्रा केवल उसके निर्माण और समुद्र में संचालन तक सीमित नहीं होती। जब कोई जहाज अपनी सेवा पूरी कर लेता है तो उसके सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल रिसाइकिलिंग की जिम्मेदारी भी उतनी ही महत्वपूर्ण हो जाती है। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में जानेंगे कि जहाज रिसाइकलिंग भारत के लिए क्यों जरूरी है, इस क्षेत्र में भारत की वैश्विक स्थिति क्या है, अलंग सोसिया की क्या भूमिका है इसमें, सरकार ने सुरक्षा और पर्यावरण की रक्षा के लिए कौन कौन से कानूनी बदलाव किए हैं और किस तरह भारत सुरक्षित और जिम्मेदार तरीके से जहाजों को रिसाइकलिंग कर रहा है और इसके साथ ही संसाधनों का बेहतर उपयोग तथा आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को भी आगे बढ़ा रहा है। श्रोताओं, सबसे पहले एक आसान सवाल, आखिर जहाज रिसाइकलिंग इतना महत्वपूर्ण क्यों है? एक पुराने जहाज को केवल कबाड़ समझकर खत्म कर देना इसका पूरा समाधान नहीं है। एक जहाज में बड़ी मात्रा में स्टील, धातु और दूसरी उपयोगी सामग्री होती है। अगर इन्हें सुरक्षित तरीके से निकाला जाए और दोबारा इस्तेमाल किया जाए तो ये संसाधन फिर से अर्थव्यवस्था का हिस्सा बन सकते हैं और यही कारण है कि आज जहाज रिसाइकलिंग को केवल पुराने जहाजों को खत्म करने के काम में नहीं देखा जाता। ये संसाधनों के बेहतर इस्तेमाल, पर्यावरण संरक्षण और सामग्री को दोबारा उपयोग में लाने वाली अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई है।
2: भारत जैसे बड़े देश के लिए जहाज रिसाइकलिंग का महत्व कई स्तरों पर है। सबसे पहले बात पर्यावरण संरक्षण की। अगर पुराने जहाजों को बिना उचित व्यवस्था के तोड़ा जाए तो उनमें मौजूद तेल, रसायन और अन्य खतरनाक पदार्थ समुद्र, जमीन और आसपास के वातावरण को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसका असर वहां काम करने वाले श्रमिकों के स्वास्थ्य पर भी पड़ सकता है। लेकिन जब जहाजों की रिसाइकलिंग तय नियमों और सुरक्षित प्रक्रियाओं के अंतर्गत होती है तो खतरनाक सामग्री की पहचान की जाती है, उसे अलग किया जाता है और सुरक्षित तरीके से उसका निपटान किया जाता है। वहीं जहाज से मिलने वाली उपयोगी सामग्री को वापस उपयोग में लाया जाता है। इस तरह एक पुराना जहाज केवल कबाड़ नहीं रहता बल्कि उपयोगी संसाधनों का स्रोत बन जाता है। अब बात करते हैं स्टील और संसाधन सुरक्षा की। जहाजों से मिलने वाला स्टील घरेलू इस्पात उद्योग के लिए महत्वपूर्ण कच्चा माल है। पुराने जहाजों से प्राप्त स्टील को दोबारा इस्तेमाल करने से नए कच्चे माल की आवश्यकता कम हो सकती है। इससे प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव घटता है और संसाधनों का बेहतर उपयोग होता है। रिसाइकलिंग से प्राप्त स्टील तैयार करने में प्राथमिक इस्पात उत्पादन की तुलना में कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इससे ऊर्जा की बचत के साथ कार्बन उत्सर्जन को कम करने में भी मदद मिल सकती है। यानी एक पुराने जहाज से निकला स्टील फिर किसी नए औद्योगिक काम में इस्तेमाल हो सकता है। यही चक्रीय अर्थव्यवस्था की मूल सोच है। जो सामग्री उपयोग के बाद बच जाती है उसे बेकार मानने के बजाय फिर से उत्पादन और अर्थव्यवस्था में उपयोग करना। अब इसका एक और महत्वपूर्ण पहलू है रोजगार और स्थानीय अर्थव्यवस्था। जहाज रिसाइकलिंग केवल यार्ड में जहाजों को तोड़ने तक सीमित नहीं है। इससे परिवहन, स्टील रीरोलिंग मिल, उपकरणों की आपूर्ति, अपशिष्ट प्रबंधन और दूसरी कई गतिविधियां जुड़ी होती है। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार और कारोबार के अवसर सृजित होते हैं। इसलिए जहाज रिसाइकलिंग एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें पर्यावरण संरक्षण के साथ उद्योग, रोजगार और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलता है। और अब बात उस स्थान की जिसने भारत को इस क्षेत्र में वैश्विक पहचान दिलाने में बड़ी भूमिका निभाई है, गुजरात का अलंग सोसिया। अलंग सोसिया को दुनिया के सबसे बड़े जहाज रिसाइकलिंग केंद्रों में गिना जाता है। भारत की जहाज रिसाइकलिंग गतिविधियों का लगभग 98% हिस्सा इसी क्लस्टर से जुड़ा है। इसकी वार्षिक रिसाइकलिंग क्षमता लगभग 60 टन है। यहाँ जहाजों से प्राप्त स्टील को दोबारा इस्तेमाल करने की पूरी व्यवस्था विकसित हुई है। रिसाइकलिंग यार्डों के साथ स्टील रीरोलिंग मिल, परिवहन और अपशिष्ट प्रबंधन जैसी सुविधाएं भी इस व्यवस्था का हिस्सा है। हाल के वर्षों में अलंग सोसिया में बुनियादी सुविधाओं और सुरक्षा व्यवस्था का आधुनिकीकरण किया गया है। इस पूरी प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण है श्रमिकों की सुरक्षा। अलंग सोसिया में सुरक्षा प्रशिक्षण और श्रम कल्याण संस्थान अब तक 1.5 लाख से अधिक श्रमिकों को प्रशिक्षित कर चुका है। इन प्रशिक्षणों में कार्यस्थल की सुरक्षा, खतरनाक सामग्री को संभालना और आपात स्थिति से निपटना भी शामिल है।
1: श्रोता, भारत की वैश्विक उपलब्धि पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। UNCTAD की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में भारत जहाज रिसाइकिलिंग में दुनिया में पहले स्थान पर रहा। भारत ने मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 के तहत दुनिया का अग्रणी जहाज रिसाइकिलिंग राष्ट्र बनने का लक्ष्य निर्धारित समय से 5 वर्ष पहले हासिल किया और ये उपलब्धि बताती है कि भारत की क्षमता और वैश्विक प्रतिस्पर्धा दोनों बढ़ी हैं। श्रोता, अब सवाल ये है कि इस पूरे बदलाव को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए भारत ने आखिर क्या किया है। केवल बड़े यार्ड या आधुनिक मशीनें पर्याप्त नहीं होती हैं। जहाज रिसाइकिलिंग के लिए स्पष्ट कानून, जिम्मेदारी तय करने वाली व्यवस्था, नियमित निरीक्षण और श्रमिकों तथा पर्यावरण की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी इसमें जरूरी हैं। और यही वजह है कि भारत ने पिछले कुछ वर्षों में इस क्षेत्र के कानूनी और संस्थागत ढांचे को मजबूत किया है।
3: भारत में जहाज रिसाइकिलिंग की कानूनी व्यवस्था के 3 प्रमुख आधार हैं। पहला है जहाज रिसाइकिलिंग अधिनियम 2019। यह जहाज रिसाइकिलिंग से जुड़ी गतिविधियों के लिए एक स्पष्ट कानूनी ढांचा देता है। इसके तहत यार्डों को अनुमति, जहाजों का प्रमाणन, निरीक्षण और नियमों का पालन सुनिश्चित करने की व्यवस्था की गई है। शिपिंग महानिदेशालय को राष्ट्रीय प्राधिकरण की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। दूसरा है जहाज रिसाइकिलिंग नियमावली 2021। इसमें रिसाइकिलिंग सुविधाओं के संचालन, जहाज रिसाइकिलिंग योजना, खतरनाक सामग्री के प्रबंधन, श्रमिकों की सुरक्षा, प्रशिक्षण और रिपोर्टिंग से जुड़ी आवश्यकताएं निर्धारित की गई हैं। तीसरा है जहाज रिसाइकिलिंग विनियम 2026। इनके माध्यम से परिचालन, सुरक्षा और पर्यावरण से जुड़े मानकों को और स्पष्ट तथा मजबूत किया गया है। इसका उद्देश्य सीधा है, रिसाइकिलिंग का काम तय नियमों के अनुसार हो, श्रमिक सुरक्षित रहे और पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे। भारत ने अपने नियमों को हांगकांग अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन यानी हांगकांग कन्वेंशन के अनुरूप बनाने पर भी जोर दिया है। यह जहाजों की सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल रिसाइकिलिंग के लिए महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था है। यह 26 जून 2025 को लागू हुआ। भारत में जहाज रिसाइकिलिंग यार्डों के आधुनिकीकरण के लिए 53.5 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी गई है। इससे 115 सुविधाओं को हांगकांग कन्वेंशन के मानकों को पूरा करने में मदद मिली है। ताओ सरकार ने पुराने जहाजों की सुरक्षित रिसाइकिलिंग को प्रोत्साहित करने के साथ नए जहाजों के निर्माण को बढ़ावा देने की दिशा में भी कदम उठाया है। शिप ब्रेकिंग क्रेडिट नोट स्कीम, शिप बिल्डिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम 2.0 के तहत शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य जहाज मालिकों को भारत के नियमों का पालन करने वाले रिसाइकिलिंग यार्ड में अपने पुराने जहाजों की रिसाइकिल कराने के लिए प्रोत्साहित करना है। इसके तहत रिसाइकिल किए गए जहाज के स्क्रैप मूल्य के 40% के बराबर क्रेडिट नोट दिया जा सकता है। इसका उपयोग भारत में बने नए जहाज की कीमत के 5% तक के भुगतान में किया जा सकता है। यानी एक ओर पुराने जहाज की जिम्मेदार रिसाइकिलिंग को बढ़ावा मिलता है और दूसरी ओर भारत में नए जहाज बनाने के काम को भी प्रोत्साहन मिलता है। श्रोताओं, भारत की इस क्षमता का एक उल्लेखनीय उदाहरण है XINS विराट। भारत नौसेना और रॉयल नेवी में कई दशकों तक सेवा देने के बाद इस विमानवाहक पोत को मार्च 2017 में सेवा मुक्त किया गया। सितंबर 2020 में यह रिसाइकिलिंग के लिए गुजरात के अलंग पहुंचा। इतने बड़े और जटिल विमानवाहक पोत की रिसाइकिलिंग भारत की तकनीकी क्षमता, श्रमिक सुरक्षा और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार दृष्टिकोण का उदाहरण है। श्रोताओं, अब अगर पूरे परिदृश्य को एक साथ देखें तो भारत में जहाज रिसाइकिलिंग एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है। आज ये क्षेत्र केवल पुराने जहाजों को तोड़ने तक सीमित नहीं है, इसमें सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण, श्रमिक कल्याण, आधुनिक तकनीक और अंतर्राष्ट्रीय मानकों का महत्व भी लगातार बढ़ रहा है। अलंग सोसिया भारत की सफलता की प्रमुख ताकत है, लेकिन इसके साथ मजबूत कानून, आधुनिक यार्ड, श्रमिक प्रशिक्षण और खतरनाक सामग्रियों के सुरक्षित प्रबंधन ने भी इस क्षेत्र को नई दिशा दी है। जहाजों से मिलने वाला स्टील हो या फिर दूसरी उपयोगी सामग्री दोबारा अर्थव्यवस्था में आती है। इससे संसाधनों की बचत होती है और चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलता है। साथ ही इससे जुड़े उद्योगों में रोजगार और आर्थिक गतिविधियों के अवसर भी पैदा होते हैं। इस तरह जहाज रिसाइकिलिंग पर्यावरण संरक्षण, संसाधन सुरक्षा, रोजगार और औद्योगिक विकास को एक साथ आगे बढ़ाने वाला क्षेत्र बन रहा है। भारत का लक्ष्य अब केवल जहाज रिसाइकिलिंग में दुनिया में आगे रहना नहीं, बल्कि सुरक्षित, स्वच्छ और जिम्मेदार जहाज रिसाइकिलिंग के लिए एक भरोसेमंद वैश्विक केंद्र भी बनना है। ये प्रयास आत्मनिर्भर भारत, चक्रीय अर्थव्यवस्था और विकसित भारत के संकल्प को समुद्री क्षेत्र में नई दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इस कार्यक्रम को तैयार किया है हमारे सहयोगी उत्पल कुमार ने, प्रस्तुति सहायक हैं दानिश जैदी। आप सभी को मेरा नमस्कार।

0: -20 डिग्री और खून जमा देने वाली सर्दी में भी एक फौजी 24 घंटे हमारे देश की रक्षा के लिए तैनात रहता है। हम राष्ट्रगान चल रहे उन 52 सेकंड्स तक अपने राष्ट्रगान के सम्मान में तो खड़े ही रह सकते हैं ना।
1: इतना तो हम कर सकते हैं देश तेरे।
2: आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति विश्लेषण।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के कार्यक्रम विश्लेषण में आपका स्वागत है। मैं हूं कनकलता। आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026 की, जिसका उद्देश्य देश की न्यायाधिकरण प्रणाली को अधिक स्वतंत्र, पारदर्शी, प्रभावी और पेशेवर बनाना है। न्यायाधिकरण एक ऐसा विशेष संस्थान है जहां कर, बिजली, दूरसंचार, कंपनी कानून, पर्यावरण, उपभोक्ता मामलों और प्रशासन जैसे विशेष विषयों से जुड़े विवादों का निपटारा किया जाता है। हाल ही में संसद ने न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026 पारित किया है। ये विधेयक न्यायाधिकरणों में नियुक्ति, कार्यकाल, प्रशासन और निगरानी से जुड़ी व्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव प्रस्तावित करता है। श्रोताओं, इस विधेयक की सबसे महत्वपूर्ण बात है राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग की स्थापना। इस आयोग में न्यायपालिका की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। इसका उद्देश्य नियुक्ति प्रक्रिया में कार्यपालिका के विवेकाधिकार को कम करना और न्यायाधिकरणों की स्वतंत्रता को मजबूत करना है। आज के कार्यक्रम में हम समझेंगे कि न्यायाधिकरण क्या होते हैं, वर्तमान व्यवस्था में क्या चुनौतियां हैं, नए विधेयक में क्या बदलाव प्रस्तावित किए गए हैं और इससे न्यायाधिकरणों की स्वतंत्रता तथा कामकाज पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। साथ ही हम जानेंगे कि ये विधेयक आम लोगों को तेज और प्रभावी न्याय दिलाने की दिशा में किस प्रकार मददगार हो सकता है। श्रोताओं, आइए सबसे पहले जानते हैं कि न्यायाधिकरण सुधार की जरूरत क्यों महसूस की गई और नए विधेयक में क्या प्रावधान किए गए हैं।
4: न्यायाधिकरणों का गठन ऐसे मामलों के निपटारे के लिए किया जाता है जिनमें किसी विशेष क्षेत्र की विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है। देश में केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, राष्ट्रीय हरित अधिकरण, सशस्त्र बल न्यायाधिकरण, आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण, ऋण वसूली न्यायाधिकरण, विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण और दूर संचार विवाद निपटान एवं अपीलीय न्यायाधिकरण जैसे कई संस्थान काम कर रहे हैं। न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026 के दायरे में 16 न्यायाधिकरणों, अपीलीय न्यायाधिकरणों और प्राधिकरणों को शामिल किया गया है। इनमें केंद्रीय और राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण, रेलवे दावा न्यायाधिकरण, प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण, राष्ट्रीय हरित अधिकरण, राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण और राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग जैसे प्रमुख संस्थान शामिल हैं। अब सवाल है कि इन न्यायाधिकरणों में सुधार की आवश्यकता क्यों महसूस की गई? न्यायाधिकरणों की नियुक्तियों और प्रशासन से जुड़ी व्यवस्था को लेकर लंबे समय से स्वतंत्रता, पारदर्शिता और कार्यपालिका के प्रभाव जैसे सवाल उठते रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने भी विभिन्न मामलों में न्यायाधिकरणों की स्वतंत्रता और नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर महत्वपूर्ण सिद्धांत निर्धारित किए हैं। इसी संदर्भ में न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026 में न्यायाधिकरण सुधार अधिनियम 2021 को निरस्त करने और एक नई संस्थागत व्यवस्था बनाने का प्रस्ताव किया गया है। इस नई व्यवस्था का केंद्र होगा राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग यानी NTC।
5: आइए सुनते हैं इस बारे में और जानकारी के लिए वरिष्ठ पत्रकार अदिति टंडन को।
6: सबसे इम्पोर्टेंट चीज, जैसा कि आपने कहा, एक नेशनल ट्राइब्यूनल्स कमीशन का गठन किया जाएगा। वो जो कमीशन है वो तय करेगी जो यूनिफॉर्मिटी अपॉइंटमेंट्स में होती है, जो चेयरपर्सन हैं, 16 ट्राइब्यूनल्स हैं हमारे देश में, उसके चेयरपर्सन और उसके मेंबर्स की समय अवधि की कितनी सीमा होनी चाहिए, अलग अलग जगहों में अलग अलग है। अब इस मसौदे में ये प्रपोज किया गया है कि चेयरपर्सन का जो टर्म है वो 5 साल का होना चाहिए और या फिर वो 70 साल की उम्र तक होने चाहिए और जो बाकी लोग हैं वो 67 ईयर्स तक होने चाहिए जो मेंबर्स हैं। ये जो नेशनल ट्राइब्यूनल्स कमीशन का गठन किया गया है, अब ये कमीशन चेयरपर्सन को सिलेक्ट करेगा, एक सर्च और सिलेक्शन कमेटी बनेगी जिसमें एक्सपर्ट्स होंगे, और कमीशन को यह भी हक होगा कि वो एक्सपर्ट्स को इंक्लूड करें, एम्पैनल करें इस सर्च और सिलेक्शन कमेटी में। उससे क्या होगा कि एक वाइड रेंजिंग कंसल्टेशन और एक वाइड रेंजिंग प्रोसेस के बाद अच्छे और जो बहुत ही एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उन्हीं को चेयरपर्सन के लिए सिलेक्ट किया जाएगा।
4: आयोग के अध्यक्ष के रूप में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रह चुके व्यक्ति की नियुक्ति का प्रावधान है। इसके अलावा आयोग में दो न्यायिक और दो तकनीकी सदस्य होंगे। तकनीकी सदस्यों के लिए लोक प्रशासन, वित्त, कानून, लेखा, बैंकिंग, प्रबंधन या प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में कम से कम 25 वर्ष के अनुभव का प्रावधान है। आयोग का मुख्य कार्य केवल नियुक्तियां करना नहीं होगा, ये न्यायाधिकरणों के कामकाज की निगरानी करेगा, सदस्यों के खिलाफ शिकायतों की जांच की निगरानी करेगा और वार्षिक रिपोर्ट भी तैयार करेगा। इसके साथ ही राष्ट्रीय न्यायाधिकरण डेटा ग्रिड विकसित करने का भी प्रस्ताव है। इसमें 16 न्यायाधिकरणों से जुड़े मामलों की जानकारी उपलब्ध होगी।
3: श्रोताओ, किसी भी न्याय व्यवस्था के लिए स्वतंत्रता के साथ जवाबदेही भी जरूरी होती है। इसी संतुलन को ध्यान में रखते हुए विधेयक में न्यायपालिका की भूमिका मजबूत करने के साथ साथ निगरानी और रिपोर्टिंग की व्यवस्था भी प्रस्तावित की गई है। आइए अब अगली रिपोर्ट में जानते हैं कि नई व्यवस्था से न्यायाधिकरणों के कामकाज में क्या बदलाव आएंगे।
7: न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026 में न्यायाधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की नियुक्ति के लिए खोज तथा चयन समितियों का प्रावधान किया गया है। इन समितियों में न्यायिक और तकनीकी विशेषज्ञ शामिल होंगे। न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के चयन के लिए राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग के अध्यक्ष, आयोग के एक तकनीकी सदस्य, उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, केंद्र सरकार के एक सचिव और दो विशेषज्ञों को शामिल करने का प्रावधान है। न्यायाधिकरण के सदस्यों के चयन के लिए भी इसी तरह की व्यवस्था होगी, जिसमें आयोग के एक न्यायिक सदस्य को समिति का अध्यक्ष बनाया जाएगा। समिति प्रत्येक रिक्त पद के लिए एक उपयुक्त उम्मीदवार और एक अतिरिक्त उम्मीदवार की प्रतीक्षा सूची की अनुशंसा करेगी। महत्वपूर्ण बात यह है कि समिति की सिफारिशें 3 दिन के भीतर केंद्र सरकार को भेजी जाएंगी और केंद्र सरकार को अनुशंसा पर 3 महीने के भीतर कार्रवाई करनी होगी। इससे नियुक्ति प्रक्रिया को समयबद्ध बनाने में मदद मिल सकती है। विधेयक में कार्यकाल को लेकर भी स्पष्ट व्यवस्था की गई है। राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक जो पहले हो रहेगा, वहीं न्यायाधिकरण के सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष या 67 वर्ष की आयु तक जो पहले हो रहेगा। कुछ परिस्थितियों में पुनः नियुक्ति का भी प्रावधान है। विधेयक में नया सचिवालय स्थापित करने का भी प्रस्ताव है। ये सचिवालय आयोग को प्रशासनिक सहायता देगा, विशेषज्ञों का पैनल तैयार करेगा, चयन समितियों की सिफारिशों को आगे भेजेगा और आयोग की वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा। इसके अलावा न्यायाधिकरणों को अधिक वित्तीय और प्रशासनिक स्वायत्तता देने का भी प्रयास किया गया है। हर न्यायाधिकरण अपनी वित्तीय, मानव संसाधन और आधारभूत सुविधाओं से जुड़ी जरूरतों का आकलन करेगा। इन जरूरतों को आयोग का सचिवालय एकत्र करेगा और आयोग एक निश्चित व्यवस्था के आधार पर उनका मूल्यांकन करेगा। वित्तीय पारदर्शिता के लिए आयोग के खातों का भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक यानी CAG द्वारा ऑडिट किए जाने का प्रावधान है। ऑडिट रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों के सामने रखी जाएगी।
3: श्रोताओ, न्यायाधिकरणों में विशेषज्ञता और तेजी से विवादों का समाधान महत्वपूर्ण होता है। ऐसे में नई व्यवस्था का अंतिम उद्देश्य यही है कि लोगों को प्रभावी और समय पर न्याय मिल सके तथा न्यायाधिकरणों में नियुक्तियां और उनका कामकाज अधिक पारदर्शी तरीके से हो। न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026 भारत की न्यायाधिकरण प्रणाली को अधिक स्वतंत्र, पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग के माध्यम से नियुक्ति प्रक्रिया में न्यायपालिका की भूमिका मजबूत करने, विशेषज्ञता को महत्व देने और कार्यपालिका के विवेकाधिकार को सीमित करने का प्रयास किया गया है। साथ ही कार्य निष्पादन की समीक्षा, शिकायतों की निगरानी, डेटा ग्रिड, समयबद्ध नियुक्तियां और CAG ऑडिट जैसी व्यवस्थाएं जवाबदेही और पारदर्शिता को मजबूत कर सकती हैं। आम नागरिक के लिए किसी भी न्याय व्यवस्था की सफलता इस बात से तय होती है कि उसे न्याय कितनी जल्दी, कितनी निष्पक्षता से और कितनी आसानी से मिलता है। ऐसे में न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026 का व्यापक उद्देश्य एक ऐसी व्यवस्था तैयार करना है जो स्वतंत्र भी हो, विशेषज्ञ भी हो और जनता के प्रति जवाबदेह भी हो। इस कार्यक्रम को तैयार किया है हमारे सहयोगी उत्पल कुमार ने, तकनीकी सहयोग अलका सिंह। नमस्कार।

0: आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति विश्लेषण। नमस्कार, मैं हूं विशाल शर्मा। श्रोताओं, भारत में सेमीकंडक्टर उद्योग को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण पहल की गई है। स्टार्टअप पॉलिसी फोरम ने द सेमिकॉन कंसोर्टियम की शुरुआत की है। ये सेमीकंडक्टर क्षेत्र से जुड़े स्टार्टअप निवेशकों और वैश्विक कंपनियों को एक मंच पर लाने का प्रयास है। ये पहल ऐसे समय में हुई है जब सरकार ने हाल ही में सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 को मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15 जुलाई को 1,27,500 करोड़ रुपए के कुल बजट के साथ सेमीकंडक्टर डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को विकसित करने के लिए इस मिशन को मंजूरी दी। आज के कार्यक्रम में जानेंगे कि सेमीकॉन 2.0 भारत के सेमीकंडक्टर क्षेत्र में क्या बदलाव ला सकता है, मैन्युफैक्चरिंग और वैश्विक निवेश पर इसका क्या असर होगा, और सेमीकंडक्टर का बढ़ता क्षेत्र भारत की अर्थव्यवस्था और रणनीतिक क्षमता के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। श्रोताओं, भारत में सेमीकंडक्टर क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए सरकार ने वर्ष 2021 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन की शुरुआत की थी। अब पहले चरण से मिली गति को आगे बढ़ाते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अगले चरण यानी सेमीकॉन 2.0 को मंजूरी दी है। आइए अब समझते हैं कि सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में भारत की अब तक की यात्रा कैसी रही है और सेमीकॉन 2.0 इस यात्रा को किस तरह आगे बढ़ाएगा।
1: सेमीकॉन 2.0 के तहत पूरे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को विकसित करने के लिए 6 प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान दिया जा रहा है। पहला क्षेत्र है डिजाइन। देश में 100 से अधिक स्टार्टअप चिप डिजाइन के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। इन स्टार्टअप के जरिए रणनीतिक और व्यावसायिक उपयोग वाले उत्पादों के लिए जरूरी डिजाइन और तकनीक विकसित की जा रही है। दूसरा क्षेत्र है मशीन और सामग्री। सेमीकंडक्टर बनाने के लिए जरूरी मशीनों, सामग्री, रसायनों और गैसों के निर्माण तथा इनके क्षेत्र में रिसर्च और डेवलपमेंट करने वाली कंपनियों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। इससे सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए जरूरी आधार तैयार होगा और देश में प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग को भी बढ़ावा मिलेगा। तीसरा क्षेत्र है और अधिक फैब स्थापित करना। फैब यानी फैब्रिकेशन प्लांट वह विशेष संयंत्र है जहां सिलिकॉन वेफर पर बेहद छोटे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट तैयार किए जाते हैं और उनसे सेमीकंडक्टर चिप बनाई जाती है। भारत में पहली फैब के 2028 में शुरू होने की उम्मीद है। चौथा क्षेत्र है ATMP और OSAT उद्योग को और मजबूत करना। भारत में ATMP यानी सेमीकंडक्टर पैकेजिंग और टेस्टिंग से जुड़े संयंत्रों में हो रहे काम के बाद दुनिया भारत को ऐसे संयंत्रों के लिए एक वैकल्पिक स्थान के रूप में देख रही है। सेमीकॉन 2.0 के तहत इस क्षेत्र को और बढ़ावा दिया जाएगा और उन्नत ATMP तकनीकों को भारत लाने पर जोर रहेगा। पांचवा क्षेत्र है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। छठा क्षेत्र है टैलेंट डेवलपमेंट। सेमीकंडक्टर क्षेत्र के लिए कुशल लोगों की जरूरत को देखते हुए देश में 315 विश्वविद्यालयों में छात्रों को आधुनिक EDA टूल्स की मदद से चिप डिजाइन की ट्रेनिंग दी जा रही है। अब तक करीब 68,000 छात्रों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। श्रोताओं, अगर सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम के पहले चरण की बात करें तो अब तक 12 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को मंजूरी दी गई है। इनमें कुल 1,64,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश शामिल है। इन 12 स्वीकृत प्रस्तावों में से 3 कंपनियों ने व्यावसायिक उत्पादन शुरू कर दिया है, जबकि एक और कंपनी के जल्दी ही उत्पादन शुरू करने की उम्मीद है। डिजाइन के क्षेत्र में भी पहले चरण के तहत स्टार्टअप और MSME की 24 सेमीकंडक्टर डिजाइन परियोजनाओं को वित्तीय सहायता के लिए मंजूरी दी गई है।
0: श्रोताओं, सेमीकॉन 1.0 के तहत भारत ने सेमीकंडक्टर क्षेत्र में एक मजबूत आधार तैयार किया। अब सेमीकॉन 2.0 के साथ इस यात्रा को अगले चरण में ले जाने की तैयारी है। पहले चरण से दूसरे चरण तक भारत की सेमीकंडक्टर यात्रा में क्या बदलाव आया है, इसे समझने के लिए आकाशवाणी समाचार ने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक चांडक से विशेष बातचीत की। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
2: फेज 1 में हमारा क्रेडिबिलिटी बन गया है और फेज 2 में आउटकम जो होगा हमारा उससे हम कैपेबिलिटी बिल्डअप करेंगे और इस पॉलिसी में पूरा एंड टू एंड इकोसिस्टम बनेगा, जो फाउंड्री मैन्युफैक्चरिंग है, पैकेजिंग है जिसे ATMP कहा जाता है, डिजाइन है, R&D भी किया जाएगा इसमें, और साथ में मशीनरी और मटेरियल्स कहेंगे हम, उसमें करीबन 200 से 250 प्रकार के केमिकल्स, गैसेस और मटेरियल्स की जरूरत पड़ती है और इक्विपमेंट की, उसको भी फोकस किया जाएगा। उसके लिए भी 30% का गवर्नमेंट ने सब्सिडी तय किया है जिससे वो काम भी इंडिया में बना जाएगा। जाएगा। हमें अब सिर्फ चिप बनाने की बात नहीं, लेकिन चिप बनाने के लिए और इसके डिजाइन के लिए जो भी कौशल विकास और सप्लाई चेन है उस पर ध्यान देना जरूरी है। इस इनिशिएटिव से देश में अधिक

0: मूल्य संवर्धन होगा, इकोनॉमिक वैल्यू एड होगी, देश में आयात की निर्भरता भी बहुत कम होगी। मैं अगर नंबर की बात करूं यहां पर, हमारा 2030 में करीबन $100 बिलियन का सेमीकंडक्टर कंजम्पशन होगा।
1: श्रोताओं, सेमिकॉन 2.0 में पूरे इकोसिस्टम के विकास के साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग और वैश्विक निवेश पर भी विशेष जोर दिया गया है। भारत को सेमीकंडक्टर निर्माण के वैश्विक केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में इन प्रयासों का क्या महत्व है, इस पर अशोक चांडक ने विस्तार से बात की।
0: अगर हमें मैन्युफैक्चरिंग करना है तो अंतरराष्ट्रीय सहयोग बहुत जरूरी है, इसके बिना ये होगा नहीं। हमारे पास प्रोसेस टेक्नोलॉजी नहीं है, नथिंग रॉन्ग, नहीं है तो नहीं है, उसको ला सकते हैं। तो इसलिए भारत केवल जो आर्थिक प्रोत्साहन है, जिसे हम बोलेंगे कि इकोनॉमिक बेनिफिट, ये दे रहा है, बल्कि उसके साथ साथ में भारत की जो स्टेबल पॉलिसीज और कुशल मानव संसाधन टैलेंट और जो हमारा घरेलू बाजार है, डोमेस्टिक मार्केट, ये काफी तेजी से विकसित हो रहा है। और इसीलिए ये सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का पूरा टोटल है, इसे हम बना रहे हैं, और ये जब बनेगा तभी भारत में अंतरराष्ट्रीय कंपनियां इंटरेस्ट बताएंगी और वो निवेश करेंगी। हमारे पहले चरण में जो सेमिकॉन फेज वन में कुछ इंटरनेशनल कंपनियों ने ऑलरेडी कोलैबोरेशन किया है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की है। और मैं और एक कहना चाहूंगा, एक हम इवेंट करते हैं सेमिकॉन इंडिया, जो कि अभी सितंबर में आ रहा है, इसमें हम काफी प्रमोशन करते हैं और विदेशी कंपनियां आती है। इस साल भी सेमिकॉन इंडिया में 300 विदेशी कंपनियां आएंगी।
1: श्रोताओं, सेमीकंडक्टर को अक्सर केवल मोबाइल फोन, कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन आज सेमीकंडक्टर आधुनिक अर्थव्यवस्था के लगभग हर महत्वपूर्ण क्षेत्र का आधार बन चुके हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, रक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाओं और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्रों में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। आइए विस्तार से समझते हैं कि आखिर सेमीकंडक्टर उद्योग इतना महत्वपूर्ण क्यों है और हमारे सामने क्या चुनौतियां हैं।
2: अनुमान है कि 2035 तक वैश्विक सेमीकंडक्टर बाजार $1.5 ट्रिलियन से अधिक का हो सकता है। वहीं भारत का सेमीकंडक्टर बाजार 2035 तक करीब $200 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। लेकिन भारत के सामने एक बड़ी चुनौती भी है। देश में सेमीकंडक्टर की मौजूदा खपत का करीब 90-95% हिस्सा आयात से पूरा होता है। इसका मतलब है कि घरेलू मांग तेजी से बढ़ रही है, लेकिन उसे पूरा करने की हमारी अपनी क्षमता अभी सीमित है। भारत की आयात निर्भरता का एक सीधा आर्थिक असर विदेशी मुद्रा पर भी पड़ता है। वित्त वर्ष 2017 से वित्त वर्ष 2025 के बीच भारत ने महत्वपूर्ण सेमीकंडक्टर उत्पादों के आयात पर करीब $150 बिलियन खर्च किए। इसी अवधि में सेमीकंडक्टर उत्पादों के आयात में सालाना औसतन 23% की दर से बढ़ोतरी हुई। अगर ये गति बनी रहती है तो 2035 तक सालाना आयात लागत $240 बिलियन तक पहुंच सकती है। इसलिए भारत के लिए घरेलू सेमीकंडक्टर क्षमता विकसित करना केवल आयात कम करने का सवाल नहीं है, ये देश के इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को मजबूत करने, विदेशी मुद्रा बचाने और महत्वपूर्ण क्षेत्रों को सप्लाई में होने वाले व्यवधान से बचाने की दिशा में भी एक बड़ा कदम है। आज की आधुनिक रक्षा प्रणालियां भी सेमीकंडक्टर पर काफी हद तक निर्भर है। मिसाइल, ड्रोन, रडार, लड़ाकू विमान, नौसैनिक प्रणालियां और सुरक्षित संचार व्यवस्था, इन सभी में सेमीकंडक्टर आधारित इलेक्ट्रॉनिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका है। समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
1: श्रोताओं, भारत ने अब सेमीकंडक्टर क्षेत्र में अपनी आगे की दिशा तय करना शुरू कर दिया है। 2035 तक भारत का लक्ष्य सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन को 120 से 150 बिलियन $150 बिलियन का बनाना है और इसी अवधि में 35-50% तक चिप सेल्फ सफिशिएंसी हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है। इस तरह देखें तो सेमीकंडक्टर क्षेत्र में भारत की कोशिश केवल अपनी जरूरत पूरी करने की नहीं है, लक्ष्य एक ऐसा मजबूत इकोसिस्टम तैयार करना है जो घरेलू जरूरतों को पूरा करे, वैश्विक सप्लाई चेन में भारत की भूमिका बढ़ाए और सेमीकंडक्टर को आर्थिक विकास, तकनीकी क्षमता और रणनीतिक आत्मनिर्भरता का आधार बनाए। इस कार्यक्रम को तैयार किया अनिकेत ने, प्रस्तुति सहायक दानिश जैदी।

0: विद्वान कई हुए वीर कई,
1: ये भूमि है महान,
0: फिर भी प्रणाम करती संस्कृति यहाँ की,
1: ये है कितनी निर्माण,
0: भारत का गौरव गान
1: गाता है इतिहास स्वर्णिम,
0: अनेकता में एकता यहाँ
1: रहता मिला जुला हर रंग।
0: रेडियो मधुबन की ओर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।
2: कार्यक्रम है याद करो कुर्बानी, याद करो कुर्बानी,
3: याद करो कुर्बानी।
2: श्रोताओं, जैसा कि हम सभी जानते हैं, भारत देश को आजाद कराने में सभी ने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। चाहे हमारे वीर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हों, किसान हों, पत्रकार हों, वीरांगनाएं हों, एक बहुत बड़ी लिस्ट है ये। इस आजादी के समर में जिनका नाम पूरे सम्मान के साथ लिया जाता है वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने एक बहुत बड़ा संगठन बनाया, आजाद हिंद फौज की स्थापना करी, और आजाद हिंद फौज की स्थापना का दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 21 अक्टूबर को। तो श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे आजाद हिंद फौज के संस्थापक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। उनका जन्म 1897 को 23 जनवरी को कटक में हुआ था। उनके पिता वहां के एक बहुत सफल वकील थे, वकालत से बहुत सारा धन उन्होंने कमाया था। वहीं बहुत बड़ा भवन भी बनाया उन्होंने, जिसमें सुभाष ने बाद में उत्कल कांग्रेस को दे दिया। सुभाष शुरू से ही अच्छे छात्र थे। 1920 में वे ICS बने और उनका मन नौकरी में नहीं लगा। जल्द ही वे देशबंधु चितरंजन दास के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। तब से वे कांग्रेस के नेता बन गए और धीरे धीरे कांग्रेस के एक महान नेता मान लिए गए। जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस भारतीय नौजवानों के नेता माने जाते हैं, पर जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए तब से वे कुछ नरम पड़ गए थे, यद्यपि वे भीतर से इतने नरम नहीं थे जितना कि लोग समझते हैं, क्योंकि समाजवाद के प्रति उनकी भक्ति उसी प्रकार बनी रही। जवाहरलाल नेहरू और नेताजी सुभाष चंद्र बोस में फर्क यह था कि सुभाष को हर समय बंगाल के क्रांतिकारियों से अनुप्रेरणा मिलती रही।

भीतर ही भीतर क्रांतिकारी भी बने रहे। सुभाष कभी किसी अर्थ में गांधीवादी नहीं बने। सच तो यह है कि बंगाल के युवकों ने गांधी को कभी गंभीरता के साथ लिया ही नहीं और उसे महज साधन समझते रहे। इसी कारण कभी वे गांधी के पक्के शिष्य बने तो कभी गांधी जी के प्रति उनके मन में श्रद्धा भी उठी। श्रोताओं, ऐसे बहुत सारे ख्याल, बहुत सारे विचार आज हमें पुस्तकों में मिलते हैं, मगर उनके बारे में कुछ और हम टिप्पणी करेंगे। पहले सुनते हैं एक छोटा सा देशभक्ति गीत।

श्रोताओं, जैसे कि हम बात कर रहे थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, सुभाष 1924 में 24 अक्टूबर को विशेष ऑर्डिनेंस के अनुसार गिरफ्तार कर लिए गए और इसी नजरबंदी में के जमाने में उन्हें मांडले जेल में भेज दिया गया, जहां वे बहुत अधिक बीमार पड़ गए और इस कारण जो आंदोलन हुआ उससे सरकार ने 1927 की 16 मई को छोड़ दिया और इसके बाद सुभाष ने जोरों से पूर्ण स्वराज के लक्ष्य का प्रचार करना शुरू कर दिया। कांग्रेस ने भी 1929 में पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित कर दिया था। इस प्रकार गरम दल वालों की विजय रही और 1930 में सत्याग्रह छिड़ गया, पर यह जल्दी ही गांधी इरविन समझौते की चट्टान से टकरा करके समाप्त हो गया। जनता के दबाव के कारण, बल्कि यह कहना चाहिए कि ब्रिटिश सरकार की बेईमानी के कारण फिर से आंदोलन छिड़ा, पर अब की बार आंदोलन में वह कदम नहीं था। सुभाष चंद्र बोस गिरफ्तार कर लिए गए पर स्वास्थ्य खराब होने के कारण फिर एक बार 1933 में उनको छोड़ दिया गया। वे फौरन ही स्वास्थ्य सुधार करने के लिए यूरोप चले गए और इस बार की यूरोप यात्रा में सुभाष हिटलर, मुसोलिनी और डी वेल्ला से मिले। वे देख रहे थे कि कौन सी शक्तियां ऐसी हैं जो भारत से ब्रिटिश शासन को हटाने में दिलचस्पी रखती है, उन्हें मदद मिल सकती है। ब्रिटिश सरकार को सुभाष के इन कार्यों का पता चल गया। सुभाष लौट करके यह प्रचार करने लगे कि जल्दी ही भयानक युद्ध छिड़ने वाला है और उस समय भारत को बेड़ियों को खोल फेंकने का एक और मौका मिल गया। 1929 में यह लड़ाई छिड़ गई पर कांग्रेस इसके लिए तैयार नहीं थी। घटनाएं फिर भी बहुत प्रबल सिद्ध हुई और गांधी जी को आंदोलन छोड़ना पड़ा, पर इसके पहले ही देश के बाहर क्रांतिकारी फिर से ब्रिटिश सरकार को उखाड़ने में लग गए। रास बिहारी बोस किस प्रकार जापान के युद्ध में कूदने पर आजाद हिंद फौज का संगठन गया, ये तो बाद की बात है, पर इसके पहले एक अन्य क्रांतिकारी ऊधम सिंह ने क्या किया उसका वर्णन यहां आना बहुत जरूरी है। जलियांवाला बाग में माइकल डायर ने किस प्रकार लगभग 1000 भारतीयों को मिनटों के अंदर गोलियों से भून डाला था, इसे कभी भी भुलाया नहीं जा सकता है। जनरल डायर ने जिस प्रकार से भारतीयों की हत्या की थी वह भारत का प्रत्येक व्यक्ति जानता है। वहां से गांधी जी चमके और भारत के नेता बन गए। पुराने नेता समझ नहीं पा रहे थे कि इस हत्याकांड का कैसे उत्तर दें, और उसके पास तो एक ही अस्त्र था और प्रस्ताव पास करना, और वह अस्त्र इस समय बेकार लग रहा था। तभी गांधी जी सत्याग्रह का तर्कश लेकर के सामने आ गए। जनरल डायर हत्या करा करके विलायत चले गए और सुख से भारत की पेंशन पर जी रहे थे। इतने में लड़ाई छिड़ गई। संसार भर में जहां भी भारतीय था उसे फिर से स्वतंत्रता प्राप्त करने की आशा दिखाई देने लगी। सरदार ऊधम सिंह नामक एक युवक इन दिनों लंदन में ही थे, जिनका जन्म 1903 में हुआ था और वे इंजीनियर थे। लड़ाई छिड़ते ही ऊधम सिंह के मन में यह बात आ गई कि मुझे भी कुछ करना चाहिए। यह एक अजीब सी बात है कि ऊधम सिंह पहले से ही क्रांतिकारी नहीं थे, पर महायुद्ध ने उनकी चेतना को उभार दिया और वे एकदम से कुछ करने के लिए व्याकुल हो गए। सरदार ऊधम सिंह ने क्या किया यह हम आपको बताएंगे एक छोटे से देशभक्ति गीत के बाद। आइए सुनते हैं ये दूसरा प्यारा सा देशभक्ति गीत।

श्रोताओं, 1940 को 23 मार्च का दिन था। लंदन के कैक्सटन हॉल में ब्रिगेडियर जनरल डायर सीपी सैक्स विश्व स्थित अफगानिस्तान विषय पर भाषण देने वाले थे। लॉर्ड जेंटल अध्यक्ष बनाए गए। पूर्वी देशों पर व्याख्यान था। सभा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की देखरेख में बुलाई गई थी, इसलिए पूर्वी देशों पर एक विशेषज्ञ के नाते सर जनरल डायर भी इसमें पधार गए। पहले से ही यह तय था कि वे पधारेंगे। उधर सिंह भी एक भरी हुई पिस्तौल लेकर के उस सभा में पहुंच गए। मुख्य वक्ता बोल चुके थे, जनरल डायर भी बोल चुके थे और सभा भंग होने वाली ही थी। तब उधम सिंह ने 3 गज की दूरी से माइकल डायर पर गोली दाग दी। दूसरी गोली से ही माइकल डायर गिर पड़े, फिर भी गोली चलती रही। लॉर्ड जेंटलैंड को और लॉर्ड मिल्टन को 2 गोलियां छूते हुए निकली, मगर वो बच गए। लॉर्ड स्विस जैन को कुछ चोट आई भी और उसके बाद उधम सिंह हॉल से निकलने लगे तो हवाई सेना के एक सार्जेंट क्लाउड वटी चेस ने उन्हें पकड़ लिया। सरदार उधम सिंह ने अपने बयान में कहा कि मैंने ब्रिटिश साम्राज्यवाद के नालदार जूते के नीचे अपने देशवासियों को जो रोनते हुए देखा है, इस प्रकार अपना प्रतिवाद पेश करते हुए मुझे कोई दुख नहीं है। मुझे इस बात की रंज भर भी शंका नहीं है कि मुझे आप फांसी दे देंगे या सजा देंगे। मृत्यु का भय मुझमें नहीं रह गया है। बुढ़ापे तक लड़खड़ाते हुए जीने का कोई अर्थ नहीं होता है। देश के लिए जवानी में मर जाना कहीं ज्यादा अच्छा है। और इस प्रकार सर माइकल जनरल डायर ने जो भयंकर अपराध 1918 में किया था, एक क्रांतिकारी ने उसे उसकी सजा उसे दे दी। क्या कोई यह कह सकता है कि एक भारतीय के जीवन का मूल्य किसी भी प्रकार एक अंग्रेज के जीवन के मूल्य से कम है? विनायक दामोदर सावरकर ने इस अवसर पर एक बयान दिया जिसमें उन्होंने अहिंसा की निंदा की और साथ ही कहा कि इस तरह के भी देशभक्त मौजूद हैं जो सरदार उधम सिंह की तरह 20 साल तक बदले की भावना को अपने मन में जगाए हुए हैं और अंत में उन्होंने वो काम कर डाला। उस समय महायुद्ध तेजी से चल रहा था। जर्मन अखबारों ने उधम सिंह के विषय में लेकर के यह लिखा, संसार के लोग यह देख लें कि भारत किस प्रकार ब्रिटिश शासन से सुखी है। भारत तो फौरन स्वतंत्र होना चाहता है। सरदार उधम सिंह को फांसी की सजा दे दी गई और इस प्रकार एक तरफ उधम सिंह ने अलग जगा दिया और दूसरी तरफ अन्य क्रांतिकारी भी यह सोच रहे थे कि किस प्रकार इस मौके को हाथ से ना जाने दिया जाए। प्रथम महायुद्ध में हम रह गए, पर अब दूसरा महायुद्ध भी कहीं हाथ से ना निकल जाए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इस बारे में क्या सोच रहे थे, उनके मन में क्या उथल पुथल चल रहा था, ये हम आपको बताएंगे विस्तार से, मगर इस छोटे से देशभक्ति गीत के बाद। सन 1941 की जनवरी में एक दिन प्रातःकाल लोगों ने यह आश्चर्यजनक समाचार पढ़ा कि एक युवक नेता सुभाष अपने घर से गायब हो गए हैं। साथ ही लोगों ने यह भी कहा कि वे साधु बनकर के हिमालय में चले गए हैं। पर यह कहानी कुछ बनती भी थी, क्योंकि बचपन से ही सुभाष बाबू का झुकाव धर्म और अध्यात्म की ओर भी था। सुभाष बाबू के एक प्रधान सहयोगी सरदार सरदुल सिंह ने तो यहां तक वक्तव्य दे दिया कि उनको ज्ञात है कि उन दिनों सुभाष बाबू की प्रवृत्ति वैराग्य की ओर हो रही थी और वे साधु होकर के दक्षिण की ओर चले गए हैं। जितने मुंह उतनी बातें सुनाई पड़ रही थी। इन बातों को सुनकर के देश के नवयुवकों को बड़ी निराशा हुई। और सच तो यह है कि लोगों ने जहां एक तरफ सुभाष बाबू को साधु बनकर के हिमालय या दक्षिण में चले जाने की बात पर विश्वास किया, वहीं दूसरी ओर ऐसे भी बहुत सारे लोग थे जो इस बात पर विश्वास नहीं कर रहे थे। फिर भी लोग कुछ समझ नहीं पा रहे थे। सबसे अधिक खिन्न तो ब्रिटिश सरकार थी, जो समाचार पर विश्वास करने के लिए तैयार ही नहीं थी।
उन दिनों लड़ाई बड़ी तेजी से चल रही थी और जर्मन सेना के सामने ब्रिटिश सेना के दांत खट्टे हो रहे थे। ब्रिटिश सरकार ने सुभाष बाबू के साधु होकर के चले जाने वाले समाचार पर भी कभी विश्वास नहीं किया, परंतु उसे भी कुछ पता नहीं लग पा रहा था कि सुभाष बाबू कहां हैं, और इस कारण वह भी घबराई हुई थी, क्योंकि उसे यह डर था कि सुभाष बाबू किसी तरह शत्रु सरकार के पास पहुंच गए तो ब्रिटिश सरकार को लेने के देने पड़ जाएंगे। जब इस प्रकार से सारा भारत और एक प्रकार से सारा संसार कुछ समझ नहीं पा रहा था, तब एकाएक सुभाष बाबू को क्या हुआ? उस समय सुभाष बाबू गाड़ी पर सवार होकर के पेशावर की यात्रा पर चल पड़े थे। घर से गायब होने से पहले भी वो कई सप्ताह पहले से किसी से मिल नहीं रहे थे, और उन्होंने यह खबर भी उड़वा दी कि वे कोई अध्यात्म साधना कर रहे हैं और इस समय किसी से मिल नहीं सकते हैं। कुछ बहुत विश्वासपात्र लोगों को ही इन दिनों वे उनसे मिल सकते थे, और सच बात तो यह है कि वे इन दिनों दाढ़ी बढ़ाने में लगे हुए थे। वे यह नहीं चाहते थे कि किसी को कानो कान इस बात की खबर लग जाए, क्योंकि ऐसा होने से विपत्ति की संभावना थी। यदि सरकार को यह ज्ञात हो जाता कि दाढ़ी बढ़ा युवक जो गायब होने की खबर फैलते ही, तब सब समझ में आ जाता कि सुभाष बाबू किसी मुस्लिम देश की ओर जा रहे हैं, और इस कारण उन्होंने दाढ़ी बढ़ाने की बात को एकदम से गुप्त रखा था। दाढ़ी जब बढ़ गई तो वे पेशावर के लिए रवाना हो गए। हावड़ा से रेलगाड़ी पर बैठना असंभव था। घर में उनके चित्र थे और इस कारण दाढ़ी बढ़ा लेने पर भी पहचाने जाने का डर था उन्हें। श्रोताओं, इसके आगे क्या हुआ, कैसे वे देश से बाहर निकले, इस पर हम रोशनी डालेंगे, मगर इस छोटे से देशभक्ति गीत के बाद। आइए सुनते हैं ये प्यारा सा देशभक्ति गीत।

श्रोताओं, देशभक्ति गीत से पहले हम बात कर रहे थे कि सुभाष बाबू ने अपनी दाढ़ी बढ़ा ली और धीरे से बिना किसी को बताए हुए वे घर से गायब हो गए। वे मोटर से कलकत्ता से 40 मील दूर एक स्टेशन पर पहुंच गए। वहां से रात के 8 बजे गाड़ी पर सवार हुए। उनके पास दूसरी श्रेणी का टिकट था। रात को कोई घटना नहीं हुई। दिन में भी केवल एक फौजी अफसर आया और जिसे उन्होंने इधर उधर की बातों में कह करके टरका दिया। वे उस समय जियाउद्दीन नाम अपनाए हुए थे और वे उस समय जियाउद्दीन नाम अपनाए हुए थे। उन्होंने अपने को बीमा कंपनी का संगठनकर्ता बताया। जब कोई बड़ा स्टेशन आता तब वे समाचार पत्र पढ़ने का बहाना करके मुंह ढक लेते थे। इस प्रकार वे 17 जनवरी को पेशावर पहुंच गए। वहां पहले से ही लोग तैयार बैठे थे और वे निर्दिष्ट स्थान पर पहुंचे और कई कारणों से 2 दिन तक पेशावर में ही उन्हें रुकना पड़ा और उसके बाद 19 जनवरी को उन्हें पठानी कपड़े दिए गए। तब उनके साथ एक और व्यक्ति चला जिसका नाम था रहमत खां। यह व्यक्ति पाश्तो बोल लेता था और यह सुभाष बाबू को अपना बड़ा भाई बता करके परिचय देता था। सुभाष बाबू वहीं से गूंगे और बहरे बन गए थे और वो इसलिए कि उनके लिए बोलना कई तरह से विपत्तिजनक था। वे बने तो पठान थे परंतु उन्हें ना फारसी आती थी और ना ही पाश्तो। इस कारण गूंगा और बहरा उनको बनना पड़ा। रहमत खान लोगों से यह कहता रहा कि हम लोग कबायली क्षेत्र के रहने वाले हैं। हम काबुल से भी आगे तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे हैं। ऐसे बहुत से लोग उधर आते जाते रहते हैं। इस कारण किसी को संदेह नहीं हुआ और वे कुछ हिस्सा मोटर पर तो कुछ हिस्सा पैदल चल करके काबुल पहुंच गए। परंतु काबुल पहुंचने से सुभाष बाबू की समस्या हल नहीं हुई। यद्यपि अफगानिस्तान एक स्वतंत्र देश है फिर भी किसी सरकार पर उस समय ब्रिटिश सरकार का दबाव बहुत अधिक रहता था। इसलिए आवश्यक यह था कि वो काबुल से जल्द बाहर निकल जाएं और किसी बड़े देश में पहुंच जाएं। सुभाष बाबू रूस जाना चाहते थे परंतु कलकत्ता में बैठ करके उन्होंने जो व्यवस्था की थी वह काबुल पहुंचने पर समाप्त हो जाती थी। उन्हें आगे की यात्रा अपनी बुद्धि के बल पर ही करनी थी। सबसे कष्टकर बात यह थी कि काबुल पहुंचते ही उन्हें ऐसा ज्ञात हुआ कि अफगानी गुप्तचर उनके पीछे पड़ गए हैं। काबुल में वे पहले पहल एक बहुत ही गंदी सराय में ठहरे। यहां पर एक गुप्तचर उनके पीछे लगा। रहमत का यूं तो कहता था कि वह तीर्थ यात्रा के लिए भाई को लेकर के चला है परंतु वह गुप्तचर किसी प्रकार नहीं मानता था। वह रहमत खां ने उसे कभी 2 रुपए दिए तो कभी 4 रुपए और इस प्रकार उसका मुंह बंद रखा। और अंत में एक दिन उस लालची गुप्तचर ने रहमत खां के हाथ से बंधी हुई सुभाष बाबू की घड़ी भी ले ली। रहमत खां इधर उधर हाथ पांव मार रहा था कि किसी प्रकार रूसी राजदूत से संबंध हो जाए परंतु इसका अवसर नहीं आया। एक दिन रूसी राजदूत की मोटर को रोक करके रहमत खां ने टूटी फूटी फारसी में सारी बात बताई परंतु रूसी राजदूत को विश्वास नहीं हुआ और वह बात वहीं की वहीं रह गई। अब स्थिति भयंकर होती जा रही थी। बड़े कष्ट से रहमत खां को काबुल के एक महाजन उत्तम चंद का पता चला। वह व्यक्ति देशभक्त होने के साथ साथ काबुल के प्रभावशाली व्यक्तियों में भी था। उत्तम चंद पहले तो घबराया परंतु बाद में देशभक्ति ने विपत्ति की आशंका पर विजय पाई और उन्होंने सुभाष बाबू को सब प्रकार से पूरी सहायता दी। उन्हीं की सहायता से इटालियन दूतावास को खबर दी गई और धीरे धीरे यह खबर रोम और बर्लिन में भी पहुंच गई। परंतु सुभाष बाबू रूस जाना चाहते थे। वे डरते थे कि कहीं जर्मनी और इटली में फंस गए तो वे लोग उनसे काम लेने को तैयार हो जाएंगे पर वे जिस काम के लिए यानी भारत की स्वतंत्रता के लिए निकले हैं उसमें कुछ सहायता नहीं दे पाएंगे। चेष्टा करने पर भी रूस से कोई संबंध स्थापित नहीं हो सका। इटली के दूतावास ने जल्दी से कोई सहायता नहीं दी पर
इस प्रकार कई सप्ताह निकल गए और यह खबर तो सुभाष बाबू को मिली कि उनके भागने की खबर रोम और बर्लिन में पहुंच चुकी है, फिर भी उधर से कोई प्रस्ताव भी नहीं आया। इन सारी बातों से उबे हुए सुभाष बाबू के परामर्श पर उत्तम चंद इस बात की चेष्टा करने लगे कि चोरी से सुभाष बाबू रूस चले जाएं। जब इस बात की तैयारी होने लगे तो उत्तम चंद को स्मरण हो गया कि एक ऐसा व्यक्ति है जो इस काम में सहायता दे सकता है। उस व्यक्ति से किसी तरह भेंट की गई और उनसे परामर्श लिया गया और वह बोला कि यह काम कुछ भी नहीं है, वह इस काम में मदद देने के लिए तैयार हो गया। जब यह बातचीत चल गई तो यह पूछा गया कि वह व्यक्ति इस काम में सहायता देने के लिए क्या लेगा। 700 अफगानी रुपयों पर यह काम तय हो गया। भीतर ही भीतर इटालियन दूतावास से बातचीत चल ही रही थी, परंतु उससे अधिक प्रगति इस कारण नहीं हो पा रही थी। काबुल में उनका जो दूतावास था उसको यह अधिकार नहीं था कि वह ऐसे महत्वपूर्ण विषय में कोई निर्णय अपने आप करे। इस कारण जो भी बात मालूम होती थी उसे वे रोम और बर्लिन में लिख करके भेजते थे। उन दिनों रोम और बर्लिन प्रत्येक विषय में एक दूसरे से मिलकर के काम करते थे। बात यह है कि उन दोनों देशों की यानी कि इटली और जर्मनी की सेनाएं एक होकर के महायुद्ध में अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ रही थीं। जब सुभाष बाबू तथा उत्तम चंद ने यह देखा कि इटली के दूतावास की ओर से कोई निर्णय नहीं हो रहा है तो स्वाभाविक रूप से वे चोरी से बाहर जाने के कार्यक्रम पर अधिक ध्यान देने लगे। यहां तक कि उस व्यक्ति को रुपयों का कुछ अंश भी दे दिया गया। यह योजना इतनी परिपक्व हो गई कि काबुल से चल देने की बात आई और उस व्यक्ति ने कहा कि यदि जल्दी है तो अफगानिस्तान की पश्चिमोत्तरी सीमा की ओर से जाने वाली लारी में आसन सुरक्षित करा लेते हैं, यानी कि सीट रिजर्व करवा लेते हैं। इतने में इटालियन दूतावास की ओर से यह समाचार आया कि इटली के कुछ व्यक्ति सुभाष बाबू को लेने के लिए आ रहे हैं, परंतु साथ ही यह बताया गया कि उनके आने में 6-7 दिन लगेंगे। ऐसे समय में उत्तम चंद ने बुद्धि से काम लिया और चोरी से अफगानिस्तान के रास्ते ले जाने में सहायता करने वाले व्यक्ति को यह कहकर के प्रतीक्षा करने के लिए कहा कि जो व्यक्ति बाहर जाने वाला है वह एकाएक बीमार पड़ गया है, उसके अच्छा होने के पश्चात ही यह कार्यक्रम चालू हो सकेगा। उस व्यक्ति को यह नहीं बताया गया कि बाहर जाने वाला व्यक्ति कोई और नहीं सुभाष चंद्र बोस है। उसे इतना भेद बताने की कोई आवश्यकता नहीं थी। संभव है कि उसे भेद बता दिया जाता तो वह और रुपए मांगता, क्योंकि वह एक पेशेवर तस्कर व्यापारी और जुआरी था। जो कुछ भी कमाता था उसी को जुए में फूंक करके बैठ जाता था। सौभाग्य से इटालियन दूतावास की ओर से संदेश आ गया और वह सही प्रमाणित हुआ। एक दिन वह आया जब दूतावास की ओर से यह संदेश मिला कि सुभाष बाबू का फोटो उतरवाया जाए जिससे कि उनका पासपोर्ट बन सके। संदेश पाकर के सुभाष बाबू ने अपना फोटो उतरवाया और मिस्टर कैरोटना के नाम से उनका पासपोर्ट बनाया गया। उनका सारा सामान सूटकेस में बंद कर दूतावास के हवाले कर दिया गया। 17 मार्च को सुबह सुभाष बाबू अंतिम बार उत्तम चंद से मिले। 18 मार्च को सुबह 9 बजे सवेरे सुभाष बाबू दो जर्मनों और एक इटालियन के साथ रवाना हो गए। दोनों जर्मन इस कारण भेजे गए कि हिटलर यह चाहता था कि सुभाष बाबू बीच में फंस करके इटली में न रह जाएं। हिटलर चाहता था कि वे आकर के जर्मन में रहें और वहीं से अंग्रेजों के विरुद्ध प्रचार प्रसार करें। सुभाष बाबू 28 मार्च को सकुशल बर्लिन पहुंच गए। यात्रा की दृष्टि से यह उनके लिए बहुत ही अच्छा रहा, क्योंकि इसमें कोई शारीरिक कष्ट झेलना उन्हें नहीं पड़ा। और इसके विपरीत यदि वे चोरी से उस व्यक्ति से सहायता के रूप में रूस या जर्मनी चले जाते तो रास्ते में बहुत सारे कष्टों का उन्हें सामना करना पड़ सकता था। श्रोताओं, आगे क्या हुआ यह हम आपको बताएंगे एक छोटे से देशभक्ति गीत के बाद।

गीत से पहले हम बात कर रहे थे कि नेताजी सकुशल बर्लिन पहुंच गए। बर्लिन पहुंचने के बाद उनकी मुलाकात हिटलर से हो गई। हिटलर ने उनकी अवस्था देखी, उसने उन्हें सिंगापुर भेजने की व्यवस्था कर दी। पनडुब्बी तैयार की गई, सुभाष बाबू उसमें सवार होकर के हजारों मील दूर समुद्र पार करने के लिए तैयार हो गए। रास्ते में पड़ने वाले समुद्रों पर ब्रिटिश जलसेना का पहरा रहता था। स्थान स्थान पर तैरने वाले विराट विस्फोटक भी लगे हुए थे, जिनसे स्पर्श होते ही पनडुब्बी के उड़ जाने का भी खतरा बना हुआ था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस सकुशल सिंगापुर पहुंच गए। सुभाष बाबू ने बंदी करके लाए गए भारतीय सैनिकों तथा प्रवासी भारतीयों की एक सुसंगठित सेना बनाई। सुभाष बाबू की आज्ञा पाकर सारे प्रवासी भारतीयों ने अपने खजाने के मुंह खोल दिए। लाखों रुपए चंदे के रूप में उनके पास आ गया। ऐसा लग रहा था कि मानव भारतीयों ने अपना सर्वस्व नेताजी सुभाष चंद्र बोस को दे दिया था। जापानी सरकार सहायता दे रही थी, परंतु सुभाष बाबू ने जापान की सब बातों को आंख बंद करके नहीं मानना था। कई बार जापानी अधिकारी सुभाष बाबू के बीच गहरे मतभेद भी हो गए थे, परंतु सुभाष बाबू अपने ही मत पर डटे रहते थे और वे इतना कष्ट उठा करके किसी सरकार का एजेंट बनने नहीं आए थे कि वे यह समझकर आए थे कि अंग्रेजों के दुश्मन होने के नाते जापानी भारतीयों को स्वतंत्र होने की सहायता देंगे। इसलिए जहां भी उन्हें जैसा ज्ञात हुआ उसके विपरीत आचरण हो रहा था, उन्होंने उसका विरोध भी किया। यदि कोई व्यक्ति जापानियों से इस प्रकार मतभेद व्यक्त करता है, जापानी उसकी एक नहीं सुनते थे। फिर भी सारी परेशानियों के बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस वहां पर केवल आजाद हिंद फौज बनाकर ही शांत नहीं हुए, उन्होंने एक आजाद हिंद सरकार भी बनाई। जापानियों तथा जर्मनियों से यह कहा कि सरकार के साथ उन्हें कई प्रकार के व्यवहार करना पड़ेंगे, जैसा कि वे किसी भी स्वतंत्र सरकार के साथ उनके अधिकारी करते हैं। जर्मनी और जापानियों ने इस बात को मान लिया और जर्मन पक्ष से लड़ने वाले सब सरकारों से आजाद हिंद फौज को नियमित रूप से स्वीकार कर लिया गया। और एक बार एक बहुत बड़ा जापानी अधिकारी सुभाष चंद्र बोस से मिलने आया। सुभाष बाबू आजाद हिंद फौज सरकार के राष्ट्रपति थे, परंतु उस व्यक्ति ने मिलने के लिए जिन नियमों और अनुष्ठानों का पालन करना आवश्यक समझा था, उन्हें वो पूरा नहीं करता था। इस पर सुभाष बाबू ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया। जब जापानी सरकार ने सब नियमों तथा अनुष्ठानों का पालन किया है, तभी उसे मिलने की अनुमति दी गई। और ऐसी उनके जीवन में एक नहीं कई घटनाएं हुई। और श्रोताओं, इस तरह से आजाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में हो गई। श्रोताओं, इसके बाद आजाद हिंद फौज ने बर्मा के जंगलों के मार्ग से भारत पर आक्रमण किया, परंतु इस समय जर्मनी और जापान दुर्बल पड़ने लगे थे। अमेरिका के युद्ध में आ जाने से ब्रिटिश पक्ष का पड़ला भारी पड़ रहा था। आजाद हिंद फौज सफल नहीं हो सकी थी। ज्यों ज्यों ब्रिटिश सेना विजयी होने लगी, त्यों त्यों आजाद हिंद फौज के नेतागण ब्रिटिश कारागारों में पहुंचने लगे। यहां इनकी सारी कहानी बताने की आवश्यकता नहीं है कि देश के नेताओं ने आजाद हिंद फौज की मुक्त कंठ से प्रशंसा की, और जब उन पर लाल किले में मुकदमा चलाया तो जवाहरलाल नेहरू आदि नेताओं ने उनकी ओर से मुकदमे की पैरवी की। सुभाष बाबू पकड़े नहीं जा सके। कहा जाता है हवाई जहाज से यात्रा करते हुए हवाई जहाज में आग लग गई और वो उसी में शहीद हो गए, और इस प्रकार देश के एक साहसी नेता का अंत हो गया। श्रोताओं, ऐसे महान क्रांतिकारी को रेडियो आजाद हिंद शत शत नमन करता है, जिनके नाम से अंग्रेज सरकार थर थर कांपती थी। अपने मित्र प्रमोद शर्मा को अनुमति दीजिए।

0: रेडियो मधुबन 90.4 एफएम का
1: इस लहराते तिरंगे को सलाम।
0: मैं तिरंगा हूं, केसरिया सफेद हरा रंग और अशोक चक्र मेरी पहचान है। मुझे गर्व है कि मैं भारत का राष्ट्रध्वज हूं, उस भारत का जहां गुरु नानक, महात्मा गांधी, गौतम बुद्ध जैसे महान आत्माओं ने जन्म लिया। मेरा गौरव और बढ़ जाता है जब मुझे किसी शहीद सैनिक के शरीर से लपेटा जाता है। मुझे गर्व होता है जब मैं देखता हूं कि इतने रंग, रूप, जातियां, भाषाएं होते हुए भी हर हिंदुस्तानी मिलजुल कर रहता है। पर मैंने और भी बहुत कुछ देखा है। इस आजादी को पाने के लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का खून, फिरंगी सरकार का हम पर वो जुल्म, मुझे हाथ में पकड़े हुए वंदे मातरम की वो आवाज आज भी

0: अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए आए हैं, और ये एक सुंदर सा बैंड दिख रहा है मेरे को। इनके पास पियानो है, हारमोनियम है, तबला है, फ्लूट है, और क्या क्या है आप लोगों के पास?
1: ढोलक है, क्लैप बॉक्स है, ऑक्टोपैड है,
0: ऑक्टोपैड है,
1: गिटार है।
0: तो हम इन सबसे पहले तो इनका परिचय पूछेंगे, कौन सी क्लास में
1: है? मैं मनन शर्मा हूँ और मैं अभी 9th क्लास में हूँ, आदर्श विद्या मंदिर शंकर विद्यापीठ में पढ़ रहा हूँ अभी मैं, जहाँ पे वो रेजिडेंशियल है, मतलब वहाँ हॉस्टल है।
0: आप कहाँ से हैं वैसे?
1: मैं वैसे जयपुर का हूँ।
0: और आपका नाम?
2: मेरा नाम अमर सिंह है, मैं UVM में पढ़ता हूँ, मैं क्लास 8th में हूँ।
0: आप क्लास 8th में, आप क्या प्ले करते हैं?
2: मैं सिंगिंग करता हूँ।
0: सिंगिंग करते हैं, अरे वाह, आज तो फिर हम आपको सुनेंगे, पक्का सुनेंगे। आप क्या प्ले करते हैं?
2: मैं फ्लूट।
0: और आप?
3: मैं दिग्विजय सिंह राठौड़ है मेरा नाम, मैं जोधपुर से हूँ।
0: अच्छा।
3: और मैं सिंगिंग करता हूँ।
0: सिंगिंग करते हैं,
3: क्लास 8th।
0: क्लास 8th में, वेरी गुड। तो ये सब बहुत एकदम सुंदर क्रिएटिव बच्चों का ग्रुप है। अच्छा, आज स्वतंत्रता दिवस है, राइट? हाँ। कौन सा है आप लोगों को पता है, कौन सा ईयर है हमें स्वतंत्र हुए?
1: 80वां।
0: वेरी गुड। आप लोगों को तो क्या समझते हो स्वतंत्रता के बारे में, आप कुछ बताओ?
1: स्वतंत्रता बहुत जरूरी है, मतलब हमारे लिए तो, जैसे जब अंग्रेज थे हम टैक्स भी उनको देते थे और हक हमारे ऊपर था नहीं, मतलब हम हमारी जमीन पर रह के हमारा अधिकार नहीं है उसमें, वो जो हमारे साथ करे हमको मानना पड़ता था। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हम 80 साल पहले आज़ाद हुए अंग्रेजों से, हमने भगाया उनको।
0: और जब ये दिन आता है आपको कैसा, अंदर से कैसा लगता है? आप स्कूल में क्या करते हो, मतलब जनरली?
1: जैसे मेरे को तो बहुत बढ़िया लगता है, और स्कूल में आज प्रोग्राम था, गीत था, और अभी लेफ्टिनेंट कमांडर आए थे आज हमारे स्कूल में हमको संबोधित करने।
0: ये आर्मी वाले लेफ्टिनेंट कमांडर साहब आए थे,
1: तो उन्होंने भी हमको बहुत मतलब प्रोत्साहन दिया, बताया कि क्या क्या मतलब कितना महत्वपूर्ण है, मतलब 15 अगस्त हमारे लिए।
0: ओके। अच्छा, आप लोग जैसे ये कर्नल साहब आए आपके, लेफ्टिनेंट कर्नल, आप लोगों में लगता है किसी को आर्मी में जाना है, किसी को नहीं आर्मी के लिए, किसी को आता है ना?
1: कभी कभी
0: लगता है, क्योंकि सैनिक होते हैं, देश की रक्षा करते हैं, और भारत देश में सैनिकों का सब लोग बहुत मान भी करते हैं। तो मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, आप अपनी पढ़ाई में, अपने कैरियर में बहुत आगे जाएं, और अपना लक्ष्य, जैसे आप लोग अपनी क्रिएटिविटी हमेशा ही प्रस्तुत करते हो, ऐसे सदा क्रिएटिव रहें। अच्छा, आप लोगों को ये आप, क्योंकि आप लोग तो हॉस्टल में हो, तो यहाँ तो समझो आपका टाइम टेबल फिक्स होता है, ठीक है? पर आजकल आप देखते हो बहुत सारे बच्चे लोग, खास करके 10वीं और 12वीं में जैसे जाते हैं, जहाँ चाहे वो हॉस्टल में रहते हैं, कई बार वो है ना नशे के आदि होते हैं, आप लोगों को पता है ना, एडिक्शन, आइदर दे स्टार्ट विद स्मोकिंग और चुंगिंग समथिंग, राइट? तो आप लोग क्या समझते हो, ये ठीक है यार?
1: ये मतलब इस उम्र में तो बहुत गलत है, क्योंकि मतलब सीखने की उम्र है, पढ़ाई की उम्र है, तो इसमें तो ये करना बुरी बात है।
4: वैसे भी करने से
0: नहीं, अगर आपको मौका मिल रहा तो करोगे क्या?
1: ना,
0: क्योंकि एक ऐसी आदत है, आप जैसे इस चीज में जाओगे ना, आप देखोगे जितना आपका मन आज उमंग उत्साह में होता है, क्रिएटिव होता है, सबसे पहले आपकी एबिलिटी, जो ये विजुअलाइजेशन एबिलिटी है या क्रिएटिव जो आपकी एबिलिटीज हैं, उस पर ऐसा बनेगा, ठीक है? तो इन चीज़ों को आप हमेशा दूर रहें, हम ऐसी मैं ऐसी भावना रख सकता हूँ आपके लिए?
1: हाँ, रखिए रखिए।
0: और जूनियर, तुम आओ, क्या नाम है बताओ?
5: निखिल।
0: क्या?
5: निखिल।
0: निखिल, निखिल कौन सी क्लास में?
5: सेवंथ
0: में। यार तो हाइट बढ़ाओ थोड़ा सा, पुशअप मारो। मजा आता है? कहाँ से आप?
5: जोधपुर।
0: आप भी जोधपुर से? तो आज कैसा स्वतंत्रता दिवस कैसे मनाया आपने? हाँ? कैसे मनाया, क्या किया सुबह बताओ? सुबह सुबह क्या किया बताओ? निखिल बता।
6: मेरा नाम पार्थ नागर है, मैं क्लास 8 में हूँ, मैं कोटा से हूँ। गाना स्टार्ट करें?
0: हाँ। ये जो मैंने जैसे बताया, ये ग्रुप है ना, एक कल्चरल ग्रुप है बच्चों का ABM स्कूल के, तो हमारे साथ सिंगर हैं कई सारे सुंदर सुंदर, वो गाएंगे। हाँ चलो सब लोग।
6: क्या मन

से पागल हूँ, जिसकी गोदी में खेला मैं चला उसी के कंधे पर। लाडले जब सरहत जाएंगे।

0: लौटे, जो वापस ना लौटे वो मिट्टी के बेटे।
1: बहुत सुंदर, ये आज गीत आप गाने वाले हो? वेरी गुड, आपका बैंड वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो ये थे हमारे साथ आदर्श विद्या मंदिर के बच्चे और बहुत मजा आया।

0: रेडियो मधुबन 90.4 एफएम का
1: इस लहराते तिरंगे को सलाम।
0: सन 1904 का वो दिन जब मैं पहली बार अस्तित्व में आया, या कह सकते हैं मेरे जन्म का दिन। 1857 की चिंगारी इस समय शोला बन चुकी थी, जिसकी लपटों ने अंग्रेजी हुकूमत को बुरी तरह झुलसा दिया था। जितना उनका जुल्म बढ़ता, उतना ही हमारा हौसला। इन्हीं हौसलों में नई जान भरने और सभी देशभक्तों को एकजुट करने स्वामी विवेकानंद जी की एक आयरिस शिष्या निवेदिता ने मुझे पहली पहचान दी। मुझे दो रंगों में बनाया गया, लाल और पीला। लाल रंग आजादी की लड़ाई को दर्शाता था, वहीं पीला विजय को। इंद्र के हथियार और शक्ति का प्रतीक वज्र एवं शुद्धता का प्रतीक कमल के फूल से इसे सजाया गया और बंगाली में वंदे मातरम लिखा गया। मैंने देशभक्तों के खून में नया उबाल पैदा किया और कई देशभक्त मेरे नीचे ही शहीद हुए। आगे की कहानी के लिए सुनते रहिए रेडियो मधुबन।
2: मैं भारत भूमि, हाँ जी हाँ, मैं तुम्हारी भारत भूमि। आज मेरा भी मन हुआ तुम्हारे बीच आकर कुछ अपनी कहूँ और कुछ तुम्हारी सुनूं। देख रही हो बहुत उत्साह के साथ आप सब आज़ादी का महोत्सव मना रहे हो। मनाओ भाई मनाओ, इस बेला को खूब उमंग के साथ मनाओ। मेरी दास्तान भी अजब गजब है। एक कालखंड ऐसा भी था जब उजड़ना बिखरना यही मेरी नियति बन गया था। लेकिन 80 वर्ष पूर्व जब मैं अपनों के पास आ गई तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उफ, बड़ा मुश्किल होता है दूसरों की दास्तां में रहना। लेकिन मेरे अपने बच्चों ने वीरता का परिचय देते हुए मुझे मुक्त करवा लिया। परंतु दास्तां से मुक्ति की इस यात्रा में मैंने कितने अपनों को खोया है, वह दर्द आज भी मेरे सीने में दफन है। यह लो, खुशी के इस मौके पर मैं भी जाने कैसी बात करने लग गई। यह तो जी भर कर झूमने का समय है। झूमो भाई झूमो। और एक माँ जब अपने बच्चों को खुशी से झूमते हुए देखती है तो क्या कहने। तुम भारतवासियों के लिए मैं जमीन का एक टुकड़ा नहीं हूँ, तुमने तो मुझे माँ का दर्जा दिया है। और हाँ, एक राज की बात बताऊं, हमारी इस नातेदारी पर विदेशी भी सुखद आश्चर्य करते हैं। वो आश्चर्य करते हैं और मैं गर्व से फूली नहीं समाती। मैं तो उनसे कहती हूँ, आओ भाई आओ, हमारे रिश्ते को समझने के लिए और मुझे देखने के लिए खोल दो अपना तीसरा नेत्र। मैं उन्हें बताती हूँ, मैं जप तप व्रत ओज अहिंसा सेवा और संतोष की भूमि हूँ। मैं ज्ञान विज्ञान श्रद्धा आस्था भक्ति और अध्यात्म से सजी भूमि हूँ। मैं राम कृष्ण वैधेय और राधा जैसी तमाम पवित्र देव आत्माओं से धन्य भूमि हूँ। मैं सुर स्वर मंत्र और उपदेशों से गुंजायमान भूमि हूँ। मैं शस्त्र और शास्त्र दोनों को धारण करने वाली भूमि हूँ। मैं उत्सव, महोत्सव और जीवन के हर रंग से रंगी भूमि हूँ। अगर मेरी दिव्यता और भव्यता के दर्शन करना चाहते हो तो विलक्षण दृष्टि के साथ आ जाओ। कभी कभी मुझे लगता है कि कहीं मेरी संपन्नता ही तो मेरे दुख का कारण नहीं बन गई थी, क्योंकि इतिहास साक्षी है कि दरिद्रता में कोई आकर्षण नहीं होता। मुझ पर आक्रमण कर कर मेरे बौद्धिक, आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक आंचल को खींचकर तहस नहस करने की यूं तो बहुत कोशिश की गई, पर मैं आखिर तुम्हारी माँ ठहरी, कमजोर कैसे हो सकती हूँ? मैंने भी अपनी समृद्ध संस्कृति को इतना कसकर पकड़ लिया था कि मुझ पर आंच ना आ सकी। तभी तो हजारों बरसों पूर्व के वेद, पुराण, तीज, त्योहार, कलाएं, भाषाएं आज भी जीवित हैं। सुनो भाई सुनो, मैं अपने ऊपर टेढ़ी नजर डालने वालों से कहती हूँ, तुम मुझे कभी अपना नहीं बना सकते, लेकिन हाँ, मैं माँ हूं ना, तो तुम्हें अपनापन जरूर दे सकती हूँ। मैं भारत भूमि, तुम्हारे पूर्वजों की माँ, तुम्हारे वंशजों की माँ और तुम्हारी माँ, तुम्हें पाकर मैं धन्य हो गई। मैं भारत भूमि, तुम्हें पाकर मैं धन्य हो गई।

0: मधुबन 90.4 FM का
1: इस लहराते तिरंगे को सलाम।
0: '1904 के बाद मैं फिर 1906 में एक नए रूप में आया, इस बार तीन रंगों में, लाल, नीला और पीला। मुझे सूरज और आठ तारों की छवि से सजाया गया। मुझ पर देवनागरी लिपि में वंदे मातरम लिखा गया, यानी मां तुम धन्य हो, और भारत मां की हवाओं में लहराते हुए मैं भी धन्य हो गया। वंदन उन माताओं का जिन्होंने भारत को विश्व वंदनीय बनाया एवं विश्व पूजनीय बनाया। इसके बाद 1907 में मैडम बीकाजी रुस्तम कामा, वीर सावरकर और श्याम जी कृष्ण वर्मा जी ने मुझे फिर से नया अवतार दिया, इस बार हरे सुनहरे केसरिया और लाल रंग में। इस साल 22 अगस्त को मैडम बीका जी ने मुझे जर्मनी यानी पहली बार विदेशी धरती पर लहराया, जिसे देख दुश्मन सरकार की रूह कांप उठी। आगे की कहानी के लिए सुनते रहिए रेडियो मधुबन।
2: आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति विश्लेषण।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के कार्यक्रम विश्लेषण में आपका स्वागत है, मैं हूं शक्ति सिंह। श्रोताओं, करीब 6 दशक तक देश की आंतरिक सुरक्षा के सामने बड़ी चुनौती रहे वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत ने इस वर्ष एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। आज देश का कोई भी जिला वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिले की श्रेणी में नहीं है। देश में नक्सलवाद का प्रभाव लगभग पूरी तरह समाप्त हो चुका है। लेकिन नक्सलवाद की शुरुआत कैसे हुई, ये देश के कई हिस्सों तक कैसे फैला और फिर ऐसा क्या बदला कि भारत इस चुनौती से बाहर निकलने में सफल हुआ, साथ ही नक्सल मुक्त भारत की इस उपलब्धि के बाद आगे की राह और सरकार की प्राथमिकताएं क्या हैं, आज के विश्लेषण में हम इन्हीं विषयों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। नक्सलवाद का नाम सुनते ही हमारे मन में हिंसा, सुरक्षा बलों पर हमले और दूर दराज के जंगलों की तस्वीरें उभरती हैं। लेकिन संसद में नक्सलवाद पर चर्चा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक ऐसा पक्ष सामने रखा जो इस पूरी चुनौती की मानवीय कीमत को समझाता है। उन्होंने एक ऐसी आदिवासी बेटी का उल्लेख किया जो हिंसा और भय के माहौल के कारण 32 वर्ष की उम्र तक अपने हाथों में मेहंदी तक नहीं लगा सकी। उसने पहली बार मेहंदी आत्मसमर्पण करने के बाद पुनर्वास केंद्र में देखा और ये सिर्फ इकलौती घटना नहीं है। नक्सली हिंसा ने करीब 15,000 बच्चों का जीवन प्रभावित किया और हजारों परिवारों ने दशकों तक नक्सलवाद का दंश झेला। श्रोताओं, इस चुनौती की शुरुआत कैसे हुई और ये इतने बड़े क्षेत्र तक कैसे पहुंची, साथ ही भारत ने इस स्थिति को बदलने के लिए क्या रणनीति अपनाई, आइए जानते हैं इस विशेष रिपोर्ट में।
4: भारत में नक्सलवाद की शुरुआत वर्ष 1967 में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के नक्सलबाड़ी गांव से हुई। यहीं से शुरू हुए एक हिंसक आंदोलन ने धीरे धीरे देश के कई राज्यों में अपनी जड़ें जमा ली। समय के साथ ये केवल कानून व्यवस्था का मुद्दा नहीं रहा बल्कि देश की आंतरिक सुरक्षा के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक बन गया। माओवादी विचारधारा लोकतांत्रिक व्यवस्था के बजाय हिंसा और सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से सत्ता परिवर्तन में विश्वास रखती है। इस विचारधारा में बंदूक के दम पर व्यवस्था बदलने की बात कही जाती है। इनका अध्याय वाक्य था कि सत्ता बंदूक की नली से निकलती है। इसी सोच के साथ अलग अलग माओवादी संगठनों ने कई इलाकों में अपनी गतिविधियां बढ़ाई। वर्ष 2004 में दो बड़े संगठनों के विलय के बाद कई राज्यों में नक्सली गतिविधियों में तेजी देखी गई। कई दूर दराज और वन क्षेत्रों में लंबे समय तक सड़क, संचार, शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशासन जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी रही। इन इलाकों में शासन की पहुंच सीमित थी। माओवादियों ने इसी स्थिति का फायदा उठाया और कई क्षेत्रों में उन्होंने सड़कों, स्कूलों और दूर संचार जैसी सुविधाओं को भी निशाना बनाया ताकि ये इलाके मुख्य धारा से कटे रहें। वर्ष 2010 के आसपास नक्सली हिंसा अपने चरम पर थी। इसके बाद केंद्र और राज्य सरकारों ने इस चुनौती से निपटने के लिए समन्वित रणनीति पर काम शुरू किया। वर्ष 2015 में वामपंथी उग्रवाद से निपटने के लिए राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना लागू की गई। इस रणनीति में केवल सुरक्षा अभियानों पर ही नहीं बल्कि विकास कार्यों, स्थानीय समुदाय के अधिकारों, बेहतर प्रशासन और लोगों का विश्वास जीतने पर भी समान रूप से जोर दिया गया। इस समन्वित प्रयास का असर धीरे धीरे जमीन पर दिखाई देने लगा। सुरक्षा व्यवस्था मजबूत हुई, विकास कार्यों में तेजी आई और शासन की पहुंच उन क्षेत्रों तक बढ़ी जहां पहले ये बहुत सीमित थी। परिणाम स्वरूप वर्ष 2014 में जहां 126 जिले वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित थे, वहीं ये संख्या घटते घटते मार्च अप्रैल 2026 में शून्य हो गई।
3: श्रोताओं, इस बदलाव के पीछे स्पष्ट राजनीतिक इच्छा शक्ति, केंद्र और राज्य के बीच बेहतर समन्वय और जमीन पर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इस विषय पर आकाशवाणी रायपुर के संवाददाता विकल्प शुक्ला ने एंटी नक्सल ऑपरेशन के पूर्व अतिरिक्त महानिदेशक राजेंद्र कुमार विज से विशेष बातचीत की। सुनिए उन्होंने क्या कहा।
5: एक सबसे महत्वपूर्ण जो कारण लगता है मुझे वो है पॉलिटिकल विल। देखिए, एक कमिटमेंट के साथ एक स्टेटमेंट जारी हुई गृहमंत्री की ओर से और उसको पूरा करने के लिए जो स्टेप्स लेने थे वो लिए गए। उसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि पिछले 2 साल के अंदर करीब 100 से ज्यादा सिक्योरिटी कैंप्स स्थापित होना। देखिए, सिक्योरिटी कैंप्स पहले भी थे, बस्तर बहुत बड़ा इलाका है, तो वो जो सिक्योरिटी कैंप्स उन इलाकों में स्थापित हुए जहां सिक्योरिटी वैक्यूम था, वो अबूझमाड़ के अंदरूनी इलाके थे, साउथ और वेस्ट बस्तर के अंदरूनी इलाके थे, नीचे के इलाके थे। वहां पर जब तैनाती हुई तो माओवादी की बटालियन या बड़े फॉर्मेशन, उनके शेल्टर के स्थान, उनकी तकनीकी इकाइयां जो थी हथियार बनाने वाली, उनके काम जब डिस्टर्ब हुए, शेल्टर उनके जब डिस्टर्ब हुए, उनको मूव आउट करना पड़ा, तो ये दौर था जिसका ज्यादा असर पड़ा। तो पॉलिटिकल विल और उसके साथ सप्लीमेंट हुए रिसोर्सेज जो लगने थे, क्योंकि केंद्र और राज्य सरकार दोनों एक ही पेज पर थे, दोनों में कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा था और आगे बढ़ने में कोई देर नहीं लगी।
3: जमीनी स्तर पर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने में पुलिस बलों की क्षमता बढ़ाने की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही। इस बारे में भी राजेंद्र कुमार विज ने अपने अनुभव साझा किए, आइए सुनते हैं।
5: मुझे याद है जब छत्तीसगढ़ बना था तब छत्तीसगढ़ का पुलिस बल 22-23 हजार था मात्र। आज अगर आप देखेंगे तो वो बढ़कर 80 हजार हो गया है। जो हमारी बटालियंस थी वो 7 थी, बढ़कर 22 हो गई हैं। थाने थे, कई गुना बढ़ गए हैं। तो ये जो पुलिस का जो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता है इसमें काफी समय लगता है। इवन जब मैं वहां पर आईजी पुलिस था बस्तर में, तब वहां इवैक्यूएशन के लिए हेलीकॉप्टर नहीं हुआ करता था। ये 2006-7-8 की बात, उस समय चरम सीमा पर था माओवाद की जो हिंसात्मक कार्रवाइयां थी। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो बढ़ने में अलग अलग स्कीम्स केंद्र सरकार लाई, कुछ राज्य सरकार लाई, पुलिस स्टेशन का फोर्टिफिकेशन हुआ, उनकी पेरीमीटर सिक्योरिटी बढ़ी, टावर्स लगे, इंटेलिजेंस के लिए अलग एजेंसी बनाई गई, स्पेशल टास्क फोर्स बनाए गए। वो समय था बीच में डीआरजी डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड का गठन हुआ 2015 में। उसके अलावा जो बस्तर फाइटर बल है वो 3000 स्वीकृत हुआ, जिसमें सिपाही, हवलदार, थानेदार तक 2000 का पद जो है वो नए भर्ती हुए। तो लोकल लोगों के भर्ती होने से क्या होता है कि वो एरिया को जानते हैं, वो भाषा को जानते हैं, वो संस्कृति को जानते हैं, उनके कुछ रिश्तेदार नक्सली हैं और कुछ इस तरफ हैं। तो वो जो एडवांटेज पुलिस को मिला लोकल लोगों को भर्ती करने का, वो अभी पिछले सालों में कुछ मिला है।
3: श्रोताओं, किसी भी बड़ी चुनौती पर मिली सफलता को बनाए रखना उसे हासिल करने जितना महत्वपूर्ण होता है। आज जब देश का कोई भी जिला वामपंथ उग्रवाद प्रभावित नहीं माना जाता, तब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आगे की राह क्या होगी। जिन क्षेत्रों ने वर्षों तक हिंसा का दौर देखा, वहां अब शांति और विकास को कैसे मजबूत किया जा सकता है, आइए जानते हैं इस अगली रिपोर्ट में।
4: आज देश का कोई भी जिला अब वामपंथी उग्रवाद प्रभावित नहीं माना जाता, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि सरकार का काम पूरा हो गया है। अब चुनौती इस उपलब्धि को लंबे समय तक बनाए रखने की है ताकि नक्सलवाद दोबारा सिर न उठा सके। इसी सोच के साथ सरकार ने 37 जिलों को लेगेसी एंड थ्रस्ट जिलों की श्रेणी में रखा है। ये जिले अब नक्सल प्रभावित नहीं है, लेकिन यहाँ कुछ समय तक सुरक्षा और विकास से जुड़े प्रयास जारी रखे जाएंगे। इसके अलावा एक जिले को डिस्ट्रिक्ट ऑफ कंसर्न की श्रेणी में रखा गया है, जहां नक्सली हिंसा और उनका संगठन पूरी तरह समाप्त हो चुका है, लेकिन स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। अब ध्यान केवल सुरक्षा अभियानों पर नहीं बल्कि ये सुनिश्चित करने पर है कि विकास का लाभ हर गांव और हर परिवार तक पहुंचे। सड़क, दूरसंचार, शिक्षा, कौशल विकास, बैंकिंग सेवाओं और सरकारी योजनाओं की पहुंच लगातार बढ़ाई जा रही है। साथ ही स्थानीय समुदायों के अधिकारों को मजबूत करने, पंचायतों की भूमिका बढ़ाने और आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों के पुनर्वास पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इस बदलाव की सबसे बड़ी तस्वीर उन सुरक्षा शिविरों में दिखाई देती है जिन्हें कभी नक्सली हिंसा से निपटने के लिए स्थापित किया गया था। अब ऐसे एक तिहाई सुरक्षा शिविरों को जन सुविधा केंद्रों में बदला जा रहा है। यहाँ स्थानीय लोगों को आजीविका, कौशल विकास, सरकारी योजनाओं की जानकारी, डिजिटल सेवाएं, स्वास्थ्य सुविधाएं और खेल तथा सांस्कृतिक गतिविधियों जैसी कई सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। छत्तीसगढ़ के नेतानार में पहला जन सुविधा केंद्र शहीद वीर गुंडाधुर सेवा डेरा केंद्र के रूप में स्थापित किया गया है। इसके साथ ही जनजातीय युवाओं को देश के अलग अलग हिस्सों से जोड़ने के लिए ट्राइबल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम चलाया जा रहा है। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
3: श्रोताओं, कभी नक्सलवाद की चुनौती को देश के एक बड़े भूभाग तक फैले तथा कथित रेड कॉरिडोर के रूप में देखा जाता था। एक समय तिरुपति से पशुपति तक इसके प्रभाव की चर्चा होती थी, लेकिन आज भारत का कोई भी जिला वामपंथ उग्रवाद प्रभावित जिले की श्रेणी में नहीं आता है। जिन क्षेत्रों ने दशकों तक हिंसा का दौर देखा, वहाँ अब शांति के साथ शिक्षा, रोजगार और बेहतर जीवन के अवसर लगातार बढ़ रहे हैं, और यही नक्सल मुक्त भारत की सबसे बड़ी पहचान और सबसे बड़ी सफलता भी है। नमस्कार, इस कार्यक्रम को तैयार किया हमारे सहयोगी अनिकेत ने, प्रस्तुति सहायक ललित।

0: मधुबन 90.4 FM का
1: इस लहराते तिरंगे को सलाम।
2: सोलह में भारत देश एक अजीबोगरीब रूप इख्तियार कर चुका था। एक तरफ हम एकजुट होकर अंग्रेजी सरकार को देश से खदेड़ने के लिए अपने दिलो जान से लगे थे, वहीं जाति रंग भाषाएं हमें आपस में बांट रहे थे। इन मोतियों को एकता और देश प्रेम की डोर में पिरोए रखने के लिए पिंगली वेंकैया ने हाथ से बनी खादी से मुझे बनाया और लाल हरे रंग में मुझे रंग दिया। गांधी जी की सलाह पर मुझे चरखे से सजाया भी गया, पर गांधी जी को मेरा ये रूप नहीं भाया, क्योंकि उनके मुताबिक मैं भारत के हर जाति और वर्ग को अपने आप में समाने में असमर्थ था। मेरी कहानी यूं ही आगे बढ़ती रहेगी, कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ऐसी कहानी बार बार सुनने को नहीं मिलती। सुनते रहिए रेडियो मधुबन 90.4 FM।

0: मधुबन 90.4 एफएम का
1: इस लहराते तिरंगे को सलाम।
2: सन 1921 वंदे मातरम इस आवाज से पूरा हिंदुस्तान गूंज रहा था, जिसे सुन अंग्रेजी हुकूमत का दिल दहल उठा। हर कोई ये समझ गया था कि एकता ही वो हथियार है जिससे हम अंग्रेजों को इस देश से खदेड़ सकते हैं। इसी एकता को और मजबूत करने के लिए गांधी जी ने मुझे नया रूप दिया। इस बार हरे, लाल और सफेद रंग का, और मुझे चरखे से सजाया गया। कांग्रेस कम्युनिटी को मेरा यह रूप पसंद नहीं आया, लेकिन मुझे क्रांतिकारियों और देश के हर व्यक्ति ने सम्मान दिया और मेरी इज्जत की खातिर अपनी जान तक न्योछावर कर दी। 1931 में पिंगली वेंकैया जी ने मेरे रूप में सुधार किया और लाल की जगह केसरिया रंग में मुझे रंग दिया गया। केसरिया, सफेद, हरे रंग और चरखे से सजा मेरा यह रूप हर किसी ने पसंद किया और मैं औपचारिक रूप से भारतीय ध्वज कहलाया और अनेक देशभक्तों को मैंने आजादी के लिए लड़ने की प्रेरणा दी। आगे की कहानी के लिए सुनते रहिए रेडियो मधुबन 90.4 FM।

0: लहराते तिरंगे को सलाम।
1: और आजादी के कुछ ही दिन पहले भारतीय संविधान सभा की बैठक में मुझे हल्के से बदलाव, जो कि चरखे की जगह सम्राट अशोक का धर्म चक्र था, मुझे मेरा असली स्वरूप दिया गया। मेरा केसरिया रंग देश की शक्ति, साहस और बलिदानों को दर्शाता है। वहीं मध्य का सफेद रंग शांति और सत्य का प्रतीक है। सबसे नीचे हरे रंग की पट्टी उर्वरता, वृद्धि और भूमि की पवित्रता की कहानी कहता है। मध्य में बना चक्र धर्म चक्र कहलाया जाता है, जो सम्राट अशोक द्वारा बनवाए सारनाथ मंदिर से लिया गया है। इसमें 24 धारियां हैं जो समय के चक्र को दर्शाती हैं और हमें निरंतर चलते रहने की प्रेरणा देती हैं। सरकारी झंडा निर्दिष्टीकरण के हाथों मेरी देखरेख होती है, जिनके अनुसार मुझे सिर्फ खादी में ही बनाना चाहिए। प्यार से लोग मुझे तिरंगा भी कहते हैं। मैं एक बार फिर गर्व से कहता हूं कि मुझे गर्व है कि मैं भारत का राष्ट्रध्वज हूं। मेरा निरादर देश का निरादर है और मेरा सम्मान करना भारत का सम्मान करना है। जय हिंद, जय हिंद।

0: लहराते तिरंगे को सलाम।
1: वंदे मातरम,
2: वंदे मातरम,
1: वंदे मातरम,
2: वंदे मातरम,
1: वंदे मातरम,
2: वंदे मातरम,
1: वंदे मातरम,
2: वंदे मातरम।
3: जय हिंद।

0: विद्वान कई हुए वीर कई,
1: ये भूमि है महान,
0: फिर भी प्रणाम करती संस्कृति यहाँ की,
1: ये है कितनी निर्माण,
0: भारत का गौरव गान
1: गाता है इतिहास स्वर्णिम,
0: अनेकता में एकता यहाँ
1: रहता मिला जुला हर रंग।
0: रेडियो मधुबन की ओर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।
2: ओम शांति। आज 15 अगस्त 2026 और आज है स्वतंत्रता दिवस। सभी भारतवासी भाई बहनों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। किसी भी देश के लिए स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस, ये दो दिवस जैसे राष्ट्रीय त्योहार है, जहां हर देशवासी खुशी से झूमता है और अपनी खुशकिस्मती समझता है। भारत का स्वतंत्रता दिवस, यह भी हम भारतवासियों के लिए बहुत बहुत सुखद पर्व के रूप में हम सभी मनाते हैं। आज के दिन हम सभी आजाद हुए और ऐसे समय पर हम सभी उन मूल्यों को याद करें कि जिस मूल्य को लेकर के हमने इस आजादी को प्राप्त किया है, सत्य अहिंसा प्रेम आदि ऐसे अनेक मूल्य को हम अपने जीवन से जोड़ते जाते हैं और इसीलिए ये स्वतंत्रता दिवस हमारे लिए बहुत खास है कि जिन आत्माओं ने इस आजादी के लिए जो बलिदान दिया है उस बलिदान को भी हम याद करते हैं। लेकिन मन में एक प्रश्न आता है, क्या सचमुच हम आजाद हुए? आज कई प्रकार की बेड़ियों में मनुष्य जकड़ा हुआ है। देश की आजादी तो हो गई, देश स्वतंत्र हो गया, लेकिन क्या हम स्वतंत्र हुए? देखा जाता है, महसूस किया जाता है कि आज मनुष्य भी अनेक प्रकार के बंधन में स्वयं को अनुभव कर रहा है। कहां देखो तो 5 विकारों का बंधन है, जिसकी गुलामी में आज मनुष्य अनेक ऐसे विकृत कर्म करने लग पड़ा है। कहीं काम का बंधन है तो कहीं क्रोध का बंधन है, कहीं अहंकार का बंधन है। ये बंधनों ने हमको बहुत दुख कष्ट आदि दिया है। तो दूसरी ओर देखते हैं कि कई लोग अनेक प्रकार के व्यसनों के बंधन में बंध चुके हैं,

रही है, उससे छूटना भी चाहते हैं लेकिन कहीं ना कहीं हिम्मत नहीं। तो इसीलिए भारतवासी ऐसे कई प्रकार के व्यसनों के बंधन में अपने आप को जकड़ता हुआ महसूस कर रहा है। माता पिता परिवार के लोग दुखी हो रहे हैं जब उन्हें पता चलता है कि उनके परिवार के सदस्य इस प्रकार के दुर्व्यसनों के प्रभाव में जकड़े हुए हैं। तो तीसरी ओर देखें तो दिन प्रतिदिन मनुष्य के कर्म ऐसे होते जा रहे हैं जो कर्म भी अनेक प्रकार के बंधन बांध रहा है, जिसको फिर कर्म भोग के रूप में चुप तो करना पड़ता है। तो आज क्या सचमुच हम स्वतंत्र हैं? आवश्यकता है कि हम स्वयं को जानें, अनुभव करें कि हम ये देह नहीं, एक चैतन्य शक्ति आत्मा है और मैं आत्मा अपने असली स्वरूप में शुद्ध और पवित्र हूं। और इस जागृति से शायद हम अपनी वास्तविकता में आए और अनेक ऐसे बंधनों से स्वयं को मुक्त करें और सच्ची आजादी का जीवन के अंदर अनुभव करें। तब यथार्थ रूप में हम स्वतंत्रता दिवस को सही मायने में मना सकते हैं। तो इसीलिए इस बात पर अवश्य आप सभी विचार करेंगे और अपने आप को विकृतियों के बंधन से, कर्म के बंधन से और व्यसनों के बंधन से मुक्त करें, ऐसी शुभ भावना, शुभ कामना सर्वात्माओं के प्रति। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः पुनः स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत मुबारक। ओम शांति।

0: नमस्कार, मैं हूँ रवीना टंडन और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: प्रस्तुत है कार्यक्रम याद करो कुर्बानी।
2: याद करो

श्रोताओं, आज हम अपने कार्यक्रम में बात कर रहे हैं कर्नल ढिल्लन की। हम आपको बता दें, 6 फरवरी आजाद हिंद फौज के संस्थापक सदस्य कर्नल गुरुबख्श सिंह ढिल्लन की पुण्यतिथि है। यही वो तारीख है जब जंगे आजादी का यह सूरमा हमसे हमेशा के लिए जुदा हो गया था। आजाद हिंद फौज सेनानी कर्नल ढिल्लन ने जंग के मैदान में गोरों की फौज को जमकर चुनौती दी थी। उनके शौर्य का दुश्मन भी लोहा मानते थे। अविभाजित भारत में 18 मार्च 1914 को अमृतसर के अलगो गांव में साधारण किसान परिवार में जन्मे गुरुबख्श सिंह की शुरुआती तालीम गवर्नमेंट हाई स्कूल यूनियन लाहौर में हुई। हाई स्कूल इम्तिहान पास करने के बाद 1933 में उन्होंने इंडियन मिलिट्री अकादमी में दाखिला ले लिया। 1940 में भारतीय थल सेना ने 14वीं पंजाब रेजिमेंट के जवान ढिल्लन को नियमित कमीशन दे दिया। दूसरी आलमी जंग कर्नल ढिल्लन की जिंदगी में फैसला कुन मोड़ लेकर आई। मलाया कैंपेन के दौरान जापान से अंग्रेज सेना की शिकस्त के बाद दक्षिण पूर्व एशिया में जनरल मोहन सिंह के नेतृत्व में आजाद हिंद फौज का गठन हुआ। आजाद हिंद फौज की स्थापना होते ही अंग्रेजी सेना में अभी तक रहे हजारों हिंदुस्तानी फौजियों के साथ कर्नल ढिल्लन भी आजाद हिंद फौज में शामिल हो गए। श्रोताओं, आजाद हिंद फौज में शामिल होने के बाद कैसा रहा कर्नल ढिल्लन का आगामी जीवन, इसकी चर्चा करेंगे बस इस एक देशभक्ति गीत को सुनने के बाद।

श्रोताओं, गीत सुनाने से पहले हमने आपको बताया कि कर्नल ढिल्लन अंग्रेजों की फौज से आजाद हिंद फौज में भर्ती हो गए। आगे चलकर आजाद हिंद फौज का नेतृत्व नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किया और आखिर तक उन्होंने इसकी कमान संभाली रखी। आजाद हिंद फौज में कर्नल के औहदे तक पहुंचे कर्नल ढिल्लन ने आजाद हिंद फौज की कई लड़ाइयों में हिस्सेदारी की और अपनी बहादुरी और जांबाजी के जौहर दिखलाए। INA के इस जांबाज सिपाही ने बर्मा यानी वर्तमान म्यांमार में इरावदी स्थित निया गुपिगान नदी के किनारे जनरल सर विलियम सिलम की 14वीं ब्रिटिश सेना के खिलाफ जंग लड़ी थी। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने पर हिंदुस्तान के स्वतंत्रता संग्राम में एक नाटकीय बदलाव आया। 15 अगस्त 1947 मुल्क को आजादी मिलने तक भारतीय राजनीतिक मंच विविध जन आंदोलनों का गवाह रहा। इनमें से सबसे अहम आंदोलन आजाद हिंद फौज के 17,000 जवानों के खिलाफ चलने वाले मुकदमे के विरोध में जनाक्रोश के सामूहिक प्रदर्शन थे। श्रोताओं, हिंदुस्तानी तारीख में लाल किला ट्रायल का अहम स्थान है। लाल किला ट्रायल के नाम से प्रसिद्ध आजाद हिंद फौज के ऐतिहासिक मुकदमे के दौरान उठे इस नारे, लाल किले से आई आवाज, सहगल ढिल्लन शाहनवाज। उस समय इस नारे ने हिंदुस्तान के आजादी के हक के लिए लड़ रहे लाखों नौजवानों को एक सूत्र में बांध दिया था। वकील भूला भाई देसाई इस मुकदमे के दौरान जब लाल किले में बहस करते तो सड़कों पर हजारों नौजवान नारे लगा रहे होते। पूरे देश में देशभक्ति का एक ज्वार सा उठता। श्रोताओं, फिलहाल समय है एक देशभक्ति गीत को सुनने का और उसके बाद जानेंगे कि इस मुकदमे का क्या फैसला हुआ।

श्रोताओं, 15 नवंबर 1945 से 31 दिसंबर 1945 हिंदुस्तान के आजादी के संघर्ष में टर्निंग पॉइंट था। यह मुकदमा कई मोर्चों पर हिंदुस्तानी एकता को मजबूत करने वाला साबित हुआ। मेजर जनरल शाहनवाज को मुस्लिम लीग और लेफ्टिनेंट कर्नल गुरुबख्श सिंह ढिल्लन को अकाली दल ने अपनी ओर से मुकदमा लड़ने की पेशकश की, लेकिन इन देशभक्त सिपाहियों ने कांग्रेस द्वारा जो डिफेंस टीम बनाई गई थी उसी टीम को ही अपना मुकदमा पैरवी करने की मंजूरी थी। मजहबी बातों से ऊपर उठकर सहगल, ढिल्लन और शाहनवाज का यह फैसला सचमुच काबिले तारीफ था। कांग्रेस की डिफेंस टीम में सर तेज बहादुर सप्रू के नेतृत्व में मुल्क के उस समय के कई नामी गिरामी वकील भूला भाई देसाई, सर दिलीप सिंह, आसफ अली, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बख्शी सर टेक चंद, कैलाशनाथ काटजू, जुगल किशोर खन्ना, सुल्तान यार खान, राय बहादुर बद्रीदास, पी एस सेन और रघुनंदन सरन आदि शामिल थे, जो खुद इन सेनानियों का मुकदमा लड़ने के लिए आगे आए थे। सर तेज बहादुर सप्रू की अस्वस्थता के कारण वकील भूला भाई देसाई ने आजाद हिंद फौज के तीनों वीर सिपाहियों की संयुक्त ट्रायल्स लड़ी। अभियोग की कार्रवाई संवाददाताओं और जनता के लिए खुली हुई थी। मुकदमे के दौरान पूरे मुल्क में कौमियत का माहौल पैदा हो गया। लोग अपने मुल्क के लिए मर मिटने को तैयार हो गए। सारे मुल्क में सरकार के खिलाफ धरने प्रदर्शन हुए, एकता की सभाएं हुई, जिसमें मुकदमे के मुख्य आरोपी कर्नल प्रेम कुमार सहगल, कर्नल गुरुबख्श सिंह ढिल्लन और मेजर जनरल शाहनवाज की लंबी उम्र की दुआएं की गईं। श्रोताओं, तारीख इस बात की गवाह है कि उन्होंने इस लड़ाई में अपने से कहीं ज्यादा शक्तिशाली गोरों की फौजों को 6 दिन तक रोके रखा। कर्नल ढिल्लन की पराजय के बावजूद दुश्मन जनरल सर विलियम सिलम ने जंग मैदान में उनकी बहादुरी की तारीफ की। यही नहीं, अंग्रेज सेना के एक और अफसर जनरल मेंजिज ने भी रणक्षेत्र में कर्नल ढिल्लन के युद्ध कौशल को सराहा। आजाद हिंद फौज की 4th गुरिल्ला रेजिमेंट के इस पराक्रमी नायक को गुरिल्ला पद्धति से दुश्मनों को छकाने में महारत हासिल थी। श्रोताओं, कर्नल ढिल्लन की जिंदगी के और भी कई अनछुए पहलुओं को हम छुएंगे, लेकिन अभी वक्त है इस एक देशभक्ति गीत को सुनने का।

श्रोता, इम्फाल ऑपरेशन के दौरान अंग्रेजी सेना से आजाद हिंद फौज के हारने के बाद कर्नल ढिल्लन दीगर आजाद हिंद फौज सेनानियों के साथ गिरफ्तार कर लिए गए। 5 नवंबर 1945 से 31 दिसंबर 1945 तक लाल किले में उन पर मुकदमा चला। हिंदुस्तानी तारीख में यह मुकदमा लाल किला ट्रायल के नाम से जाना जाता है। इस ऐतिहासिक मुकदमे में कर्नल प्रेम कुमार सहगल, मेजर जनरल शाहनवाज के साथ कर्नल ढिल्लन पूरे मुल्क में महानायक बनकर उभरे। आजाद हिंद फौज के इन तीनों अहम अफसरों पर मुकदमा अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बगावत करने के इल्जाम में था। इस मुकदमे ने उस समय आजादी के लिए लड़ रहे लाखों वतन परस्तों को एक सूत्र में बांध दिया। गोया के आगे चलकर लाल किला ट्रायल के प्रभाव से ही मुंबई नौसेना में विद्रोह हुआ। कई जगहों पर अंग्रेजों के खिलाफ बगावत हुई। लाल किला मुकदमा और आजाद हिंद फौज के संघर्षों का ही नतीजा था कि एक साल के अंदर मुल्क आजाद हो गया। श्रोताओं, अब यहां देश आजाद तो हो गया, लेकिन आजाद हिंद फौज की गतिविधियां यहीं नहीं रुकी। हम आपको बताएंगे

श्रोता, हमने आपको बताया कि लाल किला मुकदमा और आजाद हिंद फौज के संघर्षों का ही नतीजा था कि एक साल के अंदर मुल्क आजाद हो गया। अब आजादी के बाद 1962 में भारत चीन युद्ध के समय कर्नल ढिल्लन ने मुल्क को फिर से एक बार अपनी खिदमत दी। 1964 से 1967 तक वे एनसीसी में एक्टिंग कैप्टन के पद पर रहे। 1977 में आपातकाल की मुखालफत में वो जनता पार्टी के टिकट से लोकसभा चुनाव भी लड़े। हिंदुस्तान की आजादी में कर्नल ढिल्लन के योगदान को सरकार ने 51 साल बाद आंका और उन्हें 12 अप्रैल 1998 को पद्म भूषण से नवाजा। श्रोताओं, कर्नल ढिल्लन अकेली ऐसी हस्ती हैं जिनके जीते जी भारत सरकार ने 15 अगस्त 1997 को उन पर डाक टिकट जारी किया। इसके अलावा लाल किले के हिस्से सलीमगढ़ में, जहां आजाद हिंद फौज के तीनों नायक सहगल, ढिल्लन और शाहनवाज कैद थे, सरकार ने नवंबर 1995 को आजाद हिंद फौज की याद में स्वतंत्रता स्मारक बनवाया। फ्रॉम माई बोन्स कर्नल ढिल्लन द्वारा लिखी गई आत्मकथा है। इस आत्मकथा में कर्नल ढिल्लन और आजाद हिंद फौज की रोमांचक संघर्ष यात्रा का ब्यौरा मिलता है। अपने वतन से मोहब्बत और उस पर मर मिटने का जज्बा कर्नल ढिल्लन के दिल में आखिर तक रहा। अपना आखिरी समय उन्होंने दुनियावी चकाचौंध से दूर मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के एक छोटे से गांव हातौद में बिताया। 6 फरवरी 2006, 92 साल की उम्र में आजाद हिंद फौज के इस जाबाज सिपाही ने दुनिया से अपनी रुख्सती ली। अपनी बहादुरी, पराक्रम और वतन परस्ती के लिए कर्नल ढिल्लन हमेशा हमेशा याद किए जाएंगे।

0: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
1: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: चांद मिश्रा, आप सुन रहे रेडियो मधुबन, सुनते रहें, सुनाते रहें, जन जन तक प्यार बरसाते रहें।
1: आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति विश्लेषण।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के कार्यक्रम विश्लेषण में आपका स्वागत है। मैं हूं जागृति शर्मा। श्रोताओं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 6 अगस्त को भारत की राष्ट्रीय एकीकृत योजना गोबरधन कंप्रेस्ड बायोगैस यानी CBG को मंजूरी दे दी है। कुल 23,771 करोड़ रुपए के परिव्यय वाली ये योजना देश के जैविक कचरे और कृषि अवशेषों को स्वच्छ ऊर्जा, ग्रामीण समृद्धि और आर्थिक विकास के अवसर में बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में जानेंगे कि गोबरधन योजना की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, ये भारत की ऊर्जा सुरक्षा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को किस तरह मजबूत कर सकती है, किसानों और ग्रामीण उद्यमियों के लिए इसके क्या अवसर हैं, और कचरे से कंचन तथा आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में ये पहल कितनी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। श्रोताओं, भारत दुनिया की प्रमुख और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। आर्थिक विकास की रफ्तार बढ़ने के साथ देश की ऊर्जा आवश्यकताएं भी लगातार बढ़ रही हैं। लेकिन प्राकृतिक गैस की जरूरत का लगभग 50% हिस्सा भारत अभी आयात के माध्यम से पूरा करता है। हाल के वैश्विक भू राजनीतिक घटनाक्रमों और ऊर्जा आपूर्ति में सामने आई चुनौतियों ने ये स्पष्ट किया है कि किसी भी देश के लिए घरेलू ऊर्जा उत्पादन को बढ़ाना कितना महत्वपूर्ण है। भारत के LNG आयात का एक बड़ा हिस्सा समुद्री मार्गों से होकर आता है। ऐसे में वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में किसी भी तरह का व्यवधान ऊर्जा सुरक्षा को प्रभावित कर सकता है। यही कारण है कि भारत लगातार ऐसे स्वदेशी और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा दे रहा है जो आयात पर निर्भरता कम करने के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण और ग्रामीण विकास को भी गति दे सके। इसी सोच को आगे बढ़ाती है गोबरधन योजना। गोबरधन का पूरा नाम है गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन। वर्ष 2018 में इसे स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन के एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य पशुओं के गोबर, रसोई के जैविक कचरे, कृषि अवशेषों और बाजार से निकलने वाले जैविक कचरे को बायोगैस और जैविक खाद में बदलना था। अब इस पहल को एक व्यापक राष्ट्रीय CBG कार्यक्रम के रूप में आगे बढ़ाया गया है। पहले CBG इकोसिस्टम विभिन्न मंत्रालयों के दायरे में था। बेहतर समन्वय और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए अब पूरी योजना को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तहत एकीकृत किया गया है। आइए अब विस्तार से समझते हैं कि इस योजना की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं और ये CBG क्षेत्र को किस प्रकार नई गति देने वाली है।
3: गोबरधन योजना का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य देश में कंप्रेस्ड बायोगैस के उत्पादन को बड़े पैमाने पर बढ़ाना है। इसके लिए योजना में पूरी CBG मूल्य श्रृंखला को मजबूत करने पर ध्यान दिया गया है। योजना के तहत सबसे पहले CBG उत्पादकों के लिए निश्चित बाजार और खरीद का भरोसा सुनिश्चित किया जाएगा। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन यानी CGD संस्थाओं के माध्यम से CBG की खरीद को बढ़ावा दिया जाएगा। योजना का दूसरा महत्वपूर्ण घटक है स्थिर CBG मूल्य निर्धारण। इसके तहत सरकार ने 2,110 रुपए प्रति MMBTU की कीमत तय की है जो लगभग 105 रुपए प्रति किलोग्राम CBG के बराबर है। न्यूनतम 10 वर्षों की अवधि वाला यह मूल्य ढांचा उत्पादकों को राजस्व की स्थिरता प्रदान करने और नई परियोजनाओं में निवेश को प्रोत्साहित करने में मदद करेगा। तीसरे घटक के रूप में पात्र ग्रीन फील्ड CBG परियोजनाओं को स्थापित क्षमता के आधार पर प्रति टन प्रतिदिन 2 करोड़ रुपए तक की पूंजीगत सहायता दी जाएगी। उत्पादन क्षमता बढ़ाने वाले ब्राउन फील्ड परियोजनाएं भी इसके दायरे में आ जाएंगी। चौथा महत्वपूर्ण क्षेत्र है पाइपलाइन अवसंरचना। CBG संयंत्रों को ट्रक पाइपलाइन और सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क से जोड़ने के लिए आवश्यक पाइपलाइन अवसंरचना को सहायता दी जाएगी। इससे परिवहन लागत कम होगी और CBG के लिए बाजार तक पहुंच आसान होगी। पांचवें घटक के तहत पात्र MSME आधारित CBG परियोजनाओं को संस्थागत वित्त उपलब्ध कराने के लिए ऋण गारंटी तंत्र विकसित किया जाएगा। इसके तहत ऋण पर 85% तक ऋण गारंटी कवर उपलब्ध उपलब्ध कराया जा सकेगा। छठा घटक है सीबीजी इकोसिस्टम चैलेंज फंड। इसके माध्यम से जिला स्तर पर कच्चे माल का आकलन और मैपिंग, कच्चा माल एकत्रीकरण, तकनीक सुधार, जैविक खाद का मूल्य संवर्धन, क्षमता निर्माण और जागरूकता जैसे कार्यों को बढ़ावा दिया जाएगा।
4: श्रोताओं, गोबर धन योजना का महत्व केवल स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन तक सीमित नहीं है। इसका सीधा संबंध किसानों की आय, ग्रामीण रोजगार, कचरा प्रबंधन और स्थानीय अर्थव्यवस्था से भी है। हर सीबीजी संयंत्र के पास कृषि अवशेष, पशुओं का गोबर और अन्य जैविक कचरा कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जा सकता है। इससे गाँव में कचरे के बेहतर प्रबंधन के साथ साथ कच्चा माल एकत्र करने, परिवहन, संयंत्र संचालन और जैविक खाद के उत्पादन जैसे क्षेत्रों रोजगार के अवसर पैदा होंगे। सीबीजी उत्पादन के साथ निकलने वाले जैविक उर्वरक भी कृषि क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण है। सरकार पहले से ही फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मेन्योर, लिक्विड फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मेन्योर और फॉस्फेट रिच ऑर्गेनिक मेन्योर जैसे जैविक उर्वरकों को बढ़ावा दे रही है। इससे एक ऐसी चक्रीय जैव अर्थव्यवस्था विकसित हो सकती है जिसमें खेतों से निकलने वाला अवशेष कचरा नहीं बल्कि आर्थिक संसाधन बन जाए और सीबीजी संयंत्रों से प्राप्त जैविक खाद वापस कृषि क्षेत्र में उपयोग हो। यानी गोबरधन का मूल विचार है कचरे को संसाधन में बदलना, संसाधन को ऊर्जा में बदलना और ऊर्जा को आर्थिक विकास का माध्यम बनाना। श्रोताओं, गोबरधन योजना के जरिए भारत अपने विशाल जैविक संसाधनों को ऊर्जा सुरक्षा के साथ जोड़ने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद इस पहल के बारे में केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी जानकारी दी।
5: कंप्रेस्ड बायोगैस सीबीजी, इसका प्रोडक्शन एक डेकेड के अंदर 10 गुना बढ़ाने का टारगेट, करीब 5 MMSCMD प्रोडक्शन के लेवल तक पहुंचाने का इसमें टारगेट लिया गया है। अगर इसको हम एनवायरमेंटल पॉइंट से देखें तो दिस विल सेव अबाउट 40 मिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन, करीब 75,000 करोड़ रुपीस नेशनल जीडीपी को ऐड होगा और अबाउट 1.5 लाख जॉब्स विल बी क्रिएटेड बाय दिस प्रोग्राम।
4: श्रोताओं, गोबरधन योजना की रूपरेखा और इसके प्रमुख घटकों को समझने के बाद अब ये जानना भी जरूरी है कि भारत की दीर्घकालिक ऊर्जा रणनीति में सीबीजी को इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जा रहा है। आइए विस्तार से समझते हैं कि गोबरधन भारत की ऊर्जा सुरक्षा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को किस प्रकार प्रभावित कर सकता है।
3: भारत के गांवों में बड़ी मात्रा में कृषि अवशेष, पशु अपशिष्ट और अन्य जैविक संसाधन उपलब्ध हैं। यदि इन संसाधनों को संगठित तरीके से एकत्र कर सीबीजी संयंत्रों तक पहुंचाया जाए तो किसानों और स्थानीय उद्यमियों के लिए अतिरिक्त आय के अवसर पैदा हो सकते हैं। सीबीजी संयंत्र केवल ऊर्जा का उत्पादन नहीं करेगा बल्कि अपने आसपास एक स्थानीय आर्थिक चक्र भी तैयार करेगा जो कच्चे माल का संग्रह, परिवहन, प्रसंस्करण, गैस उत्पादन और जैविक खाद का निर्माण करेगा। इस तरह गोबरधन ग्रामीण भारत को केवल ऊर्जा का उपभोक्ता नहीं बल्कि ऊर्जा का उत्पादक और ऊर्जा सुरक्षा का भागीदार बनाने की क्षमता रखता है। पर्यावरण की दृष्टि से भी ये पहल महत्वपूर्ण है। कृषि अवशेषों और जैविक कचरे के वैज्ञानिक उपयोग से खुले में कचरा जलाने और लैंडफिल में जैविक कचरे के जाने को कम किया जा सकता है। इससे ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में भी कमी आएगी।
4: श्रोताओं, गोबरधन योजना के तहत पहले से चल रहे प्रयासों को भी अब राष्ट्रीय स्तर पर एकीकृत रूप दिया जा रहा है। बायोगैस एकत्रीकरण मशीनरी योजना के तहत सीबीजी उत्पादकों को

0: कच्चा माल एकत्र करने के लिए आवश्यक उपकरण खरीदने में सहायता दी जा रही है। वहीं जैविक उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिए बाजार विकास सहायता योजना के अंतर्गत सहायता दी जा रही है। श्रोताओं, गोवर्धन योजना के तहत देश में सीवीजी क्षेत्र में हो रहे प्रगति के आंकड़े भी उत्साहजनक हैं। 6 अगस्त 2026 तक गोवर्धन के एकीकृत पंजीकरण पोर्टल पर देश भर में 1908 सीबीजी और बायो सीएनजी संयंत्र पंजीकृत किए जा चुके हैं। इनमें 217 संयंत्र चालू हो चुके हैं और लगभग 0.4 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर प्रतिदिन गैस का उत्पादन कर रहे हैं, जबकि 339 संयंत्र निर्माणाधीन है। श्रोताओं, गोवर्धन भारत की उस विकास यात्रा का हिस्सा है जिसमें आर्थिक प्रगति और पर्यावरण संरक्षण को एक दूसरे का विकल्प नहीं बल्कि एक दूसरे का पूरक बनाया जा रहा है। कचरे से ऊर्जा, ऊर्जा से रोजगार और रोजगार से ग्रामीण समृद्धि, यही चक्रीय जैव अर्थव्यवस्था का आधार बन सकता है। गोवर्धन योजना कचरे से कंचन, आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत के संकल्प को धरातल पर उतारने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस कार्यक्रम को तैयार किया है हमारे सहयोगी उत्पल ने, प्रस्तुति सहायक अक्षत ममगाई। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: 15 अगस्त पे तू कोई गाना नहीं गाएगा?
1: कैसे गाऊं दीदी, ये गाने तो मुझे समझ ही नहीं आते। यहाँ हर कदम कदम पे धरती बदले रंग, अब भला धरती रंग कैसे बदलेगी। और वो दूसरा गाना, मेरे देश की धरती सोना उगले, अब दीदी मुझे धरती पर कहीं नहीं मिलता सोना।
0: छोटे, जब कोई चीज इतनी खूबसूरत होती है उसका वर्णन करने के लिए शब्द कम पड़ जाए, या इतनी खास कि आंखों में पानी, चेहरे पर मुस्कान और मन में हिम्मत एक साथ आ जाए, तो उस भावना को कहते हैं देश प्रेम।
1: देश प्रेम?
0: हाँ, इसलिए तो गीतकार ऐसे शब्द लिखते हैं इस स्वतंत्रता दिवस पर। चलो साथ कहते हैं,
2: मेरा देश मेरी शान।
0: रेडियो मधुबन की तरफ से आप सभी दोस्तों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।
2: हैप्पी इंडिपेंडेंस।

आज का ये कार्यक्रम हम केंद्रित कर रहे हैं क्रांतिकारी शिवराम हरि राजगुरु पर। श्रोताओ, अपने क्रांतिकारी साथी शिव वर्मा के साथ शिवराम हरि राजगुरु को ये दायित्व दिया गया कि वे दिल्ली के एक गद्दार साथी को गोली से उड़ाने के अभियान में सम्मिलित हो अपनी प्रथम परीक्षा में उत्तीर्ण होकर दिखाएं। राजगुरु को ये काम बहुत अच्छा लगा। वो तो चाहते ही थे कि उन्हें मरने या मारने के काम में सम्मिलित किया जाए। उस समय नई दिल्ली नगर पूरी तरह बसा नहीं था। लोग नगर से बाहर दूर दूर तक घूमने जाया करते थे। क्रांतिकारियों का वो गद्दार साथी भी प्रतिदिन संध्या के समय घूमने जाया करता था। शिव वर्मा और राजगुरु ने छिप छिप कर उसकी गतिविधियों का अध्ययन किया। उन दोनों के पास एक ही रिवॉल्वर था। दूसरा रिवॉल्वर लेने के लिए शिव वर्मा साथी भगत सिंह के पास लाहौर चले गए। वे अपना रिवॉल्वर शिवराम हरि राजगुरु को देकर कह गए कि गद्दार की गतिविधियों पर तुम नजर रखना। राजगुरु इसके लिए तैयार हो गए। एक दिन संध्या समय शिवराम हरि राजगुरु ने देखा कि उस तरफ काफी सुनसान है और वो गद्दार साथी अकेला घूमने जा रहा है। उसे मारने का उन्होंने वो अच्छा अवसर समझा और तेज कदमों से उसके पास पहुंचकर बहुत निकट से उसकी पीठ में गोली मार दी। गोली खाकर वो गद्दार पीठ के बल भूमि पर गिर पड़ा। राजगुरु ने सोचा कि ये जिंदा ना रह जाए। इस विचार से उन्होंने एक गोली उसके सीने में और मार दी और वहां से चले गए। गोलियों की आवाजें सुनकर पुलिस की दौड़ धूप प्रारंभ हो गई। सीटियां बजने लगी और टॉर्च की रोशनी से अपराधी की खोज की जाने लगी। शिवराम हरि राजगुरु ने सोचा कि यदि सड़क भागूंगा तो मोटर गाड़ियां पीछा करेंगी, इसलिए वो रेलवे लाइन के सहारे भागने लगे। जब काफी दूर निकल गए तो उन्होंने देखा कि रेल पथ के समानांतर वाली सड़क से पुलिस की गाड़ियां उनका पीछा कर रही हैं। अब उन्होंने रेल पथ भी छोड़ दिया और खेतों की तरफ दौड़ने लगे। दो तीन सूखे खेतों को पार कर वो गन्ने के एक ऐसे खेत में पहुंचे जिसमें हाल ही में पानी दिया गया था। राजगुरु ने छिपने के लिए ये स्थान सही पाया। वो खेत के पानी और कीचड़ में इस तरह लुट गए कि केवल उनका सिर बाहर रहे और पूरा शरीर कीचड़ पानी में डूब जाए। सर्दी के दिन थे।

इज्जत की ख्वाहिश दिल में ना, जिनहार हो मुझे, चढ़ जाऊं वतन के लिए, गद्दार हो मुझे।

हाकिम की क्या लिखने से जब कलम बंद हो, इजहार हो मेरा यही आजाद हिंद हो, आजाद हिंद हो।

हिंद को आजाद करा दूं या दुश्मनों की जेल को आबाद करा दूं या दुश्मनों की जेल को

श्रोताओं, गीत सुनने से पहले हम बात कर रहे थे क्रांतिकारी शिवराम हरि राजगुरु की। हमने आपको बताया था कि सर्दी के दिनों में वे ठंड से बेहाल थे क्योंकि कीचड़ और पानी में डूबे हुए थे। पुलिस के लोग टॉर्च लिए उस खेत में पहुंचे। उसमें पानी और कीचड़ देखकर उन लोगों ने प्रवेश तो नहीं किया, पर इधर उधर रोशनी फेंक कर वे अपराधी की तलाश करने लगे। जिस तरफ जरा भी पत्तों के खड़खड़ाने की आवाज आती, पुलिस वाले उस तरफ गोली दाग दिया करते थे। पुलिस ने कई गोलियां चलाईं, कुछ गोलियां राजगुरु के बिल्कुल पास से निकल गईं, पर बहादुर शिवराम हरि राजगुरु दम साधे 2-3 घंटे तक इस कड़कड़ाती सर्दी वाली उस रात में पानी और कीचड़ में पड़े रहे। जब उन्होंने देखा कि कहीं कोई हलचल नहीं है, तो वो खेत से बाहर निकले और रेल पटरी के सहारे फिर चल दिए। उन्होंने पैदल चलकर एक स्टेशन पार किया। इस बीच उनके कपड़े सूख गए। अगले स्टेशन पर उन्हें मथुरा जाने वाली एक ट्रेन मिल गई। वो उसमें सवार हो गए। सौभाग्य से वो ट्रेन मथुरा स्टेशन के आउटर पर रुक गई। शिवराम हरि राजगुरु आउटर पर ही उतर गए और यमुना नदी की तरफ चल दिए। यमुना नदी में उन्होंने स्नान किया और अपने कपड़े धोकर सूखने के लिए झाड़ियों पर डाल दिए। जब कपड़े सूखे, सुबह हो चुकी थी। वो स्टेशन पहुंचे और गाड़ी पकड़कर कानपुर पहुंच गए। कानपुर में वो उस स्थान पर गए जहां उनके साथी शिव वर्मा रहते थे। अपनी सारी कहानी साथी शिव वर्मा को शिवराम हरि राजगुरु ने बताई। शिव वर्मा ने उनसे कहा, जब मैं दूसरा रिवॉल्वर लेकर दिल्ली पहुंचा, तो स्टेशन से उतरकर उस तरफ गया जिस तरफ वो गद्दार घूमने जाया करता था। वहां मैंने पुलिस की दौड़ धूप देखी तो लोगों ने मुझे बताया कि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को 2 गोलियां मारकर भाग गया है। मैंने समझ लिया कि तुम ही ने अपने गद्दार साथी को मारा होगा। उसके बाद मैं अपने ठहरने के स्थान पर आ गया। वहां तुम्हें ना पाकर मैं यहाँ कानपुर चला आया। जब अखबारों में मैंने दिल्ली की घटना का विवरण पढ़ा, तो मरने वाले का नाम धाम पढ़कर मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि तुमने गलत आदमी को मार दिया। मैंने ये भी पता कर लिया कि वो गद्दार तो जिंदा है। शिव वर्मा द्वारा अपनी भयंकर भूल की बात सुनकर राजगुरु को बहुत दुख और पश्चाताप हुआ। बात आई गई हो गई, परंतु इस घटना का एक अच्छा परिणाम ये निकला कि जब चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह ने लाला लाजपत राय के हत्यारे उप पुलिस अधीक्षक जेपी सॉन्डर्स को लाहौर में मृत्युदंड देने का निश्चय किया, तो उस अभियान में राजगुरु को भी सम्मिलित किया। आजाद का तर्क था कि राजगुरु बहादुर भी है और सूझबूझ वाले भी। आप सुन रहे हैं सुनहरी यादें कार्यक्रम। आइए श्रोताओ, सुनते हैं एक देशभक्ति गीत और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि किस तरह से चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और शिवराम हरि राजगुरु ने अपने अभियान को पूरा किया। कभी तो

श्रोताओ, गीत सुनने से पहले हमने आपको बताया था कि चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और राजगुरु ने एक योजना बनाई थी। उस योजना के अनुसार लाहौर के पुलिस कार्यालय पर ही सांडर्स को घेरा गया। कार्यालय के बाहर क्रांतिकारी साथी जय गोपाल को तैनात किया गया। जय गोपाल अपनी बिगड़ी हुई साइकिल को सुधारने का अभिनय करने लगे। पुलिस ऑफिसर्स के सामने वाली सड़क पर भगत सिंह और राजगुरु खड़े होकर पढ़ाई लिखाई की बातें करने लगे। पुलिस कार्यालय के सामने ही डीएवी कॉलेज था। कॉलेज के फाटक की ओट में चंद्रशेखर आजाद अपना माउजर पिस्तौल लेकर इस इरादे से बैठ गए कि वारदात के बाद यदि किसी ने भगत सिंह और राजगुरु का पीछा किया तो वो उनसे निपट लेंगे। ठीक 5 बजे शाम को अपना काम समाप्त कर सॉन्डर्स बाहर निकला और अपनी मोटरसाइकिल पर बैठकर उसे स्टार्ट किया। उसे ऐसा करते हुए देख जय गोपाल अपनी साइकिल की ठुक ठुक बंद कर उठ खड़ा हुआ। भगत सिंह और राजगुरु ने इस संकेत को समझ लिया और उनके हाथ फौरन अपनी जेबों में चले गए। सॉन्डर्स मोटरसाइकिल पर चल पड़ा। भगत सिंह ने मन में सोचा कि गोली खाली न जाए, इसलिए सही यही होगा कि सॉन्डर्स को निकट आने दिया जाए और तब उस पर गोली चलाई जाए। पर राजगुरु को सब्र नहीं हुआ। उन्होंने अपनी पिस्तौल निकाली और सॉन्डर्स पर गोली दाग दी। उनकी गोली मस्तिष्क को चीर गई और मोटरसाइकिल के साथ वह भूमि पर गिर पड़ा। अब भगत सिंह ने भी उस पर 4-6 गोलियां चढ़ दी। गोलियों की आवाज सुनकर पुलिस कार्यालय के अंदर से एक अंग्रेज पुलिस इंस्पेक्टर घटनास्थल की ओर लपका। उसने देख लिया था कि एक युवक की पिस्तौल पूरी खाली हो चुकी है और दूसरे की जाम हो गई। स्थिति का लाभ उठाकर उसने भगत सिंह को पकड़ लेना चाहा। जब उसने भगत सिंह को पकड़ने को हाथ बढ़ाया तो राजगुरु ने फुर्ती से इंस्पेक्टर को अपने हाथों से ऊपर उठा लिया और पूरी ताकत के साथ उसे भूमि पर पटक दिया। ज्यादा चोट लग जाने के कारण इंस्पेक्टर उठ नहीं सका। अब इन दोनों का पीछा करने के लिए 3 सिपाही दौड़े। आजाद ने कड़कती हुई आवाज में गोली मार देने की चेतावनी देकर उन लोगों से पीछे लौट जाने के लिए कहा। 2 सिपाही तो लौट गए, पर एक हवलदार आगे बढ़ता ही गया। वो रुक जाए इसलिए आजाद ने उसके पैर में एक गोली मारी। गोली खाकर भी वो लंगड़ाता हुआ आगे बढ़ने लगा। चंद्रशेखर आजाद ने उसके सीने में गोली मारकर उसे भी गिरा दिया और अपने आप को सभी ने बचा लिया।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद है।
1: मैं हूँ आपके साथ प्रमिला और हम बात कर रहे हैं क्रांतिकारी शिवराम हरि राजगुरु की। श्रोतो, सैंडर्स को मारकर सभी क्रांतिकारी अपने ठहरने के स्थान लाहौर के मोजंग हाउस में सुरक्षित पहुंच गए। पुलिस ने पूरे शहर की नाकेबंदी कर डाली। समस्या ये सामने आई कि अब ये लोग लाहौर से बाहर कैसे जाए। तय ये हुआ कि आजाद एक पंडित का रूप धारण कर तीर्थ यात्रियों को दल बनाकर हरे राम हरे कृष्ण करते हुए बाहर निकल जाए। भगत सिंह ने फौज के अफसर का रूप धारण किया। उनके साथ क्रांतिकारी साथी भगवती चरण की पत्नी श्रीमती दुर्गा देवी ने भगत सिंह की पत्नी का अभिनय किया। दुर्गा भाभी के 3 वर्ष के बालक शचिंद्र को भगत सिंह ने अपनी गोद में उठाया और राजगुरु ने भगत सिंह के नौकर का अभिनय किया। इस तरह पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर वे लोग लाहौर से बाहर निकल गए। लखनऊ तक वे सब साथ साथ आए। वहां से भगत सिंह और दुर्गा भाभी कलकत्ता चले गए और राजगुरु आगरा पहुंच गए। कुछ दिन बाद सभी लोग आगरा में एकत्रित हो गए और वहां बम कारखाना खोलकर बम बनाने लगे।

श्रोताओं, जब ब्रिटिश हुकूमत ने जन सुरक्षा बिल और औद्योगिक विवाद बिल पेश कर उन्हें कानून के रूप में परिणित करना चाहा, तब क्रांतिकारियों ने इन काले कानूनों का विरोध करने के लिए ये तय किया कि जिस दिन वे कानून के रूप में परिणित किए जाने वाले हों, उस दिन विधान परिषद भवन में बम विस्फोट किए जाएं। ये भी तय हुआ कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त दिल्ली असेंबली में बम विस्फोट कर अपनी गिरफ्तारी दें। राजगुरु को जब इस निर्णय की सूचना मिली तो शहादत का अवसर हाथ से जाता देखकर बहुत परेशान हुए। उन्होंने चंद्रशेखर आजाद से जाकर बहस की। आप भगत सिंह को असेंबली में बम फेंकने को क्यों भेज रहे हैं? उनकी जगह मुझे भेज दीजिए। जो काम भगत सिंह कर सकते हैं वो मैं भी कर सकता हूँ, आजाद ने राजगुरु को समझाने का प्रयत्न किया। केंद्रीय समिति ने भगत सिंह को भेजने का निर्णय इसलिए लिया है कि वो अपनी गिरफ्तारी देकर अदालत में अंग्रेजी में बयान देंगे और उनके उन बयानों से सारी दुनिया में हमारे सिद्धांतों का प्रचार होगा। राजगुरु ने फिर प्रस्ताव रखा, जो बयान भगत सिंह देने वाले हैं वो लिखकर मुझे दे दें, मैं उसे हर्फ बहर्फ रट लूंगा और वैसा का वैसा अदालत में उगल दूंगा। जब मैंने बनारस में विद्या अध्ययन करते समय संस्कृत की कई पुस्तकें रट डाली हैं, तो क्या मैं अंग्रेजी का एक बयान नहीं रट पाऊंगा? राजगुरु की इश्क शहादत देखकर चंद्रशेखर आजाद दंग रह गए। उन्होंने राजगुरु को दूसरी तरह समझाने का प्रयत्न किया। देखो राजगुरु, असेंबली में बम फेंक कर गिरफ्तारी देने का मतलब होगा कि सैंडर्स के वध में तुम शामिल हो। ये सिद्ध हो जाने पर तुम्हें फांसी होगी। तुम बचे रहो, इसलिए केंद्रीय समिति ने तुम्हें ना भेजने का निर्णय लिया है। राजगुरु का तर्क था, मैं इसीलिए क्रांतिकारी पार्टी में आया हूँ कि मरने और मारने के कामों में मुझे सबसे आगे रखा जाए। भगत सिंह भी तो सैंडर्स को मारने में सम्मिलित थे। मुझसे ये सहन नहीं होगा कि देश के लिए शहीद होने का अवसर उन्हें मिले और मुझे ना मिले। उस समय राजगुरु को असेंबली में बम विस्फोट के लिए चुनना संभव नहीं हुआ। इस बात से राजगुरु रूठकर पूना चले गए और कुछ दिन बाद वो पूना में गिरफ्तार कर लिए गए।

जब भगत सिंह ने असेंबली में बम फेंककर अपनी गिरफ्तारी दी तो सारे गिरफ्तार क्रांतिकारियों को मुकदमा चलाए जाने के लिए लाहौर में इकट्ठा किया गया। इस प्रकार राजगुरु भगत सिंह से फिर जा मिले। वो इस बात से खुश थे कि शहादत के पद पर वे भगत सिंह के साथ हैं। जेल में रहते हुए भी राजगुरु इस फिक्र में रहते थे कि शहादत की होड़ में वे भगत सिंह से आगे निकल जाएं। जेल में सब लोगों ने अनशन किया तो राजगुरु को अच्छा अवसर हाथ लग गया। जब डॉक्टर ने राजगुरु के पेट में दूध पहुंचाने के लिए उनके गले में नली डाली तो राजगुरु ने झगड़ा किया। झगड़े का परिणाम ये निकला कि दूध राजगुरु के पेट में न जाकर फेफड़ों में पहुँच गया और उन्हें निमोनिया हो गया। पर राजगुरु उस कष्ट में भी आनंद महसूस करते थे। उन्हें ये विचार खुश कर देता था कि साथी यतीन्द्रनाथ दास की भांति वो भी अनशन के कारण शहीद हो जाएंगे। और इस प्रकार शहादत की होड़ में भगत सिंह को मात दे देंगे। एक दिन सभी क्रांतिकारी राजगुरु की चारपाई के आसपास एकत्र हुए और उनसे अनशन तोड़ने का जोरदार आग्रह किया। राजगुरु आग्रह न टाल सके। भगत सिंह ने अपने हाथ से राजगुरु को दूध का ग्लास देते हुए पूछा, राजगुरु ये तो बताओ मुझसे पहले तुम इस दुनिया से जाने का उपक्रम क्यों बना रहे हो? राजगुरु ने भगत सिंह के इस प्रश्न पर एक बढ़िया उत्तर दिया। राजगुरु ने उत्तर दिया, बंधु क्रांतिकारी जीवन में मैं हमेशा तुम्हारा नौकर रहा हूँ ना, इसीलिए मैंने सोचा कि नौकर का फर्ज है कि दूसरी दुनिया में आगे पहुंचकर अपने साहब के लिए एक अच्छा सा फ्लैट बुक कराओ और उसकी सफाई करके रखो, है ना? राजगुरु के इस उत्तर पर सारे क्रांतिकारी ठहाका मारकर हंस पड़े।

आखिर वो दिन भी आ गया जब न्यायालय ने अपना फैसला सुना दिया। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी के दंड की घोषणा हुई। 23 मार्च 1931 को लाहौर किले की जेल में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी के तख्ते पर खड़ा कर दिया गया। राजगुरु को बहुत हर्ष था कि शहादत की दौड़ में वो भगत सिंह से पीछे नहीं रहे। तीनों साथियों ने इनकलाब जिंदाबाद के जोरदार नारे लगाए और देश की आजादी का चिंतन करते हुए फांसी के फंदों पर झूल गए।

0: ये कार्यक्रम हमने केंद्रित किया था वीर क्रांतिकारी शिवराम हरि राजगुरु पर।
1: याद करो कुर्बानी, याद करो।

महात्मा गांधी, वीर सावरकर, भगत सिंह सा बनना तो बहुत दूर की बात है। सड़कों को साफ रखकर हर देशवासी तिरंगे और भारत देश का सम्मान करके उनके खून से रंगी हुई इस आजादी का सम्मान तो कर ही सकते हैं ना।

0: नमस्ते, राम राम और ओम शांति। मेरा नाम पवित्र मल्लिक और आप सुन रहे हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो रेडियो मधुबन 107.8 FM पर कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल यानी माय विलेज माय एरिया और अपना लोक भाषा में कहते हैं म्हारो गांव म्हारो अंचल। प्रोग्राम का नाम ही मेरा गांव मेरा अंचल। जिस गांव और जिस अंचल में पले बड़े और यहां तक पहुंचे वो गांव और अंचल को कभी नहीं भूल पाते, क्योंकि गांव तो स्वर्ग जैसे लगता है, मातृभूमि कहते हैं। जिस गांव अंचल में पले बड़े और उसको रिटर्न देने के लिए कभी कभी मौका मिलता है और रेडियो मधुबन इस मौका को पहुँचाता है भिन्न भिन्न प्लेटफॉर्म के माध्यम से, एक मंच के माध्यम से। तो सामुदायिक रेडियो होने के नाते सामुदायिक गतिविधि सामुदायिक तक पहुंचाने के लिए हमेशा तत्पर रहता है रेडियो मधुबन, क्योंकि सामुदायिक के लिए ये एक रामबाण जैसे सिद्ध होता है, अपना बात को रख पाते और आसपास जो गतिविधि हो रही सब तक पहुंचाते। तो आज खुशी का दिन है, राष्ट्रीय पर्व है, इंडिपेंडेंस डे यानी 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के तहत सभी श्रोता मित्रों को और जो जो प्लेटफॉर्म में इस कार्यक्रम को सुन पा रहे सभी को आज का दिवस पर शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयाँ और हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल। तो रही बात भारत का आज़ादी का जश्न चार तरफ मना रहे हैं धूमधाम से, तो सुबह से शाम तक का गतिविधि आज आपका पास रखने जा रहे हैं। तो खासकर आज प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में स्वतंत्रता दिवस को कैसे धूमधाम से मनाएं उसका कवरेज आपको रिकॉर्डिंग प्रोग्राम सुनने को मिलेगा। हमें खुशी है सभी का आवाज़ आज बारी बारी आपका पास रखने जाएंगे। तो ध्यान से हमारे श्रोता मित्र सुन रहे सभी को आज का दिन के तहत पुनः स्वागत करते हैं, धन्यवाद देते हैं और हैप्पी इंडिपेंडेंस डे प्रकट करते हैं शुभेच्छा का साथ, शुभकामनाएं का साथ, बधाइयों के साथ। तो सुनते हैं सुबह का गतिविधि, खासकर शांतिवन ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय तलेटी का गतिविधि और भिन्न भिन्न टूरिस्ट हो चाहे यहाँ के जो खास लोकल गांव और अंचल से आते हैं काम करने के लिए, सफाई डिपार्टमेंट हो चाहे कोई भी कंस्ट्रक्शन के काम में आते हैं, तो उन सभी से भी आज का दिवस को कैसे रंगारंग का माध्यम से एक भारतीय होने के नाते गर्व करते हैं। तो सुनेंगे सुबह का गतिविधि रिकॉर्डिंग प्रोग्राम शांतिवन परिसर का।
1: करुण भाई जी का स्वागत कर रहे हैं, रतंजय भाई जी का स्वागत कर रहे हैं, आदम प्रकाश भाई जी का स्वागत कर रहे हैं, उधर रुक्मणी जी का स्वागत कर रहे हैं भाई साहब, मोहन सिंगल भाई जी, हरिलाल भाई सर जी का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर गोल्डन सिटी का स्वागत हो रहा है। हमारे बीच जयपुर से पूनम देवी पहुंचे हैं, हम निवेदन करेंगे आपका भी पुष्पगुच्छ से स्वागत करेंगे पूनम देवी। और अभी मैं निवेदन करूंगा मंचासीन अतिथियों से कि झंडारोहण एवं राष्ट्रगान का कार्यक्रम रहेगा। हाँ, ईश्वर भाई आगे, चिरंजीव लाल भाई हैं, डोरी पकड़ाएंगे, अभी झंडारोहण होगा और फिर राष्ट्रगीत बजेगा। सेक्रेटरी जनरल ब्रह्मा कुमारी एवं उनके साथ सभी

0: भारत माता की जय।
1: थैंक यू मधुरवाणी ग्रुप का थैंक यू। और अभी मैं निवेदन करूंगा प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेक्रेटरी जनरल आदरणीय करुणा भाई साहब जी से कि आज 15 अगस्त के इस 80वें स्वतंत्रता दिवस पर आप हम सभी को एड्रेस करेंगे ब्रह्मा कुमारी जी की तरफ से। आदरणीय करुणा भाई साहब जी।
2: सत्यम शिवम सुंदरम। आज हम सभी 80th इंडिपेंडेंस डे स्वतंत्र दिवस को मना रहे हैं। हम सभी जानते हैं जिन्होंने भी 1947 में अपना सर्वस्व त्याग करते हुए भारत को स्वतंत्र बनाने का निमित्त बने, जैसे हमारे महात्मा गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस आदि आदि अनेक लाखों भाई बहनों ने अपना जीवन का सब कुछ समर्पित करते हुए भारत को स्वतंत्र कराए, तो हम सभी जानते हैं। इसके अलावा भी जिन्होंने भी अपना पूरा जीवन का त्याग करने के अलावा तो अपना प्राण को भी सेवा में लगा दिए हैं, तो हम जानते हैं। तो उस समय पर जो पाकिस्तान से भारत में आते हुए ट्रेन का भी, उन सब का त्याग का भी हम आज याद करते हैं। तो आप जानते हैं, तो हम सभी अभी तक भी उसी खुशी में है क्योंकि हमारा भारत आज आज़ाद हुआ है। परंतु भारत में जो हम रह रहे हैं, हम सभी तो मना रहे हैं, परंतु भारतवासी सारे विश्व में जहाँ भी रह रहे हैं वो लोग भी आज विशेष रूप से मना रहे हैं। तो आप सबको, देश विदेश में रहने वाले सभी भारतवासियों को हम अत्यंत अपना मनोकामनाएं विशेष रूप से हम आज उनको सबको दे रहे हैं, शुभकामनाएं। तो इसीलिए आज एक बात हम आप सबको याद दिलाना चाहते हैं, तो जो भारत इस समय पर विश्व में एक तीसरा देश के रूप में उभरता आ रहा है, तो ऐसे ही परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने भी इस भारत को स्वतंत्र भारत किस अर्थ से है, जो भारतवासी इस समय पर जो भी रह रहे हैं, तो उन्होंने जो भी विषय वासनाओं का तो समय अनुसार जो होता जा रहा था, तो उसको जीतने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना 1936 से शुरू किया, और एक छोटा सा ग्रुप को, बहनों के माताओं का ग्रुप को इन्होंने ट्रस्टी के रूप में बना करके अपना सर्वस्व उन माता बहनों को दे करके ये संस्था की स्थापना की। और फिर इन्होंने 14 साल तपस्या के बाद वहाँ से 1950 में भारत में आए, क्योंकि परमपिता परमात्मा भारत को फिर से राम राज्य बनाने का जो कार्य है, तो उन्होंने प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा ये कार्य करते आए थे, जिसमें हम इंद्रियों के जीत या विषय वासनाओं से के जीत हो करने का जो प्रयास करते आए हैं, और जीत करके जो मनुष्य से देवता बनाने की ज्ञान को सारे विश्व में 140 देशों तक प्रचार करते हुए इस समय पर भारत विश्व गुरु के रूप में सेवा करने के लिए इन्होंने कार्य किया है। तो आज जो भी इस समय पर भारत में जो विशेष ये महोत्सव का आचरण कर रहे हैं, उन सबको हम याद दिलाना चाहते हैं कि हम लोगों को भी अपना इंद्रियों जीत होते हुए भी इस भारत को राम राज्य बनाने का, विश्व गुरु बनाने का कार्य करेंगे, ऐसे आशा करते हुए मैं अपना दो शब्द समाप्त करता हूँ। ओम शांति।
1: थैंक यू आदरणीय भाई साहब जी का। कितनी ऊंची बात कही हमारे करुणा भाई साहब जी ने कि जब तक हम कर्मेंद्रिय जीत नहीं बनेंगे तब तक राम राज्य स्थापन नहीं हो सकता। नहीं तो कहीं लोभ आएगा, कहीं लालच आएगा, कहीं दूसरे विकार आएंगे और राम राज्य की हमारी कल्पना पूरी नहीं हो पाएगी। इसलिए हमें कर्मेंद्रिय जीत बनना है और वह बनते हैं हम राजयोग के अभ्यास से। मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर मृत्युंजय भाई जी से, आप एडिशनल सेक्रेटरी जनरल हैं ब्रह्मा कुमारीज के, आज के इस शुभ दिवस पर आप भी अपनी शुभकामनाएं देंगे।
3: ओम शांति, ओम शांति। आज भारतवासियों को बच्चे बूढ़े जवान महिला बॉर्डर में रहकर समुद्र के तट पर रहकर एनिमी को फेस करते हुए देश को रक्षा करने वाले सभी देश से बाहर रहने वाले सबको खुशी का दिन है, आनंद का दिन है और 80th एनिवर्सरी है, गणतंत्र का एनिवर्सरी है, स्वतंत्रता दिवस का एनिवर्सरी है। ऐसे दिवस पर और हर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को आगे बढ़ाने के लिए सहयोगी दे करके, जैसे हमारा आदरणीय प्रधानमंत्री जी 13वां बार आज देश को संबोधित किया, इन्होंने लक्ष्य रखा है हमारा देश को 2047 में इस भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए, परंतु 1937 में ही ब्रह्मा बाबा को शिव बाबा ने साक्षात्कार करा के देवी गुणों का धारण करो, पवित्र बनाओ, योगी बनाओ और सारे विश्व का मालिक बनो, सारे विश्व का गुरु बनाओ बाबा को, और विश्व गुरु बाबा बनेगा, हम सभी बाबा के बच्चे सारे विश्व को नया विश्व दिव्य गुणों से भरपूर, सर्व गुण संपन्नता से भरपूर, सुख शांतिमय, जहाँ युद्ध नहीं, हिंसा नहीं, पाप नहीं, भ्रष्टाचार नहीं, ऐसे भ्रष्टाचार रहित विश्व को बनाने का कार्य बच्चों को दिया है। हर बच्चे इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए आगे बढ़ते हुए कुछ ही समय के अंतराल में बाबा का साक्षात्कार करा के, अर्थात हर ब्राह्मणों का जीवन एक साक्षात्कार मूर्ति बनकर, उदाहरण बनकर, आदर्श बनकर, शक्तिशाली बनकर, समृद्ध बनकर, समृद्ध विश्व बनाने का कार्य में ओम शांति मंत्र सिखाएंगे। ओम शांति से विश्व शांति, विश्व शांति से विजयी बन करके, विजयी रत्न बन करके, बाबा का गले का माला बन करके विश्व को सच्ची स्वतंत्र दिलाएंगे। ऐसे दिन दिलाने वाले को बहुत बहुत बधाई, बधाई, माया का दुनिया का विदाई। ओम शांति, ओम शांति,
1: ओम शांति,
3: ओम शांति।
1: थैंक यू भाई साहब, थैंक यू। और अभी परेड कमांडर हवलदार पी सत्यराव जी लीड करेंगे सिक्योरिटी गार्ड्स द्वारा भव्य परेड। प्लीज परेड कमांडर हवलदार पी सत्यराव जी, आप आर्मी में रहे हैं और अभी शांतिवन, मनमोहिनी वन, आनंद सरोवर, मानसरोवर, तपोवन के सिक्योरिटी गार्ड्स के दस्ते परेड करेंगे।
4: जय श्रीमान 57 सेकंड पास परेड पर परेड मास करने के लिए अपन मान चाहता श्रीमान, जय श्रीमान।
5: तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज का गतिविधि जो सुबह में हुई थी उसका रिकॉर्डिंग प्रोग्राम शांतिवन परिसर से, जो कि ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का हेडक्वार्टर है, तो सुबह का गतिविधि आपके पास रखें। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद और कुछ गतिविधियाँ आपके पास रखने जाएंगे, लेकिन अल्प विराम के बाद सुनते रहिए मुस्कुराते रहे कार्यक्रम मेरा गाँव मेरा अंचल, खासकर इंडिपेंडेंस डे स्पेशल।
6: नमस्कार, मैं हूँ रवीना टंडन और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: बहुत खुशी का बात है और रेडियो मधुबन आज का कार्यक्रम को आपका पास रख रहे हैं और सुबह से शाम तक भिन्न भिन्न आवाज को रख रहे हैं। सबका भावना अलग है, देश हमारा जैसे भी है अभी जो स्थिति है उसी हिसाब से सरकार को भी चेताना होता है और हमें भी जागरूक होना होता है। तो इस कार्यक्रम को सजाने के लिए आज क्योंकि अगस्त 15 जो कि स्वतंत्रता दिवस हम मना रहे हैं, चार तरफ से भिन्न भिन्न आवाज़ को लेकर सुबह का जो शांतिवन परिसर में जो झंडावरोहण हुआ था उसका भी कवरेज आपके पास रख रहे हैं। तो हमारा साथ इस कार्यक्रम को सजाने के लिए और एक महान व्यक्तित्व है। तो भाई साहब, आपको स्वतंत्रता दिवस की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, आप अपना परिचय देंगे।
1: नंदलाल तंवर, मैं टेलीफोन एक्सचेंज से रिटायर्ड हूँ, एज AGM हरियाणा हिसार से आया हूँ।
0: बहुत अच्छा। तो आज स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, तो आप किस तरह मना रहे और किस तरह देख रहे भारत को?
1: भारत का विकास की बात जो है वो बिल्कुल जीरो कहूंगा मैं।
0: क्या बात?
1: इसलिए कि नॉर्मल जो है सिर्फ 4-5 घराने हैं,
0: जी जी,
1: उन्हीं की सेवा हो रही है, बाकी किसी की सेवा नहीं हो रही है। अगर प्रधानमंत्री साहब कम से कम जो बीच का तबका है या नीचे, इनका इनके बारे में कुछ सोचा जाए। अभी हवाई जहाजें चला रही हैं, एरोड्रम बड़े बड़े बना दिए हैं, ट्रेनें फास्ट चला दी है, सुपर फास्ट चला दी है ये, लेकिन गरीबों के लिए जनरल में कोई भी अभी तक फैसिलिटी नहीं दी। सो स्पेशली सीनियर सिटीजन जिनको कोरोना से पहले 50% रेलवे से डिस्काउंट मिलता था, वो भी अब विड्राल हो चुका है। कई बार आवाज उठी है लेकिन उसके बावजूद उसको रिस्टोर नहीं किया गया अभी तक।
0: लेकिन प्रधानमंत्री हमारा भाई साहब जो है पूरा कुमार है, शादी नहीं कि मतलब उनके आगे नहीं कि कोई पीछे नहीं, फिर भी विकसित भारत के लिए जो तत्पर रहते हैं और देश का नाम रोशन करने के लिए चाहते हैं। लेकिन आप जो कह रहे हैं जो भारत जो दिखाई दे रहा है वो चीज़ नहीं दिखाई दे रहा, तो इसका राज क्या है और किसको चाहते हैं? ऐसे कौन व्यक्ति जो भारत को स्वर्ग जैसे बना सकता है, माने भ्रष्टाचार मुक्त हो, चाहे व्यसन मुक्त हो, कौन ऐसे व्यक्ति है जो आपका नज़र में आ रहा है?
1: बात यह है कि आपने जो ये कहा कि हमारे प्रधानमंत्री अभी मतलब शादीशुदा नहीं है, BK कह दीजिए,
0: बाल ब्रह्मचार्य जैसे,
1: लेकिन वो नहीं है, शादीशुदा है, वाइफ उन्होंने अभी तक छोड़ी हुई है। जो अपनी वाइफ के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं,
0: जी जी,
1: अभी उन्होंने उसके लिए कुछ भी नहीं किया बेचारी के लिए, तो वो अभी अब मैं क्या कहूँ कि विकसित भारत के लिए क्या कुछ होगा। बेटर प्रधानमंत्री जी कम से कम आगे जो टाइम बचा है आपके पास उसमें कुछ कल्याण की नीतियाँ लाए तो बात बनेगी, अदरवाइज सिर्फ ही भाषणबाजी में या ऊपर का दिखावा में उसमें कुछ बनने वाला नहीं।
0: लेकिन भारत को तो आगे बढ़ाने के लिए जैसे 3 तलाक है, राम मंदिर है, बहुत कुछ मुद्दा को लेकर आए हैं, तो उसको भी सफल किए, तो ये चीज आपको तो दिखाई देना चाहिए और सभी श्रोता मित्र को दिखाई देना। फिर भी क्यों आप बोल रहे भाई हमारा भारत विकसित के लिए जो आवश्यकता है वो नहीं हो रहा है? क्योंकि गरीब के बच्चे गरीब होकर रह रहे और अमीर के बच्चे अमीर होते जा रहे, ये तो दिखाई दे रहा है। लेकिन आपका व्यू में क्या होने से ये भारत हमारा विश्वगुरु बनेगा?
1: अभी आपने राम अयोध्या मंदिर के बारे कहा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बिल्डिंग बना दी, अच्छा किया बनाया, लेकिन अब देखिए कि वहाँ कितना भ्रष्टाचार हुआ है,
0: चंदा चोरी
1: कितना हुआ है,
0: और इसका जो दान पेटी से भी
1: पैसा निकाले, और जो मेन इसमें दोषी है उन तीनों को तो हटाया जा रहा है, उनका कोई नाम नहीं है, और जो कि मेरे ख्याल में वो 7 आदमी जिन्होंने कहा भी पकड़े गए हैं उन पर एक्शन हो रहा है, उन 7ों का रोल उसमें है ही नहीं।
0: कितना लोगों पकड़ते रहेंगे और कितना दुनिया मेला सभी जगह में ऐसे हो रहा है तो क्या करेंगे?
1: मैं ये कह रहा हूँ कि आप देखिए राम मंदिर का जो ट्रस्ट है वो किनका है, वो किनका बनाया और क्या उनका बेनिफिट किनको हुआ है, उससे ही सोच लीजिए। क्या आप यह सोच सकते हैं कि मैं नहीं समझता कि भारत विकसित के बारे में
0: नाम से होता काम में नहीं इसे,
1: हाँ, नाम का झंडा उठाने के वो चल रही है।
0: चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इस तरह कार्यक्रम को सजाया, हमारा श्रोता मित्र भी सुन रहे हैं, सभी महसूस भी कर रहे हैं जो दुनिया की हालत कई किसको बताना नहीं पड़ता और खुद देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं और दुनिया का किस तरह गति जा रहा है और क्या क्या हो रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज का दिन में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होने से तो हम तो आगे बढ़ेंगे ना, खाली पॉजिटिव करेंगे तो क्या होगा, नेगेटिव भी चाहिए। तो और कुछ कहना चाहेंगे सर?
1: मैं एक जो आपने कहा कि 15 अगस्त के लिए, मैं मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि हमारा जो मधुबन रेडियो है जिस रोज चालू हो रहे होने से पहले हमने, मैं भी उस पार्टी में था कि हमने सर्वे किया था गाँव का भी क्या कुछ लोगों की डिमांड है क्या कुछ है। तो आज 16वां साल चल रहा है मधुबन रेडियो को, और मैं बाबा से यही कहूँगा, हमारे शिव बाबा से, कि इसको और ज़्यादा उन्नति से उन्नति ऊपर से ऊपर जाए, ताकि लोगों की आवाज़ पब्लिक तक इसी मधुबन रेडियो के थ्रू पहुँचा जाए।
0: बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर प्रस्तुति के लिए और जानकारी दी। और रेडियो मधुबन से पहले से जानकारी था, और जब भी आते रेडियो मधुबन से अपना बात को रखते हैं तो ये एक खुला मंच, मैंने जैसे कहते रेडियो मधुबन आपका रेडियो है, आपके द्वारा संचालित होता है, फॉर द कम्युनिटी, ऑफ द कम्युनिटी, बाय द कम्युनिटी, ये रेडियो स्टेशन। तो आज जन जन तक सभी पॉजिटिव नेगेटिव जो कि देश का प्रति जो आवश्यकता है, जो आवश्यकता नहीं वो चीज को रख रहे, क्योंकि सबका बात को रखने के लिए हक है, क्योंकि भारत है तो भारत देश की महान है। तो वंदे मातरम, बोलिए वंदे,
1: वंदे मातरम, वंदे मातरम,
0: भारत माता की जय, सबका जय हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद, लेते हैं छोटा सा ब्रेक।
2: महिला स्वयं में है शक्ति, और इसलिए आपकी सुरक्षा है आपके हाथ ही। कभी भी कहीं भी अगर आपको किसी प्रकार के खतरे का आभास हो तो डायल करिए 1090 या 1091। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

0: कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, आज तो बहुत खुशी का दिन है, आज अगस्त 15 है और खास स्वतंत्रता दिवस, शांतिवन परिसर से आपको लाइव कवरेज दे रहे और हमारा सभी को लेकर हमारा शांतिवन भरपूर होता है, चाहे लेबर हो चाहे पंडित हो, सभी को चांस मिलता है। तो आज इस कार्यक्रम को सजाने के लिए बहुत दूर से हमारा सफाई कर्मी रहते हैं, क्योंकि सफाई का बिना कुछ हो नहीं सकता, जहाँ स्वच्छता है वहाँ ईश्वर वास करते हैं, इसलिए स्वच्छता जरूरी है। बर्तन और झाड़ू और पोछा, ये तीन रत्न है, जो झाड़ू करते हैं पोछा करते हैं वो रत्न। तो हमारा साथ एक महिला है तो कि खड़ात ग्राम से आती है, तो अपना परिचय देंगे, अपना नाम बताइए।
1: रूपी दीदी नाम।
0: रूपी दीदी कहाँ से? रूपी दीदी आप
1: जोड़िया पल्ली से?
0: जोड़िया पल्ली से। एक कितना दिन से यहाँ पर सेवा दे रहे
1: हैं? हमको 10 साल हो गए।
0: 10 साल, बहुत खुशी रहा। 10 साल में कोई दूसरा जगह नहीं जा रहे?
1: नहीं, इधर है हम।
0: क्यों यहाँ पर? कितना क्या आपको मिलता है ज्यादा?
1: मतलब इधर से ये काम करने में सब सेफ्टी रहती है, मतलब बाबा के घर में ठीक रहता है।
0: ठीक रहता है, दूसरा जगह में थोड़ा भले पैसा ज्यादा देगा लेकिन उसका शांति नहीं है।
1: शांति नहीं है
0: लेकिन यहाँ पर शांति है, क्यों? काम भी ठीक है। तो आज स्वतंत्रता दिवस है, सभी स्वतंत्र है, भारत हमारा आजादी हुआ था। तो आप कहाँ तक पढ़ाई किए थे? पढ़ाई किया था कुछ?
1: नहीं, पढ़ाई नहीं किया था।
0: लेकिन फिर भी जानते हैं?
1: सब जानते हैं ऐसे, मतलब बाबा के घर में ठीक है, काम करते हैं तो मतलब दिमाग।
0: तो आज जो सभी खुशी मना रहे तो उसके बारे में क्या जानते? आपका बच्चे तो स्कूल में जाते होंगे ना?
1: जाते हैं।
0: तो आज बच्चों कैसे तैयार करके भेजे?
1: आज तो भेजे ना, डांस वेंस करेगा बच्चा।
0: डांस करेगा? क्यों डांस करेगा? आज का दिन
1: आज देश आजाद हो गया।
0: आजाद हुआ, बस इतना शब्द तो बोला हमारा। क्या नाम बताए?
1: रूपी दीदी।
0: रूपी नाम बताए, बहुत बहुत धन्यवाद आज का कार्यक्रम को सजाए। और कुछ गीत वगैरह गाते हैं रूपी? हाँ? तुमको कुछ गीत आता है?
1: अभी तो हमारा मारवाड़ी में गीत गाते हैं।
0: एक गीत सुनाओ ना, क्योंकि हमारा श्रोता सुन रहे हैं आपको, जो रूपी जानते हैं, जो डायमंड हॉल में आप सेवा देते हैं ना, यहाँ भगवान आते हैं डायमंड हॉल, बहुत खुशी का बात है। तो एक गीत सुनाएंगे मारवाड़ी में, चाहे शादी में हो, चाहे विदाई में हो, चाहे कोई भजन। अच्छा, दादी माँ को जानते? दादी माँ को देखें?
1: हाँ, दादी माँ को, मतलब दादी माँ प्रकाश मणि दादी को तो नहीं देखा, जो बाबा आता था गुंजन दादी को देखा,
0: दादी को देखे,
1: रतन मोहिनी दादी को देखा, ये जानकी दादी को देखा।
0: तो अच्छा बात बताए, लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद और कुछ प्रस्तुतियां सुनेंगे, लेकिन अल्प विराम के बाद सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल, खासकर स्वतंत्रता दिवस अगस्त 15 के तहत सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, अपना रूपी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। लेते हैं छोटा सा ब्रेक।

0: नमस्कार, मेरा नाम है अमन वर्मा और इस समय आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और मैं इतना कहना चाहूँगा कि आपका अपने घर पर कोई इंतज़ार कर रहा है, इसलिए कृपया आप हेलमेट लगाकर अपनी मोटरसाइकिल चलाएं, याद रखिएगा।
1: नमस्ते, राम राम और ओम शांति। आज हमें बहुत खुशी है क्योंकि आज खुशी का दिन है, राष्ट्रीय पर्व है, इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त। तो भारत आज़ादी का उत्सव मना रहे, आज़ादी मतलब स्वतंत्र, सभी चाहते हैं स्वतंत्र, भारत भी स्वतंत्र है। तो इस संदर्भ में हमारा आज का कार्यक्रम को साझाने के लिए हमारे साथ महान अनुभवी है, तो उनको लेते हैं। सर, आपको स्वागत करते हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर, और खासकर ये कम्युनिटी रेडियो है कम्युनिटी के लिए। तो आप कम्युनिटी से आए हैं तो शांतिवन परिसर में, और आप आज का दिन को कैसे देखते हैं, क्योंकि शाम को सभी श्रोता सुन रहे हैं, तो आप अपना परिचय दीजिए और स्वतंत्रता दिवस के तहत आप क्या महसूस कर रहे हैं और भारत को किस नजर से देखते हैं, अपना परिचय।
2: आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम हिमांशु गर्ग है, मैं मंडी आदमपुर हिसार से आज शांतिवन में आया हूं, और सबसे पहले मैं 80वें स्वतंत्रता दिवस की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगा। जैसा कि हमने पिछले सालों में देखा है और आगे भी जो रोड मैप हमें दिखाई दे रहा है कि भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा, और उस चीज में हम लोग भी सहयोग करेंगे तो इससे देश की तरक्की और बढ़ेगी। तो सभी को एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, ओम शांति।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर प्रस्तुति के लिए। और आजादी का जो जश्न सुबह से शाम आपका पास रख रहे हैं, तो हिसार से भी हमारे साथ इस कार्यक्रम को साझा रहे थे, बहुत बहुत धन्यवाद।

0: चलिए बहुत खुशी का बात है और आज हम सुबह से शाम तक मना रहे हैं इंडिपेंडेंस डे जो कि ऑस्ट्रिया स्वतंत्रता दिवस। इस तरह कार्यक्रम में सभी का आवाज एक गुलदस्ता की तरफ मना रहे हैं। तो भारत देश महान है और देशभक्ति में ओतप्रोत होकर चाहे सुरक्षा कर्मी हो चाहे हमारा जो निवासी भारत निवासी सभी को धन्यवाद देते हैं, शुभेच्छा देते हैं। तो आज इस कार्यक्रम को सजाने के लिए शांतिवन परिसर से ही आपको कवरेज दे रहे हैं। तो हमारा साथ बहुत सारा टूरिस्ट है और भाई बहन भी है। तो हेलो करते हैं, आज का दिवस के तहत सबको शुभकामनाएं। सर आपका परिचय दीजिए।
1: मेरा नाम सूर्यवीर सिंह है और मैं पूरे परिवार के साथ आज यहाँ आया हूँ और 15 अगस्त का दिवस है। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ, बहुत अच्छी तैयारी कर रखी है, बहुत अच्छा वातावरण है। और
0: सर विकसित भारत जो नाम सुनते हैं, भारत जो नाम सुनते हैं, आजादी स्वतंत्रता इंडिपेंडेंस ये जो शब्द है उसमें सब कुछ समाया हुआ है। सब चाहते स्वतंत्रता, हम भी स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है, किसके ऊपर डिपेंड नहीं रहे। तो आज का दिवस को सार्थक करने के लिए हमारा साथ और एक मैम भी। मैम अपना परिचय देंगे। हेलो, अपना परिचय देंगे कहाँ से?
2: जी मेरा नाम प्रियंका वर्मा है, मैं पाली जिले से आई हूँ और मुझे यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ही शांत लगा, बहुत साफ सफाई बहुत अच्छी है यहाँ की और आज हम सच में बहुत इंडिपेंडेंट फील कर रहे हैं यहाँ के और यहाँ के लोग भी बहुत शांत है और बहुत कोऑपरेटिव है।
0: और क्या सीख लेकर जाएंगे क्योंकि इतना शांत परिवेश में भारत को ऐसे दुनिया चाहिए, एक मॉडल आपको देखने को मिल रहा है, स्वर्ग का मॉडल है शांतिवन, है ना? तो शांत सफाई सब कुछ में यहाँ पर है। तो आप इसको क्या कहना चाहेंगे भारत को इस तरह करने के लिए, मैंने एक विश्व गुरु तक पहुंचाने के लिए, भारत को महान बनाने के लिए इस तरह स्वच्छता, सादगी और दिव्यता और आध्यात्मिकता कितना आवश्यकता है आप महसूस कर रहे हैं?
2: जी बिल्कुल, मैं तो यही चाहती हूँ कि जिस तरह यहाँ के लोग आपस में मिलजुल के रहते हैं, आपस में सहयोग से रहते हैं, तो सारे देश भर के वासी भी इसी तरह मिलजुल के रहे, आपस में भाईचारा रखे, बस मेरी यही इच्छा है।
0: लेकिन हम सुनते थे श्री लक्ष्मी श्री नारायण, लक्ष्मी नारायण कहते, तो नारायण और लक्ष्मी नहीं कहते, श्री लक्ष्मी श्री नारायण, सीता राम का सीता पहले। तो नारी को आगे बढ़ाएंगे तो हमारा भारत भी आगे बढ़ेगा। तो इसलिए शुरू में सत्ययुग में श्री लक्ष्मी थे, लेकिन आज भी हमारा बहन आगे बढ़े तो भाई को आगे चांस देते ना, आप खुद आगे बढ़ते।
2: बिल्कुल, ये मुझे पूरा सपोर्ट करते हैं, मेरे किसी भी चीज को लेकर ये मेरा पूरा सहयोग करते हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं।
0: नारायण कहते नारी लक्ष्मी को आगे बढ़ाएंगे और लक्ष्मी कहते नारायण को आगे बढ़ाएंगे, दोनों का सहयोग चाहिए।
2: नहीं, दोनों का बिल्कुल बराबर योगदान होना ही चाहिए, चाहे वो नारायण हो या लक्ष्मी हो,
0: पुरुष हो चाहे स्त्री,
2: पुरुष हो या चाहे।
0: धन्यवाद सुंदर प्रस्तुति के लिए।
3: जय वंदे मातरम,
0: वंदे
3: वंदे मातरम,
0: मातरम
4: की जय।
0: बस जय जय गान का साथ हमारा साथ गोविंद भाई भी है। तो गोविंद भाई वंदे मातरम,
5: वंदे मातरम, जय भारत, जय भारत, भारत माता की जय।
0: और क्या कहना चाहेंगे हमारे श्रोता मित्रों को, क्या वार्ता रहेगा आज का दिन, क्या रखना चाहिए?
5: तो एक वसुदेव कुटुंब वाला परिवार है, हमारा भारत भी वैसे ही वसुदेव कुटुंब वाला परिवार है। सारे विश्व के एक एक भाई कण जो भी है वो सब एक दूसरे मिलके रहे, खुशी से ऐसे ही सदा फ्रीडम महसूस करते रहे। आज स्वतंत्र दिवस है, आज भारत का स्वतंत्र दिवस मना, बुराइयों से भी और भी जो भी व्यसन मुक्ति व्यसन है उस व्यसनों से हम सब मुक्त होना चाहते हैं। तो आज के दिन प्रतिज्ञा करें हम ये व्यसनों से दुर्गुण में मना परतंत्र से दूर होके हमारे स्वतंत्र जैसे कहते हैं, हमारे अंदर भी ऐसे 5 विकारों के काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये जो इसे स्वतंत्र लेके हम जीवन भर अपनाएंगे। इसलिए जय भारत कह के भारत भूमि स्वर्ग कहलाएंगे, ऐसे ही इसी शुभ भावना से जय हिंद जय भारत।
0: जय हिंद जय भारत को साथ हमारा साथ एक माता जी क्या नाम है आपका?
6: कमला माता।
0: कहाँ से आए?
6: हम चेन्नई इंदौर से आए।
0: इंदौर से आए हाँ। और क्या कहना, आज खुशी लग रहा है?
6: हाँ, बहुत खुशी लग रहा है,
0: खुशी का दिन है, भारत हाँ। आजादी हुआ था
6: हाँ, हाँ, बहुत खुशी हाँ। लग रहा।
0: क्या नाम है?
7: लक्ष्मी। मैं
0: कहाँ से?
7: इंदौर से।
0: इंदौर से। और कितना साल से ज्ञान में?
7: 10 साल से।
0: क्या आज पूरा स्वतंत्र लग रहा है?
7: लग रहा है।
0: सुबह में क्या क्या देखा है? सुबह से देखा, प्रोग्राम देखा
7: है? हाँ, उधर नहीं गए, झंडा उधर
6: हमने पूरा देखा।
0: पूरा देखें और ऐसे होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, लेते हैं छोटा सा ब्रेक।

0: हंसते रहिए। आप सड़क पर चलते समय अपनी गाड़ी को कंट्रोल रखें और अपनी गाड़ी को धीरे धीरे चलाएं और हमेशा हेलमेट पहनते रहिए।
1: रेडियो मधुबन
2: कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आप सब सुन पा रहे, खासकर स्वतंत्रता दिवस इंडिपेंडेंस डे सुबह से शाम तक आपका पास पहुंच रहे, तो आज कम्युनिटी से भी ले रहे हैं और शांतिवन परिसर से भी ले रहे हैं, क्योंकि ईश्वरीय विश्वविद्यालय और राज के विद्यालय का तो हमेशा लेते हैं, लेकिन आज ईश्वरीय विश्वविद्यालय का जो गतिविधि खासकर इंडिपेंडेंस डे के तहत 15 अगस्त को मना रहे धूमधाम से, और सभी अपना बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे और अपना दिल का बात देशभक्ति में ओत प्रेत होकर अपना भारत को महान बनाने के लिए तत्पर रहते और खुद महान बन रहे हैं। तो इस कार्यक्रम को सजाने के लिए आज शांतिवन परिसर से ही हमारा जो राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी संदेश दीदी, जिसको हम संदेश दीदी के नाम पे जानते, रुक्मण दीदी को स्वागत करते हैं आज का दिन में, खासकर स्वतंत्रता दिवस। दीदी जी, आपको ढेर सारे शुभकामनाएं और हमारा श्रोता मित्र जो सुन रहे हैं इस तरह कार्यक्रम को, क्योंकि हमेशा ये इस आसपास अंचल को एक मंच देता है रेडियो मधुबन, तो सामुदायिक से हम प्रस्तुतिकरण करते हैं, तो आज हमें खुशी है आज का दिन में आपको स्वागत करते हैं। श्रोता मित्र को क्या कहना चाहेंगे, स्वतंत्रता जिसको हम आजादी कहते हैं, इंडिपेंडेंस कहते हैं, तो उस संदर्भ में आप तो संदेश लेकर आते हैं और भारत को कैसे देखते हैं आगे जाकर, भारत कैसे विश्वगुरु बनेगा, भारत कैसे महान बनेगा, और आज का दिन में आपको स्वागत करते हैं, आप अपना परिचय का साथ।
3: ओम शांति।
2: ओम शांति।
3: आज विशेष 15 अगस्त का दिन है, स्वतंत्रता दिवस कहें। ऐसे तो दुनिया के हिसाब से स्वतंत्रता दिवस हम उस रीति से मनाते हैं कि हमारा भारत अंग्रेजों से अलग हुआ, क्योंकि जो कुछ साल पहले भारत 47 के पहले भारत नहीं था, एक ही अंग्रेजों का राज चला। जब भारत आजाद हुआ, ब्रिटिश गवर्नमेंट चली गई और भारत स्वतंत्र हो गया, तो ये तो हम सभी के लिए बहुत खुशी की बात है। और हमारे बापू गांधी जी भी भारत में राम राज लाने के लिए बहुत प्रयत्न किया, उन्होंने अपना जी जान, अनेक आत्माओं की, अनेक की बलिदान इस भारत भूमि पर हुआ। पर हम तो कहेंगे कि विशेष जो सच्ची कुर्बानी कहें, सच्चा बलिदान कहें, भले हम ब्रिटिश गवर्नमेंट अंग्रेजों से स्वतंत्र हो गए हैं, पर हम स्वतंत्र तभी हो सकते हैं जब हमारे अंदर जो अनेक प्रकार की बुराइयां हैं, कमियां हैं, दोष हैं, उन सभी चीजों से हम निर्दोष बनेंगे। उन चीजों को हम अपने अंदर से, जैसे कहें काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, नशा, अवमान, देह अवमान, इन विकारों का, पुरानी चीजों का, इन बुराइयों का, हम विशेष रूप से जब इनको स्वाह करेंगे, बलिदान करेंगे, खत्म करेंगे, तभी हमारे देश में सच्ची शांति कहें, सच्ची स्वतंत्रता कहें, तभी आ सकती है। तो इसलिए हम सभी अपने जीवन में लक्ष्य रखें, मुझे अपना जीवन इतना ऊंच श्रेष्ठ बनाना है जो मैं एक भारत के लिए अपना बलिदान कहें, बुराइयों का दान कहें, बलिदान मैं कर सकूं। और विशेष वर्तमान समय हमारे ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में नशा मुक्ति का जो प्रोग्राम चल रहा है, जो नशा मुक्त भारत, क्योंकि हम देखते इस नशा के कारण आज मनुष्य आत्माओं की दशा बहुत खराब हो गई है। विशेष राजस्थान में, पहले बिहार में भी थी, कई स्थानों पर, फिर भी नशा मुक्ति का अभियान हमारे सारे भारत वर्ष में चल रहा है। पर हम तो कहेंगे कि मेरे को एक आसाम की कहावत याद आती है। जब मैं 1973 में आसाम गई थी तो वहाँ भी बहुत आसाम में ठंडी होने के कारण शिलोंग में आसाम में लोग शराब बहुत पीते हैं। तो कोई कारण से मैं कोई सेवा स्थान पर गई, थोड़ी शाम हो गई थी, वहां तो 3-4 बजे से अंधेरा हो जाता है। 4 बजे से अंधेरा तो लोग हमको कहने लगे कि लोग हमको कहने लगे कि सूर्य अस्त और शराबी मस्त है। ये वहां की लोग की भाषा थी, सूर्य अस्त और शराबी मस्त है। तो हाँ, मैं देखती थी सुनती थी, पर मैं वर्तमान समय जब शांतिवन में अभी हम 20-21 साल से यहाँ रहते हैं और मैं देखती हूँ कि ये जो लत है, ये जो संस्कार है, जो आदतें हैं, ये बहुत खराब है। हम तो देखते परिवार को, अपने बच्चों को, अपनी वाइफ को, समाज को, हम इस नशा के कारण हम दूर हो जाते, अलग हो जाते हैं। तो हम तो यही आज के दिन विशेष आप सभी से आग्रह कहें, अनुरोध कहें, विनती कहें कि आप सभी विशेष आज के दिन हर एक अपने आप से प्रतिज्ञा करें कि मुझे नशा मुक्त बनना है। और यही हमारा सबसे अच्छा, सबसे बड़ा बलिदान कहें, तभी हमारा भारत विश्व गुरु कहलाएगा। और जिसकी सपना हमारे बापू गांधी जी देखते थे, सुनाते थे, तो हम सभी को ऐसे भारत को स्वर्ग बनाने के लिए, स्वर्ग कहें, सोने की चिड़िया भारत को कहा जाता है, ऐसी दुनिया को लाने के लिए हमें अपनी बुराइयों का, बुरी आदतों का, बुरे संस्कारों का बहुत बलिदान करना पड़ेगा। यही विशेष आज के दिन हमारी विशेष सच्ची सच्ची स्वतंत्रता है। ओम शांति, ओम शांति,
2: ओम शांति, ओम शांति। और सही में दीदी ने अपना दिल का उद्गार और भारत को किस नजर में देखते हैं, और जब नशा मुक्त होगा तो भारत सही मायने में स्वतंत्रता होगा, क्योंकि हम नशा से परतंत्र नहीं होंगे, क्योंकि नशा नाश की जड़ है। तन मन और धन पूरा क्षति होता है, सम्मान भी जाता है। तो दीदी का जो भाव है, कोई भी नशा नहीं करे, खासकर जो हानिकारक है, जो नशीले पदार्थ है जैसे गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, खासकर शांतिवन परिसर में तो नहीं होता है। भाई बहन पूरा अपना राज्य का द्वारा अपना बुराइयों को त्याग करते हैं, लेकिन हमारा श्रोता मित्र जो जो भी प्लेटफॉर्म का माध्यम से, FM का माध्यम से, इंटरनेट का माध्यम से, YouTube का माध्यम से, लिंक का माध्यम से और आप एप्लीकेशन का माध्यम से सुन रहे, तो हमारा ये शुभ संदेश दीदी का, जे नशा मुक्त रहे परिवार को और खुद को, तब जाकर सच्ची स्वतंत्रता मनाएंगे। तो आज का शुभ अवसर पर सुबह से शाम तक आपका पास भिन्न भिन्न आवाज को रख रहे हैं। तो संदेशी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आज का कार्यक्रम को सुंदर रूप में सजाए, हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी बना दिए। हमारे श्रोता मित्र भी आज खुशी महसूस कर रहे हैं और आज मौका मिला, मौका का फायदा दीदी को भी मिला। तो दीदी का प्रेरणा में आजकल गाँव और अंचल में भी जो जाते हैं रेडियो मधुबन का प्रोग्राम को लेकर, दीदी का बहुत योगदान रहता है, चाहे सहायता क्षेत्र में चप्पल हो, चाहे कोई भी आवश्यकता जरूर मन व्यक्ति को देते हैं, जो जिसका द्वारा उनको दुआएं इनडायरेक्टली मिलता है। भले रेडियो मधुबन इस तरह कार्यक्रम को लेकर दीदी का जो संकल्प है, चाहे ठंडी का टाइम में कपड़ा हो, चाहे गर्मी का टाइम में जो आवश्यकता चीज को दीदी स्व इच्छा से खुद बुलाकर रेडियो मधुबन को देते हैं, जिसका चलते आपके पास हम पहुंच पा रहे। तो आज का दिन में सभी को नाम का सा धन्यवाद देते हैं सुंदर प्रस्तुति के लिए। आज के लिए हमें दीजिए इजाजत, फिर कल मिलेंगे इसी वक्त इसी समय और किसी बात को लेकर। यह था खासकर स्वतंत्रता दिवस के तहत शांतिवन परिसर का गतिविधि, सुबह से शाम तक सभी का आवाज को रखे। तो सभी को धन्यवाद, आभार। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत, और भारत माता की जय। भारत माता की, हमारे दीदी भी बोलेंगे भारत माता की
4: जय।
2: मेरे भाई कहाँ गए, भारत माता की
5: जय।
2: जय जय का साथ आज का कार्यक्रम यहीं पर रखते हैं, फिर कल मिलेंगे इसी वक्त इसी समय। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहे कार्यक्रम मेरा।

0: 15 अगस्त पे तू कोई गाना नहीं गाएगा?
1: कैसे गाऊं दीदी, ये गाने तो मुझे समझ ही नहीं आते। यहाँ हर कदम कदम पे धरती बदले रंग, अब भला धरती रंग कैसे बदलेगी। और वो दूसरा गाना, मेरे देश की धरती सोना उगले, अब दीदी मुझे धरती पर कहीं नहीं मिलता सोना।
0: छोटे, जब कोई चीज इतनी खूबसूरत होती है उसका वर्णन करने के लिए शब्द कम पड़ जाए, या इतनी खास की आंखों में पानी, चेहरे पर मुस्कान और मन में हिम्मत एक साथ आ जाए, तो उस भावना को कहते हैं देश प्रेम।
1: देश प्रेम?
0: हाँ, इसलिए तो गीतकार ऐसे शब्द लिखते हैं इस स्वतंत्रता दिवस पर। चलो साथ कहते हैं,
2: मेरा देश मेरी शान।
0: रेडियो मधुबन की तरफ से आप सभी दोस्तों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।
2: हैप्पी

वतन करा के श्रोताओं को हमारा नमस्कार। यूं तो 1857 की क्रांति की आवाजें कई दिशाओं से गूंजी थी, मगर वो नगर जहां इस संग्राम को नियोजित अभियान का स्वरूप दिया गया उसका नाम था कालपी। उत्तर प्रदेश में यमुना नदी के किनारे बसा कालपी का किला आज भी इस बात की गवाही देता है कि किस तरह असंख्य देशभक्तों के लहू से रंजित यमुना चीत्कार कर उठी थी। श्री कृष्ण के साथ अपने विशेष अनुराग पर इटलाती ये नदी नहीं जानती थी कि एक रोज उसका आंचल अपने ही पुत्रों के खून से रंग जाएगा। इस हादसे के बाद वो बही तो जरूर, लेकिन उसका अलहड़पन न जाने कहाँ खो गया। आजादी का सवेरा भी उसके होठों से वो गमजदा भावना हटा सका जो 57 की क्रांति के वक्त उस पर गहरे बैठ गए।

यमुना नदी की ऊंची कगार पर बना था कालपी दुर्ग। इसी दुर्ग में क्रांति का नियंत्रण कक्ष बनाया गया था। क्रांति नायक नाना साहब पेशवा इसी दुर्ग में आकर ठहरते थे। क्रांतिकारियों ने इस दुर्ग के नीचे भूमिगत तल में हथियार बनाने का कारखाना बना रखा था, जिसे उस समय का सबसे बड़ा शस्त्रागार माना जाता था। कोच, कालपी या कानपुर, लड़ाइयां कहीं भी हुई हों, लेकिन उनका नियंत्रण इसी दुर्ग से हुआ। दुर्ग के नीचे यमुना से जुड़ा वो किला घाट है, जहां क्रांतिकारियों ने यमुना का पवित्र जल हाथ में लेकर संकल्प लिया था कि अपने खून की अंतिम बूंद तक वे आजादी के लिए संघर्ष करते रहेंगे।

आ मृत्यु आ आ तू या आने के लिए निकली ही होगी तो आ ही जा अभी मुरझाने के डर से डर जाए फूल अंगूर भी रस पीने सूख जाने से डर जाऊं क्यों तुझसे मैं किस लिए मेरे इस प्याले में पीते पीते कभी न खत्म होने वाली है अभी भरी आंसुओं की मदिरा बस

आ यदि तू भूखी है, नैवेद्य के लिए और अभी दिन, यद्यपि यौवन युक्त फिर भी सारे मेरे छोटे मोटे काम खत्म हो गए हैं, फिर भी सारे मेरे छोटे मोटे काम खत्म हो गए हैं इस दिन के, किसी तरह जुगाड़ कर ऋण चुकता किया, जन्मार्जित जो जो सब ऋषि ऋण के लिए, श्रुति जननी चरण तीर सेवन करके, आश्रय कर ध्रुव पद का संतन उसके, आ मृत्यु आ आ तू या आने के लिए, निकली ही होगी तो

मई 1857 के मध्य तक कालपी की सेना को छोड़कर उत्तर भारत की समस्त सैनिक टुकड़ियों ने बड़े पैमाने पर लड़ाई करना छोड़ दिया था। कालपी में क्रांतिकारियों ने 84 गुंबद से यमुना तक के सभी मार्ग काट दिए थे। जगह जगह खाइयां, अवरोध के लिए चौकियां, 10,000 सशस्त्र सैनिक, 200 नौकाएं, बिहड़ों में डेरा, ये सभी बातें एक अच्छी खासी तैयारी का प्रमाण थी, मगर आजादी अभी दूर थी। ह्यूरोज ने जब कालपी पर आक्रमण किया तो इस दुर्ग पर फतह पाने के लिए उसे लगातार 24 घंटों तक आग के गोले बरसाने पड़े, मगर अफसोस, वो एक भी क्रांतिकारी को जिंदा नहीं पकड़ सका। आजादी के दीवानों की तैयारी में एक तैयारी आत्म बलिदान की भी थी। वे नहीं चाहते थे कि अंग्रेज हुकूमत उन्हें जिंदा पकड़े।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग। संगीतकार थे उमेश वीनस, तापसी नागराज और मॉरिस लाजरस। आलेख और उद्घोषणा सुधा अनुपम, परिकल्पना श्रीराम तिवारी, समन्वय संजय यादव और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय की। आज के इस कार्यक्रम में आपने जो गीत सुने उन्हें हमने लिया था स्वराज संस्थान संचालनालय द्वारा जन गर्जे श्रृंखला के अंतर्गत जारी ऑडियो एल्बम्स से।

भगत सिंह की तरह हंसते हुए फांसी पर झूलकर भारत मां को सम्मान नहीं दे सकते, पर अपने देश के बारे में हमेशा अच्छा सोचकर, अच्छा बोलकर खुद के और औरों के सामने उसका मान तो बढ़ा ही सकते हैं ना।

0: दोस्ता हमारा स्वाधीनता संघर्ष की महाकथा आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथा के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने अनुसूचित जाति और जनजाति सहित सभी अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाएं
1: झलकारी देवी का जन्म बुंदेलखंड के एक गांव में 22 नवंबर 1830 को हुआ था। ये वो इलाका था जहां आए दिन डाकुओं का आतंक रहता था, इसलिए आत्मरक्षा के लिए झलकारी के पिता ने उन्हें घुड़सवारी और शस्त्र संचालन में निपुण किया था ताकि समय पड़ने पर वे अपनी सुरक्षा स्वयं कर सकें। बचपन की यही शिक्षा आगे चलकर राष्ट्र के काम आई और रणभूमि में फिरंगियों से जूझने में सार्थक साबित हुई। झलकारी का विवाह महारानी लक्ष्मीबाई के तोपखाने के तोपची पूरन सिंह के साथ हुआ था। झलकारी भी महारानी लक्ष्मीबाई की महिला फौज में शामिल हो गई। झलकारी बाई ने रानी को फौज में सामग्री की अल्पता और तोपचियों की गद्दारी के राज से अवगत कराया, साथ ही शत्रु के किसी भी क्षण भीतर आने की संभावना और भविष्य के संकट बचाव के उपाय भी सुझाए। दुश्मन के आक्रमण के वक्त झलकारी ने स्वयं रानी का वेश धारण कर मोर्चा संभालने का प्रस्ताव रखा ताकि छद्मवेश में रानी सुरक्षित स्थान पर पहुंच सके। झलकारी बाई जानती थी कि रानी के वेश में युद्ध करने का मतलब है मृत्यु को वरण करना, किंतु उनकी अद्वितीय स्वामी भक्ति और अटूट राष्ट्र प्रेम ने उन्हें आत्म बलिदान के लिए प्रेरित किया। योजना के अनुसार अदम्य साहसी और बलिदानी झलकारी प्राणों की परवाह किए बगैर टुकड़ी लेकर आगे बढ़ी, लेकिन दुर्भाग्य से पहचान ली गई। झलकारी को देखकर अंग्रेज जनरल ने कहा था कि यदि भारत की 1%

0: नारियां भी उनकी तरह हो जाएं, तो अंग्रेजों को सब कुछ छोड़कर भागना पड़ेगा। झलकारी देवी अंग्रेजी सेना से जूझती हुई उस जगह जा पहुंची जहां उनके पति पूरन सिंह अंग्रेजी सेना से मोर्चा ले रहे थे। लड़ाई के दौरान पूरन सिंह को तोप का गोला लगा और वे जीवित भस्म हो गए। झलकारी देवी पति की मृत्यु पर जरा भी विचलित नहीं हुई और बिना विलंब किए तोप का संचालन करने लगी। झलकारी देवी ने अपनी अंतिम सांस तक शत्रुओं की सेना से लोहा लिया था।
1: राम राम काका।
2: अरे आओ आओ राम रतन, कैसे हो? अरे वाह, आज तो विजया रानी भी आई है साथ में।
3: अरे अरे अरे, तू कहाँ भाग रही है इतने?
2: अरे खेलने दो, बच्ची है, खुली जगह है, जरा दौड़ भाग करेगी और थक के बैठ जाएगी।
4: अरे बहुत शैतान हो गई है काका।
3: अरे का हुआ? अरे अरे देखा ना, हम मना कर रहे थे। अरे अरे फिर भागी? अरे रुक जा बेटा, रुक जा, सुनती नहीं है।
2: अरे ये तो सच्ची पूरी झलकारी हो रही है।
3: झलकारी? जे नाम तो सुनो लग रहा हो
2: किते।
3: अरे अरे हाँ, वे गांव के हरबोलो की कहानी में सुनो है जे नाम।
2: ठीक पहचाना राम रतन, बुंदेलखंड की तो थी झलकारी, रानी लक्ष्मीबाई की सेना में।
3: अच्छा।
2: हाँ बेटा, झलकारी उसी देवी का नाम है जिसने 1857 के संग्राम में स्वतंत्रता के लिए बलिदान दिया अपना।
3: वो कैसे? पूरी ही बात बताओ काका आप तो।
2: ठीक है। अरे बेटा दो चाय लगा यहाँ, और बिटिया के लिए एक ग्लास में दूध ले आ, और बिस्कुट भी।
5: हो काका हो, मैं देखता हूँ।
1: अरे काय को तकलीफ कर रहे काका?
2: तकलीफ? अरे दूध तो तुम्हारे यहाँ का ही है, और झलकारी की कहानी सुनना है तो छोटी झलकारी का ख्याल तो रखना ही पड़ेगा ना। रानी लक्ष्मीबाई की सेना में सैनिक थी झलकारी। झलकारी का जन्म लक्ष्मीबाई से 5 साल पहले झांसी के पास हुआ था, भोजला गांव में। सन 1830-22 नवंबर को भोजला के सदोव सिंह के घर में बधाए गाए जा रहे थे।
6: लक्ष्मी आई है नाना साहब, लक्ष्मी, हम तो बस नई पायल पहने और हमारे नहीं चुनरी। हाँ, काय हीरे की बुंदा नहीं चाहे।

0: अरे झलकारी अपने पिता की बहुत लाडली थी, पर उन दिनों डाकुओं के आक्रमण से लड़कियों वाले सारे पिता डरे रहते थे। इसलिए सदोग सिंह ने निर्णय लिया
1: हमारी झल्लो किसी के भरोसे नहीं रहेगी, बल्कि औरों की मदद करने में भी आगे रहेगी।
2: ये झल्ली बिटिया तनक आराम से, आज तुम आओ दूसरों दिन आए। अरे देख देख देख देख संभल के, अरे अरे अरे अरे अरे हाँ, अरे गिर गए हो तो हाथ पैर टूट गए हैं।
3: बाऊजी, पता है हम ना जंगल में बहुत अच्छी जगह देख के आए हैं निशाना साधने की। चलिए ना अभी सिखाइए, चलिए।
1: पर बेटा
3: चलिए ना
1: बेटी, कल
3: नहीं नहीं नहीं कल वाल नहीं, आज ही शुरू करना है बाऊजी।
1: अरे सदो भैया, ये नहीं रुकने वाली, चलो हम भी चलते हैं साथ में, देखें तो हमारी झल्लो बंदूक कैसे चलाती है।
3: कक्का देखना हमारा निशाना, बताओ कौन सा आम गिरा है, बताओ बताओ। वो मारा, ये लो अब वो वाला गिराती हूँ। अच्छा अब मैं ऊंचा वाला गिराऊं। बटर लो।
1: चल झल्लो, दिया बत्ती का समय होगा, चल घर चले, चलो हम भी चलते हैं साथ में।
3: अच्छा बाऊजी, हम कढ़ी रोटी बना रहे हैं।
2: देख देख देख संभाल के, अरे अरे अरे अरे, अरे।
1: वाह सदो भैया, कोई नहीं कह सकता जे कि जे बिन माँ की बच्ची है।
0: इधर झलकारी बड़ी हो रही थी, शस्त्र विद्या में पारंगत हो रही थी, और झांसी में बुंदेलखंड की वीरांगनाएं भी बड़ी हो रही थी।
1: झल्लो तू कहाँ चलती बिटिया?
3: बाऊजी आप आराम कर लो थोड़ी देर, मैं गैया हाँक लाती हूँ। चल चल कमली गौरी श्यामा चल।

0: ये गाय पकड़ेगा? ये ले।
1: सदो भैया, चल लो, कुछ चीते ने घेर लिया है।
2: हे राम, तुम का कह रहे हो? तो कोई नहीं, कोई भी नहीं है हमारी बिटिया के लाने। तो कोई बचा लो। हे राम, कोई बचा लो हमारी बिटिया के। ए झल्लो बिटिया, झल्लो बिटिया।
0: हाँ बाबूजी।
2: हे राम, तुम क्या कर दो, एक चीते को मार दो। हे राम, तुमने तो कमाल ही कर दो।
0: हाँ बाबूजी, बस चार बार में ही काबू कर लिया था हमने, और पांचवे में तो चित।
3: बा बेटी बा, हमारे गांव को नाम कर दो तूने राम दही। अरे इसमें तो माँ की शक्ति है। वाह सदो भैया, कोई नहीं कह सकता जे कि जे बिन माँ की बच्ची है।

0: अपना ध्यान रखना, हम अकेला छोड़े जा रहे हैं आपको। अम्मा बहू जी को ध्यान रखियो।
1: नहीं बेटा, तू तो हमारा मान है। बेटा पूरन, झलकारी के बाबूजी ने बहुत अच्छे से अच्छी विद्या देने की कोशिश करी है अपने झल्लों को, बिन माँ के पाला है। जे ध्यान रखियो, हमारी झल्लो पूरे गांव की लाडली है। अरे गांव को बेटा है जे बेटा, बहुत बहादुर।
2: आप चिंता नहीं करें अम्मा, आखिर झांसी जा रही है आपकी झल्लो, उसको पूरा सम्मान मिलेगा। बाबूजी आपकी शिक्षा व्यर्थ नहीं जाएगी।

0: प्रणाम माँ। प्रणाम बाऊजी।
1: अरे जुग जुग जियो बेटा, जुग जुग जियो। देख बेटा, मैंने और पूरन के बाऊजी ने उपहार में तुझे सोना चांदी नहीं दिया। हम चाहते हैं जो मान तुमने भोजला को दिलाया वो बेकार नहीं जाए। बेटा तू अब झांसी में है, जिसकी बहु बेटियों के असली आभूषण यही है।
0: धन्यवाद माँ। माँ मैं इतनी खुश हूँ ये तलवार का उपहार पाकर कि कुछ बोल ही नहीं पा रही। मैं अभी इन्हें दिखाकर आती हूँ माँ।
1: जरूर जा बेटा, बाहर पूरन घोड़े पर तुम्हारी राह देख रहा है। वो अपने बलदेव कक्का है ना, उनसे घोड़ा मांग के लाया है। कह रहा था झलकारी सवारी करके देख ले तो अपन ही रख लेंगे।
0: अब हम चलते हैं।
1: जा बेटा जा।
0: जोहार माँ। जोहार बाऊजी।
2: जोहार बेटा। जुग जुग जियो।
3: आज हलकारी हो, चलो नदी तक हो आते हैं। तुम्हें जब घोड़ा ठीक लगे तो रख लेंगे।

0: अरे बस भाई, नदी आ गई। हाँ रुकते हैं। तुम तो बड़ी अच्छी घुड़सवारी जानती हो झलकारी।
1: जी, बाऊजी ने पूरी शिक्षा दी है हमें। हम तो तीर तलवार और बंदूक चलाना भी जानते हैं। एक बात कहें आपसे।
0: कहो।
1: हम रानी जी को देखना चाहते थे बचपन से ही।
0: इसमें क्या बड़ी बात है, बल्कि हम तो चाहते हैं कि बाऊजी की शिक्षा बेकार मत जाने दो। तुम आज ही चलो किले, रानी जी से मिलवा भी देंगे और तुम्हारे सेना में भर्ती होने की बात भी कर लेंगे।
1: जी सच में? क्या हम सच्ची में भर्ती हो सकते हैं?
0: क्यों नहीं, तुम तो सभी कलाओं में निपुण हो और तुम्हारे जैसी वीरांगना की तो झांसी को जरूरत है झलकारी।
1: पर भाई साहब, रखेंगे हमें?
0: भाई साहब वीरों का बहुत मान रखती है और उन्हें जरूरत भी है अभी।
2: ये वो समय था जब झांसी की गलियों में आजादी की लहरें उठना शुरू हो रही थी। 7 मार्च 1854 को डलहौजी ने झांसी राज्य ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। एक तरफ मेजर डगलस ने झांसी का अंग्रेजी बंदोबस्त शुरू किया, दूसरी तरफ रानी ने युद्ध की तैयारियां शुरू कर दी।
0: जोहार भाई साहब।
3: आओ आओ पूरन, तो ये है झलकारी।
0: जी भाई साहब, झलकारी आपके दर्शन की बड़ी इच्छा रखती थी, सो लेता आया।
3: झलकारी, तुम्हारी बहादुरी की बहुत बातें सुनी है हमने। तुम्हें अपना समय यूं ही नहीं गवाना चाहिए। अपने गुणों का उपयोग झांसी की सेवा में नहीं करना चाहोगी? हमारे सौभाग्य भाई साहब। ये कुछ उपहार है तुम्हारे लिए झलकारी। पहली बार देखा है तुम्हें, रख लो।
1: भाई साहब, सेना में भर्ती करके आपने हमारे जीवन का सबसे बड़ा उपहार तो दे ही दिया। बस अब आशीर्वाद दें कि अपने कर्तव्य को निभा सके। झांसी की आन बान के लिए हमारा सब कुछ न्योछावर है भाई साहब।
3: झलकारी, तुम जैसे वीरों की निष्ठा और आत्मविश्वास के बल पर ही तो मैंने स्वराज्य की घोषणा की है। जाओ और कल से ही सैन्य परीक्षण के लिए बड़ा बाग आ जाना।
2: झांसी में युद्ध की तैयारियां चल रही थी। लोगों ने युद्ध की तैयारी को उत्सव में बदल दिया था। बच्चा बच्चा झांसी के लिए मरने को तैयार था। औरतों ने मेहंदी वाले हाथों में बंदूक उठा ली थी। इधर झलकारी की रात काटे नहीं कट रही थी। भोर होते ही तैयारी करके उतावली झलकारी बड़ा बाग जा पहुंची।
3: सुंदर मुंदर, यहाँ आओ। काशी, चुन्नी और कमला तुम, झलकारी तुम भी यहाँ आओ और मेरी बातों को ध्यान से सुनो। मैं चाहती हूँ आज से अपने अपने अस्त्र संभालो और उसी का अभ्यास करो। युद्ध में किस शस्त्र का कैसा उपयोग करना है ये नीति हम अभी तय करेंगे।
4: जी भाई साहब।
3: तो शुरू हो जाओ। काशी, तुम तो लाठी में पारंगत हो। सुंदर, तू कटार रख। कमला, तू तीर कमान रखना। मुंदर बल्लम का कमाल करेगी। और झलकारी, तू तो बंदूक रख जिसमें तेरा निशाना अचूक है। जरूरत पड़ने पर तुझे तोप भी चलानी पड़ेगी।
4: जी भाई साहब।
3: तुम सब मेरी ही नहीं पूरी झांसी की हिम्मत हो। हमें जल्दी ही युद्ध भूमि में उतरना है।
4: झांसी का मान सर आंखों पर, अपना खून बहा देंगी पर झांसी नहीं देंगी।

0: सेना में सैनिकों की भर्ती हुई और युद्ध का जोरदार अभ्यास चला। प्रधानमंत्री, दीवान, सेनापति, इन सब के साथ महिला सैनिकों की टोली और आम जनता की पूरी तैयारी थी। 10 मई 1857 को मेरठ छावनी से शुरू ही क्रांति की चिंगारी झांसी तक आ पहुंची। 6 जून को झांसी में क्रांति का बिगुल बज उठा। अंग्रेजों ने किले को घेर लिया। घमासान युद्ध से हालात बिगड़ते जा रहे थे। अंत में आपात बैठक बुलाई गई।
1: शत्रु का दबाव हम पर बढ़ता ही जा रहा है, स्थिति नाजुक लगती है।
2: जी भाई साहब, हमारे सैनिकों की संख्या कम होती जा रही है।
3: भाई साहब की जय। एक महिला सैनिक आपसे मिलना चाहती है।
1: अंदर भेजो। जोहार भाई साहब, एक विनती थी आपसे।
4: कहो झलकारी।
1: भाई साहब, एक तो हमारे सैनिक बहुत कम हो गए हैं, दूसरी ओर हमारे तोपचियों में कुछ गद्दार हैं जो अंग्रेज सैनिकों पर निशाना ही नहीं साधते, जिससे वो अंग्रेज बचकर निकल जाते हैं।
4: हम जानते हैं, पर तुम क्या कहना चाहती हो झलकारी?
1: भाई साहब, इस आक्रमण की घड़ी में किले की दीवार कभी भी टूट सकती है, फिर तो आमने सामने युद्ध होगा।
4: हमें तो हर हाल में तैयार रहना है।
1: पर ऐसे में तो आपका सुरक्षित रहना बहुत जरूरी है भाई साहब।
4: वो कैसे?
1: छलावे से।
4: छल से?
1: जी भाई साहब, हमारी और आपकी कदकाठी एक सी जो है, सो हम आपके भेस में अंग्रेजों को दूर ले जाएंगे अपने पीछे, और इधर आप पीछे के रास्ते सुरक्षित निकल जाइएगा।
4: पर इसमें तो तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है झलकारी।
1: हमसे कहीं ज्यादा आपकी जान जरूरी है झांसी के लिए। आप फिर से सेना को संगठित करके लड़ तो पाएंगे अंग्रेजों से। बस अब आज्ञा दे भाई साहब।
4: तुम्हारी ये हिम्मत और बहादुरी हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे झलकारी।

0: योजना के अनुसार रानी घुड़साल वाले दरवाजे से बाहर निकल गई। इधर झलकारी ने रानी की तरह श्रृंगार किया और लड़ते लड़ते छावनी जा पहुंचा।
1: कौन हो तुम?
2: रानी।
1: कौन रानी?
2: रानी लक्ष्मीबाई।
1: झांसी की रानी लक्ष्मीबाई?
2: हमें तुम्हारे जनरल से मिलना है।
3: जनरल? जनरल ह्यूरोज और स्टुअर्ट यहीं आ रहे हैं।
4: Who are you? Can I tum?
2: Rani Lakshmibai.
4: Oh, the tum Rani hai. Oh, I must say, very beautiful.
1: Lakshmibai pakdi gayi, Rani pakdi gayi, Jhansi ki Rani pakdi gayi.
3: राम राम सरकार, मैं दुल्हाजू।
4: देखो दुल्हाजू, तुम्हारा रानी।
3: अरे अरे नहीं नहीं सरकार, ये तो झलकारी है, झलकारी कोरिन।
4: What?
3: जी, अरे सरकार, ये तो महिला सैनिक है, तोपची पूरन की पत्नी। उनवाव फाटक पर आपके कई सारे सिपाहियों को इसी ने मौत के घाट उतारा था।
2: अरे पापी, तुझे लाज नहीं आई दुल्हाजू? पहले तो ओरछा फाटक से गोरों को घुसा दिया, तब मन नहीं भरा तेरा गद्दार, फिर भी दोगलापन कर रहा है नमक हराम। तू मरेगा, तू मरेगा, और पूरी झांसी थूकेगी तुझ पर।
4: तुमने हमको धोखा दिया झलकारे।
2: धोखा? अरे तूने तो हमारे पूरे देश को धोखा दिया है।
4: तुमको हम गोली से उड़ाएगा।
2: हम मरने से नहीं डरते। डाक गोली, डाक।
5: सर, she's mad.
4: No, no, no, Stuart. This is serious. One person ladies Bharat का ऐसा हो गया तो हमको भारत छोड़ना पड़ेगा। सिपाही, बंद कर दो इसे जांबो में।
3: राम राम राम। कैद कर लिया झलकारी को दुष्टों ने।
0: अरे जिसके सर पर खून सवार, दिल में स्वाधीनता की चीतकार, ऐसी देवी झलकारी को कोई पहरा रोक सकता था भला?
3: फिर क्या हुआ?
0: अरे फिर क्या, रात को ही भाग निकली वो तंबू से और दूसरे ही दिन पति पूरन के साथ मोर्चा संभाल लिया।
4: देखो झलकारी, that lady's there.
2: ये ले जनरल।
1: झलकारी, पूरन भैया गिर गए।
2: हे राम।
6: अब झांसी के नाम का सवाल है झलकारी, झांसी की रक्षा करना मेरी चिंता। जय भवानी।
2: मैं आपका बलिदान

0: जाने दूंगी, आपकी तरह ही झांसी की रक्षा करूंगी। जय भवानी, हर हर महादेव।
1: अपने बगल में गिरकर दम तोड़ चुके पति के पास ही लड़ती रही झलकारी, दागती रही गोले, झांसी की शान के लिए, स्वराज के लिए लड़ती रही और शत्रुओं के नाक में दम कर दिया।
2: फिर झलकारी का क्या हुआ काका?
1: अब ठीक ठीक तो पता नहीं भैया, कोई कहता है अंतिम सांस तक गांव में रही और कोई कहता है कि उसने अंतिम सांस वहीं मोर्चे पर लड़ते लड़ते ली।
2: वाह वाह वाह वाह वाह, जय हो ऐसी देवी की।
1: अरे ऐसी न जाने कितनी झलकारी हुई जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए अपना बलिदान दिया।
2: ठीक कहा काका, आपको बड़ा धन्यवाद जो इतनी अच्छी बातें बताई। अब जब फिर आए तो किसी और के बारे में सुनेंगे, आपको छोड़ेंगे नहीं हम काका।
1: हाँ जरूर जरूर, अब मैं भी लगता हूँ काम में।
2: अरे चल रही झलकारी, जो तेरी भाग दौड़ खत्म हो गई हो तो चल चल चल चल। राम राम काका।
1: हाँ राम राम बेटा, राम राम।

निर्देशन श्रुति धर्मेश, परिकल्पना श्रीराम तिवारी, समन्वय संजय यादव, निर्माण और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग।

0: विद्वान कई हुए वीर कई,
1: ये भूमि है महान,
0: फिर भी प्रणाम करती संस्कृति यहाँ की।
1: ये है कितनी निर्माण,
0: भारत का गौरव गान
1: गाता है इतिहास स्वर्णिम,
0: अनेकता में एकता यहाँ
1: रहता मिला जुला हर रंग।
0: रेडियो मधुबन की ओर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।

जब भी भारत का यह राष्ट्रगान कहीं सुनाई देता है, जब भी भारत का यह राष्ट्रगान कहीं पे कोई गाता है या इसकी धुन बजती है, तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम कहकर हमारा सिर ऊंचा हो जाता है। और जब भी आसमान में तिरंगा लहराता है, गर्व से हम कहते हैं, हम भारत देश के रहने वाले हैं, हम भारत देश के रहवासी हैं। जरूर सबकी तकदीर जग जाती है जब वह भारतवासी कहलाता है। खुद को जब आप भारतवासी कहलाते हैं, तो देखिएगा कितना गर्व से हम अपने आप को प्रफुल्लित पाते हैं। तेरी गोदी में ऐ माँ, तेरी गोदी में ऐ माँ, शांति व चैन का बसेरा है। तेरी गोदी में ऐ माँ, शांति व चैन का बसेरा है। तेरी ही गोदी में प्रत्येक क्षण एक नया सवेरा है। आइए, आजादी का यह जो जश्न मनाने का दिन है, इस दिन को बहुत ही खूबसूरत तरीके से हम बिताएं। और बहुत सारी बातें होंगी कार्यक्रम गुलदस्ता में। रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर शुरू हो चुका है आपका मनपसंद कार्यक्रम गुलदस्ता। मैं हूँ इस कार्यक्रम की होस्ट स्वर्णलता। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

अब कोई गुलशन न उजड़े, अब वतन आजाद है। खेतियां सोना उगाएं, वादियां मोती लौटाएं। आजादी का दिन बहुत ही खास है, आजादी का दिन ऐतिहासिक है, आजादी का दिन सम्माननीय है। यह महज एक पर्व नहीं, जश्न नहीं, बल्कि भारत की किस्मत के सितारे का चमकने का दिन था। भारत 15 अगस्त 1947 की ठीक आधी रात को आजाद हुआ था। कहते हैं 14 और 15 अगस्त की दरमियानी रात को देश अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त हुआ था। आज से 80 साल पहले, जरा सोचिए, 80 साल पहले आज ही के दिन भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने दिल्ली में लाल किले के लाहौरी गेट के ऊपर भारतीय तिरंगा फहराया था। गर्व से हम सब कहते हैं जय हिंद जय भारत। इसलिए आज का दिन महज गुणगान गाने का दिन नहीं, बल्कि त्याग और बलिदान के मर्म को समझने का दिन है। पूरा दिन हम सब यही कहते आए और आगे भी कहते रहेंगे, जय हिंद जय

स्वतंत्रता संग्राम के दौरान यही एक नारा काफी था, हम एक हैं, हम एक हैं, देश प्रेमियों को, देशवासियों को, नौजवानों को जगाने के लिए। जब भारत माँ गुलामी की बेड़ियों में जकड़ी थी, उसके संतान ब्रिटिश हुकूमत की क्रूरता के अधीन थी, तब एक ही नारा था, वंदे मातरम, हम सब एक हैं, हम एक हैं। चैन व अमन वापस आया 14 अगस्त 1947 की रात को। देशवासियों की आंखों में सपने थे, आजाद आकाश में स्वच्छंद उड़ने का जज्बा था। आज जीत की रात, पहरुए सावधान रहना, खुले देश के द्वार, अचल दीपक समान रहना। प्रथम चरण है नए स्वर्ग का, है मंजिल का छोर, इस जन मंथन से उठ आई पहली रत्न हिलोर। अभी शेष है पूरी होनी, अभी शेष है पूरी होनी, जीवन मुक्ता डोर, अभी शेष है मिटने को दुखों की अंतिम कोर। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन पर कार्यक्रम गुलदस्ता। हम सब आज आजादी का वह ऐतिहासिक दिन मना रहे हैं जो हम सब के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है।

देव भूमि, जय पुण्य भूमि, जय मातृभूमि हिंदुस्तान। हम सब एक विजय गान सुन रहे थे जिसके बोल थे जय पुण्य भूमि, जय देव भूमि, जय मातृभूमि हिंदुस्तान। हिंदुस्तान जब हम यह शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में दो पंक्तियां आ जाती हैं, और वो दो सुनहरी पंक्तियां हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलिस्ता हमारा। वैसे साथियों, जब भी हम विजय गान सुनते हैं वह हमें जागृत रखता है। जो प्रहरी हैं, जो पहरेदार हैं, जो देश की सीमाओं को सुरक्षित रखते हैं, उनको ये विजय गान जो है वो जागृत रखते हैं। दोस्तों, आज से ठीक 80 साल पहले जब भारत आजाद हुआ था, उस समय भी ऐसी कविताएं, ऐसे गीत गाए जाते थे ताकि लोगों का ध्यान भटके नहीं, क्योंकि तब भी बहुत सारी ऐसी बातें थी जो सबको शंका में डाल देती थी। लोगों को लगता था क्या सही मायने में हमें आजादी मिली है। तो आज हम ऐसे गीतों को सुन रहे हैं जो आज भी इनकी जरूरत है और हमें यह हमेशा के लिए जागृत रखेगा।

तुझ में यूं खो जाऊं, नतमस्तक हो जाऊं, ए मेरे वतन। 15 अगस्त का यही स्वर्णिम दिन देशवासियों के जीवन में एक नया अध्याय लेकर आया। कई श्रोता ऐसे भी होंगे जो आजादी का सूर्योदय देखे होंगे। ब्रिटिश राज्य में कैसे भारत माँ करा रही थी, कैसे नौजवान प्राणों की आहुति दिया करते थे, वंदे मातरम वंदे मातरम, सारे जहाँ से अच्छा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ऐसे नारों को उन्होंने प्रत्यक्ष सुने भी होंगे, है ना। नौजवानों को देश के प्रति जगाने के लिए किसी ने कोई कसर नहीं रखी। देश प्रेम का यह लौ जलता रहे, देश प्रेम का यह लौ जलता रहे, कुर्बान होकर भी यह लौ जलता रहे। देश प्रेम में तन मन धन को समर्पित करने वालों के लिए हमारे पास कोई तोहफा नहीं होता, उनके लिए बस एक ही तोहफा है कि हम उनको दिल से याद करें।

0: छोड़ के सारे जाल विदेशी कर लो देश को अपना,
1: कर लो देश को अपना।
0: रह जाए ना देखो अधूरा कोई सुंदर सपना,
1: कोई सुंदर सपना।
0: घर में आग लगाए जो दीपक उसको बुझा दो, घर में आग लगाए जो दीपक उसको बुझा दो। फूलों के इस गुलशन से कांटों को हटा दो,
1: फूलों के इस गुलशन से कांटों को हटा दो।

0: के कारण मौत भी आए फिर भी रहेंगे जिंदा,
1: फिर भी रहेंगे जिंदा।
0: जय जय हिंद के नारों से धरती को हिला दो, जय जय हिंद के नारों से धरती

0: देश का झंडा जग में ऊंचा करके दिखा दो,
1: देश का झंडा जग में ऊंचा करके दिखा दो, फूलों के गुलशन से कांटों को

इस गुलशन से कांटों को हटा दो। इन कांटों को हटाने के लिए नौजवानों ने भारत के तकदीर का सूर्योदय कराया। 15 अगस्त केवल एक तिथि नहीं बल्कि भारतीयों की आन बान और शान का प्रतीक है। इस ऐतिहासिक दिन पर हमारे देश ने स्वतंत्रता का पहला सवेरा देखा था। 15 अगस्त के दिन ही सदियों की पराधीनता, शोषण और बेड़ियों को काटकर भारत एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र के रूप में विश्व मानचित्र पर उभरा। यह दिन महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, झांसी की रानी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और अशफाक उल्ला खां जैसे महान स्वतंत्रता सेनानियों और अनगिनत गुमनाम नायकों के अमर बलिदानों का स्मरण कराता है। हम सब इन्हें याद कर रहे हैं इनके बलिदानों की खातिर। आज का दिन भारत का 80वां स्वतंत्रता दिवस मुख्य रूप से विकसित भारत 2047 के लिए युवा शक्ति और राष्ट्रीय अभियान स्वतंत्रता का सम्मान भविष्य को प्रोत्साहन की थीम को ध्यान में रखकर सेलिब्रेट किया जा रहा है। इसके साथ ही राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के ऐतिहासिक उत्सव को भी समर्पित है।

not only celebrating India's 80th Independence Day, but also celebrating 150 glorious years of Vande Mataram. ये हमारे लिए एक achievement है, एक प्राप्ति है. वैसे आज का दिन सिर्फ सुनने सुनाने का दिन नहीं, बल्कि अपने बुद्धि के नेत्र से, अपने अनुभव के नेत्र से इस दिन को समझने का, अनुभव करने का भी दिन है. हम अपने कर्तव्यों द्वारा एक सुनहरा भविष्य लिखें भारत के प्रति. हम अपने ही अचीवमेंट्स के द्वारा भारत के स्वर्णिम भविष्य का निर्माण कर रहे हैं. तो आज हम सब मिलकर एक ही स्वर में यही गा रहे हैं, वंदे मातरम सारे जहां से अच्छा, हिंदुस्तान हमारा, जय भारत, जय इंडिया, ऐसे नारे हम सब लगा रहे हैं, क्योंकि ये हमारे दिल के अंतःकरण से आ रहे हैं. हम सब भले ही उस समय न रहे हो या रहे भी हो, हमें नहीं पता, लेकिन हमारे दिलो दिमाग में भारत वर्ष के प्रति, इस मिट्टी के प्रति जो प्रेम है, वह कूट कूट कर भरा है. कोई कविता के जरिए, कोई लेखनी के जरिए, कोई अपनी नई नई कृतियों के जरिए भारत के प्रति अपना सम्मान, अपना प्यार व्यक्त कर रहा है, और सबको यह करने का पूरा स्वतंत्रता मिला हुआ है.

0: साथियों, यह बिल्कुल सच है कि हम सब तकदीरवान हैं, क्योंकि हम सब भारतवासी हैं, हम तकदीर जगाकर आए हैं। स्वतंत्रता दिवस केवल जश्न मनाने का दिन नहीं, बल्कि राष्ट्र के प्रति अपने उत्तरदायित्वों को याद करने का अवसर है। एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में हमारा पहला कर्तव्य राष्ट्रध्वज, संविधान और राष्ट्रगान का सम्मान करना है। हमें अपने दैनिक जीवन में कानून का पालन, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लेना चाहिए। जब प्रत्येक नागरिक ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन करेगा, तभी हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों का सशक्त और आत्मनिर्भर भारत निर्मित होगा। जाते जाते मैं स्वर्णलता आप सभी को यही कहना चाहूंगी, मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे अभी कुछ और भी दूं। यह जज्बा हमेशा कायम रखिए। फिर मिलूंगी अगले सप्ताह, तब तक अपना ख्याल रखिए और आज का यह स्वर्णिम दिन हमेशा अपने दिलो दिमाग पर बिठाए रखिए। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: 15 अगस्त पे तू कोई गाना नहीं गाएगा?
2: कैसे गाऊं दीदी, ये गाने तो मुझे समझ ही नहीं आते। यहाँ हर कदम कदम पे धरती बदले रंग, अब भला धरती रंग कैसे बदलेगी। और वो दूसरा गाना, मेरे देश की धरती सोना उगले, अब दीदी मुझे धरती पर कहीं नहीं मिलता सोना।
1: छोटे, जब कोई चीज इतनी खूबसूरत होती है, उसका वर्णन करने के लिए शब्द कम पड़ जाए, या इतनी खास कि आंखों में पानी, चेहरे पर मुस्कान और मन में हिम्मत एक साथ आ जाए, तो उस भावना को कहते हैं देश प्रेम।
2: देश प्रेम?
1: हाँ, इसलिए तो गीतकार ऐसे शब्द लिखते हैं इस स्वतंत्रता दिवस पर। चलो साथ कहते हैं,
3: मेरा देश मेरी शान।
1: रेडियो मधुबन की तरफ से आप सभी दोस्तों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।
3: हैप्पी

0: 啦啦啦啦，咪啦南偏宁波，
1: 宁波，那你呢？嘛那家他呢？फिर क्यों है तुम?
0: अरे बहना चिंकी, लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं। इनके दिल की आवाज सुनकर मैं तो जल्दी जल्दी आ गया।
1: घर पे मम्मी किचन से इतनी आवाजें देती है, तब तो सुनाई नहीं देती तुमको। अभी दिल की आवाज सुनाई दे रही है। साफ साफ बोलो, गाना गाने आए हो ना तुम?
0: गाना? वो क्या होता है? गाना नहीं नहीं, मुझे तो बस खाना खाना है और फिर मिठाई, रसगुल्ले, गुलाब जामुन, जलेबी और हलवा।
1: दोस्तों, ये मेरा भाई है, इसका ना थोड़ा स्क्रू ढीला है, इसे माफ कीजिएगा।
0: अरे सॉरी सॉरी, मैं ना थोड़ा भावनाओं में बह गया था।
1: खूब समझती हूँ मैं, लोगों की भावनाएं दिल से निकलती है और तुम्हारी पेट से।
0: देखो चिंकी, खा पी के ही तो अच्छा गाना गाया जाता है ना, किसी भी महान सिंगर से पूछ लो तुम।
1: नींबू, खाना ठूस लोगे तो आवाज कहाँ से निकलेगी?
0: ओहो, मेरी बहन का कोई साइंस टीचर है क्या यहाँ पे? कोई है तो प्लीज पढ़ा दीजिए ना, इसे इतना भी नहीं पता कि खाने वाली नली ना अलग होती है और सांस वाली अलग। तो एक से खाऊंगा, एक से गाऊंगा।
1: अरे सुनिए सुनिए सुनिए, किसी का बच्चा खो गया है तो इसको लेके जाइए। ये मेरा भाई नहीं है, मैं इसे नहीं जानती।
0: एक नींबू की कीमत तुम क्या जानो चिंकी? दूध को फाड़ के पनीर बना देता है एक नींबू, बेस्वाद खाने का स्वाद बढ़ा देता है एक नींबू।
1: अच्छा नींबू, तुम इतने इंटेलिजेंट हो तो एक बात बताओ, एक देशभक्त कैसा होता है?
0: अरे ये भी कोई पूछने की बात है, बिल्कुल मेरे जैसा।
1: मतलब?
0: मतलब सबसे ताकतवर, जिसके मसल्स इतने स्ट्रांग हो।
1: एक तो तुम्हारी मसल्स देख के मच्छर भी ना डरे, और क्या बच्चे बूढ़े या जो कसरत नहीं करते वो देशभक्त नहीं?
0: तुम ही बता दो ना, कौन होता है देशभक्त?
1: देशभक्त वो होता है नींबू, जो देश हित को अपना हित माने, जो सिर्फ अपने आगे बढ़ने के नहीं बल्कि देश के आगे बढ़ने के लिए प्रयास करे, और जो आजादी की कीमत जान उसे फॉर ग्रांटेड न ले, और जिस सक्षम देश का सपना देख शहीदों ने अपनी जान कुर्बान कर दी, उस सपने को साकार करने के लिए आगे बढ़े।
0: चिंकी, आज मैं मान गया, तुम तो मुझसे भी ज्यादा इंटेलिजेंट हो। मैं भी जरूर अपने देश के लिए कुछ करूँगा, और सिर्फ बड़ा होकर नहीं बल्कि अभी से।
1: अभी से? कैसे? अभी तो तुम बुद्धू से बच्चे हो।
0: लेकिन बच्चा हूँ इसलिए तो अच्छी आदतें सीखूंगा, लोगों की मदद करूंगा, और मैं शहीदों के बारे में और जानूंगा। पर इससे पहले?
1: उससे पहले क्या?
0: मैं गाना गाऊंगा चिंकी, गाने दो ना दोस्तों, मैं गा लूँ ना एक गाना।
1: अरे इतने अच्छे से बैठे हैं, इन लोगों के कानों को क्यों कष्ट देना चाहते हो?
0: अच्छा अच्छा, एक काम करते हैं, जाते जाते हम सब मिलकर गाते हैं। उठे सब।

0: मधुबन 90.4 एफएम का
1: इस लहराते तिरंगे को सलाम
2: सन 1921 वंदे मातरम इस आवाज से पूरा हिंदुस्तान गूंज रहा था जिसे सुन अंग्रेजी हुकूमत का दिल दहल उठा हर कोई ये समझ गया था कि एकता ही वो हथियार है जिससे हम अंग्रेजों को इस देश से खदेड़ सकते हैं इसी एकता को और मजबूत करने के लिए गांधी जी ने मुझे नया रूप दिया इस बार हरे लाल और सफेद रंग का और मुझे चरखे से सजाया गया कांग्रेस कम्युनिटी को मेरा यह रूप पसंद नहीं आया लेकिन मुझे क्रांतिकारियों और देश के हर व्यक्ति ने सम्मान दिया और मेरी इज्जत की खातिर अपनी जान तक न्योछावर कर दी 1931 में पिंगली वेंकैया जी ने मेरे रूप में सुधार किया और लाल की जगह केसरिया रंग में मुझे रंग दिया गया केसरिया सफेद हरे रंग और चरखे से सजा मेरा यह रूप हर किसी ने पसंद किया और मैं औपचारिक रूप से भारतीय ध्वज कहलाया और अनेक देशभक्तों को मैंने आजादी के लिए लड़ने की प्रेरणा दी आगे की कहानी के लिए सुनते रहिए रेडियो मधुबन महात्मा गांधी वीर सावरकर भगत सिंह सा बनना तो बहुत दूर की बात है सड़कों को साफ रखकर हर देशवासी तिरंगे और भारत देश का सम्मान करके उनके खून से रंगी हुई इस आजादी का सम्मान तो कर ही सकते हैं ना

0: 15 अगस्त पे तू कोई गाना नहीं गाएगा?
1: कैसे गाऊं दीदी, ये गाने तो मुझे समझ ही नहीं आते। यहाँ हर कदम कदम पे धरती बदले रंग, अब भला धरती रंग कैसे बदलेगी। और वो दूसरा गाना, मेरे देश की धरती सोना उगले, अब दीदी मुझे धरती पर कहीं नहीं मिलता सोना।
0: छोटे, जब कोई चीज इतनी खूबसूरत होती है उसका वर्णन करने के लिए शब्द कम पड़ जाए, या इतनी खास की आंखों में पानी, चेहरे पर मुस्कान और मन में हिम्मत एक साथ आ जाए, तो उस भावना को कहते हैं देश प्रेम।
1: देश प्रेम?
0: हाँ, इसलिए तो गीतकार ऐसे शब्द लिखते हैं इस स्वतंत्रता दिवस पर। चलो साथ कहते हैं,
2: मेरा देश मेरी शान।
0: रेडियो मधुबन की तरफ से आप सभी दोस्तों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।
2: हैप्पी इंडिपेंडेंस।

श्रोताओं, आज का हमारा कार्यक्रम केंद्रित है दो महान क्रांतिकारी नेताओं कनकलता बरुआ और कन्हाई लाल भट्टाचार्य जी पर। असम के लोगों ने अगस्त क्रांति में खुलकर भाग लिया था। पहले तो उनका आंदोलन पूर्ण रूप से अहिंसक और केवल प्रदर्शन तक ही सीमित था, लेकिन जब पुलिस और फौज ने उन पर अत्याचार करना प्रारंभ किया तो असमिया लोग भी भड़क उठे और उनके सत्याग्रह आंदोलन ने क्रांतिकारी रूप धारण कर लिया। श्रोताओं, असम की क्रांति की चर्चा हम आगे भी जारी रखेंगे, मगर फिलहाल वक्त है एक देशभक्ति गीत सुनने का। तो आइए सुनते हैं पहले ये देशभक्ति

असम के गोपुर गांव की जनता अपने गांव के थाने पर तिरंगा झंडा लगाने के लिए बढ़ चली। लगभग 5,000 ग्रामीण उस जुलूस में शामिल थे। उस जुलूस में स्त्रियां भी थीं और बच्चे भी शामिल थे। बढ़ता हुआ ये जुलूस थाने के सामने पहुंच गया। थाने पर पहुंचने के लिए एक नाले को पार करना पड़ता था। तब जुलूस दो भागों में विभक्त हो गया और दो दिशाओं से नाले को पार करके जुलूस फिर एक होकर थाने के फाटक की ओर आगे बढ़ने लगा। जुलूस के आगे कनकलता बरुआ नाम की एक 14 वर्ष की बालिका तिरंगा झंडा लेकर नेतृत्व कर रही थी। उसे रोकने के लिए थानेदार भी अपने सिपाहियों के साथ फाटक के पास पहुंच गया। तब कनकलता बरुआ ने पुलिस को संबोधित करते हुए कहा, श्रोताओं, कनकलता के साहस की कहानी आगे बढ़ाएंगे, मगर फिलहाल सुनते हैं ये देशभक्ति रचना। तो आइए सुनते हैं पहले ये देशभक्ति गीत।

श्रोताओं, गीत सुनने से पहले हम बात कर रहे थे असम की क्रांति की और कनकलता बरुआ की। कनकलता बरुआ ने पुलिस को संबोधित करते हुए कहा, आप लोग तो हमारे भाई हैं, हमें रोकने के स्थान पर आप लोग भी हम में सम्मिलित हो जाइए, हम सब लोग मिलकर थाने पर राष्ट्रीय झंडा लगाएंगे। लेकिन थानेदार एक बच्ची के मुंह से ऐसी बातें सुनने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। उसने साफ साफ कह दिया, वो किसी को भी थाने के अंदर नहीं आने देगा। तब इस पर कनकलता भड़क गई और कहा, पुलिस स्टेशन तो जनता की संपत्ति होती है, जनता की संपत्ति के रक्षक यदि जनता का कहना नहीं मानेंगे तो जनता उन्हें हटा देगी और अपनी संपत्ति को अपने अधिकार में ले लेगी। श्रोताओं, कार्यक्रम में फिलहाल वक्त है एक देशभक्ति गीत सुनने का। उसके बाद हम जानेंगे कि किस तरह कनकलता शहीद हो गईं।

0: भाई।
1: श्रोताओं, गीत सुनने से पहले हमने जाना कि थानेदार की बात कनकलता ने नहीं मानी और वे पुलिस स्टेशन की ओर बढ़ गईं। थानेदार को ललकारते हुए कनकलता फाटक के अंदर जाने लगी। तब कनकलता की जबरदस्ती देखकर थानेदार ने उन पर गोली चला दी और कनकलता वहीं शहीद हो गई। कनकलता को गिरते हुए देखकर मुकुंद काप्ता नाम के एक नौजवान ने उनके हाथ से झंडा ले लिया और वे आगे बढ़ने लगे। तब मुकुंद काप्ता को भी गोली मार दी गई और वे शहीद हो गए। अब तो जनता के धैर्य का बांध टूट गया और कई तरफ से लोग थाने के अंदर एक साथ पहुंचने लगे। तब पुलिस वालों ने भी अंधाधुंध गोलियां चलाना प्रारंभ कर दिया। लोग गोलियां खाकर गिरते रहे और आगे बढ़ते गए और आखिरकार एक दल थाने की इमारत पर चढ़ने में सफल हो गया और वहां उसने शान के साथ तिरंगा झंडा लगा दिया। इस संघर्ष में लगभग 60 व्यक्ति शहीद हुए। तो श्रोताओं, ऐसे थे हमारी आजादी के दीवाने क्रांतिकारी, जिन्होंने अपनी जान न्योछावर कर दी।

अब चर्चा करते हैं एक और क्रांतिकारी नेता कन्हई लाल भट्टाचार्य जी की। न्यायमूर्ति आर आर गार्लिक उस ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष थे जिसने 2 फरवरी 1931 को दिनेश गुप्त को फांसी का दंड सुनाया था। दिनेश गुप्त ने कलकत्ता में पुलिस इंस्पेक्टर जनरल मिस्टर सिंपनसन को उसके कार्यालय में ही गोली से भून डाला था। वही न्यायमूर्ति गार्लिक महोदय 27 जुलाई 1931 को अपने इजलास में एक मामले की सुनवाई में व्यस्त थे। वे ये देख नहीं पाए कि 20 वर्ष का एक दुबला पतला युवक कब एक दरवाजे से इजलास में प्रविष्ट हुआ और गवाह के कटघरे तक पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने अपना रिवॉल्वर निकाला और न्यायमूर्ति गार्लिक को निशाना बनाकर 2 गोलियां उन पर छोड़ दी। श्रोताओं, न्यायमूर्ति पर हमले की चर्चा को हम आगे भी बढ़ाएंगे, मगर फिलहाल वक्त है कार्यक्रम में एक देशभक्ति गीत का।

श्रोताओं, गीत सुनने से पहले हमने कार्यक्रम में जाना कि न्यायमूर्ति गार्लिक महोदय पर एक व्यक्ति ने गोलियां छोड़ दी। पहली गोली तो खाली चली गई, पर दूसरी गोली न्यायमूर्ति महोदय के मस्तक पे लगी और वे अपनी कुर्सी से वहीं लुढ़क गए। इजलास में सीआईडी का एक सिपाही नागरिक वेश में उपस्थित था। उसके पास भी रिवॉल्वर था और उसने अपनी गोली उस युवक पर छोड़ दी, पर उसका निशाना चूक गया। अब युवक ने एक गोली उस सिपाही पर छोड़ी जो उसके कंधे पर लगी और वो भूमि पर गिर गया। एक सार्जेंट भी अदालत में पहले से ही उपस्थित था। उसने अपने रिवॉल्वर से दो गोलियां उस युवक पर दागी। दोनों गोलियां उसके शरीर में ही लगी और वो युवक भूमि पर गिर गया। घटना स्थल पर ही उसकी मृत्यु हो गई। न्यायमूर्ति गार्लिक को अस्पताल भिजवाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। न्यायमूर्ति गार्लिक की हत्या करने वाले युवक की जेब में एक कागज पाया गया, जिस पर लिखा था, दिनेश गुप्त को अन्यायपूर्वक फांसी का दंड देने का पुरस्कार मृत्यु से प्राप्त कीजिए। श्रोताओं, मृत युवक का चित्र अखबारों में छपवाकर उसकी सही जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न किया गया। तब मालूम चला कि उनका वास्तविक नाम कन्हैयालाल भट्टाचार्य था और वे 24 परगना के माजिलपुर के रहने वाले थे। तो श्रोताओं, ऐसे थे हमारे आजादी के वीर क्रांतिकारी नेता, जिन्होंने आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी।

0: मेरा नाम है नींबू।
1: नींबू, नानी ने मना किया था ना, फिर क्यों आए तुम?
0: अरे बहना चिंकी, लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं, इनके दिल की आवाज़ सुनकर मैं तो जल्दी जल्दी आ गया।
1: घर पे मम्मी किचन से इतनी आवाजें देती है, तब तो सुनाई नहीं देती तुमको, अभी दिल की आवाज़ सुनाई दे रही है। साफ साफ बोलो, गाना गाने आए हो ना तुम?
0: गाना? वो क्या होता है? गाना नहीं नहीं, मुझे तो बस खाना खाना है, और फिर मिठाई, रसगुल्ले, गुलाब जामुन, जलेबी और हलवा।
1: दोस्तों, ये मेरा भाई है, इसका ना थोड़ा स्क्रू ढीला है, इसे माफ कीजिएगा।
0: अरे सॉरी सॉरी, मैं ना थोड़ा भावनाओं में बह गया था।
1: खूब समझती हूँ मैं, लोगों की भावनाएं दिल से निकलती है और तुम्हारी पेट से।
0: देखो चिंकी, खा पी के ही तो अच्छा गाना गाया जाता है ना, किसी भी महान सिंगर से पूछ लो तुम।
1: नींबू, खाना ठूस लोगे तो आवाज कहाँ से निकलेगी?
0: ओहो, मेरी बहन का कोई साइंस टीचर है क्या यहाँ पे? कोई है तो प्लीज पढ़ा दीजिए ना, इसे इतना भी नहीं पता कि खाने वाली नली ना अलग होती है और सांस वाली अलग। तो एक से खाऊंगा एक से खाऊंगा।
1: अरे सुनिए सुनिए सुनिए, किसी का बच्चा खो गया है तो इसको लेके जाइए, ये मेरा भाई नहीं है, मैं इसे नहीं जानती।
0: एक नींबू की कीमत तुम क्या जानो चिंकी, दूध को फाड़ के पनीर बना देता है। एक नींबू पे स्वाद खाने का स्वाद बढ़ा देता है। एक नींबू।
1: अच्छा नींबू, तुम इतने इंटेलिजेंट हो तो एक बात बताओ, एक देशभक्त कैसा होता है?
0: अरे ये भी कोई पूछने की बात है, बिल्कुल मेरे जैसा।
1: मतलब?
0: मतलब सबसे ताकतवर, जिसके मसल्स इतने स्ट्रांग हो।
1: एक तो तुम्हारी मसल्स देख के मच्छर भी ना डरे, और क्या बच्चे बूढ़े या जो कसरत नहीं करते वो देशभक्त नहीं?
0: तुम ही बता दो ना, कौन होता है देशभक्त?
1: देशभक्त वो होता है नींबू, जो देश हित को अपना हित माने, जो सिर्फ अपने आगे बढ़ने के नहीं बल्कि देश के आगे बढ़ने के लिए प्रयास करे, और जो आजादी की कीमत जान उसे फॉर ग्रांटेड न ले, और जिस सक्षम देश का सपना देख शहीदों ने अपनी जान कुर्बान कर दी, उस सपने को साकार करने के लिए आगे बढ़े।
0: चिंकी, आज मैं मान गया, तुम तो मुझसे भी ज्यादा इंटेलिजेंट हो। मैं भी जरूर अपने देश के लिए कुछ करूँगा, और सिर्फ बड़ा होकर नहीं बल्कि अभी से।
1: अभी से? कैसे? अभी तो तुम बुद्धू से बच्चे हो।
0: लेकिन बच्चा हूँ इसलिए तो अच्छी आदतें सीखूंगा, लोगों की मदद करूंगा, और मैं शहीदों के बारे में और जानूंगा। पर इससे पहले?
1: उससे पहले क्या?
0: मैं गाना गाऊंगा चिंकी, गाने दो ना दोस्तों, मैं गा लूँ ना एक गाना।
1: अरे इतने अच्छे से बैठे हैं, इन लोगों के कानों को क्यों कष्ट देना चाहते हो?
0: अच्छा अच्छा, एक काम करते हैं, जाते जाते हम सब मिलकर गाते हैं। उठे सब

0: मस्त लहराते तिरंगे को सलाम।
1: और आजादी के कुछ ही दिन पहले भारतीय संविधान सभा की बैठक में मुझे हल्के से बदलाव, जो कि चरखे की जगह सम्राट अशोक का धर्म चक्र था, मुझे मेरा असली स्वरूप दिया गया। मेरा केसरिया रंग देश की शक्ति, साहस और बलिदानों को दर्शाता है। वहीं मध्य का सफेद रंग शांति और सत्य का प्रतीक है। सबसे नीचे हरे रंग की पट्टी उर्वरता, वृद्धि और भूमि की पवित्रता की कहानी कहता है। मध्य में बना चक्र धर्म चक्र कहलाया जाता है, जो सम्राट अशोक द्वारा बनवाए सारनाथ मंदिर से लिया गया है। इसमें 24 धारियां हैं जो समय के चक्र को दर्शाती हैं और हमें निरंतर चलते रहने की प्रेरणा देती हैं। सरकारी झंडा निर्दिष्टीकरण के हाथों मेरी देखरेख होती है, जिनके अनुसार मुझे सिर्फ खादी में ही बनाना चाहिए। प्यार से लोग मुझे तिरंगा भी कहते हैं। मैं एक बार फिर गर्व से कहता हूं कि मुझे गर्व है कि मैं भारत का राष्ट्रध्वज हूं। मेरा निरादर देश का निरादर है और मेरा सम्मान करना भारत का सम्मान करना है। जय हिंद, जय हिंद।

0: लहराते तिरंगे को सलाम।
1: वंदे मातरम,
2: वंदे मातरम,
1: वंदे मातरम,
2: वंदे मातरम,
1: वंदे मातरम,
2: वंदे मातरम,
1: वंदे मातरम,
2: वंदे मातरम।
3: जय हिंद।

पिंगले की हथकड़ियां खोल दी गईं। पिंगले आकाश की ओर हाथ जोड़कर कहने लगे, हे भगवान, तुम हमारे हृदय को जानते हो। जिस पवित्र कार्य के लिए आज हम जीवन की बलि चढ़ा रहे हैं, उसकी रक्षा का भार तुम पर है। भारत माँ, इस जालिम ब्रिटिश हुकूमत के चंगुल से शीघ्र मुक्त हो, यही मेरी कामना है। प्रार्थना पूरी करने के बाद स्वयं ही फांसी की रस्सी गले में डाल ली और शंखनाद किया। भारत माता की जय। भारत माँ के इस लाडले को दुनिया ने वीर श्री विष्णु गणेश पिंगले के नाम से जाना।

0: आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति विश्लेषण।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के कार्यक्रम विश्लेषण में आपका स्वागत है। मैं हूँ वैष्णवी। श्रोताओं, आज पूरी दुनिया के सामने दो बड़ी चुनौतियां हैं, बढ़ती ऊर्जा की आवश्यकताएं और जलवायु परिवर्तन। ऐसे में ऐसे ऊर्जा स्रोतों की आवश्यकता है जो स्वच्छ भी हो, भरोसेमंद भी हो और लगातार बिजली उपलब्ध करा सके। यही कारण है कि दुनिया में एक बार फिर परमाणु ऊर्जा की ओर ध्यान बढ़ रहा है। सौर और पवन ऊर्जा जैसे नवीकरणीय स्रोत स्वच्छ तो हैं, लेकिन उनकी उपलब्धता मौसम और समय पर निर्भर करती है। इसके विपरीत परमाणु ऊर्जा संयंत्र 2400 घंटे लगातार बिजली उपलब्ध करा सकते हैं, इसलिए इन्हें बिजली व्यवस्था की एक विश्वसनीय आधारशिला माना जाता है। परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए सरकार कई स्तरों पर एक साथ काम कर रही है। एक ओर शांति अधिनियम के माध्यम से कानूनी और नीतिगत ढांचे को आधुनिक बनाया गया है, वहीं दूसरी ओर स्वदेशी परमाणु प्रौद्योगिकियों के विकास और नई पीढ़ी के रिएक्टरों पर निवेश बढ़ाया जा रहा है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से ईंधन सुरक्षा और तकनीकी साझेदारी को भी लगातार मजबूत किया जा रहा है। आज के कार्यक्रम में हम जानेंगे कि हाल के वर्षों में किस प्रकार भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को नई दिशा मिली है और इस क्षेत्र में हुई प्रमुख उपलब्धियां भारत की ऊर्जा सुरक्षा तथा स्वच्छ ऊर्जा के लक्ष्य को किस प्रकार मजबूती प्रदान कर रही है। श्रोताओं, भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का एक लंबा इतिहास रहा है। वर्ष 1962 का परमाणु ऊर्जा अधिनियम देश के परमाणु कार्यक्रम की आधारशिला बना। इसके बाद संशोधनों के माध्यम से सरकार ने इस क्षेत्र में सरकारी कंपनियों और संयुक्त उपक्रमों की भागीदारी का मार्ग प्रशस्त किया, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं, तकनीकी क्षमताओं और स्वच्छ ऊर्जा से जुड़े लक्ष्यों में तेजी से बदलाव आया है। ऐसे में आवश्यकता महसूस की गई कि परमाणु ऊर्जा से जुड़े विभिन्न प्रावधानों को एक आधुनिक और व्यापक कानूनी ढांचे में समाहित किया जाए। इसी सोच के साथ शांति अधिनियम 2025 लाया गया है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं।
2: भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की वर्तमान स्थिति पर नजर डालें तो देश के कुल विद्युत उत्पादन में परमाणु ऊर्जा की वर्ष 2024-25 में हिस्सेदारी लगभग 3% रही, जबकि देश की स्थापित परमाणु ऊर्जा क्षमता 8.78 गीगावाट है। सरकार का लक्ष्य स्वदेशी तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से विकसित रिएक्टरों के माध्यम से वर्ष 2031-32 तक 22 गीगावाट से अधिक की क्षमता विकसित करना है। वहीं दीर्घकालिक लक्ष्य वर्ष 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता हासिल करना है। उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2025-26 के केंद्रीय बजट में न्यूक्लियर एनर्जी मिशन की घोषणा की गई। इसके तहत 20,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है ताकि देश में स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर यानी SMR के डिजाइन, विकास और तैनाती को बढ़ावा दिया जा सके। लक्ष्य ये भी है कि वर्ष 2033 तक कम से कम 5 स्वदेशी SMR विकसित किए जाएं। इन्हीं लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए लाया गया शांति अधिनियम 2025 भारत के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र के लिए एक आधुनिक कानूनी ढांचा उपलब्ध कराता है। इसके तहत नियामकीय निगरानी के अंतर्गत निजी कंपनियों को परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में सीमित भागीदारी की अनुमति दी गई है। वे परमाणु बिजली संयंत्रों के संचालन, बिजली उत्पादन, उपकरण निर्माण और निर्धारित सीमा तक परमाणु ईंधन निर्माण जैसी गतिविधियों में भाग ले सकेंगी। हालांकि संवेदनशील गतिविधियां केंद्र सरकार या उसकी पूर्ण स्वामित्व वाली संस्थाओं के अधिकार क्षेत्र में ही रहेंगी। अधिनियम में परमाणु ऊर्जा और विकिरण से जुड़ी गतिविधियों के लिए लाइसेंस तथा सुरक्षा स्वीकृति की स्पष्ट व्यवस्था की गई है। एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड यानी AERB को वैधानिक दर्जा देकर नियामक व्यवस्था को और सशक्त बनाया गया है। इसके साथ ही परमाणु क्षति से जुड़े दायित्व, मुआवजा, दावों के निपटान और अपील की प्रक्रिया को भी अधिक व्यवस्थित स्वरूप दिया गया है।

0: स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग और अनुसंधान जैसे शांतिपूर्ण क्षेत्रों में परमाणु तथा विकिरण तकनीकों के उपयोग के लिए भी स्पष्ट नियामकीय व्यवस्था बनाई गई है। समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
1: श्रोताओं, भारत का परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम कोई अल्पकालिक योजना नहीं बल्कि 6 दशकों से अधिक समय में विकसित हुई एक दीर्घकालिक रणनीति का परिणाम है। सीमित यूरेनियम संसाधनों और ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए भारत ने 3 चरणीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम तैयार किया। इसकी खास बात ये है कि हर चरण अगले चरण की नींव तैयार करता है। पहले चरण में प्राकृतिक यूरेनियम से बिजली उत्पादन किया जाता है, वहीं दूसरे चरण में उसी प्रक्रिया से प्राप्त ईंधन का उपयोग फास्ट ब्रीडर रिएक्टरों में किया जाता है। इसके बाद तीसरे चरण में भारत के विशाल थोरियम भंडारों के उपयोग का मार्ग प्रशस्त होता है। इसी दूसरे चरण की दिशा में भारत ने इस वर्ष एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। 6 अप्रैल 2026 को तमिलनाडु के कल्पक्कम स्थित प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ने पहली बार क्रिटिकलिटी प्राप्त की। सरल शब्दों में कहें तो इसका अर्थ है कि इस रिएक्टर में पहली बार नियंत्रित और सतत परमाणु श्रृंखला अभिक्रिया सफलतापूर्वक शुरू हुई। इसके साथ ही भारत ने अपने 3 चरणीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के दूसरे चरण में औपचारिक रूप से प्रवेश कर लिया है। लेकिन आखिर फास्ट ब्रीडर रिएक्टर होता क्या है और इसे भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम में इतनी बड़ी उपलब्धि क्यों माना जा रहा है, इस विषय पर आकाशवाणी समाचार ने वरिष्ठ वैज्ञानिक टीवी वेंकटेश्वरन से विशेष बातचीत की। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या बताया।
2: एक फास्ट ब्रीडर रिएक्टर टेक्नोलॉजी में हम लास्ट अबाउट 30 ईयर्स उसी कल्पाकम में टेस्ट कर रहा था। उस अनुभव का बेसिस में ये हम बिल्ड किया है। यूजुअली आप एक एटॉमिक रिएक्टर लिया तो वो एटॉमिक रिएक्टर से वेस्ट प्रोड्यूस होता है, बट इस रिएक्टर में एक इम्पॉर्टेंट चीज है, वो वर्ड ब्रीडर। ब्रीडर का मतलब किसी चीज को नया पैदा कर सकता है ना, तो उस तरह से फ्यूल को ये पैदा करता है, वेस्ट को पैदा नहीं करता है। इस रिएक्टर के अंदर न्यूट्रॉन फास्ट तरीके से निकलेगा। इसके कारण वो क्या करेगा, ये रिएक्टर के बाहर एक कवच के रूप में हम किसी नॉन फिसाइल मटेरियल को हम रखेंगे, लाइक थोरियम को हम रख सकता है, उसमें ये फास्ट न्यूट्रॉन टकरा के उसको फ्यूल बन, एक न्यूक्लियर रिएक्टर में एक विशेष मात्रा में न्यूक्लियर फ्यूल होने के बाद अपनी आप एक चेन रिएक्शन में उसे एनर्जी प्रोड्यूस होगा, वो ये क्रिटिकलिटी। इंडिया का एक अपनी आप एटॉमिक पावर का प्लान है, उस प्लान में 3 स्टेज बोलेगा, ये सेकेंड स्टेज है। ये स्टेज बहुत क्रिटिकल है, इसमें हमको कामयाब हो गया तो होगा, पक्का होगा, मुझे यकीन है। सो कामयाब होने के बाद हम देखा तो स्टेज 3 में हम इंडिया में अवेलेबल है थोरियम, वो थोरियम को हम यूज कर सकता है। थोरियम बहुत सेफ विषय है, तो ये एटॉमिक पावर प्रोड्यूस करने का थोरियम यूज किया तो बहुत सेफ होगा। एंड सेकेंड, वो पूरा की पूरा इंडिया में अवेलेबल, सो इसका मतलब दैट हमको एक एनर्जी सॉवर्निटी, एनर्जी इंडिपेंडेंस मिलेगा।
1: श्रोताओं, भारत के पास यूरेनियम के सीमित भंडार हैं, जबकि थोरियम के दुनिया के सबसे बड़े भंडारों में से एक भारत के पास है। भारत का 3 चरणीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम इसी सोच पर आधारित है कि भविष्य में इन विशाल थोरियम संसाधनों का अधिकतम उपयोग किया जा सके। आइए इस विषय पर वरिष्ठ वैज्ञानिक टीवी वेंकटेश्वरन की राय सुनते हैं।
2: लास्ट 20-30 वर्ष में एटॉमिक पावर के ऊपर एक नेगेटिव व्यू था, बट अभी पेट्रोलियम एंड कोल का ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट देख के बहुत लोग ये बोलने लगा दैट हम नया दौर पर नया दृष्टिकोण से एटॉमिक पावर को देख, तो एक एटॉमिक पावर ग्रीन एनर्जी है, इसका मतलब एक ग्लोबल वार्मिंग करने वाला चीज को नई पैदा कर। एंड हम थर्ड स्टेज दैट इज थोरियम यूज करने लगा तो इवन एटॉमिक सेफ्टी का इश्यू बहुत इजी हो जाएगा, आसान हो जाएगा। सो फ्यूचर में आई थिंक सर्टनली ये एटॉमिक पावर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इंडिया में, एंड बिकॉज वी हैव थोरियम इन ह्यूज रिजर्व, बहुत ज्यादा मात्रा में थोरियम इंडिया में है, तो फ्यूचर में एक सिग्निफिकेंट पोर्शन एटॉमिक पावर प्ले करेगा।
1: श्रोताओं, आने वाले वर्षों में ऊर्जा की मांग को और अधिक बढ़ने का अनुमान है और ऐसे समय में पश्चिम एशिया और रूस यूक्रेन जैसे वैश्विक संघर्षों ने ये दिखाया है कि ऊर्जा आपूर्ति में व्यवधान किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकता है। इसलिए अनेक देश परमाणु ऊर्जा को एक दीर्घकालिक विकल्प के रूप में देख रहे हैं। वर्ष 2023 में आयोजित COP28 सम्मेलन में 20 से अधिक देशों ने वर्ष 2050 तक वैश्विक परमाणु ऊर्जा क्षमता को कम से कम 3 गुना करने की प्रतिबद्धता जताई थी। भारत भी अपने परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को मजबूत बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को लगातार विस्तार दे रहा है। हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच नागरिक परमाणु सहयोग के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था को अंतिम रूप दिया गया है। इस समझौते के अंतर्गत भारत की शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के लिए ऑस्ट्रेलिया से दीर्घकालिक यूरेनियम आपूर्ति का मार्ग प्रशस्त हुआ है। ऑस्ट्रेलिया के पास दुनिया के कुल यूरेनियम संसाधनों का एक तिहाई से अधिक हिस्सा है। ऐसे में ये व्यवस्था भारत के बढ़ते परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के लिए ईंधन सुरक्षा को मजबूत करेगी। इस व्यवस्था के अंतर्गत भारत को शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए यूरेनियम की आपूर्ति अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की निगरानी और सुरक्षा प्रावधानों के तहत की जाएगी। साथ ही ऑस्ट्रेलिया ने न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप यानी NSG की सदस्यता के लिए भारत के समर्थन को भी दोहराया है। कार्यक्रम विश्लेषण में इस कार्यक्रम को तैयार किया हमारे सहयोगी अनिकेत ने, प्रस्तुति सहायक है अलका सिंह।

अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 की लड़ाई में आपने मंगल पांडे का नाम सुना, रानी लक्ष्मीबाई का नाम सुना, पर इन नामों के अलावा कुछ और भी नाम थे जिन्होंने इस लड़ाई में मुख्य भूमिका निभाई थी। आजादी की इस लड़ाई में वल्लभगढ़ के राजा नाहर सिंह भी एक ऐसे ही क्रांतिकारी थे। अंग्रेजों ने उन्हें धोखे से कूटनीति द्वारा दिल्ली बुलाकर गिरफ्तार कर लिया और उन्हें फांसी दे दी गई। अंग्रेज कप्तान हरसन उनकी वीरता का कायल था। कप्तान हरसन ने राजा के सामने अंग्रेजों की मित्रता का प्रस्ताव रखा। स्वाभिमानी राजा नाहर सिंह ने साफ इनकार करते हुए कहा, शत्रुओं के आगे सिर झुकाना मैंने नहीं सीखा, अंग्रेज मेरे शत्रु हैं, उनसे क्षमा कदापि नहीं मांग सकता, लाख नाहर सिंह कल पैदा हो जाएंगे। चांदनी चौक में फव्वारे के निकट खुले में राजा नाहर सिंह को फांसी देने की व्यवस्था की गई थी। यहाँ पर नीम का एक पेड़ था, उस पर ही फंदा तैयार किया गया था। राजा मुस्कुराते हुए अविचल भाव से पेड़ के पास आकर खड़े हो गए। 9 जनवरी 1858 का दिन था। 35 वर्षीय युवा राजा नाहर सिंह निर्भयता पूर्वक फांसी के फंदे को चूमने को तैयार थे। जनता के अश्रु थम नहीं रहे थे, किंतु राजा के मुखमंडल पर दिव्य शांति युक्त तेज था। कैप्टन हरसन ने सिर झुकाकर राजा नाहर सिंह की अंतिम इच्छा पूछी। उस दृढ़ महावीर ने कहा, मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता, मेरा संदेश इन भयभीत दर्शकों को दे दो कि जो चिंगारी मैं छोड़े जा रहा हूं उसे बुझने न देना, देश की इज्जत अब तुम्हारे हाथ है। हरसन ने यह संदेश आम लोगों को देने में अपनी असमर्थता व्यक्त कर दी। अंग्रेज सरकार एक बलिदानी की अंतिम इच्छा भी पूर्ण न करके उसके सामने असमर्थ हो गई।

0: प्रस्तुत है हमारी भारतीय जल थल और वायु सेना पर आधारित कार्यक्रम हमारी सेना हमारा गर्व, जिसमें आप सुनेंगे भारतीय सेना का इतिहास, चयन प्रक्रिया और भारतीय सीमाओं की सुरक्षा पर सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल भामा जी से चर्चा।
1: श्रोताओ, हर सुबह जब हम उठते हैं तो उठते हैं एक लक्ष्य को लेकर कि आज हमें क्या करना है और किस तरह से करना है। फिर चल पड़ते हैं अपने उन गंतव्यों की ओर, उन सपनों को पूरा करने के लिए जो हमने अपने भविष्य को लेकर देखे हैं या जो हमारे वर्तमान को संवार रहे हैं। लेकिन श्रोताओ, हमारे बीच ही हम में से ही कुछ लोग थोड़ा अलग हटकर सोचने वाले होते हैं, जो होते तो हैं हमारी ही तरह समाज का एक हिस्सा, लेकिन जब देश को जरूरत पड़े तो एक वर्दीधारी सैनिक भी बन जाते हैं। कौन है ऐसे लोग जो समाज के सामान्य नागरिक जीवन को जीते हुए भी भारतीय सेना के एक वीर सिपाही की भूमिका भी निभा लेते हैं? तो श्रोताओं, ये हैं भारतीय सेना की टेरिटोरियल आर्मी के सतर्क और शूरवीर सैनिक, जो कि जब जब भी देश को उनकी जरूरत हो, देश की सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस के रूप में हमेशा ही मुस्तैद रहते हैं। तो फिर आइए जानते हैं कि किस तरह हमारे देश की टेरिटोरियल आर्मी काम करती है और किस तरह हम भी इसमें शामिल होकर देश सेवा के सपने को पूरा कर सकते हैं, और इसमें शामिल होने के लिए क्या क्या सीमाएं और शर्तें हैं, और टेरिटोरियल आर्मी से जुड़े वे सभी तथ्य जो हमें जानना चाहिए, इन सभी की चर्चा आज कर रहे हैं हम इस कार्यक्रम की कड़ी में। कार्यक्रम का नाम है हमारी सेना हमारा गर्व, और एक बार फिर इस विषय पर जानकारी देने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ हैं लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल भामा, जिन्होंने लगभग 20 वर्षों तक भारतीय सेना में अपनी सेवाएं दी हैं। स्वागत है सर कार्यक्रम में आपका।
2: जय हिंद पूर्वा जी। जय हिंद श्रोताओं। पूर्वा जी, टेरिटोरियल आर्मी जैसे आपने कहा
1: जी,
2: रिजर्व मिलिट्री फोर्स होती है जो कि वॉलंटियर्स के द्वारा, मतलब जिसमें जो भी उसमें सर्विस करते हैं
1: जी।
2: तो टेरिटोरियल आर्मी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हर भारतीय को एक मौका देती है, अपॉर्चुनिटी देती है कि वो देश की सेवा यूनिफॉर्म में कर सके
1: जी, वर्दी।
2: देश की सेवा तो हर एक कोई करते हैं
1: जी,
2: लेकिन
1: जी।
2: वर्दी पहन के
1: हाँ।
2: देश की सेवा कर सके
1: जी।
2: तो टेरिटोरियल आर्मी जो होती है वो इंडियन आर्मी जो रेगुलर आर्मी है एक तरह से उसका ही हिस्सा है, और इनका जो मेन काम होता है
1: जी,
2: वो होता है कि जो रेगुलर आर्मी है जब जरूरत पड़ती है देश को, तो उनको वो स्टैटिक ड्यूटीज जो होती है
1: जी,
2: उससे रिलीव करके आगे, मतलब वॉर में अपना जो है योगदान देने के लिए रिलीव कर रहे सकती है
1: जी।
2: और बाकी जो काम बॉर्डर के ऊपर होते हैं उसके लिए मतलब रिलीव कर सकती है।
1: यानी सर, जब सेना को सीमा पर आवश्यकता है, तब जब सेना के जो पुराने ठिकाने हैं या जो पहले जो कार्य कर रही थी, जो कर्तव्य कर रही थी, उनमें अब ये सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस आ जाती है,
2: जैसे हमारे एमिनेशन डंप्स पे ड्यूटीज होती है
1: हाँ जी।
2: या जैसे अगर सीआई हम कॉन्ट्रेंसेंसी ऑपरेशन करते हैं तो उसमें रोड ओपनिंग पार्टीज लगती हैं और गैरिसन ड्यूटीज होती हैं, तो ऐसी काफी सारी महत्वपूर्ण ड्यूटीज होती हैं, ब्रिज गार्डिंग वगैरह होता है
1: हाँ।
2: तो जिसके लिए ये लोग हमेशा तत्पर रहते हैं, तैयार रहते हैं, और इनसे जो है सेना को बहुत बड़ी मदद मिलती है। ये सेना का एक तरह से अभिन्न अंग है। दूसरा, हमारे यहाँ जैसे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को भी मदद करने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहता है।
1: अच्छा।
2: कभी डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए मतलब इनकी सहायता ली जाती है, कोई नेचुरल कैलेमिटीज वगैरह आती है वहां पे भी मतलब जो है ये लोग कार्य करते हैं। अब इसके बारे में क्या है कि टीए जो होती है वो रेगुलर जॉब नहीं होती है, इसलिए क्या है कि जो टीए में जो लोग सर्व करते हैं टेरिटोरियल आर्मी में, उनके लिए एक मैंडेटरी होता है कि वो किसी ना किसी गवर्नमेंट जॉब में हो
1: जी,
2: आर्मी और पुलिस को छोड़ के, मतलब आर्मी पुलिस को छोड़ के, या सेमी गवर्नमेंट जॉब में हो या पीएसयू में हो या कहीं प्राइवेट भी हो सकता है, कोई वो नहीं
1: का पेशा हो उसका
2: हाँ, मतलब वो उनकी जो रोजी रोटी है
1: हाँ, जी।
2: वो उनके लिए मतलब वो कहीं ना कहीं कार्यरत होने चाहिए,
1: यानी उनके जीवन निर्वाह का कोई ना कोई साधन अलावा होना चाहिए।
2: इवन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी हो
1: सकता है,
2: कोई व्यवसाय हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये बड़ा अच्छा मौका सबके लिए होता है
1: जी,
2: जो मतलब चाहते हैं
1: जी।
2: इसमें जो इंडियन सिटीजन्स हैं जिनकी की एज ग्रुप 18 to 42 के बीच में होती है,
1: अच्छा जी,
2: वो एलिजिबल होते हैं इसको ज्वाइन करने के लिए।
1: हाँ जी सर, मेरा यही प्रश्न था कि यदि किसी को टेरिटोरियल आर्मी ज्वाइन करनी है तो उसके लिए क्या क्या उसकी शर्तें होती हैं, हम कब इसको ज्वाइन कर सकते हैं, कौन व्यक्ति इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं?
2: कोई भी इंडियन सिटीजन
1: जी
2: ज्वाइन कर सकता है। पहले ये सिर्फ मेल्स के लिए होता था, अब 2019 में जो है इवन फीमेल्स had started coming, तो अभी पहले initially they had joined as officers, as a officer जो join कर रहे थे, but even अब soldier के तौर पे भी join कर सकते।
1: अच्छा,
2: उसके अलावा क्या होता है कि और जो सर्विस के क्राइटेरियास होते हैं, जैसे फिजिकल फिटनेस जो है उस लेवल की होनी चाहिए, जो मेडिकल रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि वो मेडिकली फिट होना चाहिए, उनकी हाइट वगैरह जो है, वेट जो भी रहता है, वो सब रिक्वायरमेंट्स मीट करनी चाहिए। और सबसे बड़ी जो बात होती है कि हर साल
1: जी
2: उनको जो है ट्रेनिंग के लिए आना होता है।
1: अच्छा,
2: और अगर उनको गवर्नमेंट बुलाती है, एम्बॉडीमेंट होता है, तो कंपल्सरीली दे हैड टू पार्टिसिपेट इन इट। ये शर्तें जो होती हैं
1: जी जी,
2: अगर ये मंजूर होती हैं तो उसमें कोई भी इसको ज्वाइन कर सकता है।
1: अच्छा,
2: इसमें आप मतलब एज ए ऑफिसर, एज ए जेसीओ, एज ए ओआर
1: जी जी
2: जो है मतलब अदर रैंक्स
1: जी जी
2: ज्वाइन कर सकते हैं और उसमें सर्विस दे सकते हैं।
1: अच्छा,
2: तो जब ये डीएमए जब आप सर्विस कर रहे होते हैं तो आपकी जो पेज होती है, अलाउंसेस होते हैं
1: जी,
2: वो बिल्कुल वैसे ही होते हैं जैसे इंडियन आर्मी में है।
1: अच्छा, मतलब समकक्ष होते हैं, इनमें कोई अंतर नहीं होता?
2: कोई अंतर नहीं होता।
1: अच्छा,
2: है
1: अच्छा।
2: इवन यूनिफॉर्म भी वो लाइफ ग्रीन ही पहनते हैं, आर्मी की ही यूनिफॉर्म पहनते
1: अच्छा,
2: हैं
1: जी।
2: इसके बारे में हम और जिक्र करेंगे आगे चल के।
1: हाँ जी बिल्कुल।
2: तो जस्ट किसी ने अगर एज ए कैप्टन कोई सर्विस कर रहा है तो उसके पे पर्क्स जो है, अलाउंसेस है, वो सारे के सारे उसको एज ए कैप्टन ही मिलते हैं। लेकिन इसमें एक फर्क ये होता है, ये पेमेंट, ये जो पे है उसको सिर्फ वो एक्टिव सर्विस में जितने दिन रहते हैं, जैसे अगर उन्होंने वहां पे 6 महीने सर्विस करी है तो वो 6 महीने के लिए ही मिलेगी
1: जी, जितनी सेवा की अवधि होगी उतना ही पेमेंट होगा।
2: बिल्कुल वैसे ही होगा। और अगर जैसे वो साल में जब अपनी ट्रेनिंग करने जाते हैं तो उस अवधि में भी उनको जो उस रैंक के ऊपर जिस पे वो ट्रेनिंग करने गए हैं उसकी पूरी पेमेंट वैसे ही मिलती है जो आर्मी में ऑथराइज्ड है। ये एक मतलब इनका प्रिंसिपल रहता है। और टीए जो होती है, बटालियंस होती है, इनका ना एम्बॉडीमेंट होता है।
1: अच्छा,
2: एम्बॉडीमेंट मतलब होता है जरूरत पड़ने पे बुलाया जाके मतलब वो यूनिट रेस होती है। अगर वो जरूरत नहीं होती है तो इवन इनका डिसएम्बॉडीमेंट भी हो जाता है। दैट्स व्हाई बोलते हैं कि परमानेंट जॉब नहीं है,
1: इसीलिए एक दूसरे व्यवसाय का होना आवश्यक
2: है ना। तो जब एम्बॉडीमेंट डिसएम्बॉडीमेंट होता है उसमें भी क्या होता है, उस दौरान भी जो न्यूक्लियस होता है, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन का, एक
1: संगठन का केंद्र
2: जो है वो यूनिट का, वो तो मेंटेन रहता है।
1: अच्छा,
2: और जो टीए बटालियंस होती हैं इनको रेगुलर आर्मी ऑफिसर्स जो होते हैं, कर्नल्स होते हैं, वो कमांड करते हैं।
1: अच्छा
2: जी।
1: तो सर मैं यही पूछ रही थी कि इसका जो टेरिटोरियल आर्मी का जो संगठन है वो किस तरह का होता है, ऑर्गेनाइजेशन किस तरह की है?
2: टीए जो थे ये जो बनी थी, ये 10 सितंबर 1948 को टीए बिल पास हुआ था पार्लियामेंट में।
1: अच्छा,
2: उसके तहत जो है एग्जिस्टेंस में आई थी
1: आजादी के बाद
2: जी। और जो फर्स्ट टीए कैंप था वो उसका इनॉग्रेशन किया था हमारे जो फर्स्ट गवर्नर जनरल थे इंडिपेंडेंट इंडिया के, श्री सी राजगोपाली जारी सर जो है, उन्होंने 9 अक्टूबर 1949 को किया था। तो इसीलिए 9 अक्टूबर को जो है टीए डे मनाया जाता है, टेरिटोरियल आर्मी डे मनाया जाता है। और इसकी जो जरूरत महसूस हुई थी, क्योंकि अगर आपको याद होगा कि आजादी के मिलते ही 47 में अक्टूबर में जो है पाकिस्तान से हमारा युद्ध हुआ था, पर्सन वॉर हुआ था, तो उस समय एक रियलाइजेशन आया था कि हमारे पास एक रिजर्व फोर्स होना बहुत जरूरी है
1: जी।
2: जो कि समय पे अगर मतलब रेगुलर आर्मी को मदद करने के लिए आ सके। दैट वाज द बेस,
1: मुख्य उद्देश्य
2: यही था जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन बनी। ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करते हैं तो ये डायरेक्टर जनरल टीए टेरिटोरियल आर्मी होते हैं, जो लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के ऑफिसर होते हैं वो इसको कमांड करते हैं।
1: तो सर इसका मुख्यालय भी दिल्ली में है
2: और ये इडेंटिकल पार्ट ऑफ द आर्मी, ठीक है। और जो ये है, इट फंक्शंस अंडर डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स,
1: अच्छा
2: डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस।
1: अच्छा
2: और इसमें फिर इसके नीचे जो है ग्रुप हेडक्वार्टर्स आते हैं।
1: अच्छा अच्छा जी।
2: तो इनके जो ग्रुप हेडक्वार्टर्स हैं जनरली मतलब दे आर अलाइन विद द कमांड्स ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस इंडियन आर्मी की। इंडियन आर्मी के जो पांच कमांड्स हैं ईस्टर्न वेस्टर्न नॉर्दर्न सदर्न एंड सेंट्रल कमांड। वैसे हमारे पास सात हैं नॉर्थ वेस्टर्न भी है ना और उसके अलावा हमारे ट्रेनिंग कमांड भी। तो लेकिन ये पांच जो कमांड्स हैं तो जहाँ इनके हेडक्वार्टर्स हैं उनके साथ ही ग्रुप हेडक्वार्टर्स लोकेटेड होते हैं।
1: अच्छा।
2: और ये होते हैं कि ताकि वो इनका कमांड कंट्रोल के लिए जो है ऑर्गेनाइजेशन को जो है कंट्रोल करने के लिए फॉर रिक्रूटमेंट के लिए चार भागों में मतलब फोर जोन्स में पूरे इंडिया को डिवाइड किया गया।
1: अच्छा।
2: जैसे हमारा मध्य प्रदेश जो है वो जोन टू में आता है।
1: अच्छा।
2: तो मतलब जोन्स वाइज जो है रिक्रूटमेंट होता है।
1: अच्छा भर्ती जोन के हिसाब से
2: जोन के हिसाब से होती है। तो वो उसके लिए उन्होंने इसको चार जोन में इंडिया को डिवाइड किया हुआ है। अब अगर हम उनकी बटालियंस के बारे में बात करें टीए की बटालियंस जो होती है टीए की बटालियंस जो होती है वो दो तरह से होती है। एक डिपार्टमेंटल यूनिट्स हम बोलते हैं उनको एक उनको बोलते हैं नॉन डिपार्टमेंटल यूनिट्स। आप बताइए डिपार्टमेंटल यूनिट क्या हो सकती हैं?
1: डिपार्टमेंटल सर इसका ये मतलब हो सकता है कि जो अलग अलग विभागों के लिए जो सेवाएं दे रहे हैं वो विभागीय हो गई।
2: बिल्कुल सही बोला आपने। जो टीए बटालियन जो डिपार्टमेंटल है जो स्पेसिफिकली किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन इंडस्ट्री या कोई स्पेशल टास्क के लिए बनाई गई है उनको हम डिपार्टमेंटल बोलते हैं। जैसे एक बटालियन इनकी होती है ऑयल सेक्टर की।
1: हाँ जी
2: ठीक है। तो जो हमारी ऑयल रिफाइनरीज हैं उनकी जो क्रूशियल फंक्शनिंग होती है उसको मेंटेन करने के लिए जो है टीए बटालियन है जो 801 इंजीनियर रेजिमेंट है जो आगरा में है 811 इंजीनियर रेजिमेंट है वो एनजीसी की जो बड़ौदा में है उसके अलावा 414 एसी बटालियन है मार्केटिंग की जो कामटी में है नागपुर के पास। तो ये जो है स्पेसिफिकली ऑयल एंड ऑयल रिफाइनरीज ऑयल सेक्टर के लिए काम करने के लिए है। तो इसका जो विचार बना था आई थी रिक्वायरमेंट हुई थी क्योंकि कहते हैं कि 1980 में असम में जो है अनरेस्ट हो गया था सिविल अनरेस्ट हुआ था।
1: अच्छा।
2: तो उस समय जो हमारी वहाँ पे ऑयल रिफाइनरीज है वो बंद हो गई थी।
1: अच्छा।
2: जिससे कि देश को बहुत भारी नुकसान हुआ था कहते हैं 5,000 करोड़ का नुकसान से भी ज्यादा का नुकसान हुआ
1: जी।
2: तो 1980 में तो 5,000 करोड़ बहुत ज्यादा मायने रखते थे
1: जी।
2: तो फिर उस बात को मद्देनजर रखते हुए कि अगर कभी देश के ऊपर ऐसी विपत्ति आ जाए मुश्किलें आ जाए तो एसेंशियल सर्विसेज मेंटेन करने के लिए हमारे पास यूनिट होनी चाहिए
1: उनकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण संस्थानों की सुरक्षा के लिए टेरिटोरियल।
2: ये सुरक्षा के लिए नहीं है ये उनके ऑपरेशंस के लिए।
1: अच्छा संचालन के लिए जी।
2: तो इसीलिए इसमें जो लोग भर्ती भी होते हैं जो वॉलंटियर्स भी आते हैं वो उसी ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं।
1: अच्छा सर मतलब उस संस्थान के कार्यकलापों की जानकारी रहती है
2: जो टेक्निकल पीपल है वही होते हैं।
1: हाँ जी।
2: जैसे अगर ONGC है 811 इंजीनियर रेजिमेंट है तो उसमें आपको वो लोग मिलेंगे जो ONGC का कार्य अच्छे से जानकारी रखते हैं और उसको ऑपरेट कर सकते हैं।
1: जी जी।
2: ये इसलिए इसको स्पेसिफिकली डिपार्टमेंटल बोला जाता है। अब जैसे इंडियन रेलवेज है इंडियन रेलवेज का भी जो है टीए बटालियन होती है।
1: अच्छा, हाँ
2: तो अभी तो फिलहाल उनकी जैसे एक ही बटालियन है एक जमाने में उनके पास 9-9 बटालियन होती थी टीए बटालियन एंड दे हैव डन वंडरफुल जॉब। मतलब इन टीए बटालियंस ने ड्यूरिंग वॉर के टाइम पे जो है 65-71 में तो रेलवेज की फंक्शनिंग क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होती है फौज के लिए
1: बिल्कुल सामान रसद पहुंचाना
2: एग्जैक्टली मतलब एवरीथिंग
1: सब कुछ जी बिल्कुल।
2: तो उस समय जो है टीए बटालियंस ने बहुत अच्छा काम किया इनके लिए। तो अभी तो फिलहाल जैसे इनके पास एक टीए बटालियन है जो जमालपुर में है बिहार में अदरवाइज दे हैड द मोर एंड दे हैड द कैपेबिलिटी जरूरत पड़ने पे और भी मतलब रेज कर सकते हैं
1: जी।
2: उसके अलावा एक और जैसे अभी मैंने बोला था कि स्पेशल टास्किंग के लिए ये होते हैं तो हमारे देश में जो है एनवायरमेंट मेंटेन करने के लिए एसोसिएटेड इन्फेंट्री बटालियंस के साथ जो है रेजिमेंट है ना जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट है फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज का है तो इन लोगों ने मिलके और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने मिलके स्टेट्स के जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ मिलके इकोलॉजिकल टास्क फोर्स बनाई है।
1: हाँ जी सर जैसे ही वो शिवालिक पहाड़ियों पर भी इनका काम बहुत महत्वपूर्ण रहा।
2: जी बिल्कुल बिल्कुल। आप
1: वृक्षारोपण वन संरक्षण में बहुत बड़ी भूमिका है सर।
2: बहुत बड़ी भूमिका है। ये जो फर्स्ट यूनिट थी ये 82 में रेज हुई थी और जैसे आपने जो बताया वो उसी के लिए रेज हुई थी शिवालिक जो डिफोरेस्टेशन हो रहा था इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आ रही थी।
1: हाँ
2: जो है तो उसको मेंटेन करने के लिए उसको जो है वापस मतलब डेवलप करने के लिए रेज हुई थी।
1: अच्छा, अच्छा।
2: और आज जो है 10 ETFs काम कर रही हैं इंडिया में एंड दे आर रियली परफॉर्मिंग एन एक्सीलेंट जॉब. मतलब ट्री प्लांटेशन का जो बहुत ही रगेड एरियाज हैं, इकोलॉजिकली डिग्रेडेड एरियाज हैं माइनिंग वगैरह के कारण जो है उसमें लोग प्लांटेशन वगैरह करते हैं थ्रू आउट द कंट्री.
1: मिट्टी का संरक्षण
2: बिल्कुल बहुत अच्छा इनका काम रहता है एंड इसमें मैक्सिमम जो लोग हैं वो एक्स सर्विसमैन हैं.
1: अच्छा.
2: क्योंकि जब शुरू में भी देखा गया था कि मतलब जब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ मिलकर किया था तो एक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लिए भी एक उनको लगा था कि जो हमारे एक्स सर्विसमैन है उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी है और बहुत अच्छा देश सेवा का अच्छा अवसर है. तो कहते हैं कि अभी तक इन्होंने 7 करोड़ से ज्यादा प्लांटेशन किया है.
1: क्या बात है जी.
2: और approximately they say कि they had covered almost 180,000 acres of land.
1: तो बहुत बड़ा achievement है.
2: बहुत बड़ा achievement है और ये अभी भी कर रहे हैं. ऐसे ही recently अगर आपको याद होगा गंगा स्वच्छ गंगा मिशन शुरू हुआ था उसके लिए भी एक यूनिट 2018 में बनी थी जिसको कम्पोजिट इकोलॉजिकल टास्क फोर्स बोलते हैं.
1: अच्छा.
2: तो ये यूनिट भी जो है ये 100% मतलब जो है ESM एक सर्विसमैन की है जो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है हमारा
1: जी.
2: उन्होंने जो है इनको ट्रेनिंग दी पूरी कि रिवर वाटर कैसे टेस्ट करते हैं
1: जी.
2: उसकी सफाई कैसे करते हैं उसको मेंटेन कैसे करते हैं. तो इसमें ये लोग कार्य दक्ष होके ये कार्य कर रहे हैं
1: जी.
2: इनका बड़ा बहुत बड़ा योगदान है.
1: हाँ जी सर. ये तो दोहरा उद्देश्य पूरा हो रहा है, तो पर्यावरण संरक्षण भी हो रहा है और जो आर्मी से रिटायर्ड जो लोग हैं या जो सैनिक है हमारे पूर्व सैनिक हैं जिन्हें कहते हैं उनको फिर से वापस एक रोजगार.
2: बिल्कुल बहुत सही है. और इसके अलावा ये लोग जो है रिवर बैंक्स के साथ साथ जो है प्लांटेशन भी करते हैं उसकी सुरक्षा भी करते हैं.
1: अच्छा अच्छा.
2: तो काफी अच्छा काम है उनका. तो ये तो देखी जाए तो ये है डिपार्टमेंटल यूनिट्स जो स्पेसिफिकली डिपार्टमेंट्स में काम करती है. अब दूसरी होती है नॉन डिपार्टमेंटल यूनिट्स. नॉन डिपार्टमेंटल यूनिट्स जो होती हैं वो हमारी रेगुलर आर्मी जो है जैसी हमारी यूनिट्स होती हैं उन जैसी होती हैं. तो इसमें क्या होता है कि मैक्सिमम यूनिट्स जो है वो इन्फेंट्री के साथ एसोसिएटेड है. बटालियंस जो है टी की वो इन्फेंट्री के साथ एसोसिएटेड है. बट उसके अलावा भी है यूनिट्स होती है इस समय जो है टी के साथ जो इन्फेंट्री रेजिमेंट का एसोसिएटेड है कम से कम 31 बटालियंस है ऐसी. अच्छा ये लोग सेम ड्रेस पहनते हैं. जैसे मैं मद्रास रेजिमेंट में था तो हमारी जो दो टीए बटालियन 710 टीए एंड 122 तो दोनों जो यूनिफॉर्म पहनते हैं वो मद्रास रेजिमेंट की ही यूनिफॉर्म पहनती हैं.
1: तो फिर सर भेद कैसे पता चलता है, अंतर कैसे पता चलता है?
2: हमारे लिए तो कोई अंतर नहीं है. Like it is said, integral part of the armed forces. आर्मी के हमारे हिस्सा है.
1: हाँ.
2: तो जो हमारी इन्फेंट्री की जो हमारी रेजिमेंट है जैसे मद्रास रेजिमेंट है तो उसमें जब हमारी जितनी यूनिट्स है उसके साथ हम टीएस को भी अपने यूनिट ही मानते हैं. यूनिट एज ए इंटीग्रल पार्ट मानते हैं. अगर हमारा कॉम्पिटिशन हो रहा है बटालियन इंटर बटालियन कॉम्पिटिशन तो टीए भी उसमें भाग लेती है.
1: बस यही मेरा प्रश्न था सर कि अंतर कहाँ आता है.
2: अंतर यही आता है कि जो बताया आपको कि ये वॉलंटियर फोर्स है और ये रेगुलर आर्मी है. ये प्रॉपर सर्विस में है बाकी लोग वो लोग जो है वॉलंटियर्स होते हैं.
1: मैंने लेकिन जितने समय रहेंगे वो बिल्कुल सेना का हिस्सा रहेंगे.
2: सेना का हिस्सा रहेंगे जितने समय रहते हैं वो अपनी बटालियन के साथ वैसे ही रहते हैं. जैसे मैंने बताया कि उनको कमांड भी उनके रेगुलर आर्मी. अब इसमें भी क्या होता है जैसे अब मद्रास रेजिमेंट है जैसे या मराठा रेजिमेंट है या राजपूताना राइफल्स है तो उन्हीं के ऑफिसर जनरली मतलब ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है लेकिन जनरली उन्हीं के ऑफिसर टीए बटालियन भी कमांड करते हैं.
1: अच्छा.
2: ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि मतलब सिकलाई का ऑफिसर जाके मद्रास रेजिमेंट की टीएनए का कर सकता है लेकिन 99% टू मेंटेन द कोहेसिवनेस ठीक है वो ऐसा रखा जाता है. तो इसी तरह से इंजीनियर रेजिमेंट्स के साथ जो है इस समय मतलब 3 बटालियन से एसोसिएटेड है. एक अभी नए कंसेप्ट पे उसको बोलते हैं होम एंड हर्थ.
1: अच्छा.
2: सन ऑफ सॉइल. ये जो कंसेप्ट होता है जो अभी हम काउंटर सर्जेंसी ऑपरेशंस कर रहे हैं और इसके अलावा जो है हमारा काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस जो चलते हैं इसमें ये देखा गया है कि जो ये लोकेशंस हैं जम्मू एंड कश्मीर हो गया
1: जी.
2: तो वहाँ के जो लोकल्स हैं उनको इस यूनिट्स में शामिल किया जाता है.
1: अच्छा.
2: ये सिर्फ सिर्फ और सिर्फ वहीं के लोग उसमें शामिल होते
1: वहीं के क्षेत्र के.
2: हाँ. इसलिए उनको सन ऑफ द सॉइल बोलते हैं.
1: मिट्टी के बेटे.
2: तो मैंने खुद मतलब इसमें मैंने सर्विस नहीं करी है लेकिन मेरे साथ एक बटालियन रही है.
1: अच्छा.
2: फर्स्टली क्या होता है कि उनको उस एरिया के बारे में पूरी नॉलेज होती है, उनको भाषा के बारे में ज्ञान होता है,
1: ये सबसे महत्वपूर्ण।
2: दूसरा क्या है कि उनको क्लाइमेटिक कंडीशन में वो पूरी तरह से तैयार रहता है, वो पहाड़ी के इलाके हैं तो उनको उनको पहाड़ों में मतलब ऑपरेशन का तो बचपन से वहां रहे हुए हैं, इसलिए उनको सन ऑफ सॉयल्स बोलते हैं, उनको रास्तों के बारे में पूरी जानकारी होती है। तो इनकी जो परफॉर्मेंस है बहुत अच्छी होती है
1: जी।
2: इट हैज बीन ए वेरी वेरी सक्सेसफुल एंड वेरी अप्रिशिएटेड कॉन्सेप्ट जो जिसको किया था। और इससे एक बहुत बड़ा फायदा ये है कि जो यूथ है उस इलाके में, जो यूथ है स्पेशली, दे गेट द जॉब अपॉर्चुनिटी,
1: लोकल लोगों को रोजगार मिलेगा,
2: बिल्कुल मिलता है। और उनको जो है मतलब एक तरह से फायदा ये रहता है कि इंटरनेशनल एलिमेंट्स के साथ नहीं मिलते हैं जो है,
1: ये भी सही बात है।
2: तो इट इज ए नेशन बिल्डिंग, ठीक है। एंड मतलब जो इस एरिया के जो उनकी नॉलेज होती है, इक्विटेंस होता है, इट हैज गॉट अ ट्रेमेंडस वैल्यू, तो दे बिकम वेरी गुड सोल्जर्स। बहुत अच्छा कंसेप्ट पे ये लोग काम करते हैं। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हर जो बटालियंस होती है वो रेगुलर आर्मी ऑफिसर्स कमांड करते हैं, उसके अलावा जो है सीओ के अलावा 2IC या 102 स्टाफ ऑफिसर्स जो होते हैं वो जो है रेगुलर आर्मी के होते हैं, और बाकी जो रिमेनिंग ऑफिसर्स होते हैं वो टीए कैडर के आते हैं। तो जो कंपनीज जनरली कमांड कर रहे होते हैं वो टीए के आपको मिलेंगे, ऑफिसर्स मिलेंगे
1: जी।
2: इसी तरह से जो है एसोसिएशन के बारे में, जो जनरली जो टीए बटालियंस होती है हमारी रेजिमेंट्स के साथ, जो इन्फेंट्री रेजिमेंट्स के साथ एसोसिएटेड रहती है,
1: इनको फिर ट्रेनिंग किस तरह से दी जाती है यदि ये अंशकालिक है, पूर्णकालिक है नहीं है, तो फिर इन्हें ट्रेनिंग का क्या व्यवस्था होती है और किस तरह से, क्योंकि हमें फिटनेस तो हमारी एक सैनिक के तौर पर बना के रखनी है, तो वो कैसे मेंटेन करते हैं?
2: देखिए इसमें जो डिपार्टमेंटल यूनिट और नॉन डिपार्टमेंटल यूनिट्स हैं
1: जी,
2: दोनों अपनी अपनी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसके हिसाब से जो है ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज होती है।
1: अच्छा।
2: और ट्रेनिंग में ऐसा होता है कि जब कोई भी बंदा जो कोई भी भर्ती होता है टीए में
1: जी,
2: तो उसके साथ एक शर्त ये रहती है कि आपको साल में इतने दिनों के लिए आके हमारे साथ ट्रेनिंग करना कंपलसरी रहेगा। और उस दौरान जो है साल में एक महीना दो महीना जो भी वो ट्रेनिंग का उनका शेड्यूल रहता है उसमें कंपलसरी होता है उनको उपस्थित होना, उसके लिए कंपलसरी होता है। तो जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसके हिसाब से फिर उनकी ट्रेनिंग होती है। तो ये तो एक होता है मतलब मेथड होता है जिसमें ट्रेनिंग होती है। बाकी क्या होता है कि 99% पीपल कीप देमसेल्फ फिट बिकॉज उनको भी तो मेडिकल एग्जामिनेशन कराने होते हैं हर साल जो है, अगर उनको एम्बॉडेड रहना है, उसका हिस्सा रहना है, तो उनकी जो कंडीशन है वो फुलफिल करनी होती है। उसके अलावा जो कोई रेजिमेंट्स जो होती हैं उनकी ट्रेनिंग्स होती हैं अलग से वो करवाते हैं, तो वो जो भी डायरेक्टरेट होते हैं वो उसके हिसाब से वो प्लान करते हैं।
1: तो सर प्रतिवर्ष वो ये समय बंधा हुआ है कि वर्ष में कभी भी बुलाया जा सकता है ट्रेनिंग है तो?
2: हाँ, ये होता है कि ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑलरेडी बताया जाता है, क्योंकि इसमें एक और चीज है जो इनके वॉलंटियर्स हैं वो कहीं ना कहीं सर्विस कर रहे हो तो उनको अपने डिपार्टमेंट से भी छुट्टी लेनी होती
1: है। हाँ जी, वही
2: तो
1: जी।
2: वो अरेंजमेंट करने के लिए ऑलरेडी उनको बताया जाता है एंड आई थिंक दे आर गिवन द चॉइस आल्सो कि आप इस दौरान से इस दौरान आ सकते हैं।
1: अच्छा।
2: तो उसमें जो है वो आके उस दौरान ट्रेनिंग का जो पार्ट होता है वो करते हैं। जैसे मुझे याद है हमारी यूनिट ट्रिवेंड्रम में थी तो हमारे साथ एक प्रिंसिपल थे वो ट्रेनिंग के लिए आए हुए थे, मतलब वेरी गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश एंड मतलब वेरी एजुकेटेड पर्सन, तो वो उस दौरान हमारे साथ रहे थे। तो ऐसा है वो कभी मतलब आके जो अपनी ट्रेनिंग उनको वो रहता है वो पूरी कर सकते हैं।
1: अच्छा, तो सर पूरा समूह को एक साथ ट्रेनिंग दी जाती है या हर व्यक्ति का अलग अलग समय होता है?
2: नहीं, इसमें जो प्रॉपर एनुअल ट्रेनिंग होती है उसमें तो सब लोग आते हैं एक साथ, क्योंकि वो जरूरी होता है, कंपलसरी होता है। फिर कुछ ट्रेनिंग ऐसी होती है जो मतलब जैसे एक ऑफिसर के लिए ट्रेनिंग है अलग जो है, उन्होंने अपना कमीशन की पूरी ट्रेनिंग कर ली है, अगर उनको किसी यूनिट के साथ ट्रेनिंग करना है वर्किंग सीखने तो वो अलग से आ सकते हैं,
1: विशेष प्रशिक्षण के लिए अलग समय दिया जाता है,
2: अलग समय दिया जाता है। लेकिन अगर पूरा आ रहे हैं तो जैसे साल का होता है तो 99% उनको इकट्ठा ही बुलाया जाता है
1: जी।
2: अब ये जो बटालियंस होती हैं जैसे कि हमने पहले जिक्र किया कि दे आर एबल टू रिलीव द रेगुलर फोर्सेस, तो उनको जो असेंशियल ड्यूटीज के लिए जो है मौका मिलता है
1: जी।
2: उनको ये सपोर्ट रहता है इनसे जो है
1: जी।
2: और टीए बटालियंस ने अभी तक जो है मतलब ऑलमोस्ट सारे वॉर्स में 62, 65, 71 में सब जगह पार्टिसिपेट किया है।
1: अच्छा।
2: इवन जो ओपवन श्रीलंका में हुआ था, ओपरक्षक पंजाब में, फिर ओपरिनो और बजरंग असम में हुए थे, हर जगह पे जो है इन्होंने पार्टिसिपेट करा है। और अभी अभी भी जो है एक्टिवली काफी यूनिट्स हैं जो सीआई ऑपरेशंस जेएनके में नॉर्थ ईस्ट में जो है अभी भी ऑपरेशनल हैं। एंड ये भी एक मैं आपको बता सकता हूँ कि जो इनका कंट्रीब्यूशन रहा है एंड उसके कारण जो है टीए पर्सनल जो है
1: जी।
2: वो गैलेंट्री अवार्ड से काफी मतलब उनको सम्मानित किया गया
1: अच्छा,
2: है। डिस्टिंग्विश्ड सर्विसेज के लिए उनको अवार्ड मिले हैं। आई थिंक ओवरऑल दे गॉट उनको कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र और इवन वीआरसी
1: अच्छा।
2: और काफी सारे जो है अदर डेकोरेशंस से ये जो है टर्टल आर्मी सम्मानित की गई है
1: जी।
2: इस समय अगर हम देखें तो इंडिया में तकरीबन 50,000 पर्सनल्स हैं जो कि एनरोल्ड हैं इसमें।
1: अच्छा, क्या बात है।
2: हाँ
1: जी।
2: और आपको याद होगा काफी सारी एमिनेंट पर्सनालिटीज ही हैं, स्पोर्ट्स पे हैं, मूवीज पे हैं, पॉलिटिशियंस हैं, इंडस्ट्रीज में हैं जो कि टीएम सर्व कर चुके हैं।
1: खिलाड़ी लोगों के ज्यादा नाम आते हैं इसमें, जैसे एमएस धोनी है, कपिल देव है
2: जी।
1: और एक्टर में देखे तो मोहनलाल जी हैं
2: जी। करेक्ट करेक्ट है ना, मोहनलाल जी हमारी मेट्रो रेजिमेंट के।
1: हाँ जी। तो सर अब मैं आपसे यही पूछना चाहती हूँ कि इसके सर्विस बेनिफिट्स क्या है टेरिटोरियल आर्मी में जाने के।
2: सबसे बड़ा तो सर्विस बेनिफिट यही है कि आपको यूनिफॉर्म पहनने मिलती है।
1: ये तो सही बात है सर, उस वर्दी का गौरव ही एक अलग ही है।
2: बिल्कुल
1: जी।
2: इसके अलावा क्या है कि जब आप टीएमएस सर्व करते हैं तो उस समय जैसे मैंने पहले बोला था यू आर एट पार विद द रेगुलर आर्मी। उनको प्रमोशंस जो होती हैं उसी तरह से ऑथराइज हैं अगर वो सर्विस कर रहे हैं। जैसे आर्मी में राशन ऑथराइज है, सीएसडी फैसिलिटीज है, मेडिकल फैसिलिटीज है आपके लिए, आपके डिपेंडेंट्स के लिए। वो जब ये एम्बॉडीड होते हैं उस दौरान के लिए या जब ट्रेनिंग कर रहे होते हैं तो उनको ऑथराइज होता है। जब ये लोग एम्बॉडीड होते हैं तो जैसे नॉर्मल आर्मी को जो लीव मिलती है, लीव एनकैशमेंट होता है, अकोमोडेशन होता है, वो सब फैसिलिटीज जो मिलती हैं वो इनको भी ऑथराइज होती हैं। जितने जैसे मेडल्स हैं, अवार्ड्स हैं जो सर्विसेज को ऑथराइज है वो इनको भी होते हैं।
1: प्रमोशंस भी उसी तरह से,
2: प्रमोशन भी उसी तरह से ऑथराइज है। उतना ड्यूरेशन अगर आपने सर्विस किया होता है तो, अगर एक जवान है अगर उसने सर्विस करी है तो उसको लांस नायक, नायक जो भी है या अफसर जिन्हें करी है तो उसको प्रमोशन मिलता है। रैंक पे डीए जो है जैसे रेगुलर आर्मी का होता है वैसे ही उनको मिलता है। स्पेशल इंक्रीमेंट्स होते हैं जो ट्रेनिंग खत्म करने के बाद जो है इनको मिलते हैं। एनुअल ट्रेनिंग कैंप्स होते हैं उसके ऊपर मिलते हैं। फिर इवन जो पेंशन होती है, ऑफिसर्स गेट द पेंशन आफ्टर 20 इयर्स ऑफ सर्विस, जेएसयूस एंड अदर रैंक्स दे गेट आफ्टर 15 इयर्स। लेकिन इसमें क्या होता है एग्रीगेट होता है जैसे टीए का, क्योंकि उनका काउंट किया जाता है एक्टिव सर्विस काउंट किया जाता
1: है, अवधि जोड़ी जाती है जब तक आपने सर्विस दी है।
2: हाँ, तो आपने जितने दिन की सर्विस दी है वो अगर आपका पीरियड पूरा हो जाता है तो दे आर एक्चुअली ऑथराइज्ड द पेंशन आल्सो। उसमें वो एक्चुअल फिजिकल सर्विस काउंट होती है, जैसे कि एक नॉर्मल रेगुलर आर्मी वाला भी करता है ना, आर्म फोर्सेस में भी जो बंदा होता है वो करते हैं, वो ऐसे ही होता है। फिर अगर उन्होंने 10 इयर्स अगर लगातार किया होता है तो आर्मी वेलफेयर हाउसिंग ऑर्गेनाइजेशन जो है उसमें जो है उनको मतलब हाउस की फैसिलिटी मिलती है। देन ग्रेच्युटी है, एक सर्विसमैन स्टेटस होता है जो रिटायर होते हैं, है ना, जो पेंशनर्स होते हैं उस तरह से ये सब चीजें उनको मिलती हैं। और कई स्टेट गवर्नमेंट्स जो होती हैं वो कैश अवार्ड्स वगैरह भी देती हैं और भी जो है उनको जॉब में भी जो है फैसिलिटीज देती हैं। बाकी जो टीए के बेनिफिट्स हैं जैसे नॉन डिपार्टमेंटल यूनिट्स हैं वो जो है उनको ग्रुप इंश्योरेंस वगैरह की फैसिलिटीज देती हैं। और अगर कोई टीए में सर्विस करते समय उसको डिसेबिलिटी होती है तो डिसेबिलिटी पेंशन का प्रोविजन होते हैं। अगर कोई फर्टिलिटी हो जाती है तो फैमिली पेंशन के प्रोविजन है। तो इस तरह से देखा जाए तो मतलब जो इंडियन आर्मी को ऑथराइज है उनको समय ऑथराइज होता है। तो I must say that it is a wonderful opportunity for the people who falls in the bracket of 18 to 42 and who are willing to serve in the uniform and excellent opportunity for them to avail it and become part of the territorial army. बाकी तो हम जितना जिक्र कर चुके हैं उससे आपको लगा ही होगा कि ये बहुत ही गर्व की बात होती है इसमें जो है रेगुलर आर्मी के साथ कंधे से कंधा मिला के जो है
1: बिल्कुल
2: काम करना।
1: बस एक अंतिम क्वेश्चन ये बनता है सर कि भारतीय सशस्त्र सेनाओं के 3 भाग हैं तो ये क्या तीनों भागों के लिए टेरिटोरियल आर्मी है?
2: नहीं, ये टेरिटोरियल आर्मी सिर्फ आर्मी में ही है।
1: अच्छा,
2: एयरफोर्स और नेवी में नहीं है।
1: तो श्रोताओं, टेरिटोरियल आर्मी के गठन का मकसद ही है देश के हर नागरिक को राष्ट्र की रक्षा का सहभागी बनाना, आपदा हो या युद्ध की स्थितियाँ, राहत हो या पुनर्निर्माण, टीए हर मोर्चे पर सेवा और साहस के साथ खड़ी रहती है। ये भारतीय सेना का वो हिस्सा है जहाँ अनुशासन मिलता है नागरिकता से और सेवा जुड़ती है शौर्य से। इसीलिए देश के कई प्रतिष्ठित नागरिक इस गौरवशाली बल का हिस्सा रहे हैं। सलाम है देश के टेरिटोरियल आर्मी के वीरों को, जो सावधानी व शूरता के मंत्र से देश की रक्षा, सेवा और सम्मान की मिसाल बने हुए हैं। और इसके साथ ही आज का कार्यक्रम हम यहीं समेटते हैं। सर, आप इस कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल हुए और आपने टेरिटोरियल आर्मी के बारे में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमसे साझा की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: थैंक यू पूर्वा जी, थैंक यू श्रोताओं, जय हिंद।
1: तो श्रोताओं, ये था हमारा कार्यक्रम हमारी सेना हमारा गर्व। इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन था संतोष कुमार वर्मा का, परिकल्पना अदिति गौड़ की, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी का और समन्वय सहयोग रहा सतीश बाथम का। और मैं थी आपके साथ आपकी अपनी रेडियो मित्र पूर्वा खले। तो अब दीजिए इस कार्यक्रम से इजाजत।

0: नमस्ते, राम राम और ओम शांति। मेरा नाम पवित्र मल्लिक और आप सुन रहे हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो रेडियो मधुबन 107.8 FM पर कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल यानी माई विलेज माई एरिया और अपना लोक भाषा में कहते हैं म्हारो गांव म्हारो अंचल। प्रोग्राम का नाम ही मेरा गांव मेरा अंचल। जिस गांव और जिस अंचल में पले बड़े और यहां तक पहुंचे वो गांव और अंचल को कभी नहीं भूल पाते, क्योंकि गांव तो स्वर्ग जैसे लगता है, मातृभूमि कहते हैं। जिस गांव अंचल में पले बड़े और उसको रिटर्न देने के लिए कभी कभी मौका मिलता है और रेडियो मधुबन इस मौका को पहुँचाता है भिन्न भिन्न प्लेटफॉर्म के माध्यम से, एक मंच के माध्यम से। तो सामुदायिक रेडियो होने के नाते सामुदायिक गतिविधि सामुदायिक तक पहुंचाने के लिए हमेशा तत्पर रहता है रेडियो मधुबन, क्योंकि सामुदायिक के लिए ये एक रामबाण जैसे सिद्ध होता है, अपना बात को रख पाते और आसपास जो गतिविधि हो रही सब तक पहुंचाते। तो आज खुशी का दिन है, राष्ट्रीय पर्व है, इंडिपेंडेंस डे यानी 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के तहत सभी श्रोता मित्रों को और जो जो प्लेटफॉर्म में इस कार्यक्रम को सुन पा रहे सभी को आज का दिवस पर शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयाँ और हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल। तो रही बात भारत का आज़ादी का जश्न चार तरफ मना रहे हैं धूमधाम से, तो सुबह से शाम तक का गतिविधि आज आपका पास रखने जा रहे हैं। तो खासकर आज प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में स्वतंत्रता दिवस को कैसे धूमधाम से मनाएं उसका कवरेज आपको रिकॉर्डिंग प्रोग्राम सुनने को मिलेगा। हमें खुशी है सभी का आवाज़ आज बारी बारी आपका पास रखने जाएंगे। तो ध्यान से हमारे श्रोता मित्र सुन रहे सभी को आज का दिन के तहत पुनः स्वागत करते हैं, धन्यवाद देते हैं और हैप्पी इंडिपेंडेंस डे प्रकट करते हैं शुभेच्छा का साथ, शुभकामनाएं का साथ, बधाइयों के साथ। तो सुनते हैं सुबह का गतिविधि, खासकर शांतिवन ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय तलेटी का गतिविधि और भिन्न भिन्न टूरिस्ट हो चाहे यहाँ के जो खास लोकल गांव और अंचल से आते हैं काम करने के लिए, सफाई डिपार्टमेंट हो चाहे कोई भी कंस्ट्रक्शन के काम में आते हैं, तो उन सभी से भी आज का दिवस को कैसे रंगारंग का माध्यम से एक भारतीय होने के नाते गर्व करते हैं। तो सुनेंगे सुबह का गतिविधि रिकॉर्डिंग प्रोग्राम शांतिवन परिसर का।
1: करुण भाई जी का स्वागत कर रहे हैं, रतन भाई जी का स्वागत कर रहे हैं, आदम प्रकाश भाई जी का स्वागत कर रहे हैं, उधर रुकमणि जी का स्वागत कर रहे हैं भाई साहब, मोहन सिंगल भाई जी, हरिलाल भाई साहब जी का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर गोल्डन स्वागत हो रहा है। हमारे बीच जयपुर से पूनम दीदी पहुंचे हैं, हम निवेदन करेंगे आपका भी पुष्पगुच्छ से स्वागत करेंगे पूनम दीदी।
2: और अभी मैं निवेदन करूंगा मंचासीन अतिथियों से कि झंडारोहण एवं राष्ट्रगान का कार्यक्रम रहेगा। हाँ, ईश्वर भाई आगे चिरंजीव लाल भाई हैं, डोरी पकड़ाएंगे,
1: अभी झंडारोहण होगा और फिर राष्ट्रगीत बजेगा। सेक्रेटरी जनरल ब्रह्मा कुमारी एवं उनके साथ सभी

मंजासेन अध्यक्षों से निवेदन है करके अपना अनुग्रहण करेंगे और अभी मैं निवेदन करूंगा मधुरवाणी ग्रुप से एक गीत प्रस्तुत करेंगे मधुरवाणी ग्रुप स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में सतीश भाई भानुभाई निवेदन है।

0: भारत माता की जय।
1: थैंक यू मधुरवाणी ग्रुप का थैंक यू। और अभी मैं निवेदन करूंगा प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेक्रेटरी जनरल आदरणीय करुणा भाई सब जी से कि आज 15 अगस्त के इस 80वें स्वतंत्रता दिवस पर आप हम सभी को एड्रेस करेंगे ब्रह्मा कुमारी जी की तरफ से। आदरणीय करुणा भाई सब जी।
2: सत्यम शिवम सुंदरम। आज हम सभी 80th इंडिपेंडेंस डे स्वतंत्र दिवस को मना रहे हैं। हम सभी जानते हैं जिन्होंने भी 1947 में अपना सर्वस्व त्याग करते हुए भारत को स्वतंत्र बनाने का निमित्त बने, जैसे हमारे महात्मा गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस आदि आदि अनेक लाखों भाई बहनों ने अपना जीवन का सब कुछ समर्पित करते हुए भारत को स्वतंत्र कराए, तो हम सभी जानते हैं। इसके अलावा भी जिन्होंने भी अपना पूरा जीवन का त्याग करने के अलावा तो अपना प्राण को भी सेवा में लगा दिए हैं, तो हम जानते हैं। तो उस समय पर जो पाकिस्तान से भारत में आते हुए ट्रेन का भी, उन सब का त्याग का भी हम आज याद करते हैं। तो आप जानते हैं, तो हम सभी अभी तक भी

0: उसी खुशी में है क्योंकि हमारा भारत आज आज़ाद हुआ है। परंतु भारत में जो हम रह रहे हैं हम सभी तो मना रहे हैं, परंतु भारतवासी सारे विश्व में जहाँ भी रह रहे हैं वो लोग भी आज विशेष रूप से मना रहे हैं। तो आप सबको, देश विदेश में रहने वाले सभी भारतवासियों को हम अत्यंत अपना मनोकामनाएं विशेष रूप से हम आज उनको सबको दे रहे हैं, शुभकामनाएं। तो इसीलिए आज एक बात हम आप सबको याद दिलाना चाहते हैं, तो जो भारत इस समय पर विश्व में एक तीसरा देश के रूप में उभरता आ रहा है, तो ऐसे ही परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने भी इस भारत को स्वतंत्र भारत किस अर्थ से है, जो भारतवासी इस समय पर जो भी रह रहे हैं तो उन्होंने जो भी विषय वासनाओं का तो समय अनुसार जो होता जा रहा था तो उसको जीतने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना 1936 से शुरू किया और एक छोटा सा ग्रुप को, बहनों के माताओं का ग्रुप को इन्होंने ट्रस्टी के रूप में बना करके अपना सर्वस्व उन माता बहनों को दे करके ये संस्था की स्थापना की। और फिर इन्होंने 14 साल तपस्या के बाद वहाँ से 1950 में भारत में आए, क्योंकि परमपिता परमात्मा भारत को फिर से राम राज्य बनाने का जो कार्य है, तो उन्होंने प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा ये कार्य करते आए थे, जिसमें हम इंद्रियों के जीत या विषय वासनाओं से के जीत हो करने का जो प्रयास करते आए हैं और जीत करके जो मनुष्य से देवता बनाने की ज्ञान को सारे विश्व में 140 देशों तक प्रचार करते हुए इस समय पर भारत विश्व गुरु के रूप में सेवा करने के लिए इन्होंने कार्य किया है। तो आज जो भी इस समय पर भारत में जो विशेष ये महोत्सव का आचरण कर रहे हैं उन सबको हम याद दिलाना चाहते हैं कि हम लोगों को भी अपना इंद्रियों जीत होते हुए भी इस भारत को रामराज्य बनाने का, विश्व गुरु बनाने का कार्य करेंगे, ऐसे आशा करते हुए मैं अपना दो शब्द समाप्त करता हूँ। ओम शांति।
1: थैंक यू आदरणीय भाई साहब जी का। कितनी ऊंची बात कही हमारे करुणा भाई साहब जी ने कि जब तक हम कर्मेंद्रिय जीत नहीं बनेंगे तब तक राम राज्य स्थापन नहीं हो सकता। नहीं तो कहीं लोभ आएगा, कहीं लालच आएगा, कहीं दूसरे विकार आएंगे और राम राज्य की हमारी कल्पना पूरी नहीं हो पाएगी। इसलिए हमें कर्मेंद्रिय जीत बनना है और वह बनते हैं हम राजयोग के अभ्यास से। मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर मृत्युंजय भाई जी से, आप एडिशनल सेक्रेटरी जनरल हैं ब्रह्मा कुमारी जी के, आज के इस शुभ दिवस पर आप भी अपनी शुभकामनाएं देंगे।
2: ओम शांति, ओम शांति। आज भारतवासियों को, बच्चे बूढ़े जवान महिला बॉर्डर में रहकर समुद्र के तट पर रहकर एनिमी को फेस करते हुए देश को रक्षा करने वाले सभी देश से बाहर रहने वाले सबको खुशी का दिन है, आनंद का दिन है और 80th एनिवर्सरी है, गणतंत्र का एनिवर्सरी है, स्वतंत्रता दिवस का एनिवर्सरी है। ऐसे दिवस पर और हर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को आगे बढ़ाने के लिए सहयोगी दे करके, जैसे हमारा आदरणीय प्रधानमंत्री जी 13वां बार आज देश को संबोधित किया, इन्होंने लक्ष्य रखा है हमारा देश को 2047 में इस भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए। परंतु 1937 में ही ब्रह्मा बाबा को शिव बाबा ने साक्षात्कार करा के देवी गुणों का धारण करो, पवित्र बनाओ, योगी बनाओ और सारे विश्व का मालिक बनो, सारे विश्व का गुरु बनाओ बाबा को। और विश्व गुरु बाबा बनेगा, हम सभी बाबा के बच्चे सारे विश्व को नया विश्व दिव्य गुणों से भरपूर, सर्व गुण संपन्नता से भरपूर, सुख शांतिमय, जहाँ युद्ध ने हिंसा ने पाप ने भ्रष्टाचार ने ऐसे भ्रष्टाचार रहित विश्व को बनाने का कार्य बच्चों को दिया है। हर बच्चे इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए आगे बढ़ते हुए कुछ ही समय के अंतराल में बाबा का साक्षात्कार करा के अर्थात हर ब्राह्मणों का जीवन एक साक्षात्कार मूर्ति बनकर उदाहरण बनकर आदर्श बनकर शक्तिशाली बनकर समृद्ध बनकर समृद्ध विश्व बनाने का कार्य में ओम शांति मंत्र सिखाएंगे। ओम शांति से विश्व शांति, विश्व शांति से विजयी बन करके, विजयी रत्न बन करके, बाबा का गले का माला बन करके विश्व को सच्ची स्वतंत्र दिलाएंगे। ऐसे दिन दिलाने वाले को बहुत बहुत बधाई बधाई, माया का दुनिया का विदाई। ओम शांति, ओम शांति,
1: ओम शांति,
2: ओम शांति।
1: थैंक यू भाई साहब, थैंक यू। और अभी परेड कमांडर हवलदार पी सत्यराव जी लीड करेंगे सिक्योरिटी गार्ड्स द्वारा भव्य परेड। प्लीज परेड कमांडर हवलदार पी सत्यराव जी, आप आर्मी में रहे हैं और अभी शांतिवन, मनमोहिनी वन, आनंद सरोवर, मानसरोवर, तपोवन के सिक्योरिटी गार्ड्स के दस्ते परेड करेंगे।
3: जय श्री मान, 57 सेकंड बाद परेड पर परेड मार्च करने के लिए अपन मान चाहता श्री मान, जय श्री मान।
4: तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज का गतिविधि जो सुबह में हुई थी उसका रिकॉर्डिंग प्रोग्राम शांतिवन परिसर से, जो कि ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का हेडक्वार्टर है, तो सुबह का गतिविधि आपके पास रखें। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद और कुछ गतिविधियां आपके पास रखने जाएंगे, लेकिन अल्प विराम के बाद सुनते रहिए मुस्कुराते रहे कार्यक्रम मेरा गाँव मेरा अंचल, खासकर इंडिपेंडेंस डे स्पेशल।
5: नमस्कार, मैं हूँ रवीना टंडन और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: बहुत खुशी का बात है और रेडियो मधुबन आज का कार्यक्रम को आपके पास रख रहे हैं और सुबह से शाम तक भिन्न भिन्न आवाज को रख रहे हैं। सबका भावना अलग है, देश हमारा जैसे भी है अभी जो स्थिति है उसी हिसाब से सरकार को भी चेताना होता है और हमें भी जागरूक होना होता है। तो इस कार्यक्रम को सजाने के लिए आज क्योंकि अगस्त 15 जो कि स्वतंत्रता दिवस हम मना रहे हैं, चार तरफ से भिन्न भिन्न आवाज को लेकर सुबह का जो शांतिवन परिसर में जो झंडावरोहण हुआ था उसका भी कवरेज आपके पास रख रहे हैं। तो हमारा साथ इस कार्यक्रम को सजाने के लिए और एक महान व्यक्तित्व है, तो भाई साहब आपको स्वतंत्रता दिवस की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, आप अपना परिचय देंगे।
1: नंदलाल तंवर, मैं टेलीफोन एक्सचेंज से रिटायर्ड हूँ, एज ए AGM हरियाणा हिसार से आया हूँ।
0: बहुत अच्छा, तो आज स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, तो आप किस तरह मना रहे और किस तरह देख रहे भारत को?
1: भारत का विकास की बात जो है वो बिल्कुल जीरो कहूँगा मैं।
0: क्या बात?
1: इसलिए कि नॉर्मल जो है सिर्फ 4-5 घराने हैं
0: जी जी,
1: उन्हीं की सेवा हो रही है, बाकी किसी की सेवा नहीं हो रही है। अगर प्रधानमंत्री साहब कम से कम जो बीच का तबका है या नीचे इनका भी इनके बारे में कुछ सोचा जाए। अभी हवाई जहाजें चला रही हैं, एरोड्रम बड़े बड़े बना दिए हैं, ट्रेनें फास्ट चला दी है, सुपर फास्ट चला दी है ये, लेकिन गरीबों के लिए जनरल में कोई भी अभी तक फैसिलिटी नहीं दी। सो स्पेशली सीनियर सिटीजन जिनको कोरोना से पहले 50% रेलवे से डिस्काउंट मिलता था वो भी अब विड्राल हो चुका है। कई बार आवाज़ उठी है लेकिन उसके बावजूद उसको रिस्टोर नहीं किया गया अभी तक।
0: लेकिन प्रधानमंत्री हमारा भाई साहब जो है पूरा कुमार है, शादी नहीं कि मतलब उनके आगे नहीं कि कोई पीछे नहीं, फिर भी विकसित भारत के लिए जो तत्पर रहते हैं और देश का नाम रोशन करने के लिए चाहते हैं, लेकिन आप जो कह रहे हैं जो भारत जो दिखाई दे रहा है वो चीज़ नहीं दिखाई दे रहा, तो इसका राज क्या है और किसको चाहते हैं? ऐसे कौन व्यक्ति जो भारत को स्वर्ग जैसे बना सकता है, माने भ्रष्टाचार मुक्त हो चाहे व्यसन मुक्त हो, कौन ऐसे व्यक्ति है जो आपका नज़र में आ रहा है?
1: बात यह है कि आपने जो ये कहा कि हमारे प्रधानमंत्री अभी मतलब शादीशुदा नहीं है, बीके कह दीजिए,
0: बाल ब्रह्मचार्य जैसे,
1: लेकिन वो नहीं है, शादीशुदा है, वाइफ उन्होंने अभी तक छोड़ी हुई है। जो अपनी वाइफ के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं
0: जी जी,
1: अभी उन्होंने उसके लिए कुछ भी नहीं किया बेचारी के लिए, तो वो अभी अब मैं क्या कहूँ कि विकसित भारत के लिए क्या कुछ होगा। बेटर प्रधानमंत्री जी कम से कम आगे जो टाइम बचा है आपके पास उसमें कुछ कल्याण की नीतियाँ लाए तो बात बनेगी, अदरवाइज सिर्फ ही भाषणबाजी में या ऊपर का दिखावा में उसमें कुछ बनने वाला नहीं।
0: लेकिन
1: है।
0: भारत को तो आगे बढ़ाने के लिए जैसे 3 तलाक है, राम मंदिर है, बहुत कुछ मुद्दा को लेकर आए हैं तो उसको भी सफल किए, तो ये चीज़ आपको तो दिखाई देना चाहिए और सभी श्रोता मित्र को दिखाई देना, फिर भी क्यों आप बोल रहे भाई हमारा भारत विकसित के लिए जो आवश्यकता है वो नहीं हो रहा है, क्योंकि गरीब के बच्चे गरीब होकर रह रहे और अमीर के बच्चे अमीर होते जा रहे, ये तो दिखाई दे रहा है, लेकिन आपका व्यू में क्या होने से ये भारत हमारा विश्वगुरु बनेगा?
1: अभी आपने राम अयोध्या मंदिर के बारे कहा, बहुत अच्छा कि बहुत अच्छी बिल्डिंग बना दी, अच्छा किया बनाया, लेकिन अब देखिए कि वहाँ कितना भ्रष्टाचार हुआ है,
0: चंदा चोरी
1: कितना हुआ है,
0: और इसके बाद जो दान पेटी से भी
1: पैसा निकाले, और जो मेन इसमें दोषी है उन तीनों को तो हटाया जा रहा है, उनका कोई नाम नहीं है, और जो कि मेरे ख्याल में वो 7 आदमी जिन्होंने कहा भी पकड़े गए हैं उन पर एक्शन हो रहे हैं, उन 7ों का रोल उसमें है ही नहीं।
0: कितना लोग को पकड़ते रहेंगे और एक कितना दुनिया मतलब सभी जगह में ऐसे हो रहा है तो क्या करेंगे?
1: मैं ये कह रहा हूँ कि आप देखिए राम मंदिर का जो ट्रस्ट है वो किनका है, वो किनका बनाया और क्या उनका बेनिफिट किनको हुआ है, उससे ही सोच लीजिए। क्या आप ये सोच सकते हैं कि मैं नहीं समझता कि भारत विकसित के बारे में
0: नाम से होता काम में नहीं इसे,
1: हाँ नाम का झंडा उठाने के वो चल रही है।
0: चलिए बहुत बहुत धन्यवाद इस तरह कार्यक्रम को सजाए, हमारा श्रोता मित्र भी सुन रहे और सभी महसूस भी कर रहे हैं, जो दुनिया की हालत कई किसको बताना नहीं पड़ता और खुद देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं और दुनिया का किस तरह गति जा रहा है और क्या क्या हो रहा है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज का दिन में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होने से तो हम तो आगे बढ़ेंगे ना, खाली पॉजिटिव करेंगे तो क्या होगा, नेगेटिव भी चाहिए, तो और कुछ कहना चाहेंगे सर?
1: मैं एक जो आपने कहा कि 15 अगस्त के लिए, मैं मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि हमारा जो मधुबन रेडियो है जिस रोज चालू हो रहे होने से पहले हमने, मैं भी उस पार्टी में था कि हमने सर्वे किया था गाँव का भी क्या कुछ लोगों की डिमांड है क्या कुछ है। तो आज 16 साल चल रहा है मधुबन रेडियो को, और मैं बाबा से यही कहूँगा, हमारे शिव बाबा से, कि इसको और ज़्यादा उन्नति से उन्नति ऊपर से ऊपर जाए, ताकि लोगों की आवाज़ पब्लिक तक इसी मधुबन रेडियो के थ्रू पहुँचाया जाए।
0: बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर प्रस्तुति के लिए और जानकारी दी। और रेडियो मधुबन से पहले से जानकारी था, और जब भी आते रेडियो मधुबन से अपना बात को रखते हैं तो ये एक खुला मंच, मैंने जैसे कहते रेडियो मधुबन आपका रेडियो है, आपके द्वारा संचालित होता है फॉर द कम्युनिटी, ऑफ द कम्युनिटी, बाय द कम्युनिटी, ये रेडियो स्टेशन। तो आज जन जन तक सभी पॉजिटिव नेगेटिव जो कि देश के प्रति जो आवश्यकता है, जो आवश्यकता नहीं वो चीज़ को रख रहे, क्योंकि सबका बात को रखने के लिए हक है, क्योंकि भारत है तो भारत देश की महान है। तो वंदे मातरम, बोलिए वंदे,
1: वंदे मातरम, वंदे मातरम,
0: भारत माता की जय, सबका जय हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद, लेते हैं छोटा सा ब्रेक।
2: महिला स्वयं में है शक्ति, और इसलिए आपकी सुरक्षा है आपके हाथ ही। कभी भी कहीं भी अगर आपको किसी प्रकार के खतरे का आभास हो तो डायल करिए 1090 या 1091। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

0: कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, आज तो बहुत खुशी का दिन है, आज अगस्त 15 है और खास स्वतंत्रता दिवस, शांतिवन परिसर से आपको लाइव कवरेज दे रहे और हमारा सभी को लेकर हमारा शांतिवन भरपूर होता है, चाहे लेबर हो चाहे पंडित हो, सभी को चांस मिलता है। तो आज इस कार्यक्रम को सजाने के लिए बहुत दूर से हमारा सफाई कर्मी रहते हैं, तो सफाई का बिना कुछ हो नहीं सकता, जहाँ स्वच्छता है वहाँ ईश्वर वास करते हैं, इसलिए स्वच्छता जरूरी है। बर्तन और झाड़ू और पोछा, ये तीन रत्न है, जो झाड़ू करते हैं पोछा करते हैं वो रत्न है। तो हमारा साथ एक महिला है तो कि खड़ात ग्राम से आती है, तो अपना परिचय देंगे, अपना नाम बताइए।
1: रूपी दीदी नाम।
0: रूपी दीदी कहाँ से? रूपी दीदी आप?
1: जोड़िया पल्ली से।
0: जोड़िया पल्ली से। कितने दिन से यहाँ पर सेवा दे रहे हैं?
1: हमको 10 साल हो गए।
0: 10 साल बहुत खुशी रहा, 10 साल हाँ। में कोई दूसरा जगह नहीं जा रहे?
1: नहीं, इधर है हम।
0: क्यों यहाँ पर? कितना क्या आपको मिलता है ज्यादा?
1: मतलब इधर से ये काम करने में सब सेफ्टी रहती है, मतलब बाबा के घर में ठीक रहता है।
0: ठीक रहता है, दूसरा जगह में थोड़ा भले पैसा ज्यादा देगा लेकिन उसका शांति नहीं है।
1: शांति नहीं है
0: लेकिन यहाँ पर शांति है, क्यों? काम भी ठीक है। तो आज स्वतंत्रता दिवस है, सभी स्वतंत्र है, भारत हमारा आजादी हुआ था। तो आप कहाँ तक पढ़ाई किए थे? पढ़ाई किया था कुछ?
1: नहीं, पढ़ाई नहीं किया था।
0: लेकिन फिर भी जानते हैं?
1: सब जानते हैं, ऐसे मतलब बाबा के घर में ठीक है, काम करते हैं तो मतलब दिमाग।
0: तो आज जो सभी खुशी मना रहे तो उसके बारे में क्या जानते? आपका बच्चे तो स्कूल में जाते होंगे ना?
1: जाते हैं ना।
0: तो आज बच्चों कैसे तैयार करके भेजे?
1: आज तो भेजे ना, डांस वेंस करेगा बच्चा।
0: डांस करेगा? क्यों डांस करेगा? आज का दिन
1: आज देश आजाद हो गया।
0: आजाद हुआ, बस इतना शब्द तो बोला हमारा। हाँ, क्या नाम बताए?
1: रूपी दीदी।
0: रूपी नाम बताए, बहुत बहुत धन्यवाद। आज का कार्यक्रम को सजाए और कुछ गीत वगैरह गाते हैं? रूपी तुमको कुछ गीत आता है?
1: अभी तो हमारा मारवाड़ी में गीत गाते हैं।
0: एक गीत सुनाओ ना, क्योंकि हमारा श्रोता सुन रहे हैं आपको, जो रूपी जानते हैं, जो डायमंड हॉल में आप सेवा देते हैं ना, यहाँ भगवान आते हैं डायमंड हॉल, बहुत खुशी का बात है। तो एक गीत सुनाएंगे मारवाड़ी में, चाहे शादी में हो, चाहे विदाई में हो, चाहे कोई भजन। अच्छा, दादी माँ को जानते? दादी माँ को देखें?
1: हाँ, दादी माँ को, मतलब दादी माँ प्रकाश मणि दादी को तो नहीं देखा, जो बाबा आता था गुंजन दादी को देखा,
0: दादी को देखे,
1: रतन मोहिनी दादी को देखा, ये जानकी दादी को देखा।
0: तो अच्छा बात बताए, लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद और कुछ प्रस्तुतियां सुनेंगे, लेकिन अल्प विराम के बाद सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल, खासकर स्वतंत्रता दिवस अगस्त 15 के तहत सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, अपना रूपी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। लेते हैं छोटा सा ब्रेक।

0: नमस्कार, मेरा नाम है अमन वर्मा और इस समय आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और मैं इतना कहना चाहूँगा कि आपका अपने घर पर कोई इंतज़ार कर रहा है, इसलिए कृपया हेलमेट लगाकर अपनी मोटरसाइकिल चलाएं, याद रखिएगा।
1: नमस्ते, राम राम और ओम शांति। आज हमें बहुत खुशी है क्योंकि आज खुशी का दिन है, राष्ट्रीय पर्व है, इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त। तो भारत आज़ादी का उत्सव मना रहे, आज़ादी मतलब स्वतंत्र, सभी चाहते हैं स्वतंत्र, भारत भी स्वतंत्र है। तो इस संदर्भ में हमारा आज का कार्यक्रम को साझा निकले हमारे साथ महान अनुभवी है, तो उनको लेते हैं। सर, आपको स्वागत करते हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर, और खास कर ये कम्युनिटी रेडियो है कम्युनिटी के लिए। तो आप कम्युनिटी से आए हैं तो शांतिवन परिसर में, और आप आज का दिन को कैसे देखते, क्योंकि शाम को सभी श्रोता सुन रहे हैं, तो आप अपना परिचय दीजिए और स्वतंत्रता दिवस के तहत आप क्या महसूस कर रहे हैं और भारत को किस नज़र से देखते हैं, अपना परिचय।
2: आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम हिमांशु गर्ग है, मैं मंडी आदमपुर हिसार से आज शांतिवन में आया हूँ। और सबसे पहले मैं 80वें स्वतंत्रता दिवस की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। जैसा कि हमने पिछले सालों में देखा है और आगे भी जो रोड मैप हमें दिखाई दे रहा है कि भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा और उस चीज में हम लोग भी सहयोग करेंगे, तो इससे देश की तरक्की और बढ़ेगी। तो सभी को एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, ओम शांति।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर प्रस्तुति के लिए। और आजादी का जो जश्न सुबह से शाम आपका पास रख रहे हैं, तो हिसार से भी हमारे साथ इस कार्यक्रम को साझा रहते, बहुत बहुत धन्यवाद।

0: चलिए, बहुत खुशी का बात है। और आज हम सुबह से शाम तक मना रहे इंडिपेंडेंस डे, जो कि ऑस्ट्रिया स्वतंत्रता दिवस। इस तरह कार्यक्रम में सभी का आवाज एक गुलदस्ता की तरफ मना रहे हैं। तो भारत देश महान है और देशभक्ति में ओतप्रोत होकर, चाहे सुरक्षा कर्मी हो, चाहे हमारा जो निवासी, भारत निवासी, सभी को धन्यवाद देते हैं, शुभेच्छा देते हैं। तो आज इस कार्यक्रम को सजाने के लिए शांतिवन परिसर से ही आपको कवरेज दे रहे हैं। तो हमारा साथ बहुत सारा टूरिस्ट है और भाई बहन भी है। तो हेलो करते हैं, आज का दिवस के तहत सबको शुभकामनाएं। सर, आपका परिचय दीजिए।
1: मेरा नाम सूर्यवीर सिंह है और मैं पूरे परिवार के साथ आज यहाँ आया हूँ। और 15 अगस्त का दिवस है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ, बहुत अच्छी तैयारी कर रखी है, बहुत अच्छा वातावरण है। और
0: सर, विकसित भारत जो नाम सुनते, भारत जो नाम सुनते हैं, आजादी, स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस, ये जो शब्द है उसमें सब कुछ समाया हुआ है। सब चाहते स्वतंत्रता, हम भी स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट, किसके ऊपर डिपेंड नहीं रहे। तो आज का दिवस को सार्थक करने के लिए हमारा साथ और एक मैम भी। मैम, अपना परिचय देंगे। हेलो, अपना परिचय देंगे कहाँ से?
2: जी, मेरा नाम प्रियंका वर्मा है, मैं पाली जिले से आई हूँ। और मुझे यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ही शांत लगा, बहुत साफ सफाई बहुत अच्छी है यहाँ की। और आज हम सच में बहुत इंडिपेंडेंट फील कर रहे हैं यहाँ के, और यहाँ के लोग भी बहुत शांत है और बहुत कोऑपरेटिव है।
0: और क्या सीख लेकर जाएंगे, क्योंकि इतना शांत परिवेश में भारत को ऐसे दुनिया चाहिए। एक मॉडल आपको देखने को मिल रहा है, स्वर्ग का मॉडल है शांतिवन, है ना? तो शांत सफाई सब कुछ में यहाँ पर है। तो आप इसको क्या कहना चाहेंगे, भारत को इस तरह करने के लिए, मैंने एक विश्व गुरु तक पहुंचाने के लिए, भारत को महान बनाने के लिए, इस तरह स्वच्छता, सादगी और दिव्यता और आध्यात्मिकता कितना आवश्यकता है, आप महसूस कर रहे हैं?
2: जी बिल्कुल, मैं तो यही चाहती हूँ कि जिस तरह यहाँ के लोग आपस में मिलजुल के रहते हैं, आपस में सहयोग से रहते हैं, तो सारे देश भर के वासी भी इसी तरह मिलजुल के रहे, आपस में भाईचारा रखे, बस मेरी यही इच्छा है।
0: लेकिन हम सुनते थे श्री लक्ष्मी श्री नारायण, लक्ष्मी नारायण कहते, तो नारायण और लक्ष्मी नहीं कहते, श्री लक्ष्मी श्री नारायण, सीता राम को, सीता पहले, तो नारी को आगे बढ़ाएंगे तो हमारा भारत भी आगे बढ़ेगा। तो इसलिए शुरू में सत्य युग में श्री लक्ष्मी थे, लेकिन आज भी हमारा बहन आगे बढ़ रहे, तो भाई को आगे चांस देते ना, आप खुद आगे बढ़ते।
2: बिल्कुल, ये मुझे पूरा सपोर्ट करते हैं, मेरे किसी भी चीज को लेकर ये मेरा पूरा सहयोग करते हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं।
0: नारायण कहते नारी लक्ष्मी को आगे बढ़ाएंगे और लक्ष्मी कहते नारायण को आगे बढ़ाएंगे, दोनों का सहयोग चाहिए।
2: नहीं, दोनों का बिल्कुल बराबर योगदान होना ही चाहिए, चाहे वो नारायण हो या लक्ष्मी हो,
0: पुरुष हो चाहे स्त्री,
2: पुरुष हो या चाहे।
0: धन्यवाद सुंदर प्रस्तुति के लिए।
3: जय वंदे मातरम,
0: वंदे
3: वंदे मातरम,
2: जय
0: जय जय गान का साथ हमारा साथ गोविंद भाई भी है। तो गोविंद भाई, वंदे मातरम,
4: वंदे मातरम, जय भारत, जय भारत, भारत माता की जय।
0: और क्या कहना चाहेंगे हमारे श्रोता मित्रों को, क्या वार्ता रहेगा आज का दिन, क्या रखना चाहिए?
4: विश्व एक वसुदेव कुटुंब वाला परिवार है, हमारा भारत भी वैसे ही वसुदेव कुटुंब वाला परिवार है। सारे विश्व के एक एक भाई कण जो भी है, वो सब एक दूसरे मिलके रहे, खुशी से ऐसे ही सदा फ्रीडम महसूस करते रहे। आज स्वतंत्र दिवस है, आज भारत का स्वतंत्र दिवस मना, बुराइयों से भी और भी जो भी व्यसन मुक्ति व्यसन है, उस व्यसनों से हम सब मुक्त होना चाहते हैं। तो आज के दिन प्रतिज्ञा करें, हम ये व्यसनों से दुर्गुण में मना परतंत्र से दूर होके, हमारे स्वतंत्र जैसे कहते हैं, हमारे अंदर भी ऐसे 5 विकारों के, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये जो इसे स्वतंत्र लेके हम जीवन भर अपनाएंगे। इसलिए जय भारत कह के भारत भूमि स्वर्ग कहलाएंगे, ऐसे ही इसी शुभ भावना से जय हिंद जय भारत।
0: जय हिंद जय भारत को साथ हमारा साथ एक माताजी, माताजी क्या नाम है आपका?
5: कमला माता।
0: कमला माता कहाँ से आए?
5: हम चंडीगढ़ इंदौर से आए।
0: इंदौर से आए। हाँ। और क्या कहना, आज खुशी लग रहा है?
5: हाँ, बहुत खुशी लग रहा है,
0: खुशी का दिन है, भारत हाँ। आजादी हुआ था।
5: हाँ, हाँ, बहुत खुशी हाँ। लग रहा
0: है। क्या नाम है?
6: लक्ष्मी। मैं
0: कहाँ से?
6: इंदौर से।
0: इंदौर से। और कितना साल से ज्ञान में?
6: 10 साल से।
0: क्या आज पूरा स्वतंत्र लग रहा है?
6: लग रहा है।
0: सुबह में क्या क्या देखा है? सुबह से देखा, प्रोग्राम देखा?
6: हाँ, उधर नहीं गए, झंडा अंदर
5: हमने पूरा देखा, पूरा देखा, पूरा देखा,
0: पूरा देखे। और ऐसे होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, लेते हैं छोटा सा ब्रेक।

0: ये हंसते रहिए। आप सड़क पर चलते समय अपनी गाड़ी को कंट्रोल रखें और अपनी गाड़ी को धीरे धीरे चलाएं और हमेशा हेलमेट पहनते रहिए।
1: रेडियो मधुबन।
2: कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आप सब सुन पा रहे, खासकर स्वतंत्रता दिवस इंडिपेंडेंस डे सुबह से शाम तक आपका पास पहुंच रहे, तो आज कम्युनिटी से भी ले रहे हैं और शांतिवन परिसर से भी ले रहे हैं, क्योंकि ईश्वरीय विश्वविद्यालय और राज के विद्यालय का तो हमेशा लेते हैं, लेकिन आज ईश्वरीय विश्वविद्यालय का जो गतिविधि खासकर इंडिपेंडेंस डे के तहत 15 अगस्त को मना रहे धूमधाम से, और सभी अपना बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे और अपना दिल का बात देशभक्ति में ओत प्रेत होकर अपना भारत को महान बनाने के लिए तत्पर रहते और खुद महान बन रहे हैं। तो इस कार्यक्रम को सजाने के लिए आज शांतिवन परिसर से ही हमारा जो राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी संदेश दीदी, जिसको हम संदेश दीदी के नाम पे जानते हैं, रुक्मण दीदी को स्वागत करते हैं आज का दिन में, खासकर स्वतंत्रता दिवस। दीदी जी, आपको ढेर सारे शुभकामनाएं और हमारा श्रोता मित्र जो सुन रहे हैं इस तरह कार्यक्रम को, क्योंकि हमेशा ये इस आसपास अंचल को एक मंच देता है रेडियो मधुबन, तो सामुदायिक से हम प्रस्तुतिकरण करते हैं, तो आज हमें खुशी है आज का दिन में आपको स्वागत करते हैं। श्रोता मित्र को क्या कहना चाहेंगे, स्वतंत्रता जिसको हम आजादी कहते हैं, इंडिपेंडेंस कहते हैं, तो उस संदर्भ में आप तो संदेश लेकर आते हैं और भारत को कैसे देखते हैं आगे जाकर, भारत कैसे विश्वगुरु बनेगा, भारत कैसे महान बनेगा, और आज का दिन में आपको स्वागत करते हैं, आप अपना परिचय के साथ।
3: ओम शांति।
2: ओम शांति।
3: आज विशेष 15 अगस्त का दिन है, स्वतंत्रता दिवस कहें। ऐसे तो दुनिया के हिसाब से स्वतंत्रता दिवस हम उस रीति से मनाते हैं कि हमारा भारत अंग्रेजों से अलग हुआ, क्योंकि जो कुछ समय कुछ साल पहले भारत 47 के पहले भारत नहीं था, एक ही अंग्रेजों का राज चला। जब भारत आजाद हुआ, ब्रिटिश गवर्नमेंट चली गई और भारत स्वतंत्र हो गया, तो ये तो हम सभी के लिए बहुत खुशी की बात है। और हमारे बापू गांधी जी भी भारत में राम राज लाने के लिए बहुत प्रयत्न किया, उन्होंने अपना जी जान अनेक आत्माओं की अनेक की बलिदान इस भारत भूमि पर हुआ। पर हम तो कहेंगे कि विशेष जो सच्ची कुर्बानी कहें, सच्चा बलिदान कहें, भले हम ब्रिटिश गवर्नमेंट अंग्रेजों से स्वतंत्र हो गए हैं, पर हम स्वतंत्र तभी हो सकते हैं जब हमारे अंदर जो अनेक प्रकार की बुराइयां हैं, कमियां हैं, दोष हैं, उन सभी चीजों से हम निर्दोष बनेंगे। उन चीजों को हम अपने अंदर से, जैसे कहें काम क्रोध लोभ मोह अहंकार नशा अवमान देह अवमान, इन विकारों का, पुरानी चीजों का, इन बुराइयों का हम विशेष रूप से जब इनको स्वाह करेंगे, बलिदान करेंगे, खत्म करेंगे, तभी हमारे देश में सच्ची शांति कहें, सच्ची स्वतंत्रता कहें, तभी आ सकती है। तो इसलिए हम सभी अपने जीवन में लक्ष्य रखें, मुझे अपना जीवन इतना ऊंच श्रेष्ठ बनाना है जो मैं एक भारत के लिए अपना बलिदान कहें, बुराइयों का दान कहें, बलिदान मैं कर सकूं। और विशेष वर्तमान समय हमारे ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में नशा मुक्ति का जो प्रोग्राम चल रहा है, जो नशा मुक्त भारत, क्योंकि हम देखते इस नशा के कारण आज मनुष्य आत्माओं की दशा बहुत खराब हो गई है। विशेष राजस्थान में, पहले बिहार में भी थी, कई स्थानों पर, फिर भी नशा मुक्ति का अभियान हमारे सारे भारत वर्ष में चल रहा है। पर हम तो कहेंगे कि मेरे को एक आसाम की कहावत याद आती है। जब मैं 1973 में आसाम गई थी तो वहाँ भी बहुत आसाम में ठंडी होने के कारण शिलोंग में आसाम में लोग शराब बहुत पीते हैं। तो कोई कारण से मैं कोई सेवा स्थान पर गई, थोड़ी शाम हो गई थी, वहाँ तो 3-4 बजे से अंधेरा हो जाता है। तो वहाँ के लोग हमको कहने लगे कि शाम सूर्य अस्त और शराबी मस्त, ये वहाँ की लोग की भाषा थी, सूर्य अस्त और शराबी मस्त। तो हाँ, मैं देखती थी सुनती थी, पर मैं वर्तमान समय जब शांतिवन में अभी हम 20-21 साल से यहाँ रहते हैं और मैं देखती हूँ कि ये जो लत है, ये जो संस्कार है, जो आदतें हैं, ये बहुत खराब है। हम तो देखते परिवार को, अपने बच्चों को, अपनी वाइफ को, समाज को, हम इस नशा के कारण हम दूर हो जाते, अलग हो जाते हैं। तो हम तो यही आज के दिन विशेष आप सभी से आग्रह कहें, अनुरोध कहें, विनती कहें कि आप सभी विशेष आज के दिन हर एक अपने आप से प्रतिज्ञा करे, मुझे नशा मुक्त बनना है। और यही हमारा सबसे अच्छा, सबसे बड़ा बलिदान कहे, तभी हमारा भारत विश्व गुरु कहलाएगा। और जिसकी सपना हमारे बापू गांधी जी देखते थे, सुनाते थे, तो हम सभी को ऐसे भारत को स्वर्ग बनाने के लिए, स्वर्ग कहें, सोने की चिड़िया भारत को कहा जाता है, ऐसी दुनिया को लाने के लिए हमें अपनी बुराइयों का, बुरी आदतों का, बुरे संस्कारों का बहुत बलिदान करना पड़ेगा। यही विशेष आज के दिन हमारी विशेष सच्ची सच्ची स्वतंत्रता है। ओम शांति, ओम शांति,
2: ओम शांति, ओम शांति। और सही में दीदी ने अपना दिल का उद्गार और भारत को किस नजर में देखते हैं, और जब नशा मुक्त होगा तो भारत सही मायने में स्वतंत्रता होगा, क्योंकि हम नशा से परतंत्र नहीं होंगे, क्योंकि नशा नाश की जड़ है। तन मन और धन पूरा क्षति होता है, सम्मान भी जाता है। तो दीदी का जो भाव है, कोई भी नशा नहीं करे, खासकर जो हानिकारक है, जो नशीले पदार्थ है, जैसे गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, खासकर शांतिवन परिसर में तो नहीं होता है। भाई बहन पूरा अपना राज्य का द्वारा अपना बुराइयों को त्याग करते हैं, लेकिन हमारा श्रोता मित्र जो जो भी प्लेटफॉर्म का माध्यम से, एफएम का माध्यम से, इंटरनेट का माध्यम से, यूट्यूब का माध्यम से, लिंक का माध्यम से और आप एप्लीकेशन का माध्यम से सुन रहे, तो हमारा ये शुभ संदेश दीदी का, जे नशा मुक्त रहे परिवार को और खुद को, तब जाकर सच्ची स्वतंत्रता मनाएंगे। तो आज का शुभ अवसर पर सुबह से शाम तक आपका पास भिन्न भिन्न आवाज को रख रहे हैं, तो संदेशी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आज का कार्यक्रम को सुंदर रूप में सजाए, हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी बना दिए। हमारे श्रोता मित्र भी आज खुशी महसूस कर रहे हैं और आज मौका मिला, मौका का फायदा दीदी को भी मिला। तो दीदी का प्रेरणा में आजकल गाँव और अंचल में भी जब जाते हैं रेडियो मधुबन का प्रोग्राम को लेकर, दीदी का बहुत योगदान रहता है, चाहे सहायता क्षेत्र में चप्पल हो, चाहे कोई भी आवश्यकता जरूरतमंद व्यक्ति को देते हैं, जो जिसका द्वारा उनको दुआएं इनडायरेक्टली मिलता है। भले रेडियो मधुबन इस तरह कार्यक्रम को लेकर दीदी का जो संकल्प है, चाहे ठंडी का टाइम में कपड़ा हो, चाहे गर्मी का टाइम में जो आवश्यकता चीज को दीदी स्व इच्छा से खुद बुलाकर रेडियो मधुबन को देते हैं, जिसका चलते आपका पास हम पहुंच पा रहे। तो आज का दिन में सभी को नाम का सा धन्यवाद देते हैं सुंदर प्रस्तुति के लिए। आज के लिए हमें दीजिए इजाजत, फिर कल मिलेंगे इसी वक्त इसी समय और किसी बात को लेकर। यह था खासकर स्वतंत्रता दिवस के तहत शांतिवन परिसर का गतिविधि, सुबह से शाम तक सभी का आवाज को रखे। तो सभी को धन्यवाद, आभार। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत, और भारत माता की जय। भारत माता की, हमारे दीदी भी बोलेंगे भारत माता की
4: जय।
2: मेरे भाई कहाँ गए? भारत माता की
5: जय।
2: जय जय का साथ आज का कार्यक्रम यहीं पर रखते हैं, फिर कल मिलेंगे इसी वक्त इसी समय। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल, रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। अच्छा, सभी को नाम का साथ धन्यवाद।

श्रोताओं, आज हम उन प्रख्यात अमर क्रांतिकारी के बारे में बात करने जा रहे हैं जिनका नाम पूरा देश गर्व के साथ लेता है। वो महान क्रांतिकारी थे शहीद सरदार भगत सिंह। 20वीं शताब्दी में भारत की आजादी के लिए दो विचारधाराएं काम करती थीं। एक तो थी गांधी जी की अहिंसावादी विचारधारा और दूसरी विचारधारा थी सशस्त्र क्रांति की, जिसका सूत्र 1857 से जुड़ा हुआ है। जब स्वतंत्रता संग्राम आरंभ हुआ, उसके साथ साथ देश में कुछ ऐसे क्रांतिकारियों की एक श्रेणी भी उभर रही थी जिसका प्रतिनिधित्व कर रहे थे सरदार भगत सिंह। क्रांतिकारी विचारधारा का परिणाम कुछ भी रहा हो, परंतु ये बात तो निश्चित रही कि इससे देशवासियों को प्रेरणा मिली और देश को स्वतंत्र करवाने और संघर्ष में भाग लेने के प्रति देशवासियों का उत्साह भी बढ़ा। भगत सिंह इस भावना के प्रेरक आदर्श रहे हैं। आज हम इन्हीं अमर शहीद सरदार भगत सिंह की बातें करेंगे।

आज हम बात कर रहे हैं प्रख्यात क्रांतिकारी अमर शहीद सरदार भगत सिंह की, जिन्होंने जिस निर्भीकता से अपना कार्य आरंभ किया वो अपने आप में एक मिसाल है। सरदार भगत सिंह का पूरा परिवार देश सेवा के काम में लगा था। जब भगत सिंह का जन्म हुआ तो उनके पिता सरदार किशन सिंह देश प्रेम के कारण सरकारी जेल में थे। चाचा सरदार अजीत सिंह को पहले से ही देश निकाला दे दिया गया था। भगत सिंह का जन्म सितंबर 1907 में लायलपुर जिले के बंगा ग्राम, जो अब पाकिस्तान में है, यहीं हुआ था। सरदार भगत सिंह के जन्म पर उनके पिता सरदार किशन सिंह को अपने बेटे का मुंह देखने के लिए जेल से कुछ दिन के लिए छुट्टी मिल गई थी। ऐसे हालात में भगत सिंह का जन्म हुआ। भगत सिंह की प्रारंभिक शिक्षा गाँव में ही हुई और बाद में उन्हें लाहौर पढ़ने के लिए भेज दिया गया। सन 1921 में जब असहयोग आंदोलन चला तो उन्हें नेशनल कॉलेज में भर्ती करवाया गया, जहां पंजाब केसरी, लाला लाजपत राय और भाई परमानंद आदि देशभक्त नेता पढ़ाया करते थे। क्योंकि गांधी जी के आह्वान पर अनेक छात्रों ने सरकारी कॉलेज छोड़ दिए थे, इनके साथ पढ़ने वालों में क्रांतिकारी सुखदेव भी थे, जिन्होंने सदा देश की आजादी के लिए क्रांति के कार्यों में भगत सिंह का साथ दिया था। ये कार्यक्रम यूं ही जारी रहेगा इस देशभक्ति गीत के बाद।

90.8 MHz पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद से। ये कार्यक्रम हमने केंद्रित किया है अमर क्रांतिकारी शहीद सरदार भगत सिंह पर। श्रोताओं, भगत सिंह के एक बड़े भाई जगत सिंह थे। उनकी 11 वर्ष की आयु में मृत्यु हो जाने से माता पिता दुखी रहने लगे और भगत सिंह उदास रहने लगे। जब भगत सिंह कॉलेज में पढ़ रहे थे तो माता पिता ने उनका विवाह करने का निश्चय किया। तब भगत सिंह घर से भागकर दिल्ली आ गए और घर वालों के लिए एक चिट्ठी छोड़ आए कि मैं विवाह नहीं करना चाहता, इसीलिए जा रहा हूँ, चिंता ना करें। और दिल्ली आकर भगत सिंह दिल्ली के ही दैनिक अर्जुन में संवाददाता के रूप में काम करने लगे। कुछ दिन बाद वे कानपुर चले गए और गणेश शंकर विद्यार्थी के दैनिक प्रताप में काम करने लगे और यहीं उनकी भेंट क्रांतिकारी बटुकेश्वर दत्त से हुई। उन्हीं दिनों गंगा यमुना की भयंकर बाढ़ से कानपुर में जबरदस्त हानि हुई थी। उस समय इन दोनों युवकों ने दिन रात एक कर बाढ़ पीड़ितों की सेवा की और तब यही महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद से भी उनकी मुलाकात हुई। ये कार्यक्रम यूं ही जारी रहेगा इस देशभक्ति गीत के बाद।

हम बात कर रहे हैं अमर शहीद सरदार भगत सिंह की। देश की राजनीतिक स्थिति और ब्रिटिश सरकार के दमन से सरदार भगत सिंह का ये विश्वास दृढ़ होता जा रहा था कि देश को स्वतंत्र कराने के लिए शक्ति और क्रांति का सहारा लेना चाहिए, और यही कारण रहा कि उन्होंने 1924 में नौजवान भारत सभा की स्थापना की। भगत सिंह, सुखदेव और भगवती चरण वर्मा ने अपने रक्त से सभा के प्रतिज्ञा पत्रों पर हस्ताक्षर भी किए। अपने नौजवान सभा के सदस्यों की परीक्षा लेने के लिए जलती हुई मोमबत्तियों पर 20 मिनट तक हाथ रखा, और जब मास जलकर नीचे गिरने लगा तो साथियों ने जबरदस्ती सरदार भगत सिंह का हाथ खींचा था। ऐसे बहादुर और अपनी बात के पक्के थे अमर शहीद सरदार भगत सिंह।

आज हम बात कर रहे हैं अमर शहीद सरदार भगत सिंह की। श्रोताओ, जब साइमन कमीशन भारत आया तो सभी जगह उसका विरोध किया गया, काले झंडे दिखाए गए। लाहौर में भी निहत्थी भीड़ द्वारा प्रदर्शन करने पर पुलिस ने बर्बरतापूर्ण दमन किया। लाला लाजपत राय लाठीचार्ज में घायल हुए और कुछ दिन अस्वस्थ रहकर वे हम सबको छोड़कर परलोक सिधार गए। तब भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने हत्यारे अंग्रेज अफसर सैंडर्स को गोली का निशाना बनाया और लापता हो गए।

आज हम बात कर रहे हैं अमर शहीद सरदार भगत सिंह की। क्रांतिकारी सरदार भगत सिंह और क्रांतिकारी बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली में असेंबली की दर्शक दीर्घा से बम फेंका। जब अंग्रेजों ने मजदूर आंदोलन को दबाने के लिए दमनकारी ट्रेड डिस्प्यूट बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल लादा तो देशवासियों ने उसे काला कानून कहा। भारतीयों द्वारा विरोध के बाद भी वायसराय विशेष अधिकार से इन्हें ऑर्डिनेंस के रूप में कानून का रूप देने वाले थे। तब चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में सरदार भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने जबरदस्ती लादे गए कानूनों को दिल्ली असेंबली में रखने वाले दिन यानी 8 अप्रैल 1929 को बम विस्फोट किया और साथ में बम फेंकने के कारण लिखे पर्चे भी फेंके। बम धमाके से हुए धुएं में इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद का नाश हो, दुनिया के मजदूर एक हो के नारे से असेंबली भवन गूंज उठा और धमाका करने के बाद भागने की जगह क्रांतिकारी सरदार भगत सिंह और क्रांतिकारी बटुकेश्वर दत्त ने गिरफ्तारी दी। हाईकोर्ट में बहस के समय भगत सिंह ने स्पष्ट किया कि हमारा उद्देश्य खून खराबा नहीं है, हम तो मनुष्य द्वारा मनुष्य के शोषण की प्रथा का विरोध करते हैं। हमने तो जनता का निर्णय न मानने पर साम्राज्यशाही ताकत को जनता का उत्तर दिया है, क्योंकि बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है, इसलिए असेंबली में बम फेंका गया है। जब सरदार भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली में असेंबली की दर्शक दीर्घा से बम फेंका था, उस समय पब्लिक सेफ्टी बिल पारित किया जा रहा था। इस बिल के कारण मजदूरों का हड़ताल करने का अधिकार समाप्त किया जा रहा था। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त दोनों ही इस असेंबली बम कांड में पकड़े गए और तब उन पर लाहौर बम कांड, सैंडर्स हत्या और असेंबली बम कांड में मुकदमा चलाया गया।

श्रोतो, गीत सुनने से पहले हमने आपको बताया था कि असेंबली बम कांड में क्रांतिकारी सरदार भगत सिंह और क्रांतिकारी बटुकेश्वर दत्त गिरफ्तार हो गए थे। असेंबली बम कांड की सुनवाई के समय अदालत में क्रांतिकारी आंदोलन के उद्देश्य और कार्य स्पष्ट हो चुके थे। जनता क्रांतिकारियों के विचार जान चुकी थी, जिससे युवाओं में चेतना जागी और अंग्रेजों का आतंक टूटने लगा। ऐसे समय में चंद्रशेखर आजाद भी चाहते थे कि क्रांति की सोच के साथ क्रांति के हथियार भी जनता को मिल जाएं, ताकि देशभक्त आगे आकर स्वाधीनता आंदोलन में शामिल हो सकें। लेकिन हर एक के पास हथियार पहुंचाना संभव नहीं था, इसलिए सामान बनाने की विधि को पहुंचाने का विचार मन में आया। और जब लाहौर षड्यंत्र मुकदमे के समय मुखबिर फणीन्द्र घोष बयान देने आया, तो क्रांतिकारी शिव वर्मा ने अदालत में बम बनाने को लेकर बहस छेड़ दी। बातों बातों में फणीन्द्र घोष तैश में आ गया और साथियों के नाम के साथ भरी अदालत में बम बनाने की विधि बता दी।

तरह बम बनाने की विधि समाचार पत्र के माध्यम से आम जनता तक पहुंच गई और इस मुकदमे में उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। जेल में भगत सिंह ने 115 दिन की भूख हड़ताल की, परंतु उनके साथी क्रांतिकारी यतीन्द्र नाथ दास 65 दिन की भूख हड़ताल के बाद चल बसे।

श्रोताओ, अमर क्रांतिकारी सरदार भगत सिंह और उनके साथियों द्वारा देश को आजाद किए जाने के लिए चलाए गए अभियान से अंग्रेज बुरी तरह आहत हो चले थे और अंत में अंग्रेज सरकार ने 1931 में 23 मार्च को अमर क्रांतिकारी शहीद सुखदेव, अमर क्रांतिकारी शहीद राजगुरु के साथ अमर क्रांतिकारी सरदार भगत सिंह को भी फांसी पर चढ़ा दिया।

0: ये कार्यक्रम हमने केंद्रित किया था अमर शहीद क्रांतिकारी सरदार भगत सिंह पर। अब ये कार्यक्रम समाप्त होता है।
1: स्वराज संस्थान संचालनालय, संस्कृति विभाग, मध्य प्रदेश शासन, भोपाल। याद करो।

0: मधुबन 90.4 FM का
1: इस लहराते तिरंगे को सलाम।
0: मैं तिरंगा हूं, केसरिया सफेद हरा रंग और अशोक चक्र मेरी पहचान है। मुझे गर्व है कि मैं भारत का राष्ट्रध्वज हूं, उस भारत का जहां गुरु नानक, महात्मा गांधी, गौतम बुद्ध जैसे महान आत्माओं ने जन्म लिया। मेरा गौरव और बढ़ जाता है जब मुझे किसी शहीद सैनिक के शरीर से लपेटा जाता है। मुझे गर्व होता है जब मैं देखता हूं कि इतने रंग, रूप, जातियां, भाषाएं होते हुए भी हर हिंदुस्तानी मिलजुल कर रहता है। पर मैंने और भी बहुत कुछ देखा है। इस आजादी को पाने के लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का खून, फिरंगी सरकार का हम पर वो जुल्म, मुझे हाथ में पकड़े हुए वंदे मातरम की वो आवाज आज भी मेरे कानों में गूंजती है। पर धीरे धीरे सब बदला। मैं भी, जी हां, जैसा मैं आज दिखता हूं पहले वैसा नहीं था। मेरे बदलते स्वरूप को जानने के लिए सुनते रहिए रेडियो मधुबन 90.4 FM।

0: मुझे नहीं जाना 15 अगस्त के दिन स्कूल।
1: अरे क्यों बेटा, क्या हुआ?
0: मुझे टीचर ने डांस में भी नहीं लिया, मैं नहीं जाऊंगी।
2: मुझे भी नहीं जाना माँ। क्या बस वही लड्डू मिलेंगे, बैठे रहो धूप में पूरा दिन।
3: बच्चों पता है भारत को सुरक्षित रखने के लिए कितने वीर सीमा पर तैनात हैं? पता है भारत को आजादी दिलाने में कितने वीर जेल गए, कितनों ने लाठी खाई और न जाने कितनों ने अपनी जान तक कुर्बान कर दी। ये आजादी फ्री की नहीं है और ये दिन छुट्टी का नहीं। आओ मिलकर अपने देश को करें प्रणाम।
0: सॉरी माँ, हम ये बात कभी नहीं भूलेंगे
2: और अपने देश के लिए जरूर कुछ करेंगे।
0: जय हिंद।

0: विद्वान कई हुए वीर कई,
1: ये भूमि है महान,
0: फिर भी प्रणाम करती संस्कृति यहाँ की,
1: ये है कितनी निर्माण,
0: भारत का गौरव गान
1: गाता है इतिहास स्वर्णिम,
0: अनेकता में एकता यहाँ
1: रहता मिला जुला हर रंग।
0: रेडियो मधुबन की ओर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।

0: रुक, रुक, रुक। हेलमेट कहाँ है तुम्हारा?
1: सर वो सर सर
0: ओए क्या सर सर करके सरसरा रहा है भाई? आए ओए तुम्हारे सर के लिए ही बोल रहा हूँ।
2: ओए चेहरे से तो समझदार लगते हो, पढ़े लिखे भी लगते हो। ओए इतनी धूप है धूल है, वो कम से कम अपने चेहरे का ही ख्याल रख लो। ओए ये चमकते हीरे जैसा चेहरा कहीं जीरे जैसा नहीं हो जाए।
1: सर आगे से ध्यान रखूंगा।
2: आगे से तो नहीं, मुझे तो तुम पीछे से निकलने वाले लगते हो हैं?
0: पर मुझसे कोई नहीं बच सकता क्योंकि ये है मेरी सड़क और मुझे कहते हैं होलदार। कड़क, पहले वो सामने की दुकान से लो हेलमेट फिर गाड़ी।
3: हमेशा बाइक पर हेलमेट पहनकर निकलना चाहिए, इसमें आपका ही भला है। जीवन अनमोल है, इसे यूं ही व्यर्थ न गवाएं। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

शांति। आज है 16 अगस्त 2026 और हम सभी अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य सुनेंगे। ये अव्यक्त मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 16 मार्च 2011 को सुनाए थे। होली का पावन त्योहार और होलीस्ट बाप अपने होली बच्चों से होली मनाने आए हैं। बाबा कहते आप सभी कौन से रंग की होली मनाने आए हो, कौन से रंग की होली मनाने आए। सबसे श्रेष्ठ रंग है परमात्मा संग का रंग, जो सदा श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनाने वाला है। फिर बाबा देखते हैं हर एक बच्चे के मस्तक में चमकता हुआ भाग्य का सितारा दिखाई दे रहा है। वो श्रेष्ठ भाग्य कौन सा? बाबा कहते वो श्रेष्ठ भाग्य है कि आप बच्चे ही डबल पवित्र अर्थात होली बनते हो। और डबल पवित्र है शरीर और आत्मा, दोनों पवित्र बनते हैं, इसलिए बाबा कहते डबल ताज प्राप्त होता है। ये उसके निशाने है, जो डबल पवित्र बनते हैं उसके निशानी डबल ताज प्राप्त होता है। फिर बाबा कहते हैं आप होली बाप के साथ रहने से, बाप को कंबाइंड बनाने से ही डबल पवित्र बन जाते हो। लोग तो स्थूल रंग से होली मनाते हैं, लेकिन ब्राह्मण बच्चे बाप के संग के रंग से होली बन जाते हैं। बाबा कहते हैं होली दुनिया से न्यारी और परमात्मा की प्यारी है। ये संगम युग की होली दुनिया से न्यारी और परमात्मा की प्यारी है। फिर बाबा देखते हैं कि बच्चे सदा उमंग उत्साह में रहते हो और दूसरों को भी उमंग उत्साह दिलाते हो। आप परमात्मा का बनने के लिए पहले अपने पुराने संस्कारों को जलाते हो, खुशी खुशी उमंग उत्साह से पुराने संस्कारों को जलाते हैं और फिर प्रभु के संग का रंग लगने से सदा मनाते हो। तो इसीलिए यादगार में भी क्या दिखाते, पहले जलाते हैं फिर मनाते हैं। लेकिन आपका मनाना और उन्हों का मनाने में रात दिन का अंतर है। वह बॉडी कॉन्शियसनेस में मनाते, देह अभिमान में मनाते हैं, आप आत्मा अभिमानी होकर मनाते हो। बाबा फिर कहते हैं दूसरा होली का स्वरूप क्या है। आपको बाप दादा का डायरेक्शन है होली अर्थात बीती सो बीती, क्योंकि बीती को याद करने से क्या होता है, व्यर्थ संकल्प बहुत चलते हैं और समय भी व्यर्थ जाता है। वह एक एक संकल्प, एक एक मिनट कितना वैल्यूबल है। एक सेकंड नहीं गया लेकिन अनेक जन्म की प्रारब्ध में फर्क पड़ जाता है। इसलिए बाबा कहते होली और बीती को बीती करो। अपने दिल में सोचो कि इतनी वैल्यू सदा रहती है समय और संकल्प की। इस संगम के समय के लिए ही कहा हुआ है अब नहीं तो कब नहीं। बाप दादा सदा ही इशारा देते हैं कि अपने मन के शुभ सतोगुणी संकल्प द्वारा प्रकृति को भी सतोगुणी बनाते रहो। बाबा काम भी देते हैं ताकि व्यर्थ संकल्प न चले, तो अपने मन के शुभ सतोगुणी संकल्प द्वारा प्रकृति को भी सतोगुणी बनाते रहो। क्यों? क्योंकि अभी प्रकृति बड़े रूप में अपना कार्य करने वाली है। इसीलिए बाबा कहते हैं आप प्रकृति को भी सकाश देते चलो, शुद्ध पवित्र बनाते चलो। बाबा कहते हैं आपका वायदा है ना, माया जीत बनना ही है, ऐसे ही प्रकृति जीत भी बनना है। अभी संगम युग अमृत वेला चल रहा है, चक्र के हिसाब से संगम युग अमृत वेला चल रहा है। अमृत वेले के बाद क्या होता है? सवेरा। उस सवेरे में तो हमारा राज्य आना है
और बाबा कहते आपके राज्य में प्रकृति भी सतो प्रधान होनी है, तो उनको सतो प्रधान कौन बनाएगा, प्रकृति को सतोगुणी कौन बनाएगा। बाबा कहते अभी अचानक का पहला दृश्य शुरू हुआ है। उस समय जापान में बहुत बड़ी भूकंप और सुनामी आई थी, काफी नुकसान हुआ था, तो इसलिए बाबा कहते अभी अचानक का पहला दृश्य शुरू हुआ है। अभी तो बड़े बड़े आने हैं और अचानक ही आने हैं, जो सोच में भी नहीं होगा वही होना है। बाबा कितना अटेंशन सावधान हमें कर रहे हैं समय के प्रति और प्रकृति के खेल के प्रति भी। तो इसीलिए बाबा कहते ऐसे समय में आपका डबल काम है। कौन सा डबल काम है? एक तो निर्भय होके सामना करो और दूसरा अपने भक्त और अपने दुखी भाई बहनों की सेवा करो, मनसा सेवा करो। आप परमात्म बच्चों को अभी दुखियों का सहारा बनना है, उनको शुभ भावना शुभकामना द्वारा बाप द्वारा प्राप्त हुई किरणों द्वारा सहारा बनो। नाम ही है सहयोग, श्रेष्ठ योग। तो समय निकालो, रहमदिल बनो, कल्याणकारी बनो। बाबा कहते आपका स्वमान है विश्व कल्याणकारी, तो इसमें अलबेले नहीं बनना। आत्माएं अभी भी संगम पर आपके दिल से गीत गाती है, वह परमात्म बच्चे वह। तो जिनके प्रति शुभ भावना शुभ कामना अर्पित की है वही बाबा कहे द्वापर के बाद भी गीत गाएंगे और संगम पर भी गीत गाते, वाह परमात्मा बच्चे वाह, हमें सहारा दिया। अभी का सहारा आधा कल आपके गीत गाते रहेंगे, पूर्वज के रूप में आपको मानते रहेंगे। तो इसीलिए बाबा कहते हैं अभी सभी ने होली मनाई, आपकी तो सारा संगम ही होली है, यादगार मनाते हैं एक दो दिन, लेकिन आपका तो पूरा संगम प्रभु के संग में रहने वाले हो। सदा ये चेक करो कि मुझे ब्राह्मण परिवार के बीच संस्कार मिलन की रास करना आता है, चाहे मेरा संस्कार हो चाहे दूसरे का संस्कार भी मेरे को प्रभाव नहीं डाले, ये चेक करना है। फिर बाबा कहते हैं हमको संस्कार देखने के बजाय, एक दूसरे के संस्कार देखने के बजाय शुभ भावना शुभकामना रखनी है। बस कौन कैसा है क्या कर रहा है उसका ये संस्कार है, ये देखने के बजाय सबके प्रति शुभ भावना शुभकामना रखनी है। एक दो के सहयोगी बन, शुभ भावना शुभकामना की दृष्टि वृत्ति स्मृति रखने से ये रास होना कोई बड़ी बात नहीं है। तो ऐसे संस्कार मिलन की रास करो शुभ भावना शुभकामना से सहयोगी बन करके। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज की मुरली का टाइटल है मनसा द्वारा प्रकृति को सतोगुणी बनाने की सेवा करो, शुभ भावना शुभ कामना रख संस्कार मिलन की रास करो। आज होलीस्ट बाप अपने बच्चों से होली मनाने आए हैं, होली का पावन त्योहार, और परमात्मा बाप हम सब बच्चों से होली मनाने आए हैं। आप सभी भी होली मनाने आए हैं? बाबा पूछते हैं बच्चों से भी कि आप सभी भी होली मनाने आए हैं? चारों ओर के दूर बैठे हुए बच्चे भी दूर बैठे भी होली मनाने बैठे हैं। आप सभी कौन से रंग की होली मनाने आए हो? बाबा पूछते बच्चों को कि आप सभी कौन से रंग की होली मनाने आए हैं?

भाग्य का सितारा देख रहे हैं। ये भाग्य का सितारा सारे कल्प में आप भाग्यशाली बच्चों के सिवाय और कोई प्राप्त नहीं कर सकता है। बाबा कहते हैं ये भाग्य का सितारा सिर्फ आपके भाग्य में है, जो सारे कल्प में कोई भी प्राप्त नहीं कर सकता है। वह श्रेष्ठ भाग्य है कौन सा? वह श्रेष्ठ भाग्य है कि आप बच्चे ही डबल पवित्र अर्थात होली बनते हो, डबल पवित्र आत्मा भी और शरीर भी भविष्य में पवित्र। बाबा कहते वैसे धर्मात्मा भी है लेकिन वह शरीर से पवित्र नहीं बनते हैं। आप ब्राह्मण आत्माओं की भविष्य में आत्मा भी पवित्र बनती और शरीर भी पवित्र बनता है, और इनके निशानी है डबल पवित्र तो डबल ताज प्राप्त होता है। इसीलिए लाइट का ताज भी है तो रत्न जड़ित ताज भी है, क्योंकि डबल पवित्र है तो उसके निशानी है डबल ताजधारी। सारे कल्प में आप संगम युग पर बाप के संग के रंग से डबल पवित्र डबल ताजधारी बनते हो। संगम युग का परमात्मा संग डबल पवित्र बना देता है। संगम युग का ये पवित्र परमात्मा संग डबल पवित्र बना देता है। तापोली बाप के साथ रहने से, बाप को कंबाइन बनाने से डबल पवित्र बन जाते हो। बाबा के साथ रहने से, कंबाइन रहने से डबल पवित्र बन जाते हो। सदा दिल में बाप का संग रहता है। यह संग कितना श्रेष्ठ है, ये परमात्मा संग कितना श्रेष्ठ है जो इतना श्रेष्ठ बना देता है। लोग तो स्थूल रंग से होली मनाते हैं लेकिन आप बाप के संग के रंग से होली बन जाते हो। बाबा के संग के रंग से होली बन जाते हो, वह भी डबल होली। तो आपकी होली दुनिया से न्यारी, परमात्मा की प्यारी है। तो नशा रहता है ना, पूछते बाबा, नशा रहता है ना कि हमारी होली प्रभु संग के रंग के कारण आधा कल्प ऐसा पवित्र बनाती है। बाबा कहते आधा कल्प हम पवित्र बने रहते हैं, जो अब तक भी आपके चित्र कायदे प्रमाण पूजे जाते हैं और कोई के भी चित्र ऐसे प्रेम पूर्वक मुझे नहीं जाते हैं। आप स्वयं अपने चित्र को देख रहे हो और भी पूजे जाते हैं लेकिन इतना समय और ऐसी विधि पूर्वक पूजा नहीं होती है जितनी विधि पूर्वक हम बच्चों की होती है, देवताओं की होती है। बाबा कहे ऐसे इतना लंबे समय तक और विधि पूर्वक और किसी की पूजा नहीं होती है। क्यों? क्योंकि बाप के संग के रंग में रंगे हुए हैं। आप सदा उमंग और उत्साह में रहते हो ना, उमंग उत्साह में रहते हो? फिर पूछते हैं बाबा, कंफर्म करते, हाथ उठाओ, रहते हो कभी कभी या सदा? जो कहते हैं हम सदा उमंग उत्साह में रहते भी है और दूसरे को भी उमंग उत्साह दिलाते हैं, वह हाथ उठाओ, कभी कभी नहीं सदा। सदा शब्द को अंडरलाइन करते हो ना, लेकिन आपका यादगार जो भी आपकी स्थिति रही है उसका यादगार आपके भक्त उत्सव के रूप में मनाते हैं। आपने प्रभु के संग का रंग लगाया, आपने प्रभु के संग का रंग लगाया तो वह भी रंग लगाते हैं, लेकिन उनका रंग कौन सा है? बॉडी कॉन्शियस है ना, तो स्थूल

रंग लगा देते हैं, जिस रंग में खर्चा भी बहुत और फिर रिजल्ट भी कुछ अच्छी कुछ नहीं अच्छी है। रिजल्ट कैसी? कुछ अच्छी कुछ नहीं अच्छी, ऐसे मनाते हैं। लेकिन आपके उत्साह का यादगार उत्सव जरूर मनाया है। आप परमात्मा का बनने के लिए पहले अपने पुराने संस्कारों को जलाते हो और फिर प्रभु के संग का रंग लगने से सदा मनाते रहते हो। वह भी पहले जलाते हैं फिर मनाते हैं, लेकिन आपका मनाना और उन्हों के मनाने में रात दिन का अंतर है। बाबा कहते हैं आपका मनाना और उनका मनाना, उनमें रात दिन का अंतर है। वह बॉडी कॉन्शियसनेस अर्थात देह अभिमान से मनाते, आप आत्माभिमानी। वह देह भान में, आप आत्मिक भान में। आपको बाप दादा का डायरेक्शन है। बाबा कहते वह तो देह भान में मनाते हैं, आप आत्मिक भान में। फिर बाबा कहते आपको बाप दादा का डायरेक्शन है होली अर्थात बीती सो बीती। एक तो प्रभु संग के रंग की होली है, डबल पवित्र बन जाते, डबल ताजधारी बन जाते हैं, और फिर दूसरी होली अर्थात बीती सो बीती। यह भी कहते हैं होली, लेकिन अर्थ को प्रैक्टिकल में नहीं ला सकते। आप सब होली अर्थात बीती सो बीती करते हो, करते हो ना, कि कभी कभी करते हो? क्योंकि बीती को याद करने से व्यर्थ संकल्प बहुत चलते हैं, समय भी व्यर्थ जाता है। जो बहुत समय के संस्कार है वह ना चाहते भी जब चलते हैं तो इस संगम युग का एक एक मिनट जो एक जन्म में 21 जन्म की प्रालब्ध बनाता है, वह एक एक संकल्प एक एक मिनट कितना वैल्यूबल है। एक सेकंड नहीं गया लेकिन अनेक जन्म की प्रालब्ध में फर्क पड़ जाता है, अनेक जन्म की प्रालब्ध में फर्क पड़ जाता है। बाप दादा ने पहले भी कहा है कि संगम समय का समय और संकल्प कभी भी व्यर्थ नहीं गवाना है। अगर सदा प्रभु रंग में रंगे हुए हो अर्थात बाप को सदा का साथी बना के रहते हो, तो संगम युग के एक एक संकल्प और समय माना एक एक मिनट को सफल कर सकते हो। तो चेक करो, बाबा कहते अगर परमात्मा संग के रंग में रहते हैं, बाप को सदा अपना साथी बना के रहते हैं, तो संगम युग का एक एक संकल्प एक एक मिनट सफल कर सकते हो। तो चेक करो अपने को कि एक एक मिनट एक एक संकल्प सफल होता है या व्यर्थ भी जाता है, क्योंकि एक मिनट नहीं 21 जन्मों का कनेक्शन हर मिनट और हर संकल्प का है। इतनी वैल्यू है, बाबा कहते इतनी वैल्यू है। तो अपने दिल में सोचो कि इतनी वैल्यू सदा रहती है। इस संगम के समय के लिए ही कहा हुआ है, अब नहीं तो कब नहीं। इसलिए बाबा संगम के समय की वैल्यू बाबा बच्चों को समझाते हैं कि सदा प्रभु संग के रंग में रंगे रहो, सदा बाबा को अपना साथी बना के रखो और एक एक संकल्प और एक एक मिनट को सफल करते चलो। इतनी वैल्यू सदा स्मृति में रहे। तो आप सभी ने आज होली मनाई अर्थात सदा बाप के संग का रंग लगाया,
तो सारा दिन चेक किया कि बाप का रंग लगा हुआ रहा, परमात्मा संग में रहे या और भी कहां समय व संकल्प गया। चेक कर, कांध हिलाओ, हाथ नहीं, ऐसे कर, बाबा दिखाते कांध हिलाओ। बाप दादा सदा ही इशारा देते हैं कि अपने मन के शुभ सतोगुणी संकल्प द्वारा प्रकृति को भी सतोगुणी बनाते रहो, तो वह मनसा सेवा याद रहती है। प्रकृति को भी सतोगुणी बनाने के लिए मनसा सेवा चाहिए, तो बाबा कहते वो मनसा सेवा याद रहती है क्योंकि अभी प्रकृति बड़े रूप में अपना कार्य करने वाली है। बाबा सावधान करते हैं और इशारा भी देते हैं कि अभी प्रकृति बड़े रूप में अपना कार्य करने वाली है। यह तो छोटी सी बात है, लेकिन प्रकृति को मनुष्यात्मा तंग करती है तो वह भी तंग करना शुरू करती है। इसीलिए बाप कहते हैं, जैसे माया जीत बनने का अटेंशन रखते हो ना, माया से वायदा है कि आपका काम है आना और हमारा काम है विजय प्राप्त करना। किया है ना वायदा, सभी ने किया है। तो बाबा कहते माया जीत बनना है, ऐसे ही प्रकृति जीत भी बनना है, क्योंकि आपको राज्य करना है ना, आपका राज्य आ रहा है ना, नशा है ना। लोग तो बेचारे सोचते हैं क्या होगा, डरते हैं, लेकिन आपको तो पता है। तो अभी संगम युग अमृत वेला चल रहा है, तो अमृत वेले के बाद क्या होता है, सवेरा, उस सवेरे में ही हमारा राज्य आना है ना। नशा हमारा राज्य है या केवल महारथियों के लिए राज्य है? आप सब का राज्य है। हाँ, बाबा कितना प्यार करता है बच्चों को, कहते आप सब का राज्य है, आप सब का राज्य है। बाबा कहते आपको चिंता नहीं क्या होगा, अच्छे से अच्छा होगा, जो होगा अच्छे से अच्छा होगा। तो आपके राज्य में प्रकृति भी सतो प्रधान होनी है, तो प्रकृति को तमोगुणी से सतोगुणी कौन बनाएगा? कि प्रकृति जैसी भी हो चलेगी, आपके राज्य में चलेगा? चलेगा, हाँ करो या ना करो, नहीं चलेगी। तो प्रकृति को सतोगुणी कौन बनाएगा? आप ही बनाएंगे ना। इसीलिए अभी अचानक का पहला दृश्य छोटा है, यह उसी समय जापान में बहुत बड़ा भूकंप और सुनामी आई थी, तो इसीलिए बाबा कहते अभी अचानक का पहला दृश्य छोटा है, यह शुरू हुआ है, अभी तो बड़े बड़े आने हैं। बाबा बच्चों को सावधान कर रहे हैं कि अभी तो बड़े बड़े आने हैं और अचानक ही आने हैं, जो सोच में नहीं होगा वही होना है। बाबा कहते जो आपने सोचा भी नहीं होगा वही होना है। बाप दादा ने तो बहुत समय से अचानक का पाठ पढ़ाया है, लेकिन अभी प्रत्यक्ष रूप में देख करके अभी अपना काम शुरू करो, घबराओ नहीं। बाबा कहते अभी प्रत्यक्ष रूप में देख करके अभी अपना काम शुरू करो। कौन सा काम शुरू करना है? मनसा सेवा द्वारा प्रकृति को सतो प्रधान बनाने का। बाबा कहते घबराओ नहीं, कहानी सुनाते हैं ना, चारों ओर आग लगी लेकिन परमात्मा के बच्चे सेफ रहे। तो अभी भी बच्चे तो सेफ है ना, इतनी बड़ी सुनामी आई लेकिन बाबा कहते हैं आप बच्चे तो सेफ है ना, पेपर तो आने ही है,
लेकिन आपका डबल काम है, पेपर के समय डबल काम है। कौन सा डबल काम? एक तो निर्भय होके सामना करो, दूसरा अपने भक्त और अपने दुखी भाई बहनों की सेवा करो। मनसा सेवा करना है तो अपने दुखी भाई बहनों की सेवा भी कौन करेगा? आप प्रभु के संग में रंग लगे हुए हो तो जो परमात्मा के संग के रंग में प्राप्त किया है वह अपने भाई बहनों को, भक्तों को खूब प्यार से दिल से बांटो। जो बाबा के संग के रंग में पाए हैं वह सबको खूब प्यार से दिल से बांटो। दुख के समय कौन याद आता है? फिर भी परमात्मा चाहे समझे नहीं समझे लेकिन मजबूरी से भी हे बाप हे परमात्मा कहेंगे जरूर। भले परमात्मा को जानते हैं नहीं जानते हैं लेकिन फिर भी दिल से निकलता तो यही है हे परमात्मा। तो आप परमात्म बच्चों को अभी दुखियों का सहारा बनना है, उन्हों को शुभ भावना शुभकामना द्वारा बाप द्वारा प्राप्त हुई किरणों द्वारा सहारा बनो। फिर भी आपका परिवार है ना, तो परिवार में एक दो को सहयोग देते हैं ना, तो नाम ही है सहयोग, श्रेष्ठ योग। वही साधन है सहारा देने का। संदेश भी भेजा था कि समय फिक्स करो, ऐसे नहीं हो जाएगा। जैसे ट्रैफिक कंट्रोल अमृत वेला निश्चित है तो करते हो ना, ऐसे अपने कार्य प्रमाण ये मनसा सेवा भी अभी के समय प्रमाण अति आवश्यक है। तो समय निकालो, रहम दिल बनो, कल्याणकारी बनो। बाबा कहते मनसा सेवा करो, रहम दिल बनो, कल्याणकारी बनो। आपका स्वमान क्या है? विश्व कल्याणकारी। तो रहम आता है कि हो जाएगा, इसमें अलबेला नहीं बनना। हम बाबा कहे इसमें अलबेले नहीं बनना, क्योंकि जिन्हों को आप सकाश देंगे वही आपके भक्त बनेंगे। इसलिए क्या करना है अटेंशन। जो समझते हैं हमारा अटेंशन है और बढ़ेगा वह हाथ उठाओ। नीचे ऊपर कर रहे हैं, यहां देखने आ रहा है। बाबा के सामने भी टीवी थी तो बाबा कहे यहां देखने में आ रहा है। अगर इतने सभी ने अपने स्वमान को प्रैक्टिकल में लाया, विश्व कल्याणकारी का स्वमान प्रैक्टिकल में लाया, तो आत्माएं अभी भी संगम पर आपके दिल से गीत गाएंगे, वहां परमात्मा बच्चे वहां हमें सहारा दिया, थैंक्स करेगी, कृतज्ञता व्यक्त करेगी। अभी का सहारा आधा कल आपके गीत गाते रहेंगे। बस संगम के थोड़े समय के लिए मनसा सेवा करने से या शुभ भावना शुभकामना का सहारा देने से बाबा कहे वो गीत गाते रहेंगे, आप उसके पूर्वज हो जाएंगे। पूर्वज हो, झाड़ में कहां बैठे हैं ब्राह्मण? नीचे बैठे हैं ना, तो पूर्वज हो ना। आवाज सुनने आता है भक्तों का, थोड़ा अपने को सावधान करो। दुखियों का सहारा बनना ही है तो आवाज सुनने आएगी। तो सभी ने होली मनाई, आपकी तो सारा संगम ही होली है। परमात्मा के संग के रंग में ही रहते हो, यादगार मनाते हैं एक दो दिन, लेकिन आप तो पूरा संगम प्रभु के संग में रहने वाले हो। नशा है ना, लोग बिचारे मांगते रहते हैं, हे प्रभु यह कर दो वह कर दो, लेकिन आपको 21 जन्मों की गारंटी मिली है।
कभी दुख का स्वप्न में भी कोई दृश्य नहीं आएगा।